प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम था अली और दूसरे का नाम था हसन। अली और हसन बचपन के दोस्त थे और इनकी दोस्ती इस कदर गहरी थी कि गांव वाले अक्सर इनकी दोस्ती की मिसाल दिया करते थे। अली बहुत ही मेहनती और जहीन लड़का था, जबकि हसन थोड़ा शरारती और खुश मिजाज बच्चा था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो अक्सर खेलते, पढ़ते और मिलकर वक्त गुजारते थे। इनकी दोस्ती का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि वो हमेशा एक दूसरे की मदद करते और किसी भी मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते। एक दिन अली और हसन गांव के करीब एक झील के किनारे खेल रहे थे। वहां एक बड़ा दरख्त था जिसकी ठंडी छांव में बैठना बहुत आरामदेह था। अली तो बड़े मजे से जाकर उस दरख्त के नीचे बैठ गया, जबकि हसन कुछ छोटे पत्थरों के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान हसन ने अली से कहा, ये झील कितनी अजीब है, कभी कभी यहाँ आना मुझे बहुत आरामदेह महसूस होता है। अली मुस्कुराकर बोला, हाँ हसन, ये वाकई खूबसूरत है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें यहाँ कभी कभार बैठकर ये फैसला करना चाहिए कि हम किस तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हैं। हसन ने तजस्सुस से अली की तरफ देखा और पूछा, हैं, किस किस्म का फैसला? अली ने कहा, हसन, मैं सोच रहा हूँ कि हमें मेहनत करनी चाहिए ताकि जब हम बड़े हों तो अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकें। हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे और एक दिन हम जरूर अपनी मेहनत का फल हासिल करेंगे। हसन ने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर पूछा, तो आपका मतलब है कि हम हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे? अली ने सर हिलाया, हाँ, यही सच्ची दोस्ती होती है। हसन और अली की दोस्ती का ये जज्बा दोनों दोस्तों के दरमियान हर दिन मजबूत होता चला गया। इन्होंने मिलकर स्कूल में अच्छे ग्रेड हासिल किए, खेलों में हिस्सा लिया और हमेशा एक दूसरे की हौसला अफजाई करने की पूरी कोशिश की। हर मुश्किल में अली और हसन एक दूसरे का साथ देते रहे और हर कामयाबी का जश्न मिलकर मनाते रहे। एक दिन गांव में एक बड़ा खेलों का मुकाबला था। ये मुकाबला शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ था और गांव वाले बहुत खुश थे। अली और हसन ने भी इस मुकाबले में हिस्सा लेने का फैसला किया। उन्होंने अपनी महारतों को बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात मेहनत की। मुकाबले की शुरुआत से पहले अली और हसन ने एक दूसरे की हौसला अफजाई भी की। याद रखो हसन, हमने ये सब मेहनत से हासिल किया है, अब हमें सिर्फ अपने दिल की सुनने की जरूरत है, अली ने कहा। हसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुम जानते हो ना अली, मैं हमेशा तुम्हारी वजह से कुव्वत हासिल करता हूँ, चाहे हम जीतें या हारें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुकाबला शुरू हुआ। अली और हसन ने अपने अपने इवेंट्स में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। एक साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को फतह दिलाई। जब आखिरकार गांव की टीम जीत गई तो गांव वालों ने खुशी से शोर मचा दिया। अली और हसन ने एक दूसरे को गले लगाया, हमने ये सब मिलकर किया और यही सच्ची दोस्ती है, अली ने कहा। फतह के बाद गांव के बुजुर्गों ने दोनों दोस्तों के लिए मोहब्बत और तारीफ का इजहार किया। ये तुम्हारी सच्ची दोस्ती और मेहनत का नतीजा है। तुमने हमें सिखाया है कि जिंदगी में कामयाबी सिर्फ तब मिलती है जब हम एक दूसरे की मदद करें और साथ चलें। अली और हसन की दोस्ती इस बड़े खेलों के मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद और भी मजबूत हो गई। इस कामयाबी के बाद दोनों दोस्तों की गांव में शोहरत और एहतराम भी बढ़ गया था।
गांव वाले इनके बारे में बात करते हुए मिसालें दिया करते थे और इनकी दोस्ती को मिसाल के तौर पर पेश करते थे। अली और हसन खुश थे कि ना सिर्फ वो एक दूसरे की हिम्मत का बाइस हैं, बल्कि पूरा गांव भी उन्हें बहुत इज्जत से नवाजता है। एक दिन अली और हसन ने गांव के

बाहर चलने का फैसला किया। वहां एक खूबसूरत पहाड़ था जो उनके गांव से थोड़ा सा दूर था। दोनों दोस्तों ने उस पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। ये फैसला करने के बाद वो हंसते हुए पहाड़ की तरफ रवाना हुए। याद रखो हसन, इस पहाड़ पे चढ़ना आसान ना होगा, हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी, अली ने कहा। हसन ने पुरजोश लहजे में जवाब दिया, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, हम मिलकर इस सफर को बहुत आसान कर देंगे। पहाड़ पर चढ़ते हुए दोनों दोस्तों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रास्ता मुश्किल था और कई जगहों पर पत्थर फिसलने वाले थे, जिसकी वजह से चढ़ाई मुश्किल होती चली गई। लेकिन जब भी हसन थका हुआ महसूस करता, अली उसे हौसला देता और कहता, सिर्फ थोड़ा सा और, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बहुत घंटों की चढ़ाई के बाद दोनों दोस्त बिलाखिर थक गए, लेकिन वो एक दूसरे पर हार नहीं मानना चाहते थे। एक मौके पर हसन ने कहा, अली मुझे लगता है कि हम मजीद नहीं जा सकते आगे, मैं बहुत थक चुका हूँ। अली ने हसन की तरफ हमदर्दी से देखा और कहा, अगर तुम थके हुए हो तो तुम आराम कर सकते हो, लेकिन याद रखो, अगर हम अभी रुक गए तो हम इस खूबसूरत मंजर को कभी नहीं देख पाएंगे। हसन ने एक गहरा सांस लिया और अली की बात को दिल पर लेते हुए चल पड़ा। वो फिर से उठा और दोनों दोस्तों ने अपने सफर को जारी रखा। आखिरकार वो पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचे। वहां से पूरे गांव का मंजर देखा जा सकता था और मंजर इतना खूबसूरत था कि हसन की थकान तो जैसे गुम ही हो गई। अली तुम ठीक कहते थे, अगर हम रुक जाते तो हम इस मंजर को कभी नहीं देख पाते, हसन ने खुशी से कहा। अली ने मुस्कुराकर कहा, ये सच्ची दोस्ती है, हमने एक दूसरे की मदद की और उसका इनाम इस मंजर की सूरत में मिला। ये लम्हा दोनों दोस्तों की जिंदगी में एक नया सबक था। उन्होंने सीखा कि जब जिंदगी में मुश्किलात पेश आती हैं तो सच्चे दोस्त एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इनकी दोस्ती ने उन्हें ये सिखाया कि हिम्मत, मेहनत और बाहमी मदद से जिंदगी के बड़े तरीन चैलेंजेस को फेस किया जा सकता है। गांव वापस पहुंचकर दोनों दोस्तों ने अपने वालिदैन और गांव वालों को अपने सफर के बारे में बताया। सबने उनकी बहादुरी और दोस्ती की तारीफ की। ये दोनों बच्चे हमें सिखा रहे हैं कि सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा एक दूसरे की हिम्मत बने रहना होता है, गांव के एक बुजुर्ग ने कहा। अब अली और हसन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। दोनों ने फैसला किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों। उनकी दोस्ती ने पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ लफ्ज नहीं बल्कि एक दूसरे के साथ जुड़ने का नाम है, जहां मोहब्बत, एहतराम और हिम्मत मौजूद होती है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती खुशियों के वक्त ही नहीं बल्कि मुश्किलात के वक्त भी काम आती है। दोस्तों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। जिंदगी की मुश्किलात पर काबू पाने का राज सच्ची दोस्ती है। साथियों, ये याद रखें कि सच्चे दोस्त बड़े चैलेंजेस के मौके पर एक दूसरे की मदद करके कामयाब हो सकते हैं।

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर।
2: विद आरजे सरवर।
0: वजारत दाखला ने मेतराश एप्लीकेशन में एक नई सहूलत मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए यूजर्स अपने रिश्तेदारों को मेतराश एक्टिवेट करने की इजाजत दे सकते हैं, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो अपने नाम पर मोबाइल नंबर नहीं रखते। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए यूजर्स को चंद आसान मराहिल पर अमल करना होगा। पहला मरहला, मेतराश एप्लीकेशन खोलकर मेन मेन्यू में जाएं और डेलीगेशन का इंतखाब करें। दूसरा मरहला, रिलेटिव रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरा मरहला, मतलूबा मालूमात दर्ज करें और जिस रिश्तेदार को रजिस्ट्रेशन देनी हो उसे ऐड करें। चौथा मरहला, तफसीलात की तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन अमल मुकम्मल हो जाएगा और मुतल्लिका शख्स मेतराश एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकेगा। वजारत दाखला के मुताबिक ऐड पर क्लिक करने से मुतल्लिका शख्स को मुकर्रा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हुए मेतराश एप्लीकेशन एक्टिवेट करने की इजाज़त मिल जाएगी। वजारत दाखला ने आवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके ज़राए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार किया गया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में हजारों अफराद तक पहुंच सकती है। वजारत दाखला ने जोर दिया है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और रस्मी ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। रियासत कतर ने जमहूरिया तुनिशिया में अरब वज़राए दाखला काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक़िद 18वें अरब कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ बॉर्डर, एयरपोर्ट एंड पोर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज में शिरकत की। वजारत दाखला के वफ्द की क़यादत डायरेक्टर ऑफ द मरीन पोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल हादी मोहम्मद जबीन अल दुसैरी ने की। कॉन्फ्रेंस के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ सिक्योरिटी और सरहदी इंतजाम से मुतालिक मौजूद पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में कतर ने मुल्क के एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी के तजुर्बे को भी नुमाया किया, खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदी नुकात पर हिफाजती इंतजाम और कामयाब सिक्योरिटी इकदाम को शिरका के सामने पेश किया गया। मसलन, जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लाखों शायकीन कतर पहुंचे, उस वक्त एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और बॉर्डर क्रॉसिंग पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद को मुनज़्ज़म

और महफूज अंदाज में हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज था। कतर के सिक्योरिटी इदारों ने जदीद इंतजामी और सिक्योरिटी निजाम के जरिए इस चैलेंज को कामयाबी से संभाला, जिसकी तारीफ मुतअद्दिद बैनुल

0: ये खदमात MOI की वेबसाइट और मेत्राश ऐप के जरिए हासिल की जा सकती हैं, जहां मामला डिपार्टमेंट का दौरा किए बगैर आसानी से मुकम्मल किया जा सकता है। MOI वेबसाइट के जरिए खिदमात हासिल करने के लिए वीजा नंबर, स्पॉन्सर नंबर या एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके मुतल्लिका रिकॉर्ड्स तलाश किए जा सकते हैं। इसके बाद अदायगी के लिए फीस, जुर्माने या एयर टिकट फीस का इंतखाब करके क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की जा सकती है। मेत्राश ऐप में सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर फाइनेंशियल क्लेम्स सर्विसेज का इंतखाब किया जाता है। इसके बाद पर्सनल या कंपनी अकाउंट और फीस ऑफ फाइंस या टिकट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके मुतालिका रिकॉर्ड चुना जाता है। आखिरी मरहले में दरकार रकम ऑनलाइन अदा करके मामला मुकम्मल किया जा सकता है। दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी से रियासत कतर में कायम मकाम स्पेन के सफीर अलवारो रिनेडो जालबा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन का जायजा लिया गया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हों। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती हैं अगर सही इंतखाब किया गया हो। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। जेट स्की या किसी भी समंदरी सवारी का मजा उस वक्त ही है जब आप हिफाजती कवायद की पाबंदी करें। आपकी जिम्मेदाराना ड्राइविंग ही आपकी महफूज वापसी की जमीन है। हमेशा महफूज रफ्तार इख्तियार करें और अचानक तेज मोड़ लेने या खतरनाक स्टंट करने से परहेज करें, क्योंकि इससे सवारी उलट सकती है और हादसा पेश आ सकता है। साहिल से मुनासिब फासला बरकरार रखें और स्विमिंग के लिए मुकर्रर इलाकों के 300 मीटर के अंदर ना जाएं। दूसरी कश्तियों और बड़े जहाजों पर नजर रखें और कभी भी उनके आगे से गुजरने की कोशिश ना करें। गफलत की हालत या अगर आपकी तवज्जो या फैसला करने की सलाहियत मुतासर हो तो ड्राइविंग ना करें। पूरे होशो हवास में ही समुद्री सवारी करें और खराब या गैर मुस्तहकम मौसम की सूरत हाल में समुद्र का रुख करने से बचें। वजारत दाखला का कहना है कि समुद्री हिफाजत के कवायद पर अमल आपके सफर को पुरलुत्फ और खतरों से महफूज बनाता है। आपकी सलामती हमारी पहली तरजीह है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके फेवरेट ट्रैक.

0: हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है. कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद. और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी. दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: सामिन कराम, अरब दुनिया में कहा जाता है अलहाजा तकसर अलबदा. इसका मतलब है जरूरत इंसान को अपनी कीमती चीज भी कम दामों में बेचने पर मजबूर कर देती है. ये कहावत उस वक्त कही जाती है जब कोई शख्स अपनी शदीद मजबूरी या हालात जिंदगी के दबाव के तहत अपनी चीज असल कीमत से कहीं कम में फरोख्त कर देता है. वो यह हाजत और तंगी इंसान को असल कद्र कीमत से महरूम कर देती है. कहते हैं ना, मजबूरी में शेर भी घास खाता है. तो दोस्तों, ये कहावत हमें सिखाती है कि जरूरत और मजबूरी इंसान की असल कीमत को तोड़ देती है. इसलिए अगर कभी किसी को मजबूरी में कम दामों पर बेचते देखें तो उसका मजाक ना उड़ाएं बल्कि उसकी मदद करें, क्योंकि अलहाज तकसर अलबदा का मतलब है कि जरूरत सबसे बड़ी कीमत चिकन है.
3: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामीन किराम, आज हम सुन्नत लेकर आए हैं जो हमें ये बताती है कि एहतराम, नरमी और हुस्न अखलाक ईमान का हिस्सा है। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, एक बुजुर्ग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए मगर लोगों ने फौरन उनके लिए जगह न बनाई, यानी ताखीर कर डाली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स हम में से नहीं जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे, हमारे छोटों पर शफकत न करे और हमारे बुजुर्गों के शरफ व मकाम को न पहचाने। इस हदीस में एक बड़ा नुक्ता ये है, इस बात की कोई सबूत नहीं कि ये बुजुर्ग मुस्लिम थे या नहीं। वैसे उमूमुल अल्फाज से हमें ये समझ में आती है कि सुन्नत नबवी हमें यहाँ ये सिखा रही है कि अच्छे कलिमात, खुश अखलाकी और नरम रवैया सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं बल्कि सब इंसानों के साथ होना चाहिए। ये इंसानियत और फितरत का तकाजा है। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिज़ाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाज़त। मा सलामा।
0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, यानी आज हम बात करेंगे सांस की सेहत के बारे में। अब सांस की सेहत क्या है? वो वही कि हम किस तरह से हम सांस लेते हैं। साफ और सेहतमंद जो सांस है वो हमारी जिस्मानी तवानाई और मुदाफ़त के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी हमारी इम्यूनिटी के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने कभी ये सोचा कि आज बाहर ताज़ा हवा में मैंने कितना वक्त गुजारा? इस पर ज़रूर गौर कीजिए कि कितना वक्त हम बाहर गुजारते हैं और कितना वक्त हमें ये होता है कि हम अंदर ही बैठे रहें। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और ये कि डिवाइसेस पर या बाकी भी जो काम कर रहे होते हैं तो उस पर भी हमें गौर तो करना है, मगर ये है कि कुछ ज़्यादा ही वक्त हम गुजार देते हैं। तो जो हमारी जो ब्रीदिंग है, यानी जो सांस की सेहत है, उसके लिए ताज़ा और साफ हवा बहुत ज़रूरी है, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इसी तरह जो धुआं है और स्मोकिंग है या आलूदगी से बचाव जो है वो बेहद ज़रूरी है। इससे अगर हम इसका ख्याल ना करें तो फिर अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां या फिर जो सांस की कमी है वो वाक़ होना शुरू हो जाती है। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एक शख्स जो घर के अंदर ज़्यादा वक्त गुजारता और ये कि ये भी ख्याल नहीं करते कि जो पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है या नहीं है, फिर उस शख्स में जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी नहीं करनी तो सारी मुश्किलात जो हैं वो आती चली जाएंगी। मगर जब उसने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से और रोज़ाना सुबह पार्क में चलना शुरू किया तो उसकी जो ब्रीदिंग है वो बेहतर हुई और आहिस्ता आहिस्ता उस

0: की जो तवानाई है वो भी ज्यादा होती चली गई। तो फिर हमें करना ये है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट ताज़ा हवा में वक्त गुजारें, इसी तरह स्मोकिंग और जो धुआं है उससे दूर रहें। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि गहरी सांस लीजिए, और योगा जो है वो भी आप कर सकते हैं। घर में हवा साफ रखिए, बच्चों और बड़ों को भी साफ माहौल में रखिए। साफ हवा में सांस लेना हमारे सेहतमंद जिस्म और एनर्जी की जामिन है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे अहमद फ़ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अहमद फ़ती कतर के एक तजुर्बेकार फुटबॉलर हैं जो मिडफील्ड पोजीशन पर खेलते हैं। उनका पूरा नाम अहमद फ़ती मानसी अब्दुल्ला है और डोमेस्टिक फुटबॉल में अल अरबी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि कतर की नेशनल टीम का भी अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने कतर में अपना फुटबॉल करियर डेवलप किया है और धीरे धीरे अपनी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन की वजह से टीम में मजबूत जगह बनाई। अहमद ने अपनी खेलने की सलाहियत से हमेशा कोचों का भरोसा जीता है। उनकी पासिंग रेंज, डिफेंसिव अवेयरनेस और गेम को कंट्रोल करने की एबिलिटी उन्हें एक कंप्लीट मिडफील्डर बनाती है। वो अक्सर मिडफील्ड में बैलेंस बनाए रखते हैं और टीम के अटैक और डिफेंस के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। अच्छा देखा जाए तो क्लब लेवल पर अलारबी के साथ उन्होंने कई सीजन्स में शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं और कतर स्टार्स लीग में अपनी कंसिस्टेंसी से पहचान बनाई है। कतर की कौमी टीम के लिए भी उनका रोल काफ़ी अहम रहा है, जहां वो एशियन कॉम्पिटिशन्स में कतर की रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं। अहमद फ़ती उन खिलाड़ियों में से हैं जो फ्लैशी स्टाइल के बजाय सिंपल और इफेक्टिव फुटबॉल पर यकीन रखते हैं। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और टीम स्पिरिट उन्हें कतर फुटबॉल के एक रिलायबल नाम बनाती है। आने वाले सालों में भी उनसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस की उम्मीद की जाती है। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: from one hit music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात और कभी सफर के

0: दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास उनकी जबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है। मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने खाने को सेहतमंद तरीके से पका सकते हैं। आज हम दो ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जो दुनिया भर में सेहतमंद खाना पकाने के बेहतरीन तरीकों में शुमार होते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग है और स्टीमिंग है। ग्रिलिंग में खाना बराह रास्त जो हरारत पर पकाया जाता है और इसमें बहुत कम या बिल्कुल कम ऑयल इस्तेमाल होता है। इसके बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि जो हम जायद जो चिकनाई है या एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम हो जाता है और खाने का जो कुदरती जायका है वो भी बरकरार रहता है। चिकन है, फिश है और जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत ही लजीज होती हैं और गजाइत से भरपूर होती हैं, और जो अफराद अपना वज़न कम कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहतरीन इंतखाब है। अलबत्ता एहतियात ज़रूरी है कि खाना ज़्यादा ना जलने पाए, क्योंकि हमें देखना है, क्योंकि जला हुआ हिस्सा सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा तरीका है स्टीम करने से, यानी भाप में जो खाना पकाया जाता है उसके बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि विटामिन सी है, फोलेट है और दूसरे जो गज़ाई अज्जा हैं वो ज़्यादा महफूज रहते हैं। इसी तरह इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती, खाना बिल्कुल लाइट होता है और आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। बच्चों, बुजुर्गों और जो मरीजों के लिए बेहतरीन तरीका है। वेजिटेबल्स, फिश या चिकन और यहाँ तक के बस जो चावल की डिशेस हैं वो भी स्टीम में या भाप में बेहतरीन तैयार की जा सकती हैं। अगर आप अपनी रोज़मर्रा जिंदगी में हफ्ते में चंद बार भी ग्रिलिंग या स्टीमिंग को शामिल कर लें तो दिल, आपका वेट और जो मजमू सेहत है उस पर बहुत ही पॉजिटिव जो असरात हैं वो मुरतब हो सकते हैं।
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया. One Step to 2030. और आज के सेगमेंट में मैं बात करने वाली हूँ रोबोटिक्स की. क्या रोबोट्स फ्यूचर बिजनेस, क्या फ्यूचर का एक बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा बन जाएगा? जी हाँ, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स आज मैन्युफैक्चरिंग से लेकर हेल्थ केयर और रिटेल इंडस्ट्री तक एंट्री ले चुके हैं. इनकी एंट्री घरों में भी हुई है लेकिन उतनी कॉमन नहीं है. लेकिन फ्यूचर में रोबोट्स रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क हैंडल करेंगे जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक और क्रिएटिव रोल्स पर फोकस रखेंगे. यहाँ वेयरहाउसेस में रोबोट्स प्रोडक्ट पिक करने पैक करने का काम तो कर ही रहे हैं. होटल्स में रोबोटिक असिस्टेंट कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हॉस्पिटल्स में भी रोबोटिक सिस्टम्स सर्जरीज में डॉक्टर की मदद कर रहे हैं. वहीं फ्यूचर के टाइम में रोबोट्स कस्टमर्स को प्रोडक्ट लोकेट करने, उन्हें हेल्प करने, शेल्फ करने में और रीस्टॉक करने में भी मदद करेंगे. लॉजिस्टिक कंपनीज AI पावर्ड रोबोट्स के जरिए ऑर्डर्स को पहले से ज्यादा स्पीड और एक्यूरेसी के साथ प्रोसेस कर सकेंगी. एक बड़ा सवाल भी मेरे जहन में आया, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स के बढ़ते हुए रोल को देखते हुए बिजनेस को ह्यूमन वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी के दरमियान

0: मेंटेन करना चाहिए. देखिए आज हम एआई की बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं, रिटेल टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन की बात करते हैं. अगर आप 2035 की दुनिया को सोचें, इमेजिन करें, तो आपके नज़दीक सबसे बड़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज क्या सामने होगी? कौन सी ऐसा चेंज है जो हमें और आपको डरा सकती है, घबरा सकती है? तो इसमें एक बड़ा चेंज है रोबोट्स का. दोस्तों आज हम जिस दौर में रहते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से ग्रो करी और हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है. इन टेक्नोलॉजीज में सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल है रोबोटिक्स और ऑटोमेशन. पहले रोबोट्स सिर्फ कुछ फैक्ट्रीज में हमें दिख रहे थे, आज जैसे मैंने कहा बैंक्स हो, होटल्स हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, डॉक्टर्स के साथ हर जगह नज़र आते हैं. देखिए ऑटोमेशन का मकसद रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क को जो है वो परफॉर्म करवाना है. इससे कंपनीज की एक तो टाइम की बचत होती है, ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाती है और एक्यूरेसी इम्प्रूव होती है. मिसाल के तौर पे ई कॉमर्स कंपनीज का वेयर हाउस में रोबोट प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, शेल्फ से उठाना, पैकिंग करना कितना कंपनी के लिए यूजफुल होता है. जो काम पहले घंटों में होता था अब मिनटों में होता है. रिटेल सेक्टर में भी रोबोट्स का रोल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फिर चाहे हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, होटल्स हो या एयरपोर्ट्स हो. आपने देखा है कि रोबोटिक असिस्टेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ होटल्स में रोबोट्स गेस्ट को रूम तक गाइड करते हैं या फिर रूम सर्विस डिलीवरी करते हैं. इसी तरह एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटिक पैसेंजर्स को क्विक चेक इन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है. लेकिन जब रोबोटिक और ऑटोमेशन की बात होती है तो अक्सर सवाल उठते हैं कि क्या रोबोट्स ह्यूमंस की जॉब रिप्लेस कर देंगे. हकीकत ये है कि रोबोट्स उन कामों को ऑटोमेट करेंगे जो रिपीटेटिव और रूटीन नेचर के हैं, जबकि ह्यूमंस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप जैसे रोल्स पर फोकस करेंगे. फ्यूचर में नए प्रोफेशंस भी क्रिएट होंगे. रोबोटिक इंजीनियर्स होंगे, ऑटोमेशन स्पेशलिस्ट होंगे, एआई ट्रेनर्स होंगे, स्मार्ट सिस्टम मैनेजर्स होंगे. ये टेक्नोलॉजी कुछ जॉब्स को ट्रांसफॉर्म करेगी लेकिन साथ ही नई जॉब्स भी पैदा करेगी. आने वाले 10 सालों में हम ऐसी कंपनीज देखेंगे जो ह्यूमंस और रोबोट्स के कॉम्बिनेशन से काम करेंगी. रोबोट्स स्पीड और एक्यूरेसी प्रोवाइड करेंगे, वहीं ह्यूमंस इमोशंस और डिसीजन मेकिंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे. दोस्तों रोबोटिक्स और ऑटोमेशन सिर्फ और सिर्फ मशीन का इस्तेमाल नहीं है बल्कि बिजनेस एफिशिएंसी और इनोवेशन का एक नया चैप्टर भी है. जो ऑर्गेनाइजेशंस इन टेक्नोलॉजी को समझकर अडॉप्ट करेंगी वो ज्यादा प्रोडक्टिव, कॉम्पिटिटिव, फ्यूचर रेडी होंगी. फ्यूचर का सक्सेसफुल वर्कप्लेस वो होगा जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन टैलेंट मिलकर काम करेंगे और बेहतर रिजल्ट्स क्रिएट करेंगे. कल एक और नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी.
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: शो शुरू करने से पहले बता दूं माहौल पता कैसा है आज के शो का। माहौल ऐसा जैसे वो मेले में देखा है आपने, आइए आइए आइए, आखिरी मौका, बिल्कुल वैसा ही फील है क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बिल्कुल आखिर में पहुंच चुके हैं। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो बिल्कुल एंड में चल रहे हैं, अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो फिर नुकसान किसका है? मेरा तो है नहीं भाई, आपका ही है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे एंड वेलकम टू कतर 2026 2026। देखो क्या है, मैं

जब से शो कर रहा हूँ तब से मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी में मौका मिला करने का, जून से मैं ये करता आ रहा हूँ और लगातार मैं कह रहा हूँ स्टेकेशन स्टेकेशन स्टेकेशन, आप खुद थक गए होंगे, जब आता है तब ये बोलता है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये आपको एक्सपीरियंस जो है ना अपने अपने मुल्कों में नहीं मिलेगा। हम तो जाते नहीं कहीं पे, अगर इंडिया चले गए तो कौन से होटल में जाके रहेंगे। यहाँ पे ना ये मौका है, स्टेकेशन का अपना एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस करने का जो बिल्कुल चांस है वो लास्ट बिल्कुल आखिरी घड़ी, हाथ ही निकल गया पूंछ बाकी है। तो उससे पहले पूंछ भी निकल जाए आप स्टेकेशन का मजा लीजिए, क्योंकि कई सारे होटल्स में अभी भी ऑफर्स जारी हैं। तो विद योर फैमिली विद योर फ्रेंड्स, कल्ले कल्ले जाना है जी कोई गाल नहीं है, और दोस्तों के साथ जाना है, ग्रुप बना के जाना है, मेल फीमेल वॉट एवर विच एवर वे यू वॉन्ट, आप जा सकते हैं स्टेकेशन के लिए अलग अलग होटल्स में अलग अलग रिजॉर्ट्स में, बहुत बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट्स हैं। जिन्हें नहीं पता स्टेकेशन वो टर्म, जो लोग नए आए हैं भाई, यहाँ के कल्चर में इम्बाइब हो चुका है और बड़ा जरूरी है कि स्टेकेशन कम से कम जिंदगी में एक मरतबा कतर में किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कतई रिलैक्सिंग, बिल्कुल अलग दुनिया है ये। तो जो लोग सोच रहे हैं कि चलो बर्थडे वीक है या बर्थडे पार्टी थ्रो करनी है, व्हाई नॉट थ्रो इट समवेयर वेयर यू कैन जस्ट स्टे। जरूरी थोड़ी है कि केक ही काटा जाए भाई, वो वहाँ पे थोड़ी देर तो पैसे वैसे बचा के मजा करो जाके, बढ़िया पूल में कूदो नाचो गाओ, और स्पेशली जो लोगों की फैमिलीज यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्जॉय योरसेल्फ। एंड ये सबसे पहले मैं बताता हूँ हमेशा स्टेकेशन के, बिकॉज आई फील अगस्त के खत्म होते होते ये ऑफर्स भी चले जाएंगे और फिर जब मौसम चेंज होगा तब बोलेंगे यार चलो अगले साल देखेंगे। सो ये पछतावा ना हो एंड यू कैन स्टिल एक्सपीरियंस, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बस मैं इतना कर रहा हूँ जी, मैं वो हूँ मिडिल मैन, बता सकता हूँ मैं आपको, मेल मैन समझ लीजिए, डाकिया डाक लाया तो भाई मैं वही खत आपको पढ़ के बता दिया है, बाकी आपकी इच्छा है। ठीक है आगे बढ़े। अब देखो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो इस पूरे पूरे अगस्त में हैं और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो हो चुके होंगे जब आप मुझे सुन रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो होने वाले हैं। तो सब इवेंट्स के बारे में बात करेंगे इन अ वेरी रैंडम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि मैं इसको ऑर्डर वाइज चलूंगा कि अगस्त की पहली सितंबर की, नहीं, आई विल जस्ट गो अहेड विद द फ्लो, तो गेट रेडी। बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, प्लीज गेट इन टच विद अस। और आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे, दोहा वाला कबीर के नाम से मैं मिल जाऊंगा आपको। बस वो स्पेलिंग यार थोड़ा ठीक कर लो यार, मेरी स्पेलिंग पता नहीं लोग डबल ई आर क्यों लिखते हैं, KABIR, प्लीज प्लीज ढूंढ लो ना यार, अच्छा बंदा हूँ। चलो शुरू करते हैं। पहला इवेंट ऑन द लिस्ट है हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल 2026। ये बेस्ट काइंड ऑफ इवेंट है मेरे लिए। मेरा गला थोड़ा सा ऐसा हो रहा है लेकिन आप समझ रहे हैं ना, मेरे एक्साइटमेंट बहुत हाई है, बिकॉज आई फील जितने भी शॉपिंग इवेंट्स कतर में आते हैं ये सबसे फायदेमंद है। इसमें सारा का सारा सामान शॉपिंग करके नक्की करो, साल भर की छुट्टी। मैं इतना वेट करता हूँ कि कोई ऐसा फेस्टिवल आएगा और शॉपिंग फेस्टिवल में जाऊंगा और बढ़िया मौज काटूंगा। तो भाई ये जो हाला समर शॉपिंग फेस्टिवल है ये अगस्त के आखिर तक है, 31 अगस्त तक है, एक को शुरू हो चुका था। और ये हर मॉल में, मतलब ये समझ लीजिए कि अंग्रेजी में कहो तो वेरियस मॉल्स अक्रॉस कतर, तो ऑलमोस्ट हर मॉल में आपको मिलेगा। कोई टिकट नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपकी शॉपिंग के लिए बहुत सारा डिस्काउंट, वो भी भर भर के। और ये जो हाला समर कैंपेन है ये कतर फीचर कर रहा है एक्सक्लूसिव शॉपिंग ऑफर्स के साथ, लीडिंग मॉल्स में आपको मिलेगा, मंथ लॉन्ग फेस्टिवल है, स्पेशल डिस्काउंट्स हैं और बड़े बड़े ब्रांड्स पर हैं, अच्छे खासे ब्रांड्स पर हैं। इनके अलावा सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, इसमें डाइनिंग डेस्टिनेशंस पर आपको प्राइसेस मिलेंगे। इसमें जो कुछ लोकेशंस जो प्रोमिनेंटली मेंशन की गई हैं उसमें है प्लेस वंदोम, दोहा फेस्टिवल सिटी, मॉल ऑफ कतर, विलाजियो सिटी सेंटर, लैंडमार्क, दोहा मॉल, वेस्ट वॉक, जीवान, हायत प्लाजा और अल हजम। इन तमाम जगहों पर भर भर के डिस्काउंट्स हैं, सो देयर इज नो रीजन व्हाई यू वुड मिस दिस वन। एंड इसी के साथ जो स्पेंडिंग के ऊपर जो मिलता है ना, वाउचर्स वगैरह मिल जाते हैं। सो अ स्पेंडिंग ऑफ मिनिमम 200 कतरी रियाल किसी भी पार्टिसिपेटिंग डेस्टिनेशन पे आपको एक वीकली रेफल ड्रॉ में भी शामिल कर सकती है। सो अगर आप किसी वीकली रेफल ड्रॉ में शामिल हो जाते हैं, पर्ची कटा लेते हैं और अगर आप जीत जाते हैं तो बहुत भर भर के इनामात भी हैं। प्राइजेस में इंक्लूडिंग 5 cars और बहुत सारे और भी प्राइजेस। सो इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू मॉल, गर्मी भी बहुत है, बनता है भाई, इस गर्मी में आदमी चाहता है मैं ना निकलूं और निकलूं तो सिर्फ मॉल की तरफ निकलूं, तो दिस इज योर चांस, ये है फायदा उठाने का मौका। और इसका जो है पूरा फायदा उठाइए, यू शुड गो टू मॉल्स एंड पूरे मंथ लॉन्ग एक्टिविटी का हिस्सा बनिए। बाकी तो मैं एक और हिदायत दूंगा आपको, मैं एक चीज बोल रहा हूँ, पता डिड आई टेल यू के, चलो ये लास्ट में बताता हूँ, जस्ट रिमाइंड मी, ओके नहीं बताया, चलो भाई बता दूंगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इस बात को लेकर। ओके इस बार

25 जुलाई से शुरू हुआ था और 10 अगस्त तक बहुत बहुत खूबसूरती से चला, शाम के 4 बजे से रात के 10 बजे तक. एंड इट वॉज ओपन टू ऑल. सो जो लोग नहीं गए उन्हें मैं थोड़ा सा जलाना चाहता हूँ. इसमें बहुत कुछ था जो लोकल कतरी खजूर हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल थे. और इस फेस्टिवल सेलिब्रेट वैसे भी कर रहा था कतर के नेशन वाइड एग्रीकल्चर लेगेसी को. एंड इतना ही नहीं, यहाँ पे एक गोल्डन डेट्स बास्केट कॉम्पिटिशन भी हुआ और ये कॉम्पिटिशन बहुत यूनिक था. इसमें जो लोकल डेट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए लोग आए थे, जो फार्मर्स थे, वो सारे के सारे इसमें थे. और इसमें ये था कि आपको बास्केट चूज करनी है जिसमें पांच टाइप के अलग अलग डेट्स होंगे और आप जो है कैश प्राइजेस जीत सकते थे. तो जो लोग जीत गए पर आपने डेट फेस्टिवल अगर मिस कर दिया तो आपने खजूर शेक नहीं पिया, आपने उसका जैम नहीं देखा, आपने भाई सब कुछ नहीं देखा. तो अब आप मार्केट में जाइए, खरीदिए. बाकी जो लोग गए हैं प्लीज इफ यू कैन टैग अस इन योर फोटोज, डू टैग अस. कभी आपका मन करे, वो होता ना कि फोन की गैलरी को क्लियर करने के लिए पुराने फोटोज देखते हैं, समटाइम्स यू फील कि ये बढ़िया फोटो आया, ये मैंने डाला क्यों नहीं. तो जो अपलोड करे तो हमें टैग कर दीजिएगा FM 107 Qatar एंड वी वुड नॉट माइंड एट ऑल. इनफैक्ट वी विल रीपोस्ट इट इंशाल्लाह. अब जरा आगे बढ़ते हैं. Qatar 2026. अगला जो है कतर टॉय फेस्टिवल 2026. ये एक्टिविशंस पूरे कतर में जारी है और मल्टीपल लोकेशन से. कोई एक हो तो बताऊं. तो 1 जुलाई से पूरा सिलसिला शुरू हुआ और 30 सितंबर तक चलने वाला है, सुबह के 10 बजे से रात के 11 बजे तक. अगर आप इनके पेज पे जाके देखेंगे या फिर आप कतर कैलेंडर के इंस्टाग्राम पेज पे जाके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएंगी. कतर टॉय फेस्टिवल एक ऐसा शानदार फेस्टिवल है जहाँ पे कई सारे एक्साइटिंग एक्टिवेशंस हैं, जिसमें कैरेक्टर्स हैं, जिसमें अलग अलग लोकेशंस पे है. तो जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल, ये मिस्टर बीन समर फन विद टेडी एंड बीन, ये भी हुआ अल हजम में. फिर बारबी समर, उसकी क्या टैगलाइन, क्या बड़ी कमाल की टैगलाइन थी, हाँ, इज मोर कलरफुल विद बारबी, समर इज मोर कलरफुल विद बारबी. इसका लोकेशन रहा सिटी सेंटर और ये रखा गया है वीक में, वीकडेज में इनफैक्ट, दोपहर के 2 से रात के 10 और वीकेंड्स पे दोपहर के 2 से रात के 11. और इसमें प्राइसेस भी भाई, अगर आप 100 कतरी रियाल का खर्चा करती हैं, पर्ची कटवाती हैं, सेम मॉल में एंटर होते हैं तो आपको रेफल ड्रॉ में भी शामिल कर दिया जाएगा और आप उसमें भी जीत सकते हैं. सारे के सारे बच्चे जो सेम फैमिली के हैं कैन एंटर सिर्फ एक रसीद की वजह से, एक रिसीट एंड यू आर ऑल इन. एंड ऑल्सो इसके अलावा जब आप जोन का हिस्सा बनेंगे तो उसके बाद आप री एंटर भी कर सकते हैं एक और रिसीट कटवा के. इनफैक्ट मुआना का भी यहाँ पे शो है जिसका टाइटल रखा गया है सेट सेल ऑन अ समर एडवेंचर विद मुआना. बच्चों को बहुत पसंद है भाई मुआना, मैंने जिस हिसाब से वो देखे हैं, क्या कहते हैं उसे, कॉस्प्ले, मुआना के बहुत सारे कॉस्प्ले और बच्चे माशाल्लाह अपने प्यार लगते हैं उस कॉस्प्ले में. ये होने वाला है दोहा फेस्टिवल में. एंड दिस इज लाइक एवरी वीक, हर दिन है, वीकडेज में 12 से 10 और फिर वीकेंड्स में 1 से रात के 12. दोहा फेस्टिवल सिटी में है, पिक्सार और इसके अलावा प्लेस वेंडोम में है. इसमें भी एंट्री फ्री है एंड अगेन द सेम थिंग, 100 कतरी रियाल्स अगर आप स्पेंड करते हैं यू विल गेट समथिंग रियली स्पेशल. एंड 3 बच्चों के लिए एवेंजर्स द समर सेव द अर्थ लाइक एन एवेंजर, वो वाला भी शो है जो मॉल ऑफ कतर में है. फिर फ्रूट निंजा है, स्लाइस थ्रू समर लाइक ट्रू निंजा, ये विलाजो में. फिर टाइनी बिल्डर्स, एस्ट्रोवर्स और फिर फनकेड, ये सब कुछ है. लैंडमार्क मॉल इसमें शामिल है, इसमें पर्ल आइलैंड और जीवान आइलैंड शामिल है, वेस्ट वॉक है, एवरीथिंग इज देयर. इट इज जस्ट कंप्लीट क्रेजी मैन. ये महीना जब खत्म हो जाएगा ना, मैं सही बता रहा हूँ, बच्चे अभी जब स्कूल लौटने के लिए आएंगे तो उनके जहन में कोई मेमोरी होनी चाहिए, तरोताजा उनको करने के लिए आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा. ये तो भाई देखो बहुत स्वीट प्रेशर है, इस बहाने आप भी बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं, वरना तो आपको फोन पकड़ा के उन्हें खाना खिलाना पड़ता है. ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसे मैंने दिखा है लोगों को. आई होप के आपने ही सिचुएशन सॉल्व कर ली हो. नहीं करिए और ये करना चाहते हैं तो यहाँ पहुंच जाइए, एटलीस्ट बच्चे बाकी दुनिया से दूर, फोन से दूर मजे कर पाएंगे. सो बी अ पार्ट ऑफ ऑल दीज फेस्टिवल्स. आप जरा आगे बढ़ते हैं जिसमें आप भी हिस्सा ले सकते हैं और बच्चे तो डेफिनेटली इंजॉय करने ही वाले हैं. सो द नेक्स्ट इवेंट इज कलर वर्स एक्सपीरियंस 2026. जब से मैं शो कर रहा हूँ, इनफैक्ट मैं मेरे ख्याल में आधे एपिसोड से इसी बारे में बात कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये फेस्टिवल बहुत बहुत शानदार जा रहा होगा. मैं अभी तक इसका हिस्सा बना नहीं हूँ बट आई हैव सीन वीडियोस. सो कतारा कल्चरल विलेज का जो साउथ पार्किंग एरिया है वहाँ पे शुरू हुआ कलर वर्स एक्सपीरियंस 2026. 19 जुलाई को शुरू हुआ और 15 सितंबर तक रहने वाला है. सो अभी भी यू स्टिल हैव टाइम. और ये इवेंट है शाम के 4 बजे से रात के 11 बजे तक. इसका अनाउंसमेंट की थी कतर कैलेंडर ने और उन्होंने बताया कि ये किस

देखिए एक्सपीरियंस होगा, तो उन्हीं के शब्दों को मैं बयां कर देता हूं। उन्होंने कहा ये नेक्स्ट जनरेशन इमर्सिव एंटरटेनमेंट अट्रैक्शन होगा। बेसिकली एक ऐसा एक्सपीरियंस जहां पे आप हिस्सा ले सकते हैं, लाइक एन एक्सपीरियंस वेयर यू आर अ पार्ट ऑफ इट, नॉट जस्ट वॉचिंग इट हैपन इन फ्रंट ऑफ योर आइज, मगर आप उसका हिस्सा भी होंगे। सो ये जो एक्सपीरियंस है ये विजिटर्स को इन्वाइट करता है। आप जाएंगे इसमें एक बहुत ही इंटरेक्टिव स्टोरी टेलिंग, जैसे अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, तो यहाँ पर भी पूरी एक जर्नी है, पूरी एक कहानी है, और जो आपको ले जाती है इन द वर्ल्ड ऑफ कलारामा। इसके रंग आए और उन रंगों को भरने की जिम्मेदारी आपकी है, और आपका रोल होगा एज रीस्टोरर्स। सो रीस्टोरर्स जो हैं वो इंटरेक्ट करेंगे कहानी के साथ और रिएक्टिवेट करते चले जाएंगे कोर आरजीबी कलर सिस्टम को, जिसकी वजह से कलर धीरे धीरे इस कहानी में चढ़ते चले जाएंगे। एंड आपको सामना करना पड़ेगा बहुत सारे मॉन्स्टर्स का, जिनको नाम दिया गया है मंजर्स, जो आपके रास्ते के सबसे बड़े रोड़े होंगे। तो उनसे लड़ना है आपको और उसके बाद रंग भर देना है इस दुनिया में। भाई बहुत गजब की चीज़ है, वीडियो देखना एक बारी, आपको भी पसंद आएगा। तो ये रखा गया है वीकडे 4 से रात के 10 बजे, फिर वीकेंड्स पे शाम की 4 से रात की 11 बजे, और इसकी लोकेशन है कतारा साउथ पार्किंग। अच्छा एज ग्रुप बता दूं, आप देख सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेशन के लिए बच्चों को आगे आना होगा। मिनिमम जो एज है वो 4 साल की है, मिनिमम एज 4 साल के बच्चे से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस, एंड ये जो पूरा एक्सपीरियंस इट विल बी गाइडेड बाय द होल अथॉरिटी, एंड इसी के साथ साथ रीस्टोरर्स जो है वो कंपटीशन में एक दूसरे का भी सामना करेंगे एंड रिएक्टिविटी करेंगे, रेड ग्रीन ब्लू कलर सिस्टम पूरा का पूरा ऑन करेंगे एंड इस पूरी दुनिया में रंग भरेंगे। तो बच्चों के लिए ड्राइंग का या यूं कहूँ कलर भरने का ये एक और एक्सपीरियंस है। टेक्नोलॉजी जब देसी चीज़ों के साथ, नॉर्मल चीज़ों के साथ मिल जाती है तो कमाल कर देती है, एंड स्टोरी टेलिंग से बेहतर आई डोंट थिंक कि आप किसी के दिल में जगह बना सकते हैं। मुझे बहुत पसंद है स्टोरी टेलिंग पर्सनली, एंड आई फील जब वो आपसे इंटरेक्ट कर पाती है, आप उसको फील कर पाते हैं कहानी को, और यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, सो इससे बड़ा एक्सपीरियंस हो नहीं सकता, एंड दिस डेफिनेटली गोज अ माइल। तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा ये उन लोगों के साथ जरूर जिनके घर पे बच्चे हैं मिनिमम 4 साल के, एंड दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी। अब जरा मुद्दे की बात कर लेते हैं। आई डोंट नो आप मुझे कब सुन रहे होंगे, मे बी ये सब कुछ हो चुका होगा, बट बिलेटेड सबको इनवाइट, सॉरी बिलेटेड विश करना चाहूंगा, इनवाइट तो मैं क्या ही करूंगा, लेट मी सी द कैलेंडर। मैं अभी आपसे बात करते करते कैलेंडर देख रहा हूँ। हाँ जी, तो ये मामला निपट गया। पाकिस्तानी भाइयों को और मेरे फेलो इंडियंस को, सबको मेरी तरफ से बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। आई नो के शो उसके एक दो दिन बाद आया है, बट बनता तो है भाई, मैं विश क्यों ना करूं। तो इस बीच भी काफ़ी सारे इवेंट्स हो चुके होंगे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो एक टाइम रोको होटल अलवकरा में, वहां पे ऑगस्ट फिएस्टा रखा गया पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, एंड इट इज फ्री। और इसके साथ साथ ये पूरा मंथ जो सेलिब्रेशन का है इंडिया और पाकिस्तान के लिए, इसके लिए जितने पैशनेट लोग हैं भाई, भर भर के इवेंट्स हैं, भर भर के होटल्स में, और अगर आप गए होंगे तो आपको पता है, और मुझे बताइएगा जरूर जो जो इसका हिस्सा बने, बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर ये इवेंट सारे हो चुके हैं व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू राइट नाउ। तो ठीक है, एडवांस में नहीं, सॉरी बिलेटेड belated happy independence day to my fellow indians and also mere pakistani bhai bahnon ko bahut sara pyar। okay moving on, qatar 2026। ab dekhiye agar aapko arabic language aati hai, achhi lagti hai aur aap samajh pate hain, to aap jante hain ki arabic humor alag level ka hai bhai, बहुत अलग लेवल का है। मैं अरबी जुबान इतने अच्छे से नहीं बोलता ही नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं समझ लेता हूँ, बट जो पूरी तरह से इसमें वेल वर्स्ड हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक इवेंट आया है, विच इज़ अ स्टैंड अप कॉमेडी शो इन कतर। साले अल नवावी परफॉर्म करने वाले हैं अब्दुल अजीज नासर थिएटर में 10 सितंबर को और रात के 9 से 11 तक। और काफ़ी सारी बातें चल रही थी कि अब आएंगे, सो इट हैज़ बीन अ वेरी लॉन्ग वेट। और साले अल नवावी इज गोइंग टू परफॉर्म, ही इज ब्रिंगिंग हिज हिट स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल गैबूबा, और ये लेके कतर में आ रहे हैं। इसमें बहुत सारी फ्रेश कहानियां हैं और ब्रूटली रिलेटेबल ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो उनका सिग्नेचर स्टाइल है वो उसमें यूज करने वाले हैं। गैबूबा जो वो कहानी सुनाएंगे, गैबूबा ये जिंदगी के रैंडम और उन मोमेंट्स के बारे में बात करती है जो होते दिखने में ट्रेजिक हैं पर उनमें से हंसी निकल आती है।
तो डेफिनेटली इफ यू अंडरस्टैंड अरबिक लैंग्वेज ये आपके लिए, तो आप इनको ऑनलाइन फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, बट इफ यू अंडरस्टैंड अरबिक दिस इज योर टाइम टू एक्सप्लोर इन द रियल्म ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी अरबी जुबान में. ये भाई बहुत नया एक्सपीरियंस था. अगर मुझे अरबी आती तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे जाता. सो इफ यू नो और अंडरस्टैंड और स्पीक आपको तो भाई यहाँ जाना ही जाना चाहिए. सो वन नाइट न्यू मटेरियल एंडलेस लव्स साले अल नवेवी लाइव इन दोहा 10 सितंबर को. और इसके टिकट जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं आप कतर कैलेंडर पर जाके देख सकते हैं. 10 सितंबर रात के 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे का ये पूरा उनका स्टैंड अप कॉमेडी स्पेशल है जो कतर में होने जा रहा है. लोकेशन बता देता हूँ, अब्दुल अजीज नासिर थिएटर में. ऑलराइट, ऑल द बेस्ट. जो लोग पब्लिक जाने वाला है मेरे को टैग जरूर करो. कोई ट्रांसलेटर हो तो भाई बता देना क्या क्या हुआ, वरना फिर जब वीडियो आ जाएगा तब तो हम देख लेंगे. ठीक है, आगे बढ़ जाए भाई. Qatar 2026. अब क्या है कि एक बहुत ही यूनिक किस्म का इवेंट है लुसल बॉलीवुड में, क्योंकि कतर किसी भी जगह को ऐसे ही नहीं बना देता. हर जगह इवेंट कुछ होते ही रहते हैं गर्मियों सर्दियों, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट. सो 5K नाइट डैश 2026 होने वाला है अलुसल बॉलीवुड में, और ये होगा 10 अक्टूबर को. अभी टाइम है, बट आई स्टिल वांटेड टू टेल यू, 10 अक्टूबर रात के शाम के 4:30 बजे से रात के 9 बजे तक ये होगा. एंड यू जस्ट हैव टू बी रेडी. इसमें कोई इमिट नहीं जी, बुरी रेसिंग होगी बढ़िया डेजलिंग स्काईलाइन को क्रॉस करते हुए लुसल बॉलीवुड की, जिसमें ग्लोइंग लाइट्स होंगी, जबरदस्त म्यूजिक होगा और नॉन स्टॉप एनर्जी वाइब बनी रहेगी जैसे कतर में हमेशा बनी रहती है. अब ये अनमिसेबल क्यों है भाई, रेस तो हर जगह होती है, मैं ये क्यों मतलब मुझे रीजन चाहिए मैं क्यों ना मिस करूं, मैं क्यों मिस करूं या क्यों ना मिस करूं. तो अनलिमिटेड एडिशन रेस टी शर्ट यहाँ पे बांटी जाएंगी जो आपको मिलेंगी हर रजिस्ट्रेशन के साथ ही. इसमें ऑन रूट म्यूजिक जोन्स भी लगाए गए हैं, जब आप भाग रहे होंगे तो बीच में म्यूजिक भी चलेगा, हर एक बीट के थंपिंग पर आप भाग रहे होंगे पूरे जोश खरोश के साथ. और इसमें जो पेसिंग ग्रुप्स हैं वो रखे गए हैं, इसी के साथ साथ चेयरिंग बैंड भी रखा गया है, और फिर रेस विलेज पार्टी भी रखी है. इसमें डीजेज हैं, खाना पीना है, बहुत सारे खेल हैं, चिल जोन्स बनाए गए हैं, और यहाँ पे लेट जाने का कोई सिस्टम नहीं हुआ है. बहुत हाई एनर्जी एमसीज रखे गए हैं, तो तैयार हो जाइए इस इवेंट के लिए. ये होगा 10 अक्टूबर को, और विच इज ऑन सैटरडे है, और शाम के 4:30 बजे से होगा रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक, मतलब इसी के आसपास चलेगा. आई थिंक एक्सटेंड ये लोग करेंगे डेफिनेटली. तो डिस्टेंस होगा इसका 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर, और रजिस्ट्रेशन जो डेडलाइन दी गई है कि आप कब तक रजिस्टर कर सकते हैं वो है 6 अक्टूबर की डेडलाइन. तो 6 अक्टूबर से पहले पहले शाम के 6 बजे से आप कर सकते हैं. 4:30 बजे रेस विलेज ओपन हो जाएगा, 6 बजे 1 किलोमीटर की बच्चों वाली रेस होगी, बच्चे इसमें दौड़ेंगे. शाम के 7 बजे 5 किलोमीटर का डैश होगा, और 8:30 बजे अवार्ड सेरेमनी बाकायदा रखी जाएगी, और साथ में विनर्स को इनाम भी दिए जाएंगे. सो दिस इज योर टाइम टू रन. Sorry, अंदर का रैपर कभी कभी निकल आता है, I'm really sorry. आगे बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ. Qatar 2026. तो जी अगला इवेंट भी भागने का ही है, बढ़िया सा है भाई इवेंट यो वाला भी. इसका नाम है भाई Run the Dome 2026. ये Aspire Dome में होगा 28 अगस्त से 29 अगस्त, सो एक दिन, और सुबह के इनफैक्ट दो दिन, सॉरी एक दिन बोल दिया मैंने, दो दिन होगा 28 और 29 को, और सुबह के 7 बजे से रात के 8 बजे तक होगा. इसमें भी आपको भागने का मौका मिलेगा, अपनी सेहत का ख्याल रखने का मौका मिलेगा, मगर डोम के अंदर इनॉग्रल रेस होगी. बाकायदा Aspire Zone फाउंडेशन इन्वाइट करता है सारे रनर्स को कि आप आए, और ये कमाल की 4.80 किलोमीटर्स की मल्टी लेवल इंडोर कोर्स का हिस्सा बने, और वर्ल्ड क्लास एयर कंडीशन में भागे. तो आपको गर्मी में नहीं भागना यार, फुल एसी है भाई. रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं अगस्त में, और 500 ज्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं तैयार होंगे इस अनफॉरगेटेबल कम्युनिटी रनिंग इवेंट के. Aspire Zone फाउंडेशन ने इस पर बयान भी दिया, उन्होंने कहा दे आर रियली रियली प्राउड टू लॉन्च रन द डोम, और बहुत ही इनोवेटिव कम्युनिटी रनिंग डोम है ये, और इसमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने की कोशिश है. सोशल एंगेजमेंट हो, लोग आपस में मिलें अलग अलग कम्युनिटी के, और फिजिकल फिटनेस बनी रहे. ये बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए है. रिक्रिएशनल रनर्स इसमें शामिल होंगे, बहुत मशहूर एथलीट्स आएंगे, और नौजवान लोग जो स्पोर्ट्स में उतरेंगे और आग ला देंगे जी.
इसमें कुछ की हाइलाइट दी गई हैं, इंडोर रूट है, फ्लू फुली एयर कंडीशन है, जैसे मैंने कहा हाई एनर्जी रेस एनवायरनमेंट बनाया गया है, कम्युनिटी स्पिरिट को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी फ्रेंडली एक्टिविटीज रखी गई हैं, डेडिकेटेड सेशंस हैं, अलग सेशंस हैं विमेन के लिए और ओपन कैटेगरीज हैं सारे एज ग्रुप के लिए, इवन फॉर द बिगिनर्स एंड सीजन्ड रनर्स। तो अगर आपको लगता है

0: तो मैं तो भागता ही नहीं हूँ. दिस इज योर टाइम. यहाँ पे बिगिनर्स के लिए भी अलग से सेक्शन रखा गया है. इसके अलावा ग्राउंड लेवल ट्रैक है तो आप मेन एथलेटिक अरीना से शुरुआत करेंगे. अंडरग्राउंड ट्रांजिशन रखा गया है और रिटर्न ऑफ फिनिश का जो पूरा सेक्शन है बहुत खूबसूरत बनाया गया है. तो जो रेस है वो शेड्यूल्ड है. 28 अगस्त को सबसे पहले विमेन रेस होगी सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक. एंड उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है प्लीज बी इन्फॉर्म्ड दैट मेल फीमेल स्टाफ विल गेट अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग एंड मीडिया कवरेज टीम. जो भी कवर करने जाएंगे उसका मतलब ये है कि अलग से आपको पास दिया जाएगा. इसके अलावा ये रेस जो है खत्म होगी तो ओपन रेस होगी दोपहर के 2 बजे से रात के 8 बजे के बीच में. बस सैटरडे को 29 अगस्त को वापस ओपन होगा मामला सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे तक. एंड बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज के बीच में ये रेस होगी. सो टन्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड. अब जरा अगले इवेंट की तरफ बढ़ते हैं विच इज क्वाइट समथिंग दैट मेरे मतलब It is really, really special to me. Qatar 2026. So 3-2-1 sports e-sports lounge shuru hone wala hai. Or in fact, ye jo event hai, abhi chal raha hai. Shuru to mere liye hua hai. Maine abhi tak kaise nahi dikha ye. Ye hai 3-2-1 Qatar Olympic and Sports Museum mein. So 3-2-1 e-sports lounge ye lagaya gaya aur 20 Mai se shuru hai. 31 December tak. भाई पूरा साल खींच दिया भाई. सुबह के 9 से रात के 9. और अभी तक अगर आप नहीं गए तो यहाँ पे टिकट परचेसिंग का तरीका बता दूं. आप अंदर जाके वॉक इन आप टिकट ले सकते हैं. कतर म्यूजियम, मीडिया सिटी सेंटर, ये सारे इसका हिस्सा बनेंगे, बने हुए हैं इनफैक्ट. और हाई एंड पीसी गेमिंग्स हैं यहाँ पे, काफी सारे स्टेशन लगाए गए हैं. जो गेमर्स हैं असेंबल, जैसे मैंने कहा, मैंने मतलब कहा है. सो 12 प्रीमियम गेमिंग पीसीज का सेटअप है यहाँ पे एंड सारे के सारे अपडेटेड हैं. इसके अलावा जो पीसी गेमर्स हैं उनका तो चलो है अलग जनता, हमारी दुनिया में भी है. कंसोल गेमिंग जोन भी बनाए गए हैं. 5 डेडिकेटेड कंसोल स्टेशन हैं. प्ले स्टेशन 5, निंटेंडो स्विच सेटअप भी रखा गया है. मल्टीप्लेयर और पार्टी गेमिंग और कैजुअल प्लेयर सबके लिए. सो यार बड़ा अच्छा है. मैं कैसे नहीं गया, मुझे भी पढ़ते पढ़ते बहुत वो लग रहा है, बुरा लग रहा है यार. मैं कैसे नहीं गया, जाना पड़ेगा भाई, जाना पड़ेगा. तो गेमर्स ये इवेंट हम लोगों को मद्देनजर रखते हुए है यहाँ का जरूर सब. इनफैक्ट जो कैजुअल गेमर्स हैं वो भी वॉक इन कर सकते हैं. वॉकिंग गेमिंग एक्सपीरियंस रखा गया है. कोई उसके लिए पहली बुकिंग की कोई जरूरत नहीं. जस्ट वॉक बाय द टिकट्स एंड जस्ट सिट एंड एंजॉय. इसके अलावा जो टीम्स में खेलना पसंद करते हैं उनके लिए ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स भी हैं. रेगुलर टूर्नामेंट्स हैं जो मल्टीपल गेम्स से होते हुए जाएंगे. विनिंग प्राइजेस भी रखे गए हैं. एजुकेशनल गेमिंग वर्कशॉप्स भी हैं. इंटरेक्टिव क्लासरूम स्टाइल वर्कशॉप रखे गए हैं जहाँ पे आप गेम्स के बारे में पढ़ेंगे. लिटरेसी, गेम लिटरेसी क्या होती है, ई स्पोर्ट्स के फंडामेंटल्स क्या हैं, डिजिटल स्किल कितनी जरूरी है, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात होगी. एंड एक्सेसिबिलिटी और कम्युनिटी का बहुत ख्याल रखा गया. इट इज एक्चुअली डिजाइन टू बी इंक्लूसिव एंड कम्युनिटी ड्रिवन, तो इसलिए हर किसी के लिए यहाँ पर जगह है. आप कैजुअल गेमर है, टीम में खेलते हैं, या फिर आप एक रेगुलर गेमर है मेरी तरह, हर बैकग्राउंड से, हर जगह से प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं. दे कैन एक्सपीरियंस डिफरेंट लेवल्स एंड यूज देयर एबिलिटीज. तो संडे, मंडे, वेंसडे, थर्सडे सुबह के 9 से शाम के 7, ट्यूसडे को ये बंद रहेगा. ध्यान रहे, ट्यूसडे इट इज क्लोज्ड. फ्राइडे दोपहर के 1:30 बजे से शाम के 7 बजे तक. दिस विल बी इन 3-2-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम. हो गया जी, इसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा. तो उसके बाद है फिट आइलैंड रन क्लब, एक और एयर कंडीशन जगह जहां पे आप भाग सकते हैं. तो ये भी एस्पायर डोम में, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा. ये अलग से रखी गई है, 9 अगस्त से 30 सितंबर तक है. एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस वन एज वेल. क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन कर चुका हूं तो दोबारा इसके बारे में नहीं मेंशन करूंगा. मगर नाउ आई एम गोइंग टू मेंशन अ वेरी स्पेशल थिंग. कतर इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन्स एग्जीबिशन 2026 हर साल हम कवर करते हैं और इस बार इसका एक नया एडिशन आ रहा है. दिस विल बी द 10th एडिशन ऑफ सहल कतारा इंटरनेशनल हंटिंग एंड फैल्कन्स एग्जीबिशन 2026. ये 8 सितंबर से शुरू होगा और 12 सितंबर तक चलने वाला है. दिस विल बी अ वेरी वेरी नाइस इवेंट येट अगेन, आई एम प्रीटी श्योर. और इस बार भी दिखाया जाएगा कि हेरिटेज को, ऑथेंटिसिटी को, इनोवेशन को और आज के कल्चर को एक साथ कैसे मिलाया जाता है. भाई ये पूरे रीजन का सबसे मेन इवेंट्स में से एक है. और सारे के सारे इक्विपमेंट, एक एक चीज यहाँ पर नजर आएगी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशलाइज सर्विस हैं, जो दिखाती हैं किस तरीके से कतर लीड करता है व्हेन इट कम्स टू फैल्कनरी एग्जीबिशन। और रजिस्ट्रेशन भी ओपन है इसके लिए, तो 10th एडिशन ऑफ सहेल कतारा इंटरनेशनल हंटिंग फैल्कन्स एंड हंटिंग एंड फैल्कन्स एग्जीबिशन के लिए अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। हालांकि इवेंट 8 सितंबर से 12 सितंबर के बीच में होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अब है अगला PSG अकेडमी समर प्रोग्राम 2026, ये भी जारी है UDSD तारिक बिन जायद स्कूल में। ये 28 जून से शुरू हुआ था और 27 अगस्त को खत्म होगा। ये एक छोटा इवेंट है लेकिन बड़ा काम का हो सकता है बच्चों के लिए जो इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, सुबह के 9:30 से शाम के 7:15 तक। सो या दिस वॉज द स्कूल, सो मैंने कहा ये मैं चलते चलते मैंशन कर ही दूँ बिकॉज ये भी जरूरी हो सकता है किसी के लिए। Qatar 2026. इसके बाद आगे बढ़ेंगे, एक बहुत शानदार खातून परफॉर्म करने वाली हैं, मेंटलिस्ट सुहानी शाह विल बी लाइव इन कतर। सुहानी शाह का बहुत सारा मटेरियल आपने ऑलरेडी देख लिया होगा, रिसेंटली उन्होंने रफ्तार के साथ परफॉर्म किया जो रैपर रफ्तार हैं, और इस बार सुहानी शाह आ रही हैं कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में हॉल 1 में। शी इज गोइंग टू परफॉर्म 25 सितंबर को आ रही हैं वो, शाम के 5 बजे से शाम के 7 बजे तक। इसके भी टिकट सब ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वैसे पर पर्सन आई हर्ड 100 कतरी रियाल है, सो इसके लिए आपको वैलिड कतरी आईडी चाहिए और एक ड्रेस कोड प्रॉपर हो, अबायाज आर परमिटेड ऑफ कोर्स। जो बच्चे हैं एज ग्रुप 5 साल के या नीचे के वो फ्री ऑफ चार्ज आ सकते हैं, लेकिन उन्हें जो है अपने माँ बाप के गार्जियन की गोद में बैठना होगा। बाकी जो स्टॉल्स हैं खाने पीने के वो लगाए जाएंगे, बट मेंटलिस्ट सुहानी शाह के बारे में अगर आपने नहीं सुना है सो गो एंड सी हर बिकॉज उनकी वीडियो बड़े कमाल की। सो या इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बहुत मेन इवेंट विच इज कॉल्ड दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 2026। ये भी आने वाला है अगले महीने और इसकी तारीख जो है इस बार सितंबर में रखी गई है, 28 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में। बहुत बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स भी इसके एम्बेसडर बन चुके हैं, आई एम रियली होपिंग कि इस बार भी कोई ना कोई बॉलीवुड स्टार हो, बट कौन होगा ये नहीं कह सकते। 28 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये इवेंट चलेगा, दोहा ज्वेलरी एंड वॉचेस एग्जीबिशन 2026। रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, हालांकि रजिस्ट्रेशन के वो सब कुछ फ्री है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एट ऑल। कतर कैलेंडर ने अनाउंस की थी नई डेट्स, क्योंकि डेट्स इसकी एक बार चेंज हो चुकी है। ओरिजिनली ये अप्रैल में होने वाला था मगर इस बार इसे चेंज करके सितंबर की तरफ कर दिया गया। बाकी डिटेल्स धीरे धीरे जैसे आती रहेंगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा, सो डोंट यू वरी अबाउट इट, मैं है ही ना आपके साथ। मगर होता क्या है इसमें जितने भी मॉडर्न इनोवेशन हैं, लग्जरी वाले बड़े कैसे समझाऊं, आई डोंट वांट टू कॉल देम महंगा, यू समझिए लग्जरी जो लगता ना भाई ये तो देखते ही रईस लग रही है चीजें, अमीरों वाली चीज लग रही है, वो वाली चीज है। एंड दोहा ज्वेलरी एग्जीबिशन रीजन का सबसे प्रेस्टीजियस और लग्जरियस इवेंट इसलिए कहलाता है। सो आई एम रियली रियली प्राउड टू टॉक अबाउट दिस येट अगेन। आई हैव बीन टू ऑल द एग्जीबिशन और आज से जितने भी बार मैं इस एग्जीबिशन में गया हूँ, इट इज जस्ट सुप्रीमली लग्जरियस और इसका हिस्सा जरूर जरूर बनिए। इट एक्चुअली ये जो इवेंट है ये ऑफर भी करता है ना आपको, यू विल सी क्रिएटिविटी इनोवेशन और जो क्राफ्टमैनशिप है, आप सोचेंगे ये किया कैसे होगा। तो ये एग्जीबिशन सिर्फ हमारे आपके देखने के लिए नहीं है, बट इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म ये उन लोगों के लिए जो अपने ब्रांड्स को रिवील करना चाहते हैं या अपने लेटेस्ट प्रोटोटाइप्स जो शायद मार्केट में नहीं उतारे, बट यू नेवर नो कि मार्केट में उतरेंगे तो तहलका मचा देंगे, तो ऐसे प्रोडक्ट्स भी वो लोग सामने रखने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी रियली रियली रियली रियली स्पेशल। On that note, Qatar 2026 के बिल्कुल मैं आखिर में आ चुका हूँ, दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ द शो। मगर सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar इस नाम से हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस, और आप भी कुछ कहना चाहें, मुझे ढूंढना चाहें, दोहा वाला कबीर के नाम से आप ढूंढ सकते हैं। कोई ऐसा इवेंट है जिसमें आप गए हो, आप हिस्सा बने हो, आप बताना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। 666-22107 ये नंबर है, आप शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो बाकी लाइव शोज हैं, या फिर आप सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़ के बता सकते हैं। बट एट अगेन एज आई मेंशन एट द वेरी बिगिनिंग, अगस्त स्टेकेशन का आपने सोच लिया है तो सिर्फ सोच ही नहीं एग्जीक्यूट भी कर लीजिए, बिकॉज अगस्त के बाद ये ऑफर्स नहीं रहेंगे एंड सिर्फ पछतावा रह जाएगा, ठीक है जी। तो ये बताना मेरा फर्ज है। बाकी जो नए नए आए हैं कतर में, वेलकम टू कतर, आई होप ये शो आपके काम आया हो। दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मास्सलाम।
1: Qatar 2026 FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अल मोइज़ अली के बारे में। दोस्तों, अल मोइज़ अली ऑब्वियसली वन ऑफ द लीडिंग स्टार प्लेयर्स ऑफ कतर फुटबॉल टीम और कतर फुटबॉल की तारीख के बेहतरीन फुटबॉलर में से एक माना जाता है और मुल्क के फुटबॉल की तरक्की में उनका बहुत अहम किरदार रहा है। उनकी पैदाइश 19 अगस्त 1994 को सूडान के शहर खार्तूम में हुई। बचपन में वो कतर आ गए जहां उन्होंने मशहूर स्पायर एकेडमी में फुटबॉल की तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रिया और स्पेन में मुख्तसर मुद्दत गुजरने के बाद वो अल दोहेल स्पोर्ट्स क्लब के अहम खिलाड़ी बन गए और बाद में टीम के कप्तान भी बने। अल मोइज़ अली को दुनिया भर में शोहरत 2019 एशियन कप के दौरान मिली जब उन्होंने रिकॉर्ड 9 गोल स्कोर करके गोल्डन बूट जीता और कतर को उसकी तारीख का पहला एशियन कप टाइटल दिलाया। जापान के खिलाफ फाइनल में उनकी शानदार बाइसाइकिल किक टूर्नामेंट के यादगार लम्हों में शामिल है। उन्हें उस टूर्नामेंट का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी करार दिया गया। उन्होंने 2023 एशियन कप में भी अहम किरदार अदा किया और कतर को अपना टाइटल बरकरार रखने में मदद दी। अपनी जबरदस्त फिनिशिंग, लचक मूवमेंट और प्रेशर के लम्हों में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से अल मोइज़ अली कतर के हर दौर के सबसे कामयाब स्ट्राइकर्स में शुमार होते हैं। वो कतर के ऑल टाइम लीडिंग इंटरनेशनल गोल स्कोरर भी हैं और आज भी गल्फ के नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा अहमियत दी है। उनकी मदद के लिए मिनिस्ट्री ने डेफ इमरजेंसी सर्विस शुरू की है, जो उनकी इमरजेंसी कॉल्स का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107।

0: उसे देसी।
1: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, फाइबर दिल की हिफाजत कैसे करता है? आज हम बात करेंगे कि غذائی फाइबर सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बेहद अहम है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि खास तौर पर जो सॉल्युबल फाइबर हैं या हल पजीर फाइबर हैं, वो ब्लड में नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मिकदार कम करने में मदद देते हैं। जबकि कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हमारी जो शरियाने हैं उनमें चिकनाई जमा होने का खतरा भी कम हो जाता है, जिससे हार्ट अटैक और फालिज के इम्कानात में कमी आ सकती है। फाइबर के दिल की सेहत पर बेशुमार फायदे हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में मददगार होता है, इसी तरह ब्लड में शुगर को जो है बैलेंस में रखने में मदद देता है और सेहतमंद वजन बरकरार रखने में आसानी हो जाती है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश में कमी होती है और दिल की बीमारियों से जो कि मुंसलिक हो सकती है। किसी भी एडल्ट को रोजाना तकरीबन 20 से 35 ग्राम फाइबर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये मिकदार उम्र और ये कि क्या जिंस है और सेहत की जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। फाइबर बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही आसान सी आदत जो हैं वो हमें अपनानी होगी, जैसे कि दिन का आगाज ओट्स या दलिये से कीजिए, सफेद चावल के बजाय ब्राउन चावल आप इस्तेमाल कीजिए, फलों का जूस पीने के बजाय पूरा फल आप खाइए, हर खाने में सब्जी जरूर शामिल कीजिए, हफ्ते में कई बार दालें और जो फलियां हैं वो खाइए। याद रखें कि अच्छी सेहत के लिए किसी एक सुपर फूड की नहीं बल्कि एक मतवाजन गिजा और मुस्तकिल अच्छी आदत की ज़रूरत होती है। गजाई फाइबर इन्हीं अच्छी आदत में से एक है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर, दिल को मजबूत और ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसी तरह से अपना और अपने प्यारों की सेहत का खास ख्याल रखिए।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हफ्ते के सबसे बेहतरीन दिन में जब सूरज जुमे की पुरकशिश रूहानी किरणें बिखेरने लगता है, ये दिन हमारे लिए खुशियां मनाने, बच्चों की तरबियत करने और घर की बुनियाद को मजबूत करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। फिर जब सूरज की किरणें ढलती हैं और शाम का वक्त करीब आता है तो कबूलियत की घड़ी दस्तक देती है, इस यकीन के साथ कि हर जवाल के बाद नया सवेरा जन्म लेता है। आइए जुमे की रूहानी, खानदानी और समाजी पहलुओं पर तबादला ख्याल करें। तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ जुड़िए प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शंस में हर जुमा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام سامعین کرام, آپ سب کو ہماری طرف سے خوش آمدید پروگرام آج کا کیا پروگرام ہے, ریجو ماری ریفلیکشن

वैसे तफ़ीम अल कुरान का प्रोग्राम काफ़ी उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है, मुँह से वही निकल आता है। तो क्या हाल चाल बताइए सब। आज मैं कई दिनों से कोशिशें हो रही हैं कि वो कुछ फ़ारसी की ज़बान वगैरह सीख रहा हूँ। वैसे तो ज़बान तो आती है लेकिन साथ साथ वो जो प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है वो सीख रहा हूँ। कल मैं बैठे बैठे देख रहा था कि फ़ारसी में सलाम को जब कहते हैं ना तो लहजा उनका कुछ अलग है, तो कहते हैं सालोम, अर्ज़ अदब खिदमत, बरनामा माँ खुश आमदीदा। तो इस तरह की कुछ है। तो ओवरऑल क्या हाल चाल बताइए आप लोगों का। अल्लाह अकबर। सामिन इकराम, जो जहाँ पर हमें सुन रहे हैं दुनिया के जिस पहलू पर बैठे हैं आप, जिस जगह में बैठे हैं, जिस इलाके में, तो ज़रा अपने आसपास ज़रा ख्याल कीजिए। जैसे मैं इधर बैठा हूँ स्टूडियो में, कई ऐसे लोग आते जाते गए हैं, और यानी कोई ये सड़कें, ये गलियाँ, ये सूरज, ये चांद, ये सब कुछ यानी वही के वही है, लेकिन हम चले जाते हैं ना। अच्छा, तो ओवरऑल ये बात भी एक हद तक सही है, लेकिन ये सब भी नहीं रहेंगे, ये सब कुछ भी नहीं रहेंगे, सब कुछ ख़त्म होने वाले हैं। सिर्फ बाकी रहने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। कुल मन अलैहा फान व यबका वजह रब्बिका ذل جلالی وال اکرام। اس وجہ سے قرآن کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما ترجعون فیه الی اللہ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون। एक मोमिन की अपनी तमाम उसकी जो नफ्सियाती कैफियत है, दबाव है, परेशानी है, जिस तरह के भी मसाइल हों, तो उसे जो है ना तमाम तर मसाइल में उसके सुकून के लिए, इत्मीनान के लिए एक बड़ा हौसला है ये यौम आखिरत पर ईमान। तो यौम आखिरत पर जब वो ईमान रखता है, वो इस बात पर ईमान रखता है कि एक जज़ा व सज़ा का दिन है, मालिक यौमिद्दीन, जैसे कि सूरतुल फातिहा में भी है कि जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक, तो उस पर, उस दिन पर, उस दिन के मालिक पर वो एतमाद रखता है, ये ईमान रखता है, यकीन रखता है। तो इस बिना पर वो जिस हालत में भी हो, वो सब्र और शुक्र का रवैया इख्तियार कर पाता है। तो इस दौर में जैसा कि हर वक्त हम कहते रहते हैं कि नफ्सियाती जो बीमारी है, ये काफ़ी एक बड़ा अलमिया बन गया है। आजकल अक्सर व बेशतर स्पीकर्स जो है ना, वो इसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, नफ्सियाती बीमारी पर। चूँकि बाकी देखें, पिछले ज़माने की तरह वो जो चैलेंजेस अभी नहीं, अभी कुछ अलग तरह के चैलेंजेस हैं, लेकिन कुरान तो वही वाहिद किताब है जो ता क़यामत हमारी रहनुमाई करती रहेगी। तो इसमें यानी दिन ब दिन नए नए चैलेंजेस आएंगे, उसके जवाब सारे यहाँ पहले से अल्लाह सुबहान तआला ने हमारे लिए इस दस्तूर हयात में लिख दिया है। तो देखें, वनफसी वमा सवाहा, सूरत शम्स पर ही अगर आप फोकस करें, वहाँ चांद तारों की बात आ गई, रात दिन की बात आ गई, आसमान की बात आ गई, फिर ज़मीन की बात आ गई। वनफसी वमा सवाहा, अल्लाह ताला ने ये कलमाए नफ्स पर, लफ्ज़े नफ्स पर काफ़ी कुरान में काफ़ी फोकस किया है। तो आजकल तो माशाल्लाह फुकहा ने फ़िक्हु नफ्स के बाब में यानी बड़ी बड़ी तफसीली तौर पर उन्होंने किताबें लिखी हैं, फ़िक्हु नफ्स। अच्छा, तो ये साइकोलॉजिकल बात आ जाती है इसमें। जैसे अगर हम यानी साइकोलॉजी जिसे कहते हैं, इस नई इल्म को जिस तरह उन्होंने इक्तिशाफ़ किया है, एक्सप्लोर किया है, वैसे फ़िक्हु नफ्स के हवाले से काफ़ी सारी आयतें, काफ़ी सारी अहादीस आपको, यानी 1400 साल पहले की बात है, जहाँ इस सफ़र के सारे नफ्सियाती जो जो अहम बातें हैं उसमें बातें आ गई हैं। तो सामिन इकराम, हमारे आज के प्रोग्राम में चूँकि फ़िक्हु नफ्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वो महसूसात की बात आ जाती है। आप कैसे महसूस कर रहे हैं अपने आप को, आपकी हकीकत क्या है, आपकी ख्वाहिशात कहाँ से आती हैं, कमज़ोरियाँ क्या हैं, नफ्सियाती तौर पर अमराज, जो अमराज पैदा होते हैं ना, उसके असबाब क्या होते हैं, ये कमज़ोरियाँ कहाँ से आती हैं, इनकी इस्लाह और इलाज किस तरह होना चाहिए। तो फ़िक्हु नफ्स पर काफ़ी लोगों ने काम किया,
आप अगर यानी पिछले कंप्यूटर के एक्सप्लोर से पहले जो एक दौर था वहाँ पर आप जहाँ तक लिसानियात के हवाले से लिसानी

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
2: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
0: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
3: वेलकम बैक सामिन इकराम, प्रोग्राम जुमा रिफ्लेक्शन आप सुन रहे हैं। एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद, सलाम व अर्ज आदाब खिदमत शुनंदे हाय अज़ीज़। उम्मीदवारम हालतें खूब बोशे, बे बरनामे ये माँ खुश आमदन, खुश आमदीद आपको इस प्रोग्राम में। और सामिन इकराम, आज का मौजू आप सब जानते हैं, सवाल वाज़ है, फ़िक्र नफ्स के हवाले से हमारी गुफ्तगू हो रही है। तो सवाल ये है कि हम अपने आप को किस निगाह से देखते हैं,

0: हम अपने आप को अपनी नज़र से देख रहे हैं, दूसरों की नज़र से देख रहे हैं, या माशरे की निगाह से, या अपने खालिक की दी हुई हिदायत की रोशनी में? ये सवाल अपनी जगह काफ़ी अहम है। तो इन सवालात को यानी अगर हमारे पठान जो भाई हैं, ब्रदरान, उनकी ज़बान में अगर कहने की कोशिश करूं, अरे भाई अब जदीद टूल्स आए हैं तो काफ़ी सारी जो है ना हम मदद ले सकते हैं और काफ़ी सारी ज़बानों में बात भी कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई रोमन में मुझे लिख दो ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं इनमें इनके तक इन तक भी हमारे आज के जो मौजू है ये पहुँच जाए। तो आज का जो मौजू जो है मैंने उर्दू में जैसे कहा उसको अगर हम पश्तो ज़बान में कहें तो ऐसा होगा, ज़खपल जानदा चा ला नज़ारा पिजनम यवाज़ दखपल नज़र लमुखे दतुला ने ला नज़ारा ओका दखपल खालक दारकड़े ला शोवान पाराना के। अच्छा जी, तो समझ में आ गई होगी आपकी कुछ काफ़ी गलतियाँ भी हैं तो इसलाह के लिए आप फ़ोन करके हमें बता सकते हैं भैया क्या गलती है। भैया मुझे इस पश्तो ज़बान के तलफ़ में ऐसे मैं मुख्तलिफ़ ज़बानें सीख रहा हूँ। ओवरऑल ज़बानें तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान में बताया है, उमिन आया थी ही खल्क़ुस समावाति वल अर्ध वख्तिलाफ़ अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। तो मुख्तलिफ़ ज़बानें ये अल्लाह ताला की नेमत है और इस नेमत को किस तरह हम सही से काम में लगाएंगे, इस नेमत से फ़ायदा लेंगे, यही है बात। तो हमारे मुख्तलिफ़ ज़बान यानी अहले ज़बान हमारे ऑडियंस हैं तो बताइएगा आप लोग कि आपके ज़बान में जो है ना सुनना चाहेंगे हमारे कुछ मौज़ूआत उर्दू में, वैसे हमारी बातें होंगी ज़रूर, कुछ ना कुछ हम इंशाल्लाह दूसरी ज़बान में भी आपको यहाँ शामिल करते जाएंगे दूसरी ज़बान में। तो मौज़ू हमारा फ़िक़्हो नफ़्स के हवाले से है और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
0: सब कुछ मैं
1: खैर मुबारक हूँ।
0: अल्लाह आपको खुश रखे। ज़ुकर भाई क्या हाल चाल, खैरियत ठीक ठाक?
1: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: ज़ुकर भाई एक नई स्ट्रेटजी पे मैं आ गया कि भाई प्रोग्राम में सबको शामिल करना है तो कुछ मुख्तलिफ ज़बान से भी लोगों को मुखातिब करूँ, क्या कैसे आइडिया है?
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये चीज़ें बंदों को एक्साइटेड करती हैं कि वो उसमें शामिल हों, ये बिल्कुल ठीक बात है।
0: सही सही।
1: आप किसी मुल्क में जाएं और उनकी ज़ुबान में उनसे तहनियत करें, हेलो हाय करें, जाते हुए मुस्कुरा उठेंगे वो।
0: सही सही से बिल्कुल बिल्कुल। और ये दरअसल इस्लामिक प्रोग्राम में एक तो है कि आप सवालात का सिलसिला शुरू करें तो उसमें एक सवालात करने के लिए लोगों काफ़ी सवालात रहते हैं, लेकिन ये कि ख़ुद जो है ना कुछ इस्लामी हवाले से कुछ गुफ्तगू करें तो ये काफ़ी भारी पड़ता है लोगों को। तो ओवरऑल यानी आपकी तरह स्पीकर्स भी कम होते हैं माशाल्लाह से, आप तो काफ़ी माशाल्लाह डीप नॉलेज भी रखते हैं। तो फ़िक़्हो नफ़्स के हवाले से बात हो रही थी ज़ुल्क़रनैन भाई, और आजकल का जो अलमिया है इस पर तो मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन दोबारा बार बार ये मसला आता है चूँकि फ़िक़्हो नफ़्स के हवाले से काफ़ी लोग बात कर रहे हैं दिनों, और लोग बड़े परेशान हैं, इस्तराब की हालत है। तो इस सिलसिले में जो सवाल है आज के प्रोग्राम का कि आज लोग जो देख रहे हैं अपने नफ्स को, अपने नफ्स का जायज़ा हम कैसे ले रहे हैं, क्या हम अपनी नज़र से देख रहे हैं या फिर माशरे की नज़र से, तो या दरअसल हमें अपने नफ्स का जायज़ा कैसे लेना चाहिए?
1: आपका सवाल, आप कह रहे हैं इस्लामी मौजूआत बड़े इंटरेस्टिंग हैं, द वे ऑफ डिस्क्रिप्शन या डिस्कशन ये है, और आपका मैं शुरू से सुन रहा हूँ अभी क्योंकि लास्ट मोमेंट था कि मस्जिद में जाना है, अदरवाइज मैं इसको और सुनता रहता कि इतना आप उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, मेहनत करते हैं और बात टच करती है, हार्ट दिल को छूती है ये बात। और ख़ास तौर पे आप देखें जिस तरह आपने बताया ना कि इंसानी नफ्स का, जब अल्लाह ताला ने इसको अशरफुल मखलूकात का इंसान को हिदायत दी, नबी आए, किताब आई, फिर घर में शुरुआत माँ बाप से, माँ बाप एक फैमिली सिस्टम, अभी आप जेंडर की भी बात कर रहे थे
0: जी।
1: अब जिन फैमिलीज ने ये जेंडर या वो सिस्टम शुरू किया, अनफॉर्चुनेटली उन्होंने फैमिली का जो शेडो था या साया था ना वो छीन लिया, उनसे वो छतरी छीन ली, तो जो बेयारों मददगार हो गए माँ बाप,

0: हैं, आपको कहते हैं ना घर में सबसे पहली दरसगाह माँ है, माँ वहाँ पर रही नहीं, दे लाइक इनक्यूबेटर्स, और वो जो हैं काम धंधों परेशानी में, यानी आपकी नई जनरेशन, उसके लिए उसके पास भी वक्त नहीं, क्योंकि उसके ऊपर जो जिम्मेदारी ऑफ द फादर है वो ख़त्म हो गई, वहाँ है ही नहीं. यानी जब फैमिली सिस्टम तबाह हो जाए, जब वहाँ इंडस्ट्रियलाइज रिवॉल्यूशन आया तो उनको वर्कर चाहिए थे, उनका फैमिली सिस्टम में तो वर्कर मिल नहीं सकते, हमें मशीन ही चाहिए. हर बंदा अपनी फिक्र करे, जबकि अल्लाह ताला ने एक फैमिली का सिस्टम बनाया, उसमें हर एक की एक घर में मखसूस जिम्मेदारी है.
1: सही, सही.
0: वो उन्होंने ख़त्म कर दी. इवन अगर आप ये देखें,
1: फैमिली के डेफिनेशन पर हमला किया है दरअसल,
0: फैमिली को ब्रेक करके वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और उनकी अपनी जो पॉपुलेशन है डाउन हो रही है, और ये जो अखलाकियत. अच्छा, अगर आप वहाँ देखें ना, मैंने एक चीज़ स्टडी की, क्राइम के ऊपर जो वो फोकस होते हैं, किसी क्राइम किसी ब्लैक ने किया है तो 100 मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, 10 ने किया है ना और वाइट ने किया है तो वो उसको नॉर्मलाइज समझते हैं, ये तो अपना ही बंदा खैर है, हालांकि उसने 10 किए और उसने हो सकता है 70-80 किए हैं, बट दे कीप नॉर्मलाइज नहीं. और उन्होंने ख़ास तौर पे, अल्लाह ताला ने हमें देखें अक्लो शऊर और इंसानियत का जो एहतराम दिया है, उन्होंने इस एहतराम को ख़त्म कर दिया है. उन्होंने ख़ास तौर पे औरतों को तो एक प्रोडक्ट बना दिया है, ये तो वैसे ही वाजिया आप सबको पता है, कोई छुपी हुई बात नहीं है, और इंसानों को भी इसी तरह मटेरियलिस्टिक वर्ड यूज़ कर दिया है.
1: सही.
0: और इस तरह
1: मादी वजूद जिसे कहते हैं, बस
0: मादी वजूद, यस, उसमें उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया है. उनकी कामयाबी, अच्छा आप पोर्ट्रेट करें, देखें स्टार कौन, स्टार स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, उसको अक्ल और तालीम जहालत है. मैं बहुत क्लोज रहा हूँ इस फील्ड से, स्पोर्ट्स से और उससे, तो मेरा फिजिकली भी है कि बहुत बड़े बड़े स्टार, उनकी एजुकेशनल या वो, और ख़ास तौर पर अगर उनको यंग एज में देखें तो किसी, यानी मुझे उम्मीद है कि कोई इस चीज़ को बुरा नहीं मनाएंगे कि एक इलिटरेट या कहेंगे ना एक जंगल में रहने वाला इस तरह है, फिर वो टाइम 10-15-20 साल रहता है, फिर उसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये एक यंग एज, वो जब उसका पोर्ट्रेट होता है, उसके बिहेवियर, उसके तरीके, उसकी चीज़ों को देखे बड़े डिसअपॉइंट, लेकिन वो उनको ऐसी फिल्म स्टार, यार फिल्म में स्टार तो एक एजुकेशन तालीम याफ्ता शऊर वाला बंदा स्टार होता है, कहते नहीं उनको छुपा के रखते हैं, ये सुपर स्टार है.
1: अच्छा दुकान भाई, आपकी बात से एक बात निकल रही हो ये कि आप जैसे कह रहे हैं कि मेटेरियलिस्टिक बना दिया है लोगों को, तो मादी वजूद के हवाले से हम सिर्फ जिस्म को देख रहे हैं, हमने रूह को नज़रअंदाज किया है. तो अच्छा जिस्म यानी नफ्स, अच्छा तो क्या हर नफसियाती बीमारी को, चूँकि फ़िक्र नफ्स के हवाले से या नफ्स साइकोलॉजिकल वे से हमारी गुफ्तगु चल रही है, तो क्या हम हर नफसियाती बीमारी को ईमान की कमज़ोरी से रिलेट कर सकते हैं?
0: बिल्कुल कर सकते हैं. कहते हैं कि जब अल्लाह ताला ने आप मटेरियलिस्टिक हो जाएं तो आप चीज़ों के कंपैरिजन में करते हैं, और जब अल्लाह की तरफ से जाते हैं तो आप शुक्र अदा करने वाले जब मोड में आ जाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, और दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि ये ज़िंदगी में ये चीज़ें इतनी नहीं हैं, इतनी अहमियत नहीं है, आप सर्च और स्ट्रगल करते हैं. पैनिक मोड से निकलना चाहिए, द पैनिक मोड. ये पैनिक मोड जो होता है ना, ये इंसान को सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी करता है और परेशानी और इवन क्राइम पे भी उकसाता है. तंग आ गया, कर लिया. हाँ, सोसाइटी और उस मुल्क का भी काम है कि उसको फेयर स्पेस दे, उसको कुछ करने का मौका दे. लेकिन आप देखें, अल्लाह हमारे दीन ने सबसे पहले इंसान को गुलामी से निकाला. गुलामी का मतलब है अल्लाह की हदूद में वो अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकता है.
1: क्या
0: उसकी सलाहियतों को आप कैद कर दें, उसको कंट्रोल कर लें. इंसान की अल्लाह ने फितरत ही ये नहीं बनाई. दैट क्रिएट पैनिक, मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर वो डिस्ट्रक्टिव बन जाता है.
1: सही, सही. और मूड के हवाले से आपने बात की, इन दिनों में तो ये जो इमोजीज वगैरह जितने सारी चीज़ें एक्सप्लोर्स हैं, ये तो भाई हमें अपने मूड की जो इस्तराबी की जो कैफियत है, ये इसी की वजह से है.
0: अब आप ये देखें, आपको मैं मैसेज करूं चलें वो है, लेकिन आपसे एक बात करूं, ये जो कम्युनिकेशन है इसका कितना डिफरेंस है. आपकी बात सुनने का या आप मुझसे जो बात कर रहे हैं, द फीलिंग इज डिफरेंट. आप एक मैसेज पढ़ें और एक मैं आपको इमोजी भेज दूं तो आप भी ऐसी नकचड़ा इमोजी मुझे रिवर्स कर दें, इट इज डिस्कनेक्ट.
1: अच्छा, काफी दफा ऐसा होता है ना, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि मेरा जो एक्सप्रेशन है खास, उसके उसकी मुनासिब मुझे कोई इमोजी नहीं मिल रही है.

0: क्रिएटर भी हैं।
1: अच्छा अच्छा
0: अपनी खुद फोटो डाल के आप उसे इमोजी आप अपनी क्रिएट कर रहे हैं। स्पेसिफिक फॉर योर ओन।
1: ओके
0: कसर कोई नहीं छोड़ी इन लोगों ने।
1: अल्लाह नस्तर अपनी शख्सियत पर्सनलाइज करके भाई मुझे बना लो भाई हर कोई अपनी तरह।
0: तो वो तो एक स्पेसिफिक हो जाएगा ना कि आप क्या
1: हैं। सही सही बहुत खूब मजा आया बात करके आपसे।
0: जज़ाकल्लाह
1: खुश रहे। बारकल्लाहु फीकुम। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कौन है? हेलो हेलो मरहबा। एक मतलब फिर आपका नाम जरा करीब फोन को करीब रही चूंकि आवाज़ थोड़ी कम आ रही है।
2: अच्छा जी। अच्छा मेरा नाम फुज़ैल अहमद है।
1: फुज़ैल अहमद भाई क्या हाल है? खैरियत ठीक ठाक और जुमे का सुबह को सुबह बखैर यानी सुबह तो नहीं अब दोपहर होने वाला है।
2: हाँ, जुमा बखैर कह सकते हैं।
1: हमारी भी खुश नसीबी है कि ऐसे मुबारक वक्त में हम आपसे रिलेट यानी कॉन्वर्सेशन में आते हैं। कॉन्वर्सेशन में तो इस मुबारक पहर के हवाले से आप क्या कहेंगे? जो मौजू पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी आपने सुना होगा तो आपका यानी ये जो नफसियाती जितने बीमारियां हैं क्या आप समझते हैं कि ईमानी कमज़ोरी के साथ इसका किस हद तक ताल्लुक़ है?
2: जी बिल्कुल ये मौजू मुझे काफ़ी इसमें दिलचस्पी है इसीलिए मैंने फ़ोन भी लगाया।
1: जज़ाकल्लाह।
2: तो मतलब मैंने एक ज़माने में थेरेपी और जो मतलब वेलनेस जो बोलते ना मेंटल वेलनेस है।
1: अच्छा अच्छा ये क्या कहते हैं
2: सर्टिफिकेशन वगैरह की काफी दिलचस्पी थी मुझे।
1: अच्छा
2: तो मैं इसमें स्टडी भी कर रहा था थोड़ा थोड़ा मतलब अपनी क्या नाम है पेशावराना स्टडीज से हटकर।
1: अच्छा
2: साइड में एक दिलचस्पी ह्यूमन बिहेवियर के लिए कॉग्निटिव इंसान का कैसे काम करता है साइकोलॉजिकल इलनेस का क्या चीजें हैं।
1: बहुत खूब बहुत खूब हम तो काफी दिलचस्पी के साथ आपकी बात सुनेंगे। फिर बताइए क्या तजुर्बा रहा आपका?
2: इतना इल्म तो नहीं है लेकिन आगे कुछ बातें बता
1: सकते हैं। जरूर जरूर।
2: तो इसमें इवन जो वेस्टर्न तहकीकात हैं जो हमारे मुहक्कीन हैं फिलोसोफर्स हैं या साइकोलॉजी स्पेशली साइकोलॉजी के रिलेटेड जो इल्म नफ्स का जो मुताला किया होता
1: जी,
2: है जो स्टडी करते हैं वो ये कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल इंसान का जो मैलान होता है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है इंसान की मेंटल वेलनेस पर। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि मिसाल के तौर पर एक इंसान की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजर सकती है फिजिकली बहुत डिमांडिंग हो सकती है लेकिन फिर भी उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है उस इंसान से जिसकी जिंदगी फिजिकल वेलबींग में बहुत ज्यादा आरामदेह हो।
1: अच्छा
2: मिसाल अच्छा। ये होती है कि एक इंसान हो सकता है जिसके पास कोई गाड़ी भी ना हो और एक इंसान है जिसके पास मान लीजिए कोई बहुत अच्छी ब्रांड की गाड़ी हो लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक इंसान जो बेचारा बहुत ज्यादा मुश्किलों का शिकार है उसके जहनी जो सलाहियत है या उसकी जो मेंटल वेलनेस है वो बेहतर है उससे जो बेचारा आसानियों में। लेकिन इसके पीछे वजह क्या बनती है? इसके पीछे वजह अक्सर जो बताते हैं वो यही है कि उनका रूहानी मादा और फितरत जो है वो बिगड़ी नहीं होती। अब इसमें जो मुसलमान साइंसदान है जो मुसलमान मुफक्किरीन है जो कि बहुत कम है वो तो फौरन रिलेट कर जाते हैं कि दीन किस तरह से रोल प्ले करता है एक क्या नाम है साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए। लेकिन जो जिन्होंने अभी इस्लाम को नहीं पाया अल्लाह ताला सब मुहक्किन को हिदायत तक पहुंचाए तो वो इसको मुख्तलिफ अदवार से मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ नामों से मौसूम करते हैं कि भाई कि कोई कहेगा कि यार ये स्पिरिचुअल लैकनेस की वजह से कोई कहेगा स्पिरिचुअल ग्राउंडनेस नहीं है इंसान में कि वो ग्राउंडेड नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई बिजली के तारों को ग्राउंड कर दिया जाए तो तार स्टेबलाइज हो जाते हैं तो कहते हैं इंसान भी ग्राउंड हो जाए तो इंसान को ग्राउंड करने की टेक्निक्स आती हैं कि आप किस तरह नंगे पैर जमीनों पे खड़े हों या कोई उसमें इस तरह के मुख्तलिफ पोजेस बताएंगे कोई आपको मुख्तलिफ छोटी छोटी एक्सरसाइजेस बताएंगे जिनमें आप अपनी सांसों को कंट्रोल कर रहे हैं जरा सा मेडिटेशन सा करें जरा ध्यान लगाएं तो इन सारी चीजों को जब वो बता रहे होते हैं तो एक मुसलमान के लिए अगर हम गौर करें तो अल्लाह ताला ने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी इंगल्फ की हुई है उसकी लाइफस्टाइल में चाहे वो ग्राउंडनेस है। जैसे हम जब सजदा करते हैं ये बाद में मुहक्किन ने ये भी साबित किया था कि सजदा करने से भी इंसान की बहुत सारी फिजिकली यानी जो चार्जेस हैं माइंड की जो चीजें रिलैक्स होती हैं हमारे दिमाग में भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दौड़ रहे हैं जो हमारे लिए टेंशन और मुख्तलिफ थॉट्स का प्रोसेस बनते हैं। जब हम अपने सर को जमीन के एकदम करीब लगाते हैं तो क्योंकि जमीन चार्जों का बैंक है और जमीन अट्रैक्ट करती है बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस को हर जगह करंट का भी सिस्टम यही है आप जितना भी नेगेटिव चार्जेस जमीन में आप पॉजिटिव जमीन को खींचती है तभी हम बिजली के तारों को भी ग्राउंड किया करते हैं। तो उससे भी जोड़ा गया है कि इंसान जब स्पिरिचुअल अपने आप को करीब करता है किसी चीज से, अपने आप को ठहराव में लाता है, अपनी जिंदगी को स्लो डाउन करता है. जैसे पहले ये था कि लोग कह रहे थे हरकत कीजिए हरकत कीजिए, हरकत तो करिए, लेकिन अब फिजिकल हरकत खत्म हो गई है, मेंटल हरकत बहुत बढ़ गई है.
1: सही,
2: तो मेंटली अपने आप को अब ग्राउंड करने के मौके ही नहीं रह गए हम लोगों के पास. और वो मौके हमें नमाज देती है, हमें दीन देता है कि भाई बैठो, थोड़ी देर जिक्र किया जाए, थोड़ा देर तिलावत किया जाए. तो ये सब चीजें आपके फोकस को वापस लाती हैं, आपके माइंड को क्लॉक फ्री करती हैं. जो 50 रील चल रही हैं, 50 शॉर्ट्स चल रहे हैं, 50 टॉपिक्स पे हर तरफ बहस मोबाइल से चल रहे हैं, हरदम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा है. तो उसको ग्राउंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम दीन की तरफ जब, मतलब एज अ मुस्लिम हम कह सकते हैं कि दीन की तरफ जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें बहुत फायदा मिलता है. और जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं, जो इस दुनिया के माहिरीन है, वो बाकायदा ये थेरेपी सिखाते हैं. और अच्छा, मैंने खुद सीखी हुई है.
1: अच्छा,
2: तो वो थेरेपी मुझे ऐसा लगता था कई बार कि यार मैं अगर अपने, मतलब जब सिखा रहे होते थे हमारे सिखाने वाले,
1: अच्छा,
2: तो मुझे ऐसा लगता था यार अगर मैं नमाज पूरी अपनी परफेक्ट खुशू खुशू से पढ़ूं तो ये जो थेरेपी के जो रिजल्ट्स हैं वो सेम एग्जैक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे मुझे, जो ये 20 मिनट में मुझे एक्सरसाइज कराने वाले हैं. अगर मैं अपनी ईमानियत को मजबूत करूं, अपने एतकाद को, अल्लाह ताला के ऊपर यकीन को, तवक्कुल को स्ट्रांग करूं, तो मेरे लिए वैसे ही बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी.
1: सही,
2: बाकी इसमें एक छोटी सी चीज ये है कि कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं, कुछ बीमारियां ऐसी हो सकती हैं जो ईमान मजबूत होने के बाद भी हो सकती हैं. शक की गुंजाइशें हैं, वसावस हैं, दुनिया में और बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स.
1: ये जो आपने पॉइंट आउट किया ये काफी अहम है, क्योंकि आप तमाम नफसियाती बीमारी को ईमान की कमजोरी से रिलेट करना ये नामुनासिब है. सही,
2: क्योंकि बाज़ औक़ात सही हमारे पास भी ऐसे कोचेज में, मैंने कोचिंग की दुनिया में जब थोड़ा सा कदम रखा था,
1: अच्छा माशाल्लाह,
2: हालांकि तो उस वक्त ऐसे मुझे भी कुछ लोग मिले जो बहुत परहेजगार और दीनदार लोग हैं,
1: जी जी,
2: लेकिन उन्हें भी कुछ मसाइल के शिकार हैं. तो वो इंसान के तजुर्बों से, इंसान के एक्सपीरियंसेस से चीजें शेप होती हैं. तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ईमान की कमजोरी से आपकी क्या नाम है बीमारियां आ रही हैं. बीमारियां आ रही हैं तो आप बीमारी के मशीन जो भी उसका मुआलिज है, जो भी उसका इलाज करने वाला है, उससे रब्ता करें. वो आपको स्पिरिचुअली भी मजबूत करेगा. स्पिरिचुअलिटी आपकी या ईमान आपकी बीमारियों को दूर रखने में मदद कर सकता है. लेकिन कोई बीमारी हो जाने के बाद आप ये कहें कि ये ईमान की कमजोरी की वजह से हुई है, ये गैर मुनासिब है. क्योंकि इससे हमारे एक बहुत बड़े, क्योंकि ऐसे उलमा भी मौजूद हैं जिन्होंने, जिनको दवाओं की जरूरत पड़ी है, जिनको थेरेपीज की जरूरत पड़ी है, ऐसे हफाज हैं. जैसे हमारे एक साथी थे, वो इमाम थे मस्जिद के, बड़े अच्छे, लेकिन उनको एक शक की बीमारी मतलब आ गई थी. और कई बार उनका ये होता था कि मुझे नमाज में जाते ही ऐसा लगने लगता है कि मैं बहुत अच्छा हाफिज हूँ लेकिन मुझे आयतें भूल रही. वैसे उनको बहुत अच्छा मतलब हिफ्ज मजबूत था उनका, लेकिन नमाज में उनका एक कॉन्फिडेंस गिर जाता था किसी वजह से. फिर हमने उनकी थोड़ी सी थेरेपी की, उनसे कुछ की, तो उनके जहन में कुछ बातें ऐसी बैठ गई थी जिसकी वजह से उनके अंदर डर आ गया था.
1: जी जी, फजल भाई
2: मसल्ले में जाते थे तभी वो एक्टिवेट होता था.
1: फजल भाई, वसवसे की बात अगर कहें, जी जी जी, मैं वसवसे की बात अगर कहें तो आज ये मर्ज इस हद तक पहुंच गया है कि लोग हमारे कुछ ऐसे भी हैं जो बाकायदा यानी नमाज नहीं पढ़ते हैं ये सोचकर कि शायद अल्लाह मुझसे कबूल ही नहीं करेंगे, यानी नमाज से दूर हो रहे हैं, अपने ईमानी इस्लामी कितने वो आमाल से दूर हो रहे हैं. ये मुसलमान हैं फिर भी नहीं कर रहे, चूंकि उन्हें ये लगना शुरू हो गया कि भाई अल्लाह तो मुझसे नहीं कबूल करेंगे. तो ये मायूसी माजअल्लाह बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है. जी,
2: और ये बहुत बड़ी, बिल्कुल
1: जी,
2: तो
1: जी.
2: और इसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं सिर्फ तलावत कर लूंगा या मैं सिर्फ अपनी कोशिश या जबर करके इसको दूर कर लूंगा. नहीं, जो भी हमारे सामेईन है या जो भी लोग सुन रहे हैं उनका मैं हमसे, अगर आपको इस तरह का लग रहा है ना, तो सीक एक्सटर्नल हेल्प, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन दीन भी हमें यही कहता है कि हमारे जैसे अल्लाह के रसूल के सहाबा को भी जब ईमानी कमजोरी महसूस हो रही है एक साहबी को, तो अल्लाह के रसूल के पास फौरन आ रहे हैं वो बताने के लिए, अल्लाह के रसूल मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ. तो अल्लाह के रसूल उनको, उनका इलाज कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनकी कोचिंग कर रहे हैं ज़हनी लेवल पे. बिल्कुल, मैं एज अ कोच यही देखता हूँ कि साहब अपनी तकलीफ लेके आ रहे हैं रूहानी या अपनी मेंटल प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल उनको किस तरह से कोच कर रहे हैं, किस तरह से अल्फाज का चुनाव है, किस तरीके से अल्लाह के रसूल उनको गाइड कर रहे हैं. तो आप भी अगर ये दिल में रखे रहेंगे तो फिर आपका मसला हल नहीं होगा. अगर शक की बीमारी किसी को आ गई है, वसवसे की बीमारी आ गई है, या नाउमीदी की मर्ज की तरफ वो जा रहा है, तो सबसे पहली चीज ये हो सकती है कि किसी भरोसेमंद, किसी बासलाहियत, ये देख के, मतलब ये नहीं कि किसी भी जगह से आप शुरू कर दे मशवरा करना या उसे, किसी बासलाहियत जो इस चीज का माहिर हो उससे जरूर कंसल्ट करें. आपकी बीमारी आप ही समझेंगे कि आप अकेले डील कर जाएंगे, ये नहीं होता है. गहनी बीमारियों में एक्सटर्नल हेल्प बहुत जरूरी होती है कि आप किसी माहिर एक्सटर्नल किसी मालिक से रابता करें या कोई एक्सपर्ट से, दीनी मैदान में भी जो लोग, बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो दीनदार भी हैं, दीन की भी समझ रखते हैं और वो इन सारी बीमारियों की भी समझ रखते हैं, और हमारे तिब्बी माहिरीन तो मौजूद ही।

0: तो हमेशा एक्सटर्नल हेल्प सीख करना बहुत जरूरी है. इसको बीमारियों को इस तकिए पे नहीं डालना चाहिए कि मतलब ये दीन की कमजोरी से हो रही, दीन की कमजोरी अपनी जगह, उससे तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जिंदगी में, लेकिन वो बहाना नहीं है आपकी किसी स्पेशली मेंटल रिलेटेड कोई बीमारी है या फिजिकल रिलेटेड कोई बीमारी है.
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल.
0: ये मेरा एक पैगाम है कि हमेशा मदद हासिल करने में पीछे ना हिचके कभी भी. सही बंदा तलाश करें और सही बंदे से मदद हासिल करें. आपकी दीनी बीमारियों के भी बहुत सारे अमराज का हल इंशाल्लाह एक एक्सटर्नल हेल्प में है. आप अपने आप से बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: अल्लाह ताला हम सबको शिफायाब रखे और जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं खुशमिल मेरे हम सबको अल्लाह ताला के ऊपर.
1: मैं तो काफी मुतासिर हूँ आपकी अदायगी और आपकी लताफत जबान से. माशाल्लाह अल्लाह को खुश रखे.
0: इंशाल्लाह आप से सीख रहे हैं, आपको सुनते रहते हैं, आपसे पूछते रहते हैं, तो मैं उसके जुमले भी प्रैक्टिस करता रहता हूँ.
1: माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब.
0: आपकी अदायगी से मैं बहुत मुतासिर हूँ. अल्लाह आपको बहुत अच्छा रखे और आपकी सलाहियत में इजाफा हुआ.
1: आमीन आमीन. सबकी आप सबकी आप जो सुन रहे हैं आपके बस मैं महजूज हूँ. आप जैसे सामीन भी हैं हमारे और क्या. जज़ाकअल्लाह. इंशाल्लाह मुलाकातें और ये बातें हमारी चलती रहेगी अगले हफ्तों में भी. जज़ाकअल्लाह खैर.
0: अस्सलाम
1: वालेकुम. अस्सलाम वरहमतुल्लाह. जी सामीन इकराम, काफ़ी यानी क्या कहूँ मैं, भारी भरकम बातें और ये यानी दरअसल इस तरह के मसाइल का जो सामना कर रहा है ना उसको तो हम मैं कहूँगा कि जैसे कि हमारे फजल भाई ने भी कहा ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. आप एक तरफ तो ट्रीटमेंट भी करें और दूसरी एक बात ये भी है कि ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ की इस्लाह की भी ज़रूरत है. जैसे देखें अगर दीन से मैं पूरा हट जाऊं, एक तो ये कि यानी हर बीमारी को मैं दीनी कमज़ोरी समझूं, ये भी गलत है. ठीक है, जैसे कि हमारे फजल भाई ने भी कहा. और ये कि हम हर इलाज के लिए, जैसे आज एक फेनोमेना बना हुआ है चूँकि साइकोलॉजी की बात काफ़ी होती है, तो हर कोई जो है ना ये सोचता है कि भाई नफसियाती बीमारी है तो हम इसको जदीद जो मुआलिजीन है सिर्फ उन्हीं से हल करेंगे या फिर उन्हीं के पास ट्रीटमेंट, उनकी बातें सुनेंगे तो फिर वो सुकून मिलेगा, वो खुशी आएगी, वो इत्मीनान मिलेगा. तो बात दरअसल ओरिएंटेशन ऑफ लाइफ की भी है, तो उसमें भी इसलाह ज़रूरत है. आप अपने आप को बराह रास्त खालिक से रिलेट करें और ये सोचें कि अल्लाह मुझसे क्या चाह रहे हैं, लोग मुझसे, मुआशरा मुझसे क्या तलब कर रहा है, ये वो. अगर मुआशरे की निगाह से आप हर वक्त अपने आप को देखेंगे, अपने नफ्स को, तो कभी भी ये चैन और सुकून नहीं मिलने वाला. तो जैसे कि याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल ले लीजिए, कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम का गम बहुत वाज़ेह है. यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से जुदाई के बाद वो बरसों गमगीन रहे. कुरान बयान करता है कि उनकी आँखें गम से सफ़ेद हो गईं, यानी कितने परेशान हो गए थे. आप ज़रा सोचे ना क्या डिप्रेशन उनकी. तो अच्छा डिप्रेशन मैंने कह दिया, हालांकि आप खुद ही पता है क्या ये डिप्रेशन था हकीकी माने में. ये हकीकी माने डिप्रेशन तो था नहीं, गम उनका गहरा था उतना तो हम कहेंगे, लेकिन इसकी वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तो कलप्स नहीं हुई ना, वो अल्लाह से कटे नहीं, उन्होंने अपने फ़राइज़ नहीं छोड़े, औलाद की तरबियत जारी रखी, दुआ जारी रखी, उम्मीद ख़त्म नहीं की. यही है नुक्ता कि उम्मीद ख़त्म नहीं हुई, ना उम्मीदी, मायूसी नहीं, गम मौजूद था मगर स्पिरिचुअल जो स्ट्रक्चर ना वो बाकी थी. और यही फ़र्क नहायत अहम है. अगर सैडनेस बढ़ते बढ़ते बढ़ते इस मकाम तक पहुंच जाए कि इंसान अल्लाह के बारे में मनफी गुमान करने लगे, अपने बारे में होपलेस हो जाए, लोगों से ताल्लुक तोड़ दे, ताल्लुकात की बुनियाद पर अगर बात करें या फिर रोज़मर्रा की बुनियाद पर ज़िम्मेदारियां जो होती हैं ये बुरी तरह मुतासर हों, काम में, इबादत, घर और सोच में डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाए, तो यहाँ वक्फा की ज़रूरत है. चूँकि अब मसला सिर्फ सैडनेस नहीं रहा, ये होपलेसनेस की तरफ बढ़ रहा है. तो दिल ज़ख्मी हो सकता है, लेकिन अगर दिल मर जाए तो भैया बहुत बड़ा मसला है ये. तो कसतिल कुलूब, दिल का मर जाना, कसवत का शिकार हो जाना, ये बहुत बड़ी बीमारी है. और बाज़ औक़ात अगर महर लग जाए तो वो बहुत ही और ख़तरनाक बीमारी है. तो उस वक्त तो शिफा की तवक्को भी नहीं की जा सकती, यानी शिफा भी काफ़ी यानी उसके लिए दुश्वार है अगर वो इस हद तक पहुंच जाए. तो इस वजह से यानी

मोहब्बत का जरिया बने। अगर कोई हमारे घर आए तो उसका इस्तकबाल करें, उसकी इज्जत करें, उसके आराम का ख्याल रखें और अपनी इस्तेआत के मुताबिक उसकी खिदमत करें। ये ना समझे कि ये माशरती रस्म है, ये एक अजीम सुन्नत है। सामने कलाम जरा सोचिए, अगर लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं, अगर वो सलाम में पहल करे, मुस्करा कर मिले, मुसाफा करे, अच्छी बात करे, सच बोले और मेहमान नवाजी करे, तो हमारे घरों, महलों, दफातर और माशरे का माहौल कितना खूबसूरत हो जाएगा। यही वो सुन्नतें हैं जिन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के माशरे को दुनिया का बेहतरीन माशरा बनाया था, और यही सुन्नतें आज भी दिलों को जोड़ सकती हैं। अल्लाह ताला हमें हुस्न अखलाक, सच्चाई, मोहब्बत और सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मा सलामा।

हमने मूसा को निशानियां अता की थीं, जो सरीह तौर पर दिखाई दे रही थीं। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब मूसा उनके यहां आए तो फिरौन ने यही कहा।

0: और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कानून हमें तहफ्फुज़ देता है और वज़ारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
4: FM 107, दिल से देसी।
5: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। तो दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। सामने किराम, आज हम आपके साथ जो दुआ शेयर करने वाले हैं, इस दुआ को हम 3 बड़े हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक तो दुआ का पहला हिस्सा है जिसमें अल्लाह की अजमत का तारुफ है, दूसरा हिस्सा अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और दुआ के तीसरे हिस्से में काफ़ी एक अहम तलब है, एक दरख्वास्त है, और इस दरख्वास्त के लिए जो मुकदमा है अल्लाह की अजमत का तारुफ, अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन, और इस दुआ को जिस तरह शुरू किया गया है तो ये इससे पता लगता है कि जो हाजत या ख़ास एक तलब के लिए ये दुआ पढ़ी जाती है उस हाजत के लिए ये दुआ काफ़ी अहम है। तो ज़रूर अगर इस तरह के हाजात आपके भी हैं तो आप ये दुआ ज़रूर पढ़िए। और ये कौन सी हाजत है, कौन सी हाजत की ख़ास एक दुआ है, ये आपको पता चलेगा। आप ज़रा सुनिए हमारे साथ दुआ के आखिरी जुमले तक, इंशाल्लाह सारी चीज़ें वाज़ह हो जाएंगी बिइज़्निल्लाह तआला। तो चलें दुआ शुरू करते हैं। इब्तिदाही में इस दुआ की, जैसे कि हमने पहले बताया, पहले हिस्से में अल्लाह की अज़मत का तारुफ और अल्लाह की रुबियत का ऐलान हो रहा है। اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم। اے اللہ, تو ساتوں آسمانوں کا رب ہے, زمین کا رب ہے اور عظیم ترین مخلوق عرش کا رب ہے, یعنی گویا کہ زبان حال یہ ہے کہ اللہ, میں اس ذات سے, میں تجھ سے اس ذات سے مانگ رہا ہوں جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے, یعنی جس سے مانگا جا رہا ہے وہ سب سے بڑا ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف جہاں پر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف اشارہ ہے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं। आइए तलहा अशरफ जमा के साथ सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान सिर्फ FM 107 पर।
2: रजब सन 9 हिजरी का वाकया है जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बनिस्बत मुशरिकीन अरब व यहूद के ज्यादा सख्त जंग जो रोमन एम्पायर की फौज बरसरे बेकार हुई, जिन्हें निस्फ दुनिया पर हुक्मरानियत का तुर्रे इम्तियाज हासिल था, जिसके मुसल्ह अफवाज ने हाल ही में सल्तनत ईरान को शिकस्त से दो चार किया था, जिनकी वसत माली कुत बदनी व अस्करी निज़ाम वगैरह को पेश नज़र रखकर मुसलमानों की हालत को देखा जाए तो मालूम होगा कि एक परेकाह का कोह से मुकाबला है। इलावा अजी अरब ईसाई कबाइल लखम जजाम आमिला कबीला गस्सान वगैरह भी मकाम मोता पर होने वाली शिकस्त फाश का बदलाव इंतकाम लेने के वास्ते बेचैन व बेताब उनके शाना बशाना शरीक थे। उसके बिलमुकाबिल मुसलमानों की जबों हाली का कुछ यूं हाल था जिसकी तफसील से मुतालिक मशहूर मुअर्रिख इब्न इसहाक रहमहुल्लाह लिखते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जानिसार सहाबा रिदवानुल्लाह अलैहि अजमईन को रोमियों के खिलाफ जंग की तैयारी का हुक्म दिया। ये उस वक्त की बात है जब लोग सख्त गर्मी कहत साली के शिकार थे, जबकि मदीना के नखलिस्तान में खजूरें पक रही थीं, जिसका शिद्दत से इंतजार रहता था। इस पर उगने वाली खजूरों और उनके जेरे साया बैठने को हर चीज से महबूब जाना जाता था। नेज़ इन पेश आमदा हालत में खुद को धकेलना तबीयत पर शाक और गिरा मालूम होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा ये थी कि जिस सिमत से जिहाद पर रवानगी का कस्त फरमाते उसको आम लोगों पर मख्फी रखते और उसके खिलाफ जिहद को तौरीतन बयान फरमाते थे, मगर ग़ज़वा तबूक वो वाहिद मारका था कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाफत की दूरी, हालात की सख्ती और फरीक मुखालिफ की कसरत तादाद के सबब लोगों को सराहतन सिमत सफर से आगाह किया ताकि लोग हसब हालत ज़ाद राह तैयार कर लें। इस मारके में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने जानसारी उख़ुव्वत इस्लामी के उन गिरां कदर जज्बात का इजहार किया के अवराक की तारीख उसकी नज़ीर पेश करने से आजिज़ हैं। नेज़ इसमें क़ियामत तक के इंसानों के वास्ते मुख्तलिफ हैसियतों से तरबियती पहलू नुमाया होते हैं, जिसको मशाल राह बनाते हुए इंसान दीनी व दुनियावी हर एतबार से

काम की कोशिश न करे, यहां का पानी इस्तेमाल में न लाए, तो पानी इस्तेमाल करके आटा वगैरह गूंधा गया हो उसे जानवर के सामने डाल दिया जाए। रिवायत में आता है कि सफर के दौरान भूख की शिद्दत का यह आलम था कि लोग अपने सवारी के जानवर ज़बह करके खाने पर मजबूर थे। जब ये सारा मंजर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा तो दरबार नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होकर अर्ज किया कि इस अमल से असहाब को रोक दीजिए, इस तरह तो सफर से वापसी में शदीद दिक्कत पेश आएगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसके अलावा दूसरी राह क्या है? इस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़ेरकी व दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए मशवरा दिया कि सबके पास मौजूद ज़ादे राह जमा फरमा लें और आप उस पर बरकत की दुआ कीजिए, उम्मीद है कि अल्लाह की तरफ से राह हमवार हो जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मशवरा पसंद आया, आपने ऐलान कर दिया। तमाम सहाबा ने अपने पास जो थोड़ा बहुत ज़्यादा राह महफूज था सब एक चमड़े के दस्तरखान पर जमा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर बरकत की दुआ की और फरमाया, खुदू फी औयतिकुम, सब अपने तोशादान को मुकम्मल भर लो। सब ने तोशादान को भरा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अब तुम लोग खाओ। रावी कहते हैं कि सब ने खूब सैर होकर खाया, हत्ता कि बहुत सारा खाना अब भी बाकी रहा। मकामी तबूक पर दौरान क़ियाम मुख्तलिफ कबाइल के ज़ुआमा यहूद ने खिदमत नबवी में हाजिर होकर जिजिया कबूल करने की दरख्वास्त पेश की, जिनमें एला मकाम के सरबरा यूहन्ना बिन रोबा का नाम सर फहरिस्त मिलता है। आपने उन तमाम की दरख्वास्त को सुलह अमन पसंदी के क़ियाम की खातिर कबूल किया। नीज़ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को दौमतुल जंदल के हाकिम मुकैदर नसरानी की गिरफ्तारी का हुक्म दिया और पेशगोई फरमाई कि वह जानवर का शिकार करते हुए शिकार होगा। चुनांचे यूं ही हुआ। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी तलाश में रवाना हुए तो दूसरी तरफ उकैदर फलकबोस महल की छत पर अहलिया समेत शहर के अतराफ व अकनाफ का नज़ारा करने में मसरूफ था कि अचानक उसकी निगाह नील गाय पर पड़ी। शिकार की मोहब्बत व फरिश्तगी का यह आलम था कि खुद पर काबू न पा सका और खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ गिरफ्तार हुआ। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए जाने के बाद अदायगी जिजिया पर मुसालहत समेत लौटा। जब उकैदर नसरानी आपकी खिदमत में पेश किया गया तो बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु अजमईन ने उसके कबा यानी वो लिबास जो कपड़ों के ऊपर पहना जाता है उसकी हुस्न रानाई व मुलामत को देखा तो अज़राहे ताज्जुब उसको छूने लगे। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को ख़िताब करके पूरी उम्मत के रुख को दुरुस्त किया और फरमाया कि तुम इस पर हैरत व फरिश्तगी में मुब्तला हो, बखुदा जन्नत में साद इब्न मुआज को पेश किया जाने वाला रुमाल इससे भी कई गुना ज़्यादा खूबसूरत व मुलायम है। समीन और अब हम एक छोटे से वक्फे के बाद जिक्र करेंगे उन तीन सहाबियों का वाकया जो गज़वाए तबूक से पीछे रह गए थे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
3: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए तो लॉक हो जाओ FM107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एस प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
4: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dopehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi. Dil se, desi.
5: दोस्तों, डिसेबिलिटी वाली पार्किंग स्पेसेस का इस्तेमाल ट्रैफिक का वायोलेशन और बेअदबी है। ट्रैफिक के कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना अमन और दूसरों के हुकूक की हिफाजत करता है। याद रखिए, डिसेबिलिटी वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड पार्किंग स्पेसेस का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक का ऑफेंस है और उनके हुकूक की खिलाफ वर्जी है। इन स्पेसेस का डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो लोग फिजिकल डिसेबिलिटी से मुतासिर हैं, उन्हें आसानी से अपने जरूरी कामों को अंजाम देने का मौका मिले। ये पार्किंग स्पेसेस उन्हें कन्वीनियंस और सहूलत देने के लिए रिजर्व्ड होती हैं और उनका गलत इस्तेमाल उनके लिए अननेसेसरी मुश्किलात का सबब बन सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतरीन और अमन पसंद ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें, ताकि सबको बराबर के हुकूक मिल सकें और किसी को भी अपने हक से महरूम ना होना पड़े। FM 107 इस बात की ताकीद करता है कि मुआशरे में हर एक का बराबरी से ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
6: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए, प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।
4: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
5: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, फाइबर दिल की हिफाजत कैसे करता है? आज हम बात करेंगे कि गजाई फाइबर सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं बल्कि दिल की सेहत के लिए भी बेहद अहम है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि खास तौर पर जो सॉल्युबल फाइबर हैं या हल पजीर फाइबर हैं वो ब्लड में नुकसान देह कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मकदार कम करने में मदद देते हैं। जबकि कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो हमारी जो शरियाने हैं उनमें चिकनाई जमा होने का खतरा भी कम हो जाता है जिससे हार्ट अटैक और फालिज के इम्कान में कमी आ सकती है। फाइबर के दिल की सेहत पर बेशुमार फवायद हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर को बेहतर रखने में मददगार होता है, इसी तरह ब्लड में शुगर को जो है बैलेंस में रखने में मदद देता है और सेहतमंद वजन बरकरार रखने में आसानी हो जाती है। इन्फ्लेमेशन या सोजिश में कमी होती है और दिल की बीमारियों से जो कि मुंसलिक हो सकती है। किसी भी एडल्ट को रोजाना तकरीबन 20 से 35 ग्राम फाइबर हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये मकदार उम्र और ये कि क्या जिन्स है और सेहत की जरूरियात के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है। फाइबर बढ़ाने के लिए कुछ बहुत ही आसान सी आदत जो है वो हमें अपनानी होगी, जैसे कि दिन का आगाज ओट्स या दलिये से कीजिए, सफ़ेद चावल के बजाय ब्राउन चावल आप इस्तेमाल कीजिए, फलों का जूस पीने के बजाय पूरा फल आप खाइए, हर खाने में सब्जी ज़रूर शामिल कीजिए, हफ्ते में कई बार दालें और जो फलियां हैं वो खाइए। याद रखें कि अच्छी सेहत के लिए किसी एक सुपर फूड की नहीं बल्कि एक मतवाजन ग़िज़ा और मुस्तकिल अच्छी आदत की ज़रूरत होती है। ग़िज़ाई फाइबर इन्हीं अच्छी आदत में से एक है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर, दिल को मजबूत और ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने में अहम किरदार अदा करता है। तो इसी तरह से अपना और अपने प्यारों की सेहत का खास ख्याल रखिए।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: स्कैम अलर्ट। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों। ये एपिसोड है फ्रॉड अवेयरनेस का, जहां पर नए जमाने के नए फ्रॉड से आपका सामना होता है। वेल, आज हम जिस फ्रॉड के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत ही ज्यादा आसान फ्रॉड है और इतना आसान है कि कोई भी शख्स इसमें फंस जाता है। दिस फ्रॉड इज कॉल्ड फेक गिव अवे स्कैम या फ्रॉड। आजकल बच्चों को टारगेट करने के लिए ये एक बहुत ही कॉमन ऑनलाइन धोखा है। स्कैमर्स सोशल मीडिया, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, यूट्यूब और मैसेजिंग एप्स पर बहुत अट्रैक्टिव एड्स बनाते हैं। वो फ्री स्मार्टफोन्स, गेमिंग कंसोल्स, गिफ्ट कार्ड्स या फ्री सब्सक्रिप्शंस जैसे बड़े रिवॉर्ड देने का झूठा वादा करते हैं। इन इनामों यानी कि प्राइजेस को लेने के लिए बच्चों से किसी लिंक पर क्लिक करने, सर्वे पूरा करने, ऐप को डाउनलोड करने या आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि नाम, ईमेल्स, फोन नंबर या पासवर्ड ये डालने को कहा जाता है। कुछ फेक वेबसाइट्स तो बिल्कुल ऑफिशियल कंपनी वेबसाइट्स जैसी ही दिखती हैं, जिससे असली और नकली का फर्क पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है। स्कैमर्स का असली मकसद आपकी पर्सनल इन्फो चुराना, ऑनलाइन अकाउंट को हैक करना या डिवाइस में वायरस यानी कि हार्मफुल सॉफ्टवेयर डालना होता है। कभी कभी वो प्राइस देने से पहले एक छोटी सी प्रोसेसिंग फी भी मांगते हैं। जैसे ही आप पैसे देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, स्कैमर्स गायब हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चे अनजाने में अपने पेरेंट्स की बैंक डिटेल्स भी शेयर कर देते हैं, जिससे बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है। इससे ना सिर्फ पैसे डूबते हैं बल्कि गेमिंग अकाउंट्स, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स और पर्सनल फोटोज का एक्सेस भी खोना पड़ सकता है। लेकिन इस तरह के स्कैम से बचने का सॉल्यूशन भी है। बड़े गौर से सुनिएगा इन सॉल्यूशंस को, क्योंकि कई बार अगर हमें सॉल्यूशन पता हो, कई बार हमें अगर सिर्फ अवेयरनेस हो, तो हम फ्रॉड से या स्कैम से बच सकते हैं। कैसे सेफ रहें इन स्कैम से? सबसे पहला जो ऑप्शन आपको हर स्कैम में देखना चाहिए या आप अपना सकते हैं, वो है टू गुड टू बी ट्रू। अगर कोई ऑफर सच होने के लिहाज से बहुत ज्यादा अच्छी लगे, तो समझ लीजिए कि वो एक फ्रॉड है, वो एक स्कैम है। कोई ऐसी चीज यानी कि कोई 1000 रियाल की चीज अगर आपको 10 रियाल, 20 रियाल, 50 या 100 रियाल में नहीं मिल रही है, तो ये है साइन टू गुड टू बी ट्रू का। कोई भी ऑफर ऐसा जो आपको जरूरत से ज्यादा लुभावना लगे, उस पर शक जरूर करें। दूसरा है नो लिंक्स और इन्फो। किसी भी प्राइस के लालच में सस्पिशियस लिंक्स पर क्लिक बिल्कुल ना करें और ना ही अपनी पर्सनल डिटेल्स उन वेबसाइट्स पर या सॉफ्टवेयर में डालें जो आपको लग रही हो कि हो सकता है ये फ्रॉड है। जरा भी शक हो तो आप कोई भी डिटेल्स शेयर ना करें। सबसे पहले अपने पेरेंट्स से पूछें। किसी भी कॉम्पिटिशन या गिव अवे में हिस्सा लेने से पहले पेरेंट्स, टीचर या किसी बड़ों से जरूर पूछें, उनसे राय लें। ट्रस्ट वेरीफाइड पेजेस। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और वेरीफाइड सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ही भरोसा करें और कभी भी अपना पासवर्ड शेयर ना करें। किसी भी इनाम के बदले अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर बिल्कुल ना करें। यूज

0: टेक सिक्योरिटी। अपने डिवाइस में एंटीवायरस इंस्टॉल करें, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करें और सस्पिशियस पोस्ट को जरूर रिपोर्ट करें। इस तरह से आप नए जमाने के नए स्कैम से बच सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में एक बार फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए फ्रॉड से बचते हुए। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: स्कैम अलर्ट।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं शो जिसका नाम है जूनियर जनाब, जहां हम आपकी मुलाकात कराते हैं उन छोटे से उम्र वाले सितारों से जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े हीरोइक काम किए हैं। भाई आज हम मिलाने जा रहे हैं आपको एक ऐसी लड़की से जो सिर्फ मेहनती नहीं बल्कि एक इंस्पायरेशन भी है, वो भी सबके लिए। भाई नाम है दीना अली, एक वाइब्रेंट एम्बिशियस ए लेवल स्टूडेंट जो पाकिस्तान से कतर आई सिर्फ पिछले साल। जरा सोचिए, नया मुल्क, नए लोग और सब कुछ ऑनलाइन, लेकिन दीना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। भाई उसने कतर के कल्चर को इतनी खूबसूरती से अडॉप्ट किया कि लगता ही नहीं कि वो एक साल पहले यहाँ पर आई थी। भाई फिटनेस और हेल्थ उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उनको देखकर भी मुझे पता चल रहा है भाई। और हाँ, वो कहती हैं एक्टिव रहना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं माइंड के लिए भी जरूरी है। और हाँ, लड़की है तो भाई मेकअप, ब्यूटी और स्किन केयर का भी उनको शौक होगा ही होगा ना, यानी कि एक परफेक्ट बैलेंस ऑफ ब्रेन एंड ब्यूटी। और बच्चा पार्टी, सबसे इंस्पायरिंग बात पता है क्या है? दीना अपनी स्टडीज के साथ साथ एक बरिस्ता कोर्स भी कर रही हैं ताकि वो अपनी इंडिपेंडेंस का ख्वाब पूरा कर सकें। क्या बात है भाई, मेरी तरफ से तो इनको क्लैपिंग। यानी स्कूल भी, फिटनेस भी, ब्यूटी भी और काम भी सीख रही हैं। वाह भाई दीना, ट्रूली यू आर अ वेरी बिग अचीवर। और मैं कहूंगी इतनी छोटी सी उम्र में तो एक बिग अचीवमेंट ही होती है। तो चलिए, इससे पहले कि मैं इनके कसीदे खींचूं, मैं चाहती हूं कि कुछ बातें मैं इनसे डायरेक्टली पूछूं। यानी कि मैं चाहती हूं कि उनके गोल्स और जज्बात के बारे में डायरेक्टली उनसे बात की जाए और थोड़ी थोड़ी इनसे टिप्स वगैरह भी ले लेंगे ब्यूटी की। क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दीना, कैसी हैं?
3: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि यहाँ आकर कैसा फील हो रहा है?
3: यहाँ आकर आई वुड से इट्स नॉट द सेम,
2: इट्स नॉट द सेम।
3: यहाँ पे फ्रेंड्स नहीं है इतने और इतना, मतलब मिलना मुलाना और फ्रैंकनेस नहीं है दोस्तों में।
2: अच्छा भाई, वो तो टाइम लगता है ना भाई,
3: टाइम लगता है, काफी टाइम
2: लगता है।
3: साल हो गए, इतना भी टाइम नहीं लगता।
2: लगता भाई, डिपेंड करता है ना। देखिए अभी जैसे मैं आपसे मिली तो मेरी तो आपसे दोस्ती होगी ना, अच्छी अच्छी वाली। तो भाई देखिए, हम हमसे ट्रिक सीख लें इस बात की। अच्छा देखिए, मैं चाहूंगी कि, मैंने बहुत कुछ आपके बारे में बता दिया ऑलरेडी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप खुद भी लिसनर्स को बताएं, जो बच्चे आपको सुन रहे हैं, जो बड़े आपको सुन रहे हैं, उनको बताएं कि दीना कौन है, दीना की हॉबीज क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या एज है, अपना थोड़ा सा आप बैकग्राउंड बताएं ना।
3: मैं हूँ कराची से, आई एम 18 इयर्स ओल्ड एंड करंटली आई एम स्टडीइंग ए लेवल्स। सोशल साइंसेज मेरे सब्जेक्ट्स हैं।
2: अच्छा, ये बस इसे आप दैट्स इट कह रही हैं
3: मतलब?
2: अच्छा माशाल्लाह, मैं एक बात बताऊं दीना के बारे में, मुझे दीना की पर्सनालिटी वैसे ही बहुत अच्छी लगी और एंड शी इज माशाल्लाह वेरी प्रिटी। जितना मैंने कहा ना स्किन केयर का, तो वो मुझे नजर आ रहा है भाई, इनसे मुझे टिप्स लेनी पड़ेंगी। हाँ मुझे छोटी है लेकिन मुझे टिप्स इनसे लेनी पड़ेंगी, मैं मानती हूँ। अच्छा भाई दीना, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि पहले पहले ये बताएं, कतर आकर आपको कैसा लग रहा है?
3: I mean, it's an experience, it's quite different. मतलब पाकिस्तान जैसा तो बिल्कुल नहीं है, but I do miss Pakistan though. लेकिन यहाँ पे the good thing is कि यहाँ पे independence है. यहाँ पे I can go out whenever I want, whoever I want. I can go out alone, आराम से जितनी भी लेट आना है, ये पाकिस्तान में नहीं होता.
2: अच्छा ये बताएं कि अच्छा ये तो आपने मुझे बता दिया, सबसे सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस सिक्योरिटी, वो तो हम कहते हैं भाई, ये हम दो टोक बोलते हैं, जो हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप कतर के हैं ना, हम तो ये बोलते हैं भाई ये चीज हमें दुनिया के किसी कोने में ना मिली। अच्छा ये बताएं कि मैंने जब आपके थोड़ा बहुत आपकी डिटेल ली थी तो मुझे पता चला था कि आप ऑनलाइन क्लासेस।
3: जी मैं ऑनलाइन करती हूं।
2: ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो ये बताएं कि ऑनलाइन क्लासेस आपको जरा मुश्किल लगती हैं या मजेदार लगती हैं? बोरिंग,
3: बहुत बोरिंग है, बहुत मुश्किल से होती है। आई थिंक ऑनलाइन स्टडीज इज नॉट अ थिंग टू डू।
2: अच्छा,
3: पढ़ाई ऑनलाइन नहीं होती, होने वाली चीज है ही नहीं ऑनलाइन,
2: मजबूरी में।
3: हाँ, मजबूरी में, अनलेस आपकी बहुत ही कोई मजबूरी है तब करो आप, वरना नहीं, वरना ना करो।
2: अच्छा, इसका ये जो ऑनलाइन मसला चल रहा है, ये कोई रीजन है इसका या क्या? एडमिशन्स का रीजन है क्या?
3: एडमिशन्स का रीजन है, आई वुड से कि स्कूल्स यहाँ पे मुझे इतने अपील नहीं कर रहे थे, और मेरी जो टीचर्स वगैरह हैं वो मुझे वही बीकन हाउस पाकिस्तान में ही
2: वेरी नोन।
3: जी
2: ओके ओके,
3: तो मैं वहीं से ही पढ़ती आ रही हूँ, मैंने कहा इधर ही कंटिन्यू करता हूँ।
2: सही, मतलब आपको जो आपको ये लगा कि मेरा कंफर्ट जोन एज पर स्टडीज में ये है। अच्छा ये बताएं कि कतर के कल्चर में ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है अभी तक? कौन सी चीज है? मुझे जैसे मैं अपने बारे में बोलूं तो भाई मुझे यहाँ पर ना ये चीज बड़ी अच्छी लगती है कि लेडीज जहाँ आ जाती है ना वहाँ दुनिया टस से मतलब पूरी पूरी क्यूज हटा देंगे, लेडीज के लिए अलग सेक्शन होगा।
3: नहीं, आई थिंक वो पाकिस्तान में भी होता है।
2: होता है
3: पाकिस्तान में भी होता है,
2: मुझे
3: पाकिस्तान में ज्यादा होता है।
2: अच्छा,
3: पाकिस्तान में आई वुड से ज्यादा होता है।
2: चलें ठीक है, मुझे यहाँ पे ज्यादा लगता है, सबका अपना अपना तजुर्बा है ना, आपका ज्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान का। चलें, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको जो फिटनेस का शौक है, ये तो एज इस एज में तो वैसे ही माशाल्लाह सब फिट रहते हैं भाई, ऐसा कौन सा जोश चढ़ गया फिटनेस का भाई?
3: नहीं कभी, मैं पहले बहुत ही पतली होती थी।
2: अच्छा,
3: बिल्कुल ही
2: अंडरवेट।
3: हाँ, अंडरवेट। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया प्रोटीन डाइट।
2: सही सही सही।
3: तो आई यूज टू ड्रिंक मिल्कशेक्स कच्चे अंडों के साथ। आई नो दैट साउंड्स डिस्गस्टिंग।
2: नो, जिनको वेट गेन करना होता है ना,
3: लेकिन आई मीन ऐसा कुछ टेस्ट नहीं आता उसका इफ यू मिक्स इट विद अ फ्यू डिफरेंट थिंग्स। सो या, तो उससे आई डिड गेन अ फ्यू केजीज, 5 किलो ऑलमोस्ट। तो या, दैट रियली हेल्प मी विद माय बल्किंग।
2: अच्छा मजे की बात है, मैंने हमेशा आज तक लोगों का वेट लॉस का मिशन सुना है, दिस इज लिटरली फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समबडी फॉर वेट गेन, लिटरली लिटरली वेट गेन के लिए। एंड इट इज वेरी गुड कि जो अंडर वेट हो वो भी अपने ऊपर वर्कआउट करे। सिर्फ फिटनेस का जैसे आप नाम सुनते हैं ना,
3: जी, जी.
2: तो पहली क्लिक ये होती है वेट लॉस। लेकिन ये जो आपने बात कही ना आज इसने मेरा माइंड सेट फ्लिप किया। देखें ये बात होती है, छोटे भी कभी कभी माइंड सेट चेंज कर देते हैं।
3: नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा से ये था कि मेरे बाजू इतने पतले हैं बाकियों के बाजू इतने, तो बस हड्डियां लगती थी।
2: माशाल्लाह यू फिट एंड फाइन।
3: अभी अब हो गई
2: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कभी आपने ये डॉक्टर्स चेकअप वगैरह, आयरन की कमी तो नहीं है कुछ?
3: आयरन की कमी है।
2: तो फिर हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं बेटा, हाथ में लाओ हाथ में लाओ। हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।
0: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अच्छा ये बताएं कि आपका दिन का ना, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, सो कहीं ना कहीं यू आर फ्री देन अदर किड्स, तो ये बताएं कि आपके दिन का सबसे एनर्जेटिक हिस्सा कौन सा होता है?
3: सबसे एनर्जेटिक आई वुड से 4-5 बजे के बाद।
2: 4-5 बजे के बाद

0: ओके अच्छा ये बताइएगा कि मुझे ये चीज़ बड़ी इम्प्रेसिव लगी. मैं आउट ऑफ इंस्पायर होकर आपसे पूछ रही हूँ कि अगर किसी बच्चे ने, बहुत सारे बच्चे होते हैं कि आजकल तो ये शिकायत चल रही है हमारे बच्चे कुछ खाते नहीं, बहुत अंडरवेट है, बहुत अंडरवेट है. तो अगर कोई बच्चा अंडरवेट है
1: जी,
0: तो जैसे आपको पता है आप खुद फिटनेस की शौकीन है
1: जी जी,
0: तो आपको क्या लगता है उसको किस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए?
1: आई थिंक प्रोटीन में आप ज्यादा तवज्जो दें. आप अंडे खाएं, कच्चे अंडे
0: कच्चे अंडे
1: कच्चे अंडे
0: कच्चे अंडे सब.
1: अगर आपने जल्दी लाइक यू नो वेट पुट ऑन करना है तो कच्चे अंडे आई वुड से. एंड लाइक प्रोटीन्स में मीट, रेड मीट स्पेसिफिकली वो खाएं आप.
0: ओके ओके.
1: एंड दालें वगैरह उनमें भी काफी प्रोटीन होते हैं.
0: सही. लेकिन भाई एक दफा जो भी कच्चे अंडों की हमने बात की है वो एक दफा देख लिया, क्योंकि कुछ बच्चों को वैसे ही अंडे से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कच्चे अंडे से भी होती है. अंडे से नहीं होगी, कच्चे अंडे से होगी. तो एक दफा ये देख लिया कि आपको एलर्जी ना हो. अच्छा ये बताइएगा कि स्पोर्ट्स वगैरह पसंद है आपको?
1: स्पोर्ट्स नहीं, अब नहीं,
0: नहीं,
1: अब नहीं रहा शौक.
0: क्यों, वेट गेन कर लिया इसलिए?
1: नहीं इतना भी नहीं किया भाई. अब वो स्कूल भी ऑनलाइन है.
0: अच्छा
1: इधर उधर कोई,
0: मुझे ऐसा लगता है वो लेजीनेस आ जाती है थोड़ी सी. स्कूल का
1: लेजीनेस तो नहीं है मुझे, लेकिन बस वो
0: छूट गया
1: है ना, दोस्त नहीं है जिनके साथ खेलूं, पता नहीं है.
0: अरे भाई ये हमारे दुख है, ये छोटे छोटे. ये देखिए आप लोग जो कहते समझते हैं ना इस छोटी सी दुनिया के कोई बड़े दुख नहीं होते, ये बहुत बड़े बड़े दुख हैं कि मेरे दोस्त नहीं है,
1: दोस्त नहीं है. मुझे घर जाना है, मेरे जो भी घर.
0: मुझे ये बात समझ में आ रही है. अच्छा ये बताएं जब आप बिजी होती हैं जो स्टडीज में, तब फिटनेस रूटीन कैसे मेंटेन करती हैं?
1: जब मैं ज्यादा बिजी होती हूँ तो आई यूजुअली स्किप इट. वो अच्छी बात नहीं है. आई एम थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट विद इट दीस डेज, लेकिन या कोशिश करनी पड़ती
0: है. अच्छा ये ऐसा होता है ना जब आप खुद, ये भी एक बहुत मैं कहूँगी मैं क्या कहूँ से कि ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबल बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है कि आप खुद खुद को पिकअप कर लेते हो. जब आपको पता चलता है ना यू आर गोइंग डाउन, अब आपको पता चलेगा आपकी फिटनेस अब डाउन हो रही है, तो बजाय इसके कि अम्मा अब्बा के कंधे के ऊपर आप आओ और आप बीमार पड़े रहो और आप लेजी पड़े रहो, या आप, जाहिर बात है आयरन की कमी, अंडर वेट हो जाओ, तो आपकी बॉडी बहुत ज्यादा शरीर डैमेज हो जाती है.
1: या
0: तो बजाय इसके कि आप ये मम्मी डैडी बच्चा बने रहो कि मम्मा कर लेंगी, पापा कर लेंगे, यू मोटिवेट योर ओन सेल्फ. दैट्स वेरी गुड. अच्छा भाई एज अ ब्यूटी क्वीन माशाल्लाह से, तो आपकी ब्यूटी टिप्स की तरफ आते हैं, तो ये बताएं मेकअप और स्किन केयर में आपको सबसे ज्यादा क्या चीज, किस चीज का शौक है?
1: आई वुडन्ट से मुझे मेकअप का इतना शौक है. मेकअप तो मैंने यहाँ पे आके करना शुरू किया, मुझे बिल्कुल नहीं आता था. मैंने अपनी दोस्त से सीखा है. मुझे मोस्टली स्किन केयर का है. देखिए अगर आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी तो आप मेकअप कैसे करेंगे?
0: हाँ
1: मतलब आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए. आपकी अगर स्किन अच्छी होगी तो मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको.
0: सही सही.
1: Yeah.
0: और ये स्किन को दुरुस्त कैसे किया? मैं, मुझे तो बता दो भाई, मुझे टिप्स दे दो प्लीज, आई नीड इट.
1: डिपेंड करता है आपकी स्किन टाइप पे, आपके स्किन प्रॉब्लम्स पे. या
0: चलिए भी इसको स्किप कर जाते हैं. ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े प्रॉब्लम मेरे लिए, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम,
1: बहुत डिटेल में चला जाएगा.
0: अच्छा मुझे एक बात बताएं ऑन अ सीरियस नोट, कि आपके लिहाज से ब्यूटी का क्या मतलब है? अगर मैं एक मतलब एक सेंटेंस में आंसर करूं, व्हाट इज ब्यूटी फॉर यू?
1: व्हाट इज ब्यूटी फॉर मी? ब्यूटी फॉर मी वुड बी नेचुरल ब्यूटी, लाइक विदाउट एनी मेकअप एंड ऑल. मतलब आपकी क्लियर स्किन हो और मतलब या क्लियर स्किन ब्यूटी आई वुड से.
0: सही. अच्छा ये बताइएगा अगर कोई छोटी सी एज वाला लिसनर आपको सुन रहा हो इस वक्त, तो उनको आपको क्या लगता है क्या स्टार्ट करना चाहिए? बड़े हो रहे थे ना बच्चे, थोड़े से वो फेस के पिंपल्स आना शुरू होते हैं, ये वो, तो कोई ऐसी रूटीन है जो आप कहेंगी कि नहीं भाई ये चीज मैंने फॉलो की ना तो मुझे बहुत फर्क पड़ा, तो आप भी करके देखें.
1: आई वुड से कि रैंडम चीजें अपने मुंह पे ना थोपे प्लीज.
0: वेरी गुड,
1: रैंडम चीजें. आई मीन आपकी स्किन, यू हैव बेबी स्किन, हर चीज थोपने की नहीं होती मुंह पे.
0: बिल्कुल.
1: और योर इन एज के आपके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं तो एक्नी आती है, इट्स टोटली नॉर्मल. तो यू कैन जस्ट यूज सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश, दैट वर्क्स बेस्ट. और यू कैन पेयर इट विद अ सैलिसिलिक एसिड, आई थिंक वो सीरम. या
0: ओके
1: those two work wonders. लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है, बस आप मुंह सैलिसिलिक एसिड से धोना
0: है, बस दैट्स सही सही सही सही. अच्छा, विदाउट ब्रांडिंग, ब्रांड का नेम नहीं लेना हमने किसी, विदाउट ब्रांडिंग आप मुझे बताएं, अगर मैं आपके पर्स में अभी झांक कर देखूं तो मुझे मेकअप का कौन सा सामान मिलेगा ही मिलेगा?
1: मैं पर्स कैरी नहीं करती.
0: लो जी, ये मेरी बहन, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी निकली है, देखिए मेरे पास यही है, मेरा मोबाइल, ये

0: माशाल्लाह से ये बिल्कुल सच चल रही है, बहुत कामयाब होगी बेटा, मेकअप के पीछे नहीं भाग रही इंशाल्लाह इंशाल्लाह. अच्छा ये बताएं कि मेकअप करते हुए आपको सबसे ज्यादा मजेदार स्टेप, अगर मेकअप करें जैसे कभी होता है कि पार्टी में जाना है कहीं जाना, तो सबसे मजे वाला स्टेप कौन सा लगता है?
1: आई वुड से सारे ही पसंद है.

0: मुझे कुछ नहीं सिखाओ, मुझे बस आंखें मैं फिदा हो जाती हूं।
1: आई मेकअप करना आता है मुझे, बेस वेस बिल्कुल लगानी नहीं आती, तो मैं लगाती ही नहीं हूँ बेस।
0: क्या आपको मेरी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा
1: है? नहीं नहीं, आपका मेकअप अच्छा लगता है।
0: नहीं नहीं भाई, मुझे मुझे सिर्फ आई मेकअप करना आता है। मैंने अपने ऊपर
1: मुझे भी सिर्फ आई मेकअप करना
0: चलो एक जैसे चल रहा है।
1: अच्छा, मुझे आईलाइनर लगाना भी नहीं आता, सही है, मैं स्टैम्प से लगवाती हूँ।
0: बेटा बहुत बहुत देखें, अभी गिनना शुरू करूंगी, 20-25 साल तो हो गए। 20-25 साल तो हो गए, अभी आपका स्टेप अभी बाकी, हमें 20-25 साल लगे, आप अभी रास्ते में चलें भाई। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं, आपसे बात करते हैं। तो बरिस्ता, और तो ये मुझे इसका कुछ मुझे पता है वैसे, लेकिन मैं चाहूंगी आप अपने पास से लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दें कि ये क्या कोर्स है और ये क्या इंडिपेंडेंस का चक्कर है। हम कहते हैं ना बच्चे, अच्छा भाई आजकल के बच्चे बड़े इंडिपेंडेंट हो गए हैं।
1: जी जी, मैं कोशिश कर रही हूँ।
0: होना चाहिए, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बिलीव होना चाहिए।
1: अच्छा, तो मेरी जो मदर है, शी इज अ वर्किंग वुमन, माशाल्लाह से, शी इज माय इंस्पिरेशन।
0: ओके,
1: तो obviously she's a working woman, तो
0: भाई इंडिपेंडेंट अम्मा के बच्चे हमेशा माशाल्लाह कॉन्फिडेंट निकलते हैं, रिस्पॉन्सिबल, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये है।
1: एंड आई एम द ओल्डेस्ट, सो मेरे ऊपर और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
0: ये जो दुख है ना सबसे बड़ा होने का,
1: बहुत बड़ा दुख है ये,
0: इसको हम वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक बात बताऊं, खास तौर पे आई बिलीव कि जो बच्चे, खासतौर पर जो बच्चियाँ सबसे बड़ी होती हैं ना घर में, क्योंकि मैं एक ऐसे घर से बिलोंग करती हूँ, मेरी सबसे बड़ा बच्चा हमारे घर में हमारी मेरी बहन थी, एंड शी इज द बैकबोन ऑफ आवर होम। तो जो दोज पीपल आर वेरी लकी जिनकी पहला जो बच्चा होता है ना वो बेटी होती है।
1: जी जी,
0: दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल, वेरी सेंसिबल। तो हाँ भाई, हम आपके बरिस्ता के बारे में बात कर रहे थे, कसीदे हम बाद में करेंगे।
1: जी जी, तो आई वाज लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स टू

0: वगैरह में दिखाते हैं फटाफट हो गया,
1: हो गया।
0: अरे
1: नहीं
0: भाई
1: होता, नहीं होता।
0: करने बैठो तो चारों तबक रोशन हो जाते हैं कि ये कितनी मेहनत का काम है। अच्छा ये बताएं कि आगे चलकर कभी कुछ सोचा है कि भाई एक काम मैंने सीखा है तो इसको और आगे लेकर जाऊंगी, कभी कोई कॉफी शॉप खोलने का, ऐसा कुछ कुछ दिमाग में आया?
1: नहीं
0: नहीं अभी तक नहीं, नहीं।
1: कुछ बचपन में था कि ओ कॉफी शॉप करनी है, कुछ करेंगे, लेकिन अब नहीं।
0: अच्छा ये बताएं कि बड़े होकर क्या बनने का शौक है?
1: बड़े होकर अभी तक मैंने सोचा नहीं,
0: अभी सोचा नहीं है।
1: या आई हैवंट फिगर्ड इट आउट यट।
0: जल्दी सोच लो।
1: हाँ नहीं अब टाइम टाइम लिमिटेड है
0: बेटा, जल्दी सोच, टाइम लिमिटेड है। मैं बता रही हूँ, बता रही हूँ, लिमिटेड एडिशन चल रहा है।
1: आई वुड से कि बिजनेस साइकोलॉजी या फिर फाइनेंस में कुछ।
0: आई लाइक द वर्ड साइकोलॉजी क्योंकि मैंने खुद इसके अंदर किया हुआ तो मुझे ना आई लाइक इट, आई लाइक
1: साइकोलॉजी इज फन, आई लाइक इट,
0: इट्स वेरी गुड। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक।
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
0: अच्छा ये बताएं कि अगर जो हमारे जितने छोटे लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, जाहिर बात है बच्चे पूछेंगे भाई इन्होंने किया तो हम भी कुछ करने की कोशिश करें। जितने लिसनर्स आपको सुन रहे हैं, ये जो बरिस्ता का बता सकते हैं कि बरिस्ता का कोर्स करने से आपने क्या सीखा और कैसे कहाँ से आपको, एक होता ना आप कहीं भी एप्लीकेशन देते हो या कहीं भी कुछ
1: मतलब किधर काम आए?
0: हाँ
1: आपकी आई वुड से कि
0: आपको कैसे पता चला था कि बरिस्ता का कहीं कोर्स हो रहा है या कुछ कुछ न्यूज़पेपर से देखा था, कहीं सर्च किया था?
1: ये मैं आई वाज सर्चिंग फॉर शॉर्ट कोर्सेज कि मैं अपनी सीवी बनाऊं, कुछ करूं।

0: सही.
1: तो आई फाउंड दिस कोर्स, तो आई वाज लाइक ये करके देख लेते हैं, बिकॉज आई ट्राइड अप्लाइंग फॉर जॉब्स. तो दे सेड के यू हैव टू हैव अ सर्टिफिकेशन.
0: ओह, सर्टिफिकेशन.
1: तो आई वाज लाइक ये मेरे पास सामने आ गया, तो लेट्स डू दिस. तो आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड. And it's not easy at all. It's not.
0: बेटा, nothing is easy at all.
1: जो लगता है आसान, जो आसान बहुत लगता है.
0: देखें, ये जो है ना, ये हमारी साइकोलॉजी है. मैंने कहा ना, मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद है. ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं ना कि इट्स टू मच, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, यकीन माने गेम चेंजर यही होता है कि आप अपने माइंड को कैसे ट्रेन करते हो. यू से टू योर सेल्फ, नथिंग इज ईजी इन दिस लाइफ. आई वॉज नॉट प्रोमिस्ड एन ईजी लाइफ. हम दुनिया में ईजीनेस के लिए नहीं आए. तो सीधी सी बात है, नथिंग इज गोइंग टू बी इजी. द चॉइस इज माइन कि मैं कौन सा हर्डल लेना चाहता हूं. तो वहां से आपका माइंड फ्लिप हो जाता है. आप कहते हो भाई ये नहीं तो फिर कुछ और मुश्किल होगा, कुछ और नहीं तो कुछ और मुश्किल होगा. चलिए, मैं उनका बात कर करके ना गला सूख गया. दो पानी पी रही है. अच्छा, ये बताइएगा.
1: सॉरी, मैं बहुत बोलती हूं.
0: आप बेटा मुझसे ज्यादा नहीं बोल सकोगी. आई गेट पेड टू टॉक.
1: मैं अनपेड भी बोल रही हूं.
0: बहुत बोलती हूं. चलिए भाई, मैं पेड कॉर्नर चल रही हूं, अनपेड चल रही हूं. अच्छा, ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी, क्योंकि हमारा वक्त थोड़ा सा लिमिटेड है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि आपसे अगर पूछा जाए कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है, आपके साथ वाले जितने बच्चे, उनको कोई एक पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें आप. अभी तक आपकी माशाल्लाह 18 इयर्स उम्र हो गई है, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है लाइफ का. ज्यादा नहीं, लेकिन एक हद तक हो गया है. मैं कह सकती हूँ कि एडल्ट बच्चा मुझसे बात कर रहा है. तो मुझे ये बताएं कि आप अभी तक के अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को क्या एडवाइस देना चाहेंगे.
1: आई वुड से कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, उनकी मदद करें. लाइक छोटे मोटे, अभी अभी तो आप काफी छोटे हैं, तो सिंस यू कांट गेट अ जॉब, तो आप घर के कामों में उनकी मदद करें. घर के कामों में उनकी मदद करें और ट्राई टू बी फिजिकली मोर एक्टिव. डोंट जस्ट ब्रेन रॉट ऑल डे ऑन योर बेड और समवेयर. और अभी आप अपनी फिजिकल हेल्थ बनाएंगे तो कल को आपके ही काम आएगी वो.
0: बिल्कुल.
1: तो दीज आर योर प्राइम ईयर्स, अभी आप कर लो, फिर बाकी एंड में इट्स गोना हेल्प यू.
0: मुझे मेरे भाई की बातें आती हैं. मैं छोटी थी ना, भाई हमेशा कहता था, सफा ये वाले जो साल है ना, बस ये वाले साल कुछ हार्डशिप से गुजार लो, बाद में रूटीन ऐसी पक्की हो जाती है कि फिर वो आपको हार्डशिप लगती नहीं ना. जाहिरी बात है, एबीसी आपने पढ़ना शुरू की थी, इट वाज हार्ड. लेकिन अब आप पूरी पूरी बुक्स पढ़ जाते हो, आप पूरी पूरी थीसिस पढ़ जाते हो, आपको पता नहीं चलता. सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टफ. द रेस्ट जब आपको एक दफा आ जाता है, व्हेन यू प्रैक्टिस इट एंड डू इट, तो आप आराम से भाई उसके अंदर गुजार लेते हो. तो भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच कि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने अपना अच्छा सा टाइम लिया. और अभी जो ना, मैं बाद में ना शो खत्म करने के बाद इनसे पूछूंगी कुछ स्किन केयर की टिप्स शिप्स मिली मैं इनसे. देखिए, सीक्रेट बातें होती हैं ये. तो खैर, अभी के लिए गर्ल्स टॉक. तो भाई फिलहाल के लिए हम दोनों स्टूडियो से इजाज़त चाहेंगे और आपको कहेंगे अल्लाह हाफिज़. अपना ढेर सारा ख्याल रखें. याद रखें साथियों, अपने आप को फिट रखें, अपने आप को हैप्पी रखें. याद रखें कि यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. आप अगर अपने आप को सही चलाएंगे तभी आप दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे. जो इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरों के लिए क्या ही कुछ करेगा. तो भाई, बड़ों की इज्जत करें, छोटों का ख्याल रखें और सबसे ज्यादा ख्याल अपना रखें, क्योंकि जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों का भी ख्याल नहीं सकता. तो हमारी तरफ से साइनिंग आउट, अल्लाह हाफिज. सुनते रहें FM 107. दिल से दिल.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर. नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, स्कूल सिर्फ बुक्स और एग्जाम्स का नाम तो नहीं होता। स्कूल वो जगह होती है जहाँ बच्चे नए आइडिया सीखते हैं, क्रिएटिविटी देखते हैं और ऐसी आदतें बनाते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। अच्छा, आजकल बहुत से स्कूल्स में स्टूडेंट्स सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स ही नहीं करते बल्कि एनवायरमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी करते हैं। अच्छा, ऐसे प्रोजेक्ट्स जो उन्हें नेचर की इम्पोर्टेंस समझाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनाते हैं, मतलब ये कि उनके दिमाग को और ज्यादा रिसोर्सफुल बनाने में मदद देते हैं। तो भाई, क्यों ना आज के इको स्विच में बात कर ली जाए इको फ्रेंडली स्कूल प्रोजेक्ट्स के बारे में, यानी ऐसे स्कूल आइडियाज जो लर्निंग के साथ साथ एनवायरमेंट को भी सपोर्ट करें। तो भाई, पहले तो एक काम करते हैं, प्रॉब्लम को हाईलाइट कर लेते हैं। साथियों, स्कूल्स में रोजाना बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है। जरा सोचिए, कितने पेपर्स यूज होते हैं, कितनी प्लास्टिक बॉटल्स और रैपर्स कचरे का हिस्सा बनते हैं, कितना फूड वेस्ट कैफेटेरिया में रह जाता है, कितनी एनर्जी, कितनी लाइट्स, कितने कंप्यूटर्स और कितने सारे इक्विपमेंट्स यूज में ना होते भी चल रहे होते हैं। लेकिन स्कूल एक ऐसी जगह है साथियों, जहाँ छोटी छोटी चेंजेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकती हैं। अगर स्टूडेंट्स बचपन से एनवायरमेंट का ख्याल रखना सीख लें तो वो आदतें उनके

0: घर और कम्युनिटी तक भी पहुंच सकती हैं। इसीलिए इको फ्रेंडली स्कूल प्रोजेक्ट सिर्फ असाइनमेंट्स नहीं होते बल्कि प्रैक्टिकल लर्निंग का एक तरीका भी होते हैं। चलिए मिलकर सिंपल इको स्विच सॉल्यूशंस जो कि स्कूल्स में आप कह लें कि कौन से इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं उनके बारे में हो। पहली चीज तो ये कि रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स, यानी स्टूडेंट्स स्कूल में रिसाइकलिंग बॉक्सेस बना सकते हैं जहां पेपर प्लास्टिक और कैंस को अलग अलग कलेक्ट किया जाए। इससे बच्चों को ये समझ में आता है कि वेस्ट को भी सही तरीके से मैनेज किया जा सकता है। दूसरी चीज है स्कूल गार्डनिंग प्रोजेक्ट्स। ये मेरा फेवरेट काम है भाई। स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर छोटा सा गार्डन बना सकते हैं। प्लांट्स लगाना, उनकी केयर करना और ग्रीनरी को प्रमोट करना बच्चों को नेचर के करीब लाता है। तीसरी चीज है प्लास्टिक फ्री कैंपेन्स। देखिए स्टूडेंट्स एक कैंपेन शुरू कर सकते हैं जहां वो अपने क्लासमेट्स को रीयूजेबल बॉटल्स और लंच बॉक्सेस यूज करने के लिए एनकरेज करें। चौथी चीज है एनर्जी सेविंग चैलेंज, यानी कि स्कूल क्लास के दरमियान एक फ्रेंडली कंपटीशन हो सकता है कि भाई कौन सी क्लास सबसे ज्यादा एनर्जी सेव करती है, जैसे कि लाइट्स बंद करना जब जरूरत ना हो, कंप्यूटर्स प्रॉपरली शट डाउन करना जब जरूरत ना हो, नेचुरल लाइट को यूज करना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपसाइक्लिंग प्रोजेक्ट्स। मुझे लगता है ये सबसे बेहतरीन चीज है। पुरानी चीजों को नई यूजफुल चीजों में बदलना भी एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे पुराने कार्टन से ऑर्गेनाइजर्स बनाना या ओल्ड मटेरियल से आर्ट प्रोजेक्ट तैयार करना। अच्छा, अगर इसकी कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए ना, तो दुनिया भर में अगर अब देखें तो स्टूडेंट्स अपने स्कूल में बहुत इंटरेस्टिंग इको प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने स्कूल गार्डन्स बनाए हैं जो जहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। कुछ स्कूल्स ने रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं जहाँ स्टूडेंट्स घर से रिसाइकलेबल आइटम्स लेकर आते हैं कलेक्ट करके और उनके कुछ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने साइंस प्रोजेक्ट्स में सोलर एनर्जी और वाटर कन्वर्जन के आइडियाज प्रेजेंट किए हैं। सबसे खूबसूरत बात ये है साथियों कि इन प्रोजेक्ट्स के स्टूडेंट्स सिर्फ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ते नहीं हैं बल्कि प्रैक्टिकली उसका हिस्सा भी बनते हैं। एक छोटा सा स्कूल प्रोजेक्ट कभी कभी पूरी कम्युनिटी को इंस्पायर कर सकता है। तो भाई आज का इको स्विच का चैलेंज स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। अपने स्कूल में एक ऐसा आइडिया सोचिए जो एनवायरमेंट को बेहतर बना सके, चाहे वो रिसाइकलिंग बॉक्स हो, प्लांट कॉर्नर हो या प्लास्टिक फ्री कैंपेन हो। और हमें जरूर बताएं अगर आपको अपने स्कूल में एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट स्टार्ट करना हो तो आप क्या करना पसंद करेंगे। इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन एफएम 107। याद रखिए, बच्चों के आइडियाज छोटे जरूर होते हैं लेकिन उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन एफएम 107, दिल से देसी।
1: Number one hits music station. Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: Kabhi bhi aur kahin bhi aap sun sakte hain FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: गाड़ियों के दरमियान सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना रोड पर हर फर्द की सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा इतनी जगह जरूर छोड़ें कि अगर आगे वाली गाड़ी अचानक रुक जाए तो आपके पास रिएक्ट करने का वक्त हो। याद रखें, एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपनी स्पीड और डिस्टेंस दोनों कंट्रोल में रखें। अक्सर हादसे इसी वजह से होते हैं कि ड्राइवर्स गाड़ियों के दरमियान महफूज फासला नहीं रखते। आपकी रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग बिहेवियर सिर्फ आपकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान बचाने में भी मददगार साबित होती है। फास्ट ट्रैफिक और हाईवे पर ये और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सडन स्टॉप्स और इमरजेंसीज किसी भी वक्त हो सकती हैं, इसलिए हमेशा महफूज फासला रखना जरूरी है। ड्राइव सेफली, क्योंकि आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी नहीं रोड पर हर शख्स की जिम्मेदारी भी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के मुताबिक ट्रैफिक रूल्स को एहतियात से फॉलो करना ही एक अच्छे ड्राइवर की पहचान है। तो अगली दफा जब आप ड्राइव करें तो याद रखिए, फासला जरूरी है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
3: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज हम बात करेंगे कनाद यानी कंटेनमेंट के बारे में। कनाद का मतलब है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया हो उस पर राजी रहना। ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को अंदर से अमीर बना देती है। अक्सर लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। ये सोच बेचैनी और स्ट्रेस का सबब बनती है। कनाद सिखाती है कि हम अपनी नेमतों की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब इंसान कनाद अख्तियार करता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है। ये मतलब नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे, बल्कि ये कि वो अपनी हालत पर शुक्र के साथ जिए और बेहतरी के लिए कोशिश भी करता रहे। आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महवश के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी। One step to 2030.
4: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
5: One Step to 2030.
4: आज के सेगमेंट में दोस्तों हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ इन द डिजिटल एज। हम एक ऐसे दौर में हैं और ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी और इंटरनेट हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। स्मार्टफोन्स, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीटिंग्स और डिजिटल एंटरटेनमेंट ने हमारी दुनिया को बहुत आसान बना दिया है। लेकिन इस तरक्की के साथ एक बड़ा चैलेंज भी सामने आया है और वो है मेंटल हेल्थ यानी जहनी सेहत। मेंटल हेल्थ से मुराद इंसान की जज्बाती, जहनी और नफसियाती हालत है। जब कोई शख्स जहनी तौर पे सेहतमंद होता है तो वो अपनी जिंदगी

के फैसले बेहतर तरीके से कर सकता है, स्ट्रेस को हैंडल कर सकता है, दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुक कायम कर सकता है। जी हाँ, डिजिटल एज में लोगों की जिंदगी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। हर वक्त ऑनलाइन रहना, नोटिफिकेशंस का प्रेशर, लाइक्स और फॉलोअर्स की फिक्र और दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखना कई अफराद के लिए एंजाइटी और डिप्रेशन का सबब भी बन सकता है और बनता भी है। खास तौर पर यंग जनरेशन इस चैलेंज का सामना तो कर ही रही है। ये टॉपिक इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी ही तेजी से मेंटल हेल्थ के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग तन्हाई का शिकार हैं, नींद पूरी तरह नहीं होती, स्ट्रेस रोज बढ़ता जा रहा है। अगर मेंटल हेल्थ को नजरअंदाज किया गया तो इसका असर सिर्फ अफराद पर नहीं पूरे माशरे पर पड़ेगा। जी हाँ, डिजिटल एज के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, जैसे ऑनलाइन काउंसलिंग हो सकती है, मेंटल हेल्थ एप्स और अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से लोगों को मदद हासिल हो सकती है। मगर टेक्नोलॉजी से सही और इसका प्रॉपर बैलेंस इस्तेमाल बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में अक्सर इसका असर रोज नजर आता है। अगर हम टेक्नोलॉजी को सेहतमंद अंदाज में यूज करें तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और जिंदगी आसान होती है। लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो स्ट्रेस, एंजाइटी, सोशल आइसोलेशन भी पैदा हो सकता है। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि डिजिटल दुनिया ने हमें जोड़ा भी है और कुछ हद तक तोड़ा भी है। असल कामयाबी सिर्फ टेक्नोलॉजी में तरक्की हासिल करना नहीं है, बल्कि इंसान की जहनी सेहत को मजबूत बनाना है। हमें डिजिटल और रियल जिंदगी के दरमियान गुड बैलेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि सेहतमंद जहन ही सेहतमंद और कामयाब माशरे की बुनियाद है। तो अगर आपको डिजिटल वर्ल्ड से निकल के बाहर इस रियल वर्ल्ड में घूमना है तो आपके लिए पार्क्स हैं, कॉर्निश हैं, यहाँ मैं बात करूँ तो सूक वाकिफ है, सूक वकरा है, या म्यूजियम है, कटारा है, कुछ ऐसी जगह जो आपको रियल वर्ल्ड के करीब लेकर आए, आपकी हिस्ट्री को मजबूत करे और आपको आपकी नॉलेज एनरिच करने का मौका दे। दोस्तों, कभी कभी डिजिटल वर्ल्ड से निकलकर लाइव खुद एक्सपीरियंस करना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। ये आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए, वक्त मिले तो इस फोन को साइड में रख के थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने लव्ड वंस के साथ, नेचर को एडमायर करें, नेचर के करीब जाएं और खुद को मौका दें कि आप इन चीजों को कितना पसंद करते हैं। फिलहाल के लिए तो मैं आपसे यहाँ पर इजाजत लूंगी, मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2020.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो?

सफर मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर, विद RJ सर्वर।
2: वजारत दाखला ने मेहतराज एप्लीकेशन में एक नई सहूलत मुतारिफ करवाई है, जिसके जरिए यूजर्स अपने रिश्तेदारों को मेहतराज एक्टिवेट करने की इजाजत दे सकते हैं, खासतौर पर उन अफराद के लिए जो अपने नाम पर मोबाइल नंबर नहीं रखते। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए यूजर्स को चंद आसान मराहिल पर अमल करना होगा। पहला मरहला, मेहतराज एप्लीकेशन खोलकर मेन मेन्यू में जाएं और डेलीगेशन का इंतखाब करें। दूसरा मरहला, रिलेटिव रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। तीसरा मरहला, मतलूबा मालूमात दर्ज करें और जिस रिश्तेदार को रजिस्ट्रेशन देनी हो उसे ऐड करें। चौथा मरहला, तफसीलात की

तस्दीक के बाद रजिस्ट्रेशन अमल मुकम्मल हो जाएगा और मुतालिका शख्स मेतराश एप्लीकेशन को एक्टिवेट कर सकेगा। वजारत दाखला के मुताबिक एड पर क्लिक करने से मुतालिका शख्स को मुकर्रा मोबाइल नंबर इस्तेमाल करते हुए मेतराश एप्लीकेशन एक्टिवेट करने की इजाज़त मिल जाएगी। वजारत दाखला ने आवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में AI की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूमात को शेयर करने से पहले उसके जराए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो AI के जरिए तैयार किया गया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में हजारों अफराद तक पहुंच सकती है। वजारत दाखला ने जोर दिया है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और रस्मी ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। रियासत कतर ने जमहूरिया तुनिशिया में अरब वज़राए दाखला काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक़िद 18वें अरब कॉन्फ्रेंस ऑफ हेड्स ऑफ बॉर्डर एयरपोर्ट एंड पोर्ट सिक्योरिटी सर्विसेज में शिरकत की। वजारत दाखला के वफ्द की क़यादत डायरेक्टर ऑफ द मरीन पोर्ट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल हादी मोहम्मद जबीन अल दुसैरी ने की। कॉन्फ्रेंस के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ सिक्योरिटी और सरहदी इंतजामात से मुतालिक मौजूआत पर तबादला ख्याल किया गया। कॉन्फ्रेंस में कतर ने मुल्क के एंट्री पॉइंट पर सिक्योरिटी के तजुर्बे को भी नुमाया किया। खास तौर पर फीफा वर्ल्ड कप कतर 2022 के दौरान हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदी नुकात पर हिफाजती इंतजामात और कामयाब सिक्योरिटी इकदामात को शिरका के सामने पेश किया गया। मसलन जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान लाखों शायकीन कतर पहुंचे, उस वक्त एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स और बॉर्डर क्रॉसिंग पर मुसाफिरों की बड़ी तादाद को मुनज्जम और महफूज अंदाज में हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज था। कतर के सिक्योरिटी इदारों ने जदीद इंतजामी और सिक्योरिटी निजाम के जरिए इस चैलेंज को कामयाबी से संभाला, जिसकी तारीफ मुतअद्दिद बैनुल अक्वामी इदारों ने भी की थी। कॉन्फ्रेंस ने अरब ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी तजुर्बात के तबादले और सरहदी हिफाजत के मैदान में मुश्तरका तआवुन को मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। वजारत दाखला के जेर इंतजाम जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ पासपोर्ट का सर्च एंड फॉलो अप डिपार्टमेंट अब माली मुतालबात और जुर्मानों की अदायगी के लिए ऑनलाइन सहूलत फराहम कर रहा है। ये खदमात MOI की वेबसाइट और मेतराश ऐप के जरिए हासिल की जा सकती हैं, जहां मामला डिपार्टमेंट का दौरा किए बगैर आसानी से मुकम्मल किया जा सकता है। MOI वेबसाइट के जरिए खिदमात हासिल करने के लिए वीजा नंबर, स्पॉन्सर नंबर या एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करके मुतल्लिका रिकॉर्ड्स तलाश किए जा सकते हैं। इसके बाद अदायगी के लिए फीस, जुर्माने या एयर टिकट फीस का इंतखाब करके क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की जा सकती है। मेतराश ऐप में सिक्योरिटी सेक्शन के अंदर फाइनेंशियल क्लेम्स सर्विसेज का इंतखाब किया जाता है। इसके बाद पर्सनल या कंपनी अकाउंट और फीस ऑफ फाइंस या टिकट्स का ऑप्शन सिलेक्ट करके मुतालिका रिकॉर्ड चुना जाता है। आखिरी मरहले में दरकार रकम ऑनलाइन अदा करके मामला मुकम्मल किया जा सकता है। दोस्तों, रात को बिना लाइट के गाड़ी चलाना कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 70 के मुताबिक रात के वक्त अगर आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन किए बगैर ड्राइव करते हैं तो ये ना सिर्फ एक ट्रैफिक वायोलेशन है बल्कि किसी की जान के लिए भी खतरा बन सकता है। रात के अंधेरे में दूसरी गाड़ियों, पेडेस्ट्रियंस और ऑब्स्टिकल्स को देखना मुश्किल होता है। हेडलाइट्स ऑन करने से ना सिर्फ आपको रास्ता बेहतर दिखाई देता है बल्कि दूसरे लोग भी आपकी गाड़ी को देख सकते हैं। हमेशा याद रखें, रात को गाड़ी चलाने से पहले लाइट्स चेक करें। बिला जरूरत हाई बीम का इस्तेमाल करना भी गलत।

0: है। हाई बीम सिर्फ उन जगहों पर इस्तेमाल करें जहां रोशनी कम हो और सामने से कोई आ ना रहा हो। अपनी और दूसरों की जिंदगी की हिफाजत का ख्याल करें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। वजीर दाखला और इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स लखविया के कमांडर शेख खलीफा बिन हमद बिन खलीफा अलसानी से रियासत कतर में कायम मकाम स्पेन के सफीर अलवारो रिनेडो जालबा ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुश्तरका तआवुन का जायजा लिया गया। इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के कई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया और दो तरफा तआवुन को मजीद मजबूत और फरोग देने के तरीकों पर बातचीत की गई। आजकल के डिजिटल दौर में वीडियो गेम्स बच्चों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन इन गेम्स का मुनासिब इंतखाब और उनकी देखभाल बहुत जरूरी है। अपने बच्चों के करीब रहिए, उन्हें गेम्स के इंतखाब में शामिल कीजिए, उन गेम्स का चुनाव कीजिए जो उनकी एज और जहनी तरक्की के मुताबिक हो। गेम्स के जरिए सिर्फ तफरी नहीं बल्कि तालीम और स्किल्स भी हासिल की जा सकती है अगर सही इंतखाब किया गया हो। आपकी रहनुमाई और तवज्जो उनकी डिजिटल दुनिया को महफूज और फायदेमंद बना सकती हैं। वजारत दाखला का कहना है कि अपने बच्चों के साथ मिलकर उनकी गेमिंग दुनिया को सेफ और प्रोडक्टिव बनाइए। जेट स्की या किसी भी समंदरी सवारी का मजा उस वक्त ही है जब आप हिफाजती कवायद की पाबंदी करें। आपकी जिम्मेदाराना ड्राइविंग ही आपकी महफूज वापसी की जमीन है। हमेशा महफूज रफ्तार इख्तियार करें और अचानक तेज मोड़ लेने या खतरनाक स्टंट करने से परहेज करें, क्योंकि इससे सवारी उलट सकती है और हादसा पेश आ सकता है। साहिल से मुनासिब फासला बरकरार रखें और स्विमिंग के लिए मुकर्रर इलाकों के 300 मीटर के अंदर ना जाएं। दूसरी कश्तियों और बड़े जहाजों पर नजर रखें और कभी भी उनके आगे से गुजरने की कोशिश ना करें। गफलत की हालत या अगर आपकी तवज्जो या फैसला करने की सलाहियत मुतासर हो तो ड्राइविंग ना करें। पूरे होशो हवास में ही समुद्री सवारी करें और खराब या गैर मुस्तहकम मौसम की सूरत हाल में समुंदर का रुख करने से बचें। वजारत दाखला का कहना है कि समुद्री हिफाजत के कवायद पर अमल आपके सफर को पुरलुत्फ और खतरों से महफूज बनाता है। आपकी सलामती हमारी पहली तरजीह है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: सुनिए, क्या आप सुन सकते हैं? ये है फ्यूचर की आवाज, कतर का कल, क्लीन ग्रीन एंड फुल ऑफ लाइफ। ये कल कोई सपना नहीं है, इट्स अ प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ कतर नेशनल विजन 2030। और इस प्रॉमिस को रियलिटी बनाने का सफर वही है कतर ग्रीन बीट। हम कैसे बदलेंगे, कैसे इनोवेट करेंगे, कौन से छोटे स्टेप्स बिग इंपैक्ट्स लाएंगे? हाउ कैन यू मेक अ डिफरेंस? फ्रॉम स्मार्ट सिटीज टू सेविंग प्रेशियस वाटर, डेजर्ट को ग्रीन करने के आइडियाज से लेकर सस्टेनेबल लिविंग तक, हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर। मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
1: सोचो मत, जुड़ जाओ, बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन।

0: sustainability. Tune in to Qatar Green Beat with A for Amita. Future ki aawaz aaj suno. Sirf FM 107 par. Dil se desi. अस्सलाम वालेकुम FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ अमिता आपके साथ और आपके लिए लेकर आई हूँ कतर ग्रीन बीट का एक नया नवेला एपिसोड. जब भी हम कतर ग्रीन बीट की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारी जिंदगी से ऐसे नजदीकी से जुड़ जाती है कि हमको लगता है कि इस पूरे एनवायरमेंट को, इस पूरे वो कहते हैं ना एटमॉस्फेयर को हम ही बचा सकते हैं. वेल, आज का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग है. जब भी हम अपने प्लैनेट को बचाने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आते हैं लैब्स में बैठे साइंटिस्ट्स या कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पसीना बहाते इंजीनियर्स. सही बताओ, आते हैं ना यही दिमाग में? लेकिन जरा सोचिए कि अगर बदलाव का सबसे ताकतवर जरिया कोई सोलर पैनल नहीं बल्कि एक पेंट ब्रश हो तो फिर क्या हो? यरद्दी में फेंका हुआ रिसाइकल प्लास्टिक का एक टुकड़ा. आज हम क्रिएटिविटी और कंजर्वेशन के उस अनोखे मोड़ पर हैं जहां आर्ट दुनिया को बदलने की ताकत रखता है. कॉर्निश पर बनी उन ऊंची और चमकती स्कल्पचर से लेकर मुशर्रफ की मॉडर्न गैलरीज तक कतर अब सस्टेनेबिलिटी का एक बेहतरीन कैनवस बन चुका है. आज के एपिसोड इको आर्ट में हम डाइव करेंगे एक ऐसी दुनिया में जहां आर्ट सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं लगता बल्कि वेस्ट को मास्टरपीस में बदल कर हमारे एनवायरमेंट की आवाज बन रहा है. तो कुर्सी की अपनी पेटी बांध लो. हाँ, और जहाँ कहीं भी हो इत्मीनान से हमारे साथ बने रहो FM 107 पर सुनते हुए कतर ग्रीन बीट.
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर.
0: कतर ग्रीन बीट. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन FM 107 पर. मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे कतर ग्रीन बीट. मतलब वक्त है हमारे सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का और सबसे पहले सेगमेंट का, दैट इज द ग्रीन वायर, जहां पर हम सारी अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं. आज इस सेगमेंट की शुरुआत एक बहुत ही जबरदस्त खबर या यूं कहें ऐसी तस्वीर के साथ करेंगे जो शायद आपकी आंखों के सामने हर रोज गुजरती है, लेकिन आज हम उसे एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे. अच्छा, क्या आपने हाल ही में, या यूं कहें कि आप अक्सर दोहा कॉर्निश की सैर पर जाते हैं? वैसे आई नो कि अभी गर्मी बहुत है, लेकिन फिर भी जब थोड़ा सा ठंडक मिलती है तो आप जाते हैं. अब आप इमेजिन करो, सूरज ढल रहा है, हल्की ठंडी हवा चल रही है, मतलब उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि अभी कभी तो ठंडी हवा मिले हाँ इस गर्मी के मौसम में, और समुंदर की लहरों के साथ साथ दोहा का स्काईलाइन चमक रहा है. लेकिन अल मसरा पार्क के पास पहुंचते ही आपकी नजर एक ऐसी चीज पर रुकती है जो बिल्कुल हैरतअंगेज है. जमीन से निकलता हुआ एक बड़ा सुनहरा और चमकता हुआ क्रिएचर. मैं बात कर रही हूँ दुनिया की सबसे मशहूर और कीमती आर्टिस्ट में से एक जेफ कून्स की बनाई हुई डूगोंग स्कल्पचर की. 21 मीटर्स ऊंची और तकरीबन 31 मीटर्स चौड़ी, ये कोई ऐसा वैसा स्टैचू नहीं है, एक ऐसा ट्रिब्यूट है कतर के उन साइलेंट रेजिडेंट्स को जो हमारे पानियों में सदियों से रह रहे हैं. लेकिन जनाब, दिलचस्प बात सिर्फ इसकी चमक नहीं है. अक्सर लोग वहाँ जाते हैं, सेल्फीज लेते हैं, सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये स्कल्पचर वहाँ क्यों है? सुनिए, ये हकीकत शायद आपको हैरान कर दे. हमारा कतर पूरी दुनिया में डुगोंग्स की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का घर है. इन्हें सी काउज भी कहा जाता है. ये मासूम से जीव, ये क्रिएचर्स हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है. लेकिन अफसोस की बात ये है कि क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन की वजह से इनका वजूद खतरे में आ गया है. जब कतर म्यूजियम्स ने इस इको आर्ट को शहर के बिल्कुल बीचों बीच लगाने का फैसला किया तो उनका मकसद सिर्फ ब्यूटिफिकेशन नहीं था, उनका मकसद था अवेयरनेस पैदा करना. एक आर्टिस्ट जब इतनी बड़ी स्कल्पचर बनाता है तो वो हमसे बातें करता है, वो हमें याद दिलाता है कि हमारा कतर नेशनल विजन 2030 सिर्फ बड़ी बिल्डिंग्स बनाना नहीं है बल्कि अपने कंजर्वेशन और एनवायरमेंट को महफूज रखना भी है. आप खुद सोचिए, जब हम ऐसी पब्लिक इंस्टॉलेशंस को देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? क्या हम सिर्फ एक मेटल का डब्बा देखते हैं या कुछ और? हम देखते हैं एक मास्टरपीस जो वेस्ट से लड़ने की ताकत रखता है। जेफ कून्स ने डुगोंग को इतना ऊंचा इसीलिए बनाया ताकि हम इसे इग्नोर ना कर सकें। ये एक कॉल टू एक्शन है। ये हमसे कह रहा है कि हमारा समंदर हमारा सबसे बड़ा खजाना है। अगर हम अपने पानी को साफ नहीं रखेंगे, अगर हम प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो शायद आने वाली जनरेशन के पास देखने के लिए सिर्फ ये मेटल के स्कल्पचर्स ही रह जाएंगे, असली डुगोंग्स नहीं। इसीलिए द ग्रीन वायर पर आज हम सल्यूट करते हैं कतर म्यूजियम्स को और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, जो आर्ट के जरिए हमारी बायोडाइवर्सिटी के गार्जियन बनकर खड़े हैं। आर्ट एक ऐसी जुबान है जो एक्सेंट्स की मोहताज नहीं है, ये सीधा दिल पर असर करती है। मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगली बार जब आप कॉलेज जाएं और उस डुगोंग स्कल्पचर को देखें, तो बस एक मिनट के लिए रुकिए, देखिए कि कैसे वो धूप में चमकती है और सोचिए कि हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं ताकि हमारा समंदर और उसमें रहने वाले क्रिएचर्स हमेशा महफूज रहें। क्या हम अपने घर का कचरा कम कर सकते हैं? क्या हम सिंगल यूज प्लास्टिक को ना कह सकते हैं? क्योंकि याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से क्रिएटिव कदम से शुरू होता है। वेल, आप सुन रहे हैं कतर ग्रीन बीट, मैं हूं अमिता आपके साथ। तो कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ ऑन एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट।
0: वेलकम वंस अगेन, एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं अमिता आपके साथ। चलिए अब रुक करते हैं एक ऐसी जगह जहां सपने, हुनर और हकीकत आपस में मिलते हैं। अब वक्त है हमारे सबसे खास सेगमेंट का, प्रोजेक्ट स्पॉटलाइट। आज हमारी जो रोशनी है या स्पॉटलाइट है, वो जाती है VCU आर्ट्स कतर के उन होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स पर जो लग्जरी की डेफिनेशन को ही हमेशा के लिए बदल रहे हैं। जब हम लग्जरी लव्स सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद चमकने वाला सोना या जमीन की गहराइयों से निकाला गया कोई नायाब हीरा। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि असली लग्जरी लूटने में नहीं बल्कि बचाने में है, तो कैसा लगेगा? हाँ, यहाँ के डिजाइनर्स फैशन पीस के जरिए कुछ ऐसा नया कर रहे हैं जो हमारी पुरानी सोच को झंझोड़ कर रख देगा। तो आपको क्या करना है? अब आपको सुनना है कि सदियों से हम इंसान गहनों या यूं कहें ज्वेलरी के लिए जमीन का सीना चीरते आए हैं, है कि नहीं? माइनिंग के इस अमल में हमने ना जाने कितने पहाड़ों को खाली कर दिया, कितने पेड़ों को काट दिया। लेकिन VCU आर्ट्स कदर के इन नौजवानों ने, इन आर्टिस्ट ने एक सवाल पूछा, क्या हम खूबसूरती को बिना किसी नुकसान के पैदा कर सकते हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उनका ध्यान गया उन दो चीजों पर जो हमारे पास कतर में सबसे ज्यादा है। एक है हमारी डेजर्ट की रेत जो मीलों तक फैली हुई है, और दूसरा है वो रिसाइकल ग्लास जिसे हम अक्सर वेस्ट समझकर कचरे के ढेर में फेंक देते हैं। उन्होंने फैशन को सिर्फ कपड़ों या गहनों तक लिमिटेड नहीं रखा बल्कि उसे एक पैगाम बना दिया। अब जरा सोचिए इस प्रोसेस के बारे में कि एक तरफ पुरानी फेंकी हुई बॉटल्स और कांच के टुकड़े हैं जिन्हें कोई दोबारा देखना पसंद नहीं करता, दूसरी तरफ डेजर्ट की वो रेत है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इन डिजाइनर्स ने इन दोनों को मिला दिया इन फर्नेसेस में, यानी उन बड़ी भट्टियों में जहाँ टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि पत्थर भी पिघल जाए, वहां ये कांच और रेत एक साथ मिलकर एक नया रूप लेते हैं। इसे पिघलाने के बाद जो मटेरियल है उससे जब वो डेलिकेट ज्वेलरी बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ एक इयररिंग या नेकलेस नहीं है, वो एक मास्टरपीस है। एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहां रद्दी को कीमती बनाया गया है, और सबसे कमाल की बात कि इनका कार्बन फुटप्रिंट तकरीबन जीरो है। ये कोई फैक्ट्री में बनी मशीन मेड चीज नहीं है, बल्कि इसमें कतर की मिट्टी की महक और एक आर्टिस्ट की रूह शामिल है। इस प्रोजेक्ट का नाम है फैशनिंग पीस। कितना सुकून भरा नाम है ना, पीस यानी अमन। लेकिन किसके साथ ये अमन है? कुदरत के साथ। ये एक समझौता है कि हम अब और जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लग्जरी का मतलब हमेशा महंगा होना नहीं होता, लग्जरी का मतलब होता है रेयर होना। हाँ जी, और आज के दौर में एक साफ सुथरा प्लैनेट, इससे ज्यादा लग्जूरियस चीज और कोई नहीं हो सकती। सो VCU आर्ट्स के इन स्टूडेंट्स ने हमें सिखाया है कि सस्टेनेबिलिटी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि एक आर्ट फॉर्म है। जब आप उनकी बनाई ज्वेलरी को पहनते हैं ना, तो आप सिर्फ एक फैशन स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते हैं, बल्कि आप पूरी दुनिया को बता रहे होते हैं कि आप इस जमीन की फिक्र करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा टर्म निकल कर आता है, जिसे हम कहते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। रेडियो की भाषा में कहें तो ये एक ऐसा पहिया है जो कभी रुकता नहीं। जो चीज़ खत्म हो गई, वहीं से उसका नया जन्म होता है। ये प्रोजेक्ट एक बेहतरीन नमूना, या यूँ कहें एक बेहतरीन एग्जाम्पल है इस बात का कि फैशन का फ्यूचर ज़्यादा खरीदने या ज़्यादा कंजम्पशन में नहीं है। फैशन का फ्यूचर है कि क्रिएटिंग बेटर विथ व्हाट वी ऑलरेडी हैव। हम अक्सर नए की तलाश में ना पुराने खजाने भूल जाते हैं। कतर नेशनल विजन 2030 का भी यही मकसद है, एक ऐसी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना जहां दिमाग और दिल मिलकर काम करें। इन डिजाइनर्स ने साबित कर दिया है कि कतर सिर्फ तेल या गैस का देश नहीं है, बल्कि ये उन क्रिएटिव माइंड्स का भी देश है जो रेत के जर्रों से भी हीरे तराशना जानते हैं। तो जनाब, आगे कतर ग्रीन बीट में और भी कुछ खास है, तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट,
0: वेलकम वंस अगेन। मैं हूं अमिता, आपके साथ कतर ग्रीन बीट सुन रहे हैं आप। वेल, अब तक हमने बात की उन बड़े बड़े स्कल्पचर्स की और VCU आर्ट्स के उन कमाल के डिज़ाइनर्स की, लेकिन अब वक्त है एक ऐसी हकीकत का जो आपके और मेरे यानी हम सब के बहुत करीब है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्लैनेट को बचाना या एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना सिर्फ बड़े आर्टिस्ट या साइंटिस्ट का काम है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इको आर्ट सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके नाम गैलरीज में लगे होते हैं, बल्कि ये एक मूवमेंट है जो आप अपने लिविंग रूम से, अपनी रसोई या अपने किचन से या अपनी बालकनी से शुरू कर सकते हैं। आपको बस अपना नजरिया थोड़ा सा बदलना होगा। जहां दुनिया को कचरा दिखता है, वहां एक आर्टिस्ट को क्रिएटिविटी का मौका दिखता है, है कि नहीं? तो सुनिए कैसे आप अपने घर को अपसाइकल करके ग्रीनर बना सकते हैं और कतर की इस हरियाली में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारी पहली टिप से, द ग्लास ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे घरों में हर हफ्ते कितने ही जैम के जार्स, या वो कहते हैं शहद के डब्बे, हनी की शीशियां या परफ्यूम की खाली बॉटल्स निकलती ही निकलती है। हम क्या करते हैं उसका? बस उन्हें बिन में फेंक देते हैं। लेकिन रुकिए, अगली बार फेंकने से पहले ना उन्हें एक नया पर्सपेक्टिव दीजिए। हाँ, कैसे? उसे देखिए एक नए नजरिए से। एक पुराने कांच की बॉटल, उसे क्या कर सकते हैं? आपने उसे साफ किया, उसकी लेबल उतारी, अब थोड़ा सा इको फ्रेंडली पेंट कीजिए, या फिर कतर के पुराने बाजारों से मिलने वाली जो ट्वाइन का इस्तेमाल है उसे कीजिए। जब आप उस बॉटल के चारों तरफ उस रस्सी को लपेट के तैयार करते हैं, तो वो ट्रैश एक बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही शीक वास बन जाता है। इसमें आप अपने गार्डन के फूल लगा सकते हैं, या फिर इसे कैंडल होल्डर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब उस कांच के अंदर से मोमबत्ती की रोशनी बाहर आएगी ना, तो वो सिर्फ रोशनी नहीं लगेगी, वो आपकी एक छोटी सी कोशिश होगी जो इस प्लैनेट को बचाने के लिए आपने की। वाह, सो ट्राई कीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपको एक फ्री एडवाइस देती हूँ। एक चक्कर फायर स्टेशन आर्टिस्ट इन रेसिडेंस का जरूर लगाइए, ठीक है। ये दोहा के दिल में एक ऐसी जगह है जहाँ की दीवारों से भी क्रिएटिविटी टपकती है। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना जॉयफुल है ना कि आपका दिमाग नए आइडियाज से भर जाएगा। वहाँ अक्सर ऐसी वर्कशॉप्स होती है जहाँ आप सीख सकते हैं कि कैसे पुराने कपड़े या प्लास्टिक के वेस्ट से घर का बेहतरीन डेकोर तैयार किया जा सकता है। वहाँ के आर्टिस्ट से बात कीजिए, देखिए कि कैसे वो एक पुरानी जीन्स को एक बैग में बदल देते हैं या प्लास्टिक कैप से एक मोज़ेक पेंटिंग बना देते हैं। जब आप वहाँ जाएंगे ना तो आपको एहसास होगा कि सस्टेनेबिलिटी कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि ये एक फनकारी या आर्टिस्ट्री है जिसे हर कोई अपना सकता है। और यही हमारे कतर की खूबसूरती है और खूबी है कि हर चीज डिफिकल्ट नहीं लगती, आसान लगती है और अपनी सी लगती है। और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, नेचर एज अ कैनवस। हाँ, अगली बार जब आप कतर के किसी बीच पर जाएं, जैसे सी लाइन या अलवकरा या फिर डेजर्ट की गहराइयों में कैंप लगाएं, तो वहाँ एक नया खेल खेलिए। इसे कहते हैं एफेमरल आर्ट, यानी वो कला जो कुछ वक्त के लिए है और फिर मिट जाएगी। वहाँ मौजूद पत्थरों या समुंदर की शेल्स या गिरे हुए सूखे पत्तों से पैटर्न्स बनाइए, एक मंडाला बनाइए या कोई जियोमेट्रिक शेप, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा सुकून क्या है पता है, इसमें कोई कचरा नहीं फैलता। आपने आर्ट बनाया, उसकी एक फोटो खींची और उसे वहीं कुदरत के हवाले कर दिया बिना किसी नुकसान के। ये हमारी धरती के लिए ना एक गिफ्ट है, एक तोहफा है। ये हमारी क्रिएटिविटी दिखाने का सबसे उम्दा मौका है। हाँ जी, तो आज की हमारी इस बातचीत का जो निचोड़ बस यही है कि आर्ट और कंजर्वेशन यानी कला और हिफाजत एक ही सिक्के के ना दो पहलू है। आर्ट वो यूनिवर्सल जुबान है जो सबको समझ आती है, इसमें वो ताकत है जो हमें भागती दौड़ती जिंदगी में ना थोड़ा रुकने, देखने और उस दुनिया के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो हम और आप बच्चों के लिए ना पीछे छोड़ रहे हैं। तो जनाब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज जो हमने कतर ग्रीन बीट में डिस्कस किया उसका हम थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, क्योंकि जब हम ये ख्याल रखते हैं तो हम अपनी जिंदगी में एक साफ सुथरी सांस ले सकते हैं और अपनी आने वाली जनरेशन को भी दे सकते हैं। चलिए, इसी बात के साथ अब आप दीजिए मुझे इजाजत, क्योंकि वक्त हो गया है मेरे जाने का। आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते कतर ग्रीन बीट के एक अगले एपिसोड में एक नई नवेली बात पर। तो हमारे साथ बने रहिए और FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप जुड़ सकते हैं, और अगर कोई सजेशंस है तो 666-22-107 हमारा नंबर है, इसके जरिए भी आप अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं। और अभी के लिए अमिता को दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखें, बने रहें FM 107 पर, दिल से देसी।
1: हम एक्सप्लोर करेंगे हर ग्रीन कॉर्नर ऑफ कतर, मतलब सिंपल टिप्स, कूल हैक्स, इंस्पायरिंग स्टोरीज फ्रॉम कतर।
2: कतर ग्रीन बीट,
3: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों, लिमोजीन चलाने वाले ड्राइवर्स के लिए एक अहम पैगाम ये है कि सेफ ड्राइविंग सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी सेफ्टी की गारंटी होती है। याद रखिए, फार लेफ्ट फास्ट लेन का इस्तेमाल आपके लिए स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है या मना है। रोड पर रैंडम स्टॉपिंग मत कीजिए, यानी गाड़ी कहीं भी मत रोक दीजिए। रुकना सिर्फ तब अलाउड है जब एप्लीकेशन के जरिए रिक्वेस्ट मिलती है, और हमेशा स्पेसिफाइड स्पीड लिमिट का ख्याल रखिए, क्योंकि स्लो ड्राइविंग भी मेन रोड्स पर ट्रैफिक के लिए खतरा बन सकती है। सेफ्टी के इन सिंपल रूल्स पर अमल करके आप अपनी हिफाजत करते हैं और दूसरों के सफर को भी महफूज बनाते हैं। वजारत दाखिला का कहना है, स्टे सेफ, ड्राइव सेफ। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: आप सुन रहे हैं FM 107.
3: FM 107.
2: दिल से देसी।
5: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
6: बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और सस्टेनेबल मुस्तकबिल के लिए, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सस्टेन द फ्यूचर।
2: ये है वो शो जो बात करता है हमारे प्लैनेट अर्थ के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की। आज का टॉपिक है ग्रीन आर्किटेक्चर, बिल्डिंग फॉर टुमारो।
0: टॉपिक ऑफ द डे।
2: आज हम बात करेंगे इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स और अर्बन प्लानिंग के बारे में, जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाते हैं और सस्टेनेबल लिविंग को प्रमोट करते हैं। To make this planet a better place, we need to think smart about how we build our homes, offices and cities. आज के शो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बिल्डिंग्स को डिजाइन कर सकते हैं जो एनर्जी सेव करें, और कैसे कतर के प्रोजेक्ट्स जैसे लुसेल सिटी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक मिसाल बन रहे हैं। प्लस हम शेयर करेंगे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपने घर में यूज कर सकते हैं। और हाँ, हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ऑन सोशल मीडिया @FM107 कतर और व्हाट्सएप नंबर 6622107 पर अपनी थॉट्स और क्वेश्चन शेयर करने के लिए। रेडी है? चलें तो शुरू करते हैं आज का शो,
0: सस्टेन द फ्यूचर।
2: जी लिसनर्स, जब हम सोचते हैं कि हमारे घर, ऑफिसेस या शहर कैसे होने चाहिए, तो अक्सर हम स्टाइल और कंफर्ट के बारे में सोचते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि ये बिल्डिंग्स हमारे एनवायरनमेंट पर क्या असर डाल रही हैं? ग्रीन आर्किटेक्चर इज ऑल अबाउट डिजाइनिंग बिल्डिंग्स दैट वर्क विद नेचर, नॉट अगेंस्ट इट। ये वो तरीका है जिसमें हम अपने स्ट्रक्चर को बनाते हैं ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट हो, कम कार्बन फुटप्रिंट छोड़े और नेचुरल रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करें। आप सोच रहे होंगे कि ये ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं? ये कोई सिर्फ पेंट का कलर नहीं, बल्कि एक नई सोच का तरीका है जहां घर और ऑफिसेज एनवायरनमेंट के साथ हार्मोनी में डिजाइन किए जाते हैं। तो चाय का कप ले आइए और हम आज डिटेल में समझते हैं कि ये बिल्डिंग फॉर टुमारो कैसे हमारी हेल्थ, एनवायरनमेंट और इकोनॉमी के लिए एक नई उम्मीद है। ग्रीन आर्किटेक्चर का मतलब है ऐसे घर, ऑफिसेज और सिटीज डिजाइन करना जो एनर्जी सेव करें, पोल्यूशन कम करें और नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करें। यानी ये बिल्डिंग सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि एक सिस्टम होती है जो एनवायरनमेंट को डैमेज करने के बजाय प्रोटेक्ट करती है। सोचिए एक घर जिसमें बिजली अपने सोलर पैनल से जनरेट होती हो, रेन वाटर कलेक्ट होकर गार्डन और बाथरूम्स में रीयूज होता हो, और रूम्स में हमेशा नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर हो। ये है असल ग्रीन आर्किटेक्चर। अब थोड़ा सा जायजा लेते हैं ट्रेडिशनल वर्सेस ग्रीन बिल्डिंग्स का। ट्रेडिशनल बिल्डिंग्स में ज्यादा सीमेंट, स्टील, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज का यूज होता है, हर वक्त एसीज और हीटर्स चलते हैं और पानी और बिजली का ज्यादा वेस्टेज होता है। जबकि ग्रीन बिल्डिंग्स स्मार्ट इंसुलेशन और डिजाइन की वजह से कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, नेचुरल वेंटिलेशन और डे लाइट का फायदा उठाती हैं, और ऐसे मटेरियल से बनती हैं जो रिसाइकल्ड या इको फ्रेंडली होते हैं। रिजल्ट ये होता है कि ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा ड्यूरेबल, कॉस्ट इफिशियंट और कंफर्टेबल होती हैं। ये क्यों जरूरी है? लिसनर्स, आज के वक्त में ग्रीन आर्किटेक्चर लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे दुनिया की टोटल एनर्जी यूज का 40% सिर्फ बिल्डिंग्स कंज्यूम करती हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस में 1/3 है, और अगले 25 इयर्स पे 70% पॉपुलेशन शहरों में रहेगी। सोचिए अगर हमने अपने घर और ऑफिसेस सस्टेनेबल नहीं बनाए तो पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज डबल स्पीड से बढ़ेगा। अब बात करते हैं ग्रीन डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये कि ये एनर्जी एफिशिएंसी रखता हो। ग्रीन बिल्डिंग्स एनर्जी को वेस्ट नहीं करते, सोलर पैनल और स्मार्ट विंडोज के थ्रू नेचुरल हीटिंग और कूलिंग होती है, यानी

कम बिल्स, कम डिपेंडेंसी और क्लीन एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल। सेकंड प्रिंसिपल है वाटर कंजर्वेशन। हर ड्रॉप की वैल्यू समझी जाती है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक्स, एफिशिएंट टैप्स और ग्रे वाटर रिसाइकलिंग से हर बिल्डिंग अपने पानी की डिमांड खुद मैनेज करती है। थर्ड प्रिंसिपल इज सस्टेनेबल मटेरियल्स। रिसाइकल्ड स्टील, बैम्बो और कंप्रेस्ड अर्थ ब्लॉक्स, ये सब मटेरियल्स इको फ्रेंडली और अफोर्डेबल होते हैं, प्लस इनका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत कम होता है। फोर्थ प्रिंसिपल इज इंडोर एनवायरमेंटल क्वालिटी। नॉन टॉक्सिक पेंट्स और वेंटिलेशन सिस्टम की वजह से घर के अंदर एयर फ्रेश और सेफ होती है। इसका मतलब है रेजिडेंट्स का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग और एलर्जीज कम। फिफ्थ प्रिंसिपल इज वेस्ट रिडक्शन। कंस्ट्रक्शन वेस्ट को लैंडफिल के बजाय रिसाइकिल किया जाता है। ओल्ड ब्रिक्स और वुड को दोबारा यूज किया जाता है, जो रिसोर्सेज सेव करता है। सिक्स्थ प्रिंसिपल है स्मार्ट लैंडस्केपिंग। ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन से बिल्डिंग ठंडी रहती है और हवा में ऑक्सीजन पड़ता है। ऐसे स्पेसेस सिटी पोल्यूशन को भी रिड्यूस करते हैं। अगर हम वर्ल्ड वाइड एग्जाम्पल्स लें तो बॉस्को वर्टिकल यानी मिलान में एक वर्टिकल फॉरेस्ट है जहां हर बालकनी पर ट्रीज लगे हैं और आपने शायद ये पिक्चर देखी भी होगी। इसके साथ दूसरी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो द एज जो कि एम्स्टर्डम में है, स्मार्टेस्ट और ग्रीनेस्ट ऑफिस बिल्डिंग है जहां हर चीज एनर्जी एफिशिएंट है। इसके साथ ही यूके में वन एंगल स्क्वायर अपनी कैटेगरी का सबसे ज्यादा सस्टेनेबल ऑफिस, सिर्फ 20% ट्रेडिशनल बिल्डिंग की एनर्जी यूज करता है। ये एग्जाम्पल्स दिखाती है कि फ्यूचर का डिजाइन तो ग्रीन ही ग्रीन होगा। साउथ एशिया का सीन चेक करें तो हमारे रीजन में अभी शुरुआत हुई है। इंडिया में IGBC ग्रीन सर्टिफाइड प्रोजेक्ट्स रैपिडली बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान के कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में सोलर और वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं। नेपाल और बांग्लादेश बैम्बो और बर्ड ब्लॉक्स यूज करके लो कॉस्ट सस्टेनेबल घर बना रहे हैं। अभी लॉन्ग वे टू गो है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ रही है। बेनिफिट्स अगर हम चेक करें ग्रीन आर्किटेक्चर के, तो सबसे पहला तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है। पोल्यूशन और इमिशंस कम होते हैं। ग्रीन रूफ्स और ट्रीज कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं और एनवायरमेंट को बैलेंस रखते हैं। दूसरा फायदा है इकोनॉमिक बेनिफिट। इनिशियल कॉस्ट ज्यादा लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्स और मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। प्रॉपर्टी वैल्यू भी हाई होती है। सोशल और हेल्थ बेनिफिट चेक करें तो नेचुरल लाइट और क्लीन एयर की वजह से लोग मेंटली फ्रेश और फिजिकली हेल्दी रहते हैं। रिसर्च कहती है कि ग्रीन ऑफिसेस में प्रोडक्टिविटी 15-20% ज्यादा होती है। इसके साथ ही ये एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल है। इंसुलेशन और स्मार्ट डिजाइन की वजह से हर मौसम में घर कंफर्टेबल होता है, न गर्मी का एक्स्ट्रा बोझ, न सर्दी की एक्सट्रीम। ये एक बैलेंस्ड और स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल देता है। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज है हाई इनिशियल कॉस्ट। सोलर और ग्रीन मटेरियल्स स्टार्ट में महंगे लगते हैं। सेकेंड इज अवेयरनेस की कमी। लोग अभी तक इसे सिर्फ एक लग्जरी समझते हैं। स्किल प्रोफेशनल्स की भी कमी है। आर्किटेक्चर और कॉन्ट्रैक्टर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। और फिर पॉलिसी गैप्स यानी गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज और रूल्स बहुत कम है। फ्यूचर ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो नेट जीरो होम्स जो इतनी एनर्जी खर्च करे उतनी खुद जनरेट भी करें। स्मार्ट होम्स जिसमें सेंसर्स और AI से वेस्ट कम और एनर्जी ज्यादा एफिशिएंट हो। 3D प्रिंटेड ग्रीन होम्स, चीप और फास्ट कंस्ट्रक्शन रिसाइकल्ड मटेरियल से। फ्लोटिंग सिटीज यानी के राइजिंग सी लेवल्स का सोल्यूशन। हम क्या कर सकते हैं? अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि हम क्या कर सकते हैं। घर बनाते वक्त सोलर पैनल्स कंसिडर करें, एनर्जी एफिशिएंट बल्ब्स और अप्लायंसेस यूज करें, वाटर लीक्स फिक्स करें और रेन वाटर कलेक्ट करें, बालकनी या रूफ पर प्लांट्स उगाएं, रेनोवेशन के वक्त नॉन टॉक्सिक प्लांट्स और इको फ्रेंडली मटेरियल्स का इस्तेमाल करें,
अगर हम रोड मैप देखें फॉर साउथ एशिया तो सबसे पहले तो बिल्डिंग कोड्स में ग्रीन स्टैंडर्ड्स मैंडेटरी होने चाहिए, सोलर और विंड एनर्जी पर सब्सिडीज मिलनी चाहिए, ट्रेनिंग और अवेयरनेस प्रोग्राम ज्यादा बढ़ने चाहिए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स लॉन्च की जाए। तो लिसनर्स, अभी तक मैंने आपको बताया कि ग्रीन आर्किटेक्चर में फोकस होता है रिन्यूएबल मटेरियल्स, एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम्स और डिजाइंस जो नेचुरल लाइट और एयर का मैक्सिमम यूज करें। अब थोड़ा सा जूम इन करते हैं कतर पर। यहाँ की एक शानदार एग्जांपल है लुसेल सिटी। ये कतर का एक फ्यूचरिस्टिक सिटी प्रोजेक्ट है जो सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। लुसेल सिटी में बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया है ताकि वो कम एनर्जी यूज करें, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है और वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स भी हैं जो पानी के वेस्टेज को कम करते हैं। इसके अलावा यहाँ की अर्बन प्लानिंग में ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली जोन्स को प्रायोरिटी दी जाती है। दिस मीन्स पीपल कैन वॉक और साइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स, रिड्यूसिंग पोल्यूशन। लुसेल सिटी एक मिसाल है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशनल विजडम को मिलाकर हम सस्टेनेबल शहर बना सकते हैं। लेकिन लिसनर्स, ये सिर्फ बड़े स्केल प्रोजेक्ट्स तक महदूद नहीं है, हर छोटा घर भी ग्रीन हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब हम अपने घर बनाते हैं या रेनोवेट करते हैं तो हम सोच सकते हैं कि कैसे हम इंसुलेशन को बेहतर कर सकते हैं ताकि गर्मी या सर्दी के लिए कम एनर्जी यूज हो, या फिर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस जैसे LED लाइट्स या स्मार्ट थर्मोस्टेट्स का यूज कर सकते हैं। दीज स्मॉल चेंजेस मेक अ बिग डिफरेंस। अब जरा सोचिए, जब हम अपने घर में अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करते हैं जैसे पुराने बल्ब्स जो ज्यादा बिजली खाते हैं या विंडोज जो गर्मी को अंदर आने देती हैं, ये सब एनवायरनमेंट पर बोझ डालता है। कतर जैसे मुल्क में जहाँ गर्मी ज्यादा है, एयर कंडीशनिंग का यूज कॉमन है, लेकिन अगर हम अपने घर की वॉल्स या विंडोज को थोड़ा सा इंसुलेट कर दें तो एसी का लोड कम हो सकता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम होगा। ग्रीन आर्किटेक्चर सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं बल्कि माइंडसेट के बारे में भी है। ये सोच है कि हम अपने प्लैनेट के साथ हार्मनी में कैसे रह सकते हैं। कतर में जहां सस्टेनेबिलिटी एक नेशनल प्रायोरिटी है, हम देख रहे हैं कि कैसे न्यू प्रोजेक्ट्स ट्रेडिशनल कतरी आर्किटेक्चर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं, जैसे विंड टावर्स जो नेचुरल एयर सर्कुलेशन के लिए यूज होता है। दिस ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू इज व्हाट मेक्स ग्रीन आर्किटेक्चर सो एक्साइटिंग। तो लिसनर्स, ग्रीन आर्किटेक्चर का मकसद है कि हम ऐसी बिल्डिंग्स बनाए जो ना सिर्फ हमारे लिए कंफर्टेबल हो बल्कि हमारे प्लैनेट के लिए भी सेफ हो। लेट्स मेक आवर होम्स एंड सिटीज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। तो लिसनर्स, हमने देखा अब तक ग्रीन आर्किटेक्चर बिल्डिंग फॉर टुमारो कि कैसे बिल्डिंग्स पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज का मेजर कॉज है और कैसे ग्रीन आर्किटेक्चर इस मसले का सलूशन बन सकता है। फ्यूचर की बिल्डिंग्स सिर्फ रहने की जगह नहीं होंगी बल्कि एक लिविंग सिस्टम होंगी जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगी, पानी सेव करेंगी और हेल्थ इम्प्रूव करेंगी। अगला सवाल ये है, आप अपने घर को कितना ग्रीन बनाने के लिए तैयार हैं? और क्या तैयार है इस वक्त एक ब्रेक लेने के लिए? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, सुनते रहे FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
1: लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रही हैं एफएम 107 पे सस्टेन द फ्यूचर विद आरजे महविश खान। और अब वक्त हुआ है हमारे ग्रीन फ्लैश सेगमेंट का।
0: ग्रीन फ्लैश,
1: दिस इज आवर ग्रीन फ्लैश सेगमेंट। सबसे पहली खबर है सिंगापुर के स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के बारे में। सिंगापुर में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जहां पूरा शहर स्मार्ट टेक्नोलॉजी के जरिए सस्टेनेबल बनाया जा रहा है। यहां बिल्डिंग्स में सेंसर्स लगे होते हैं जो एनर्जी यूसेज को मॉनिटर करते हैं और स्मार्ट ग्रिड्स इंश्योर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज ना हो। इसके अलावा यहाँ रूफ टॉप गार्डन और वर्टिकल फॉरेस्ट बनाए जा रहे हैं जो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। डेनमार्क में एक नया ट्रेंड है जीरो वेस्ट कंस्ट्रक्शन का। वहाँ आर्किटेक्ट्स ऐसे मटेरियल्स यूज कर रहे हैं जो रिसाइक्लेबल होते हैं और बिल्डिंग्स को डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें डिसमेंटल करके दोबारा यूज किया जा सके। दिस इज अ गेम चेंजर फॉर रिड्यूसिंग कंस्ट्रक्शन वेस्ट। फिर हम बात करते हैं मजदार सिटी जो कि यूएई में है। यूएई का मजदार सिटी एक और मिसाल है जहां पूरा शहर रिन्यूएबल एनर्जी पर चलता है। यहां सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन से बिजली बनाई जाती है और बिल्डिंग्स को डिजाइन किया गया है ताकि वो नेचुरल कूलिंग सिस्टम्स यूज करें। ये शहर दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट है कि कैसे हम सस्टेनेबल अर्बन लिविंग अचीव कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सेगमेंट ग्रीन इनोवेशन स्पॉटलाइट पे।
0: ग्रीन इनोवेशन,
1: आज हम स्पॉटलाइट डाल रहे हैं मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन पर। ये एक ऐसा तरीका है जहां बिल्डिंग्स को फैक्ट्री में प्री मेड पार्ट्स में बनाया जाता है और फिर उन्हें साइट पर असेंबल किया जाता है। इससे कंस्ट्रक्शन टाइम और वेस्ट दोनों कम होते हैं। एक कंपनी, नाम नहीं लूंगी, लेकिन उसने ये टेक्नोलॉजी यूज करके एक स्कूल बिल्डिंग सिर्फ 3 महीने

0: मशीनों में बना दिया जो ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन से 50% कम कार्बन इमिशंस प्रोड्यूस करता है. Isn't that incredible? मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन का आइडिया है कि हम फास्ट, एफिशिएंट और इको फ्रेंडली तरीके से बिल्डिंग्स बना सकें. और अब वक्त हुआ है इको लिविंग टिप्स का. चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप अपने रोजाना की जिंदगी में यूज कर सकते हैं ताकि आपके घर भी ग्रीन हो जाएं.
1: इको लिविंग टिप्स.
0: सबसे पहले याद रखिए, इंसुलेशन इज की. अपने घर की वॉल्स या विंडोज को इंसुलेट करें. ये गर्मी या सर्दी दोनों को कंट्रोल करते हैं जिससे एसी या हीटर का यूज कम होता है. दूसरी टिप है स्विच टू एलईडी लाइट्स. पुराने बल्ब्स को एलईडी लाइट से रिप्लेस करें. ये 80% तक एनर्जी सेव करते हैं और ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं. यूज एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस. जब भी आप न्यू अप्लायंसेस खरीदें, एनर्जी स्टार रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स चुनें. ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है जो लॉन्ग टर्म में पैसा और एनवायरनमेंट दोनों बचाती है. एड प्लांट्स टू योर होम. इंडोर प्लांट्स ना सिर्फ एयर क्वालिटी बेहतर बनाते हैं बल्कि आपके घर को नेचुरल कूलिंग भी देते हैं. ट्राई दीज टिप्स एंड सी द डिफरेंस. अब वक्त हुआ है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का. अब सुनते हैं एक इंस्पायरिंग वॉइस जो हमें सस्टेनेबिलिटी के बारे में मोटिवेट करेगी. ये है एक ऑडियो क्लिप फ्रॉम अ रीनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट जो कतर में इको फ्रेंडली अर्बन प्लानिंग पे काम कर रहे हैं.
1: Voices of the planet.
2: Qatar Green Building Council is one of the community development centers to establish more green buildings in Qatar. In 2014 and 2015, there were lots of green buildings established already in Qatar. However, we found a gap of people's understanding of how to live and work and deal with green buildings. And that's where we started raising awareness on we as people, how we can change in our day-to-day life to become more sustainable. We have our big national campaign, Qatar Sustainability Week, which started back in 2016. Over the past few years, we have around 150,000 people taking part in Sustainability Week. Government organizations, we have commercial companies, schools, hotels, community groups, and individuals taking part in the week. They can go on the Sustainability Week website. They can check all of the different events and activities that are taking place, and they can go and attend. One more way to take part in Sustainability Week is to register a pledge. And this is something that we introduced in 2020. And when people look at the list of pledges they can make, it can give them ideas of the things that they can change in offices from the corporate side or in their day-to-day lifestyle on the individual side. To get more information about Qatar Sustainability Week, you can go to www.qatarsustainabilityweek.com. So far, we've got around more than 100 events that are already registered, and we are hoping more will be coming in the next 3 weeks. And we urge you to register your own. Join our national campaign to be part of the change movement for Qatar and for a greener Qatar. Sustainable living, better tomorrow. I love Qatar.
0: जी लिसनर्स, अभी आपने सुनी हमारी आज की वॉइस और ये आवाज हमें याद दिलाती है कि हम सब ने कैसे अपने हिस्से का काम करना है. Let's be part of this change. अब हम चलते हैं आज के टेक अवे चैलेंज की तरफ.
1: Weekly challenge.
0: Listeners, हर हफ्ते हम आपको एक सस्टेनेबिलिटी चैलेंज देते हैं और आज का चैलेंज है स्विच टू एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग. इस हफ्ते अपने घर के कम से कम 2 बल्ब्स को एलईडी लाइट से रिप्लेस करें. ये छोटा सा स्टेप आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल और प्लैनेट दोनों के लिए अच्छा है. अगले हफ्ते हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया. रीड आउट टू अस ऑन FM 107 कदर.

0: शुक्रिया लिसनर्स कि आपने आज का शो सस्टेन द फ्यूचर सुना। उम्मीद है कि आपको ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला और आप इंस्पायर्ड हैं अपने घर और शहर को सस्टेनेबल बनाने के लिए। अगले हफ्ते हम बात करेंगे एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक पर, द रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबिलिटी। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स और यूथ एनवायरमेंटल चेंज के लिए लीड कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ग्रीन और अपनी थॉट्स शेयर करें एट FM 107 कतर या व्हाट्सएप पे 666-222-107। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज और टेक केयर ऑफ आवर प्लैनेट।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: Anytime, anywhere.
3: Yes, anytime, anywhere.
2: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107। Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
4: जिंदगी हर रोज नई कहानियाँ लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।
5: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
6: आज ही राब्ता करें
5: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
7: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर,
8: माहिरीन की राय पर।
7: लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड,
8: हेल्थ गाइड,
7: जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक,
8: इलाज और एहतियात तक।
7: सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी,
8: दिल से देसी।
7: याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
9: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं, और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है। सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए। सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ऐसी सिचुएशन में सही फैसला लेना आपकी जिंदगी और मौत का फर्क बन सकता है, इसलिए अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करें और आग लगने की सूरत हाल में लिफ्ट से हर सूरत परहेज करें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
10: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है, फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
11: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल करते वक्त सेफ्टी गाइडलाइंस पर अमल करना एक्सीडेंट्स को रोकता है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बरकरार रखने में मदद देता है। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए कुछ जरूरी इकदाम जानिए। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल सेफली करें, मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करें, ज्यादा स्पीड पर ना चलें, रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहने और स्कूटर की लाइट ऑन रखें, हमेशा हेलमेट ठीक तरह से पहने। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स या ई स्कूटर्स राइडर्स को अपनी और दूसरे रोड यूजर्स की सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सेफ्टी रूल्स फॉलो करनी चाहिए। ई स्कूटर्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बाइसाइकिल के बराबर हैं, जैसे राइडर्स का हेलमेट पहनना और फ्रंट और बैक पर लाइट्स लगाना। ई स्कूटर राइडर्स को रिफ्लेक्टिव वेस्ट पहननी चाहिए जो दूसरे रोड यूजर्स को दिखाई दें। उन्हें रोड पर डेजिग्नेटेड जगह इस्तेमाल करनी चाहिए जो या तो साइड वॉक्स पर या रोड क्रॉसिंग के साइड्स पर हैं, जो पेडेस्ट्रियंस के लिए डेजिग्नेटेड होती हैं, बिल्कुल साइकिलिस्ट की तरह। याद रखिए, ई स्कूटर से होने वाले वायोलेशंस बाईसाइकिल एक्सीडेंट्स की तरह ही होते हैं। अगर ई स्कूटर राइडर एक्सीडेंट का सबब बनता है तो वो दूसरी पार्टी को होने वाले नुकसान का जिम्मेदार होगा। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

0: हर हफ्ते नए सरप्राइजेस और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग. तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी.
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर. मैं हूं आपकी आरजे माविश खान. आज हम बात करेंगे कनाद यानी कंटेनमेंट के बारे में. कनाद का मतलब है कि जो कुछ अल्लाह ने दिया हो उस पर राजी रहना. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो इंसान को अंदर से अमीर बना देती है. अक्सर लोग दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी से डिससैटिस्फाई हो जाते हैं. ये सोच बेचैनी और स्ट्रेस का सबब बनती है. कनाद सिखाती है कि हम अपनी नेमतों की कदर करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें. जब इंसान कनाद अख्तियार करता है तो उसका दिल सुकून से भर जाता है. ये मतलब नहीं कि इंसान मेहनत करना छोड़ दे, बल्कि ये कि वो अपनी हालत पर शुक्र के साथ जिए और बेहतरी के लिए कोशिश भी करता रहे. आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी की अच्छी चीजों पर फोकस करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहें. ये था हमारा आज का मैसेज. आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ.

बहुत ही खूबसूरत और बड़ी अच्छी बात आपने की, वापस से हम लोगों को भी आप ले गई उसी पुराने दौर में जहाँ पर ये कल्चर था कि लोग जो है ना वो नुक्कड़ पे मतलब चौराहों पे जमा होना, बात करना, एक दूसरे से जो है ना पूरे दिन का हाल चाल लेना एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो वाकई अच्छा, मैं अभी ये भी देख रही थी कि आपने जो है फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की और उसके बाद अपना पूरा अपनी पूरी रुचि जो है वो साहित्य की ओर आप ले गई. तो इस

0: से ही थोड़ा सा रिलीफ मिला और बच्चों में लग गई. लेकिन क्या होता है कि जैसे हम दुबई आए तो दुबई में दुबई सबको काम सिखा देता है.
1: बिल्कुल.
0: तो दुबई में जैसे ही आए तो वहाँ मैंने अपना जस्ट सीवी डाला और मुझे शिक्षिका का ऑफर मिल गया और मैं वहाँ पर पढ़ाने लगी. तो उसके बाद साहित्य, क्योंकि हिंदी शिक्षिका का ऑफर मिला था तो मैं साहित्य की तरफ रुचि और बढ़ती चली गई. तो जो बचपन का सपना था कुछ लिखने का वो फिर थोड़ा पूरा होना शुरू हो गया.
1: बहुत सही. अच्छा, ये तो आपने, मतलब ये हम भी जानते हैं और सुना भी है मैंने आपके फ्रेंड से कि आपको जो है ना कविता लिखने का शौक, जो इसकी शुरुआत हुई वो बचपन से ही हो गई थी, तभी आपने स्टार्ट कर दी था. क्या आपको याद है कि पहली कविता आपने किस विषय पर लिखी थी और वो क्या प्रकाशित हो पाई थी?
0: जी, पहली कविता तो खैर जैसे मतलब गुड़िया तोता इस तरह की थी, तो वो स्कूल की मैगजीन में होती थी. लेकिन जो मेरी पहली कविता समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी वो थी गांधी जी के ऊपर.
1: अच्छा,
0: तो कोई कुछ पंक्ति सुनना चाहेंगे आप उसमें?
1: जी जी, प्लीज प्लीज गो अहेड.
0: तो इस कविता का नाम था लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. देश में बढ़ रही है भ्रष्टाचार की आंधी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. सच्चाई और अहिंसा की हंसी जमाना उड़ा रहा, नैतिकता का पाठ अब किताबों से भी जा रहा. विदेशी बाजार के सामने देसी टोपी है जला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी. वैसे इसके बहुत सारे स्टेंजा हैं, मैं अंतिम बताती हूँ. वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, वैसे तो हर साल हम 2 अक्टूबर मनाते हैं, झंडा फहराकर याद करते छुट्टियाँ मनाते हैं. पर हमने आज तुम्हारी हर बात भुला दी, लेना होगा तुमको दूसरा जन्म ओ गांधी.
1: बहुत ही अच्छा. और आज के जो, मतलब वही हम कहते हैं ना कि जो ऑथर हैं या जो कवि हैं या कवित्री हैं, वो बड़े ही सटीक और सरल अंदाज में जो समाज के जो विभिन्न विभिन्न समस्याएं हैं, जो पहलू हैं, जो एक आम आदमी अपने दृष्टिकोण से जैसे देखता है तो वो उस तरह से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो कि एक ऑथर या पोएट या पोएटिस्ट उसे बहुत ही अच्छे तरीके से उजागर, बड़े सभ्य अंदाज में उसे उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं से सोल्यूशन निकलते हैं. इसीलिए इस बात को बड़ी इज्जत भी दी जाती है हमारी सोसाइटी में जितने पोएट्स हैं. लेकिन आज का दौर थोड़ा सा अलग हो गया, अलग तरह की राइटिंग को ज़्यादा प्रमोट किया जाता है. लेकिन क्योंकि मैंने, आपने मुझे बताया कि आप जो थी वो आप शादी के बाद आप दुबई चली गई, तो दुबई और कतर जैसे देशों में जो आपका प्रवास रहा उसके दौरान हिंदी भाषा के साहित्य के प्रचार और प्रसार को लेकर किस तरह का आपका अनुभव रहा?
0: हिंदी प्रचार का तो मुझे यहाँ पर अनुभव ज़्यादा अच्छा मिला, क्योंकि वहाँ तो मैंने स्कूल में ही पढ़ाया था.
1: अच्छा.
0: और यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम आए तो मेरे पति के ऑफिस में ये था कि उनको एक हिंदी अध्यापिका की ज़रूरत थी, क्योंकि वो अपने वर्कर, अपने जो मैनेजर वगैरह फ्रेंच लोग थे उनको हिंदी सिखाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए.
1: अच्छा.
0: तो फिर वहाँ पर उन्होंने ये हिंदी टीचर की उनको ज़रूरत थी, तो मैंने अपना CV उधर डाला और उन्होंने अप्रूव कर लिया. और बड़ा अच्छा वो समय निकला, बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि अनेक देशों के लोग थे, उनके साथ बातें करने में, उनको जानने में और अपने अपने देश के बारे में बताने में, अपनी हिंदी के बारे में बताने में बहुत ही अच्छा
1: अनुभव. क्योंकि आपने कहा आपने बहुत सारे विभिन्न देशों के लोगों को जो है वो हिंदी सिखाया, तो आपका अनुभव तो बहुत ही अद्भुत रहा. तो कोई आपकी विशेष स्मृति है जो आपके दिल के बड़े करीब है जब आप सिखा रही थी?
0: जब सिखा रहे थे तो मतलब एक तो मतलब जैसे हम लोग जब हिंदी पढ़ते थे तो हम लोग व्याकरण में ये नहीं देखते थे कि यहाँ पर मैंने क्यों आया, मैं क्यों आया, काके की क्यों आए. पढ़े थे हमने ये कर्ण करता नहीं कर्म को कर्ण से, लेकिन हमने इस पे ध्यान नहीं दिया था कि कहाँ पर कैसे आना चाहिए. और हमारी व्याकरण की किताबों में भी होता है लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया था. तो जब वो लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों, मैं गया और मैंने खाया, पास्ट टेंस है लेकिन दोनों में अंतर क्यों है, तो फिर ध्यान दिया, हाँ सकर्मक क्रिया कर्मक क्रिया बताई थी, तो फिर उन चीज़ों को समझाती थी एक एक चीज़ अपने आप समझ के कि हाँ ऐसा इसलिए होता है. और एक जो स्मृति है कि जैसे हम लोग हिंदी में बहुत ज़्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करते हैं.
1: हाँ जी.
0: तो वो लोग मुझसे कहते थे नहीं नहीं नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं तुम कल कहाँ गए थे इस पर कोई वाक्य बताइए. हाँ. तो वो कहते थे कि मैं कल स्विमिंग पूल गया. तो मैंने कहा ठीक है. नहीं ठीक क्यों है, स्विमिंग पूल की हिंदी तो पहले बता दीजिए. तो अब मैं कहूँ कि स्विमिंग पूल को तरण ताल बोलोगे आप, क्या बोलोगे? तो कहते
1: मुझे तो पता
0: नहीं, हम बोल लेंगे, हम तरण ताल बोलने में हमें तकलीफ नहीं है, हम बोल सकते हैं.

0: वाले लोग नहीं समझ सकेंगे।
1: ये तो इसको समझने के लिए पूछेंगे अंग्रेजी में, इसको कुछ बोल दीजिए।
0: तो ये चीज मुझे बहुत टच कर गई कि हम लोग हिंदी में हमने इतने ज्यादा अंग्रेजी शब्द लगा दिए हैं कि हम लोग अपनी हिंदी में शुद्धता खोते जा रहे हैं,
1: खोते जा रहे हैं। और तो, कहीं ना कहीं इस भाषा की अगर मैं वैसे भी बात करूं तो बच्चों को आज घर में जो है वो पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि आप इंग्लिश में बात कीजिए, घर में भी बच्चे इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे में हिंदी या फिर कोई और भी दूसरी जबान जो है वो बच्चा कैसे इतना आसानी सीखेगा। और यही शायद वजह है कि हिंदी से बच्चों की रुचि भी धीरे धीरे कम हो रही है।
0: हाँ, हम लोगों को कम से कम अपनी जो भाषा है उसको घर में तो बोलना ही चाहिए, अंग्रेजी बच्चे बाहर आराम से सीख जाते हैं।
1: तो और अच्छा है कि जितनी ज्यादा आपको लैंग्वेजेस आ जाए हाँ। तो कोशिश ये रहे कि भाई
0: आगे की और लैंग्वेज सीखने में भी बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है जब हम दो तीन लैंग्वेज को जानते हैं तो।
1: बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद।

0: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
1: जी, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये भी लाइन बड़ी जो है वो अच्छी लगी, जब आपने कहा कि पहली बार हिंदी दिवस समारोह में आपने मंच पर जो है वो अपनी कविता प्रस्तुत की, तो वो आपका अनुभव कैसा था?
2: हाँ, वो अनुभव बहुत अच्छा था।
1: अच्छा,
2: क्योंकि शो में क्या होता है कि आप जब माइक पकड़ के खड़े होते हैं तो थोड़ा सा आपको डर भी लगता है, और जब सुनाने के बाद इतनी सारी तालियां मिलती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एक आत्मविश्वास जागता है और एक आपको एक पहचान मिलने लगती है।
3: नाजिया जी, और अभी 6 सितंबर को हमने प्रोफेसर हिम्मत सिंह सिन्हा की याद में ICC में एक प्रोग्राम किया था कतर में, और वो प्रोग्राम वाकई बहुत ही अच्छा रहा। महिला काव्य मंच ने जिस तरह से हमको सपोर्ट किया है शुरू से, वो वाकई काबिले तारीफ है। और महिला काव्य मंच की कवियत्रियाँ भी जो उस दिन स्टेज पे आई, वो भी वाकई अद्भुत था। बहुत ही क्या कहना चाहिए, अच्छी कविताएं उन्होंने पढ़ के सुनाई,
2: तो बहुत अच्छा अनुभव था। सब लोगों ने जब तारीफ की कि आपने लिखी है ये, बहुत सुंदर आपके भाव, जो हम भी यही फील करते हैं कि उसमें था कैसे भूलूं मैं अपना प्यारा हिंदुस्तान, तो बहुत अच्छा सबको लगा। और उन्हीं लोगों के जब दूसरों से हमें इतना ज़्यादा आशीर्वाद मिलता है, तारीफ मिलती है, तो कलम और ज़्यादा दौड़ती है
1: अच्छा, यहाँ पर भी आप कतर में जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, उसे हेड कर रही हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने का आपका क्या मतलब, क्या आपने सोचा था, किस तरह का आपका एक्सपीरियंस है और कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्चुअली शुरुआत हुई?
2: जी, ये ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली काफ़ी देशों में इनका

0: उसमें हम लोग हर महीने ऑनलाइन ही काव्य पाठ करते हैं, उसमें कथा के सब कवि कवित्रियाँ होते हैं और बाहर के देशों के भी होते हैं. तो इस तरह से हमारा पूरे विश्व के कवि कवित्रियों से हमारा संपर्क बढ़ जाता है, सबको सुनने को मिलता है, हाँ सबके विचार जाने को मिलते हैं.
1: क्या बात है. तो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू सिर्फ कवि आप लोग इकट्ठे होकर जो है वो एक दूसरे के कविताएं सुनते हैं, या इसके अलावा भी कुछ और एक्टिविटीज आप करते हैं कि जिससे बच्चों में भी इस तरह का शौक जो है वो बढ़े या प्रमोट?
0: हाँ, इस बारे में अभी सोचा नहीं है, लेकिन अभी जो हमने यहाँ पर एक कार्यक्रम किया था, हमने हिम्मत सिंह जी के उसमें कार्यक्रम किया था, तो उसमें जो हिम्मत जी सिंह जी के बारे में जो उनका शिक्षा का उन्होंने इतने कार्य किए, उन्होंने दर्शन क्षेत्र में बहुत कार्य किए, तो उसके बारे में गोष्ठी रखी थी और एक बच्चा जो उनसे मिला था उसने भी बहुत अच्छा, ईशान था, उसने बहुत अच्छा बोला. तो इस तरह से मीन्स हम लोग गोष्ठी करते हैं और आगे और भी करते रहेंगे, ये हमारा कोशिश है.
1: अच्छा, कितनी किताबें अभी तक आप पुस्तकें जो हैं वो लिख चुके हैं?
0: जी, अभी मेरी वैसे प्रकाशित तो दो हुई हैं, लेकिन मेरी दो किताबें और बिल्कुल प्रकाशाधीन हैं, कि जैसे एक तो आओ हिंदी सीखें करके भी है. अच्छा. और एक मेरी कविताओं गज़लों की है, तो वो अभी उसमें बस थोड़ा सा ये होता है इसमें ये अभी चेंज करना है वो करना है, और बाकी दो किताबें मेरी प्रकाशित.
1: लिखने की प्रेरणा जो है वो कहीं ना कहीं माहौल से या फिर घर में कोई ऐसा होता है उससे भी मिलती है, तो आपकी रोल मॉडल कौन रहे?
0: मेरे रोल मॉडल एक्चुअली मेरे दादाजी बहुत अच्छा बोलते थे, ये मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि वो लिखते थे कि नहीं, लेकिन जब भी वो बैठते थे तो कुछ ना कुछ कविताओं में हम लोगों को प्रेरित करते रहते थे, तो उनकी आवाज़ में भी बहुत दम था. तो मैं कह सकती हूँ हाँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है, क्योंकि जब भी वो हमारे पास बैठते तो कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे. और बाकी लिखने की प्रेरणा तो यही है, अध्ययन वगैरह करते हैं तो शुभ जागते हैं.
1: बहुत ही अच्छी बात. अच्छा, आपकी जो रचनाएं हैं वो कई विश्व रिकॉर्ड्स और साझा संकलों में प्रकाशित हुई हैं, तो इस अंतर्राष्ट्रीय पहचान को आप कैसे देखती हैं?
0: बहुत अच्छा लगता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय आपको पहचान मिलती है, गौरव प्रतीत होता है कि हाँ, अपनी लेखनी पर भी गर्व होता है कि और ये सब कुछ ईश्वर की कृपा से होता है कि हम सोचते कभी कभी सोचते कुछ और लिखा कुछ और जाता है, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि जब एक पहचान बनने लगती है आपकी और नारी होने के बाद तो होने उसमें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ, क्योंकि हम अपना बच्चे बड़े हो गए अब तो हम पूरा लाइफ उसमें निकल जाती है बच्चों के साथ में.
1: सही, बहुत ही अच्छी बात आपने बताई. अच्छा, आप नहीं हैं शिक्षिका और आपने बताया कि हिंदी भाषा को आपने बच्चों मतलब हिंदी भाषा को पढ़ाया भी है, बच्चों को सिखाया भी है. आजकल जो मैं देखती हूँ बच्चे जो हैं वो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा कठिनाई महसूस करते हैं, तो किस तरह से मतलब क्या आप पेरेंट्स को क्या एग्जाम्पल दें, मतलब किस तरह से आप चाहेंगे कि पेरेंट्स को मोटिवेट किया जाए, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करें जिससे कि बच्चों की रुचि हिंदी भाषा की तरफ भी बढ़े?
0: एक तो आजकल बच्चे बैठना ही नहीं चाहते पेरेंट्स के पास, तो सबसे पहले तो बच्चों को अपने पास बिठा के उनसे नॉर्मल जो बातें रूटीन है वो थोड़ा सा हिंदी में करने की कोशिश करें, तो बच्चे भी फिर हिंदी में जवाब देते हैं. अगर हम उनसे अंग्रेजी में बात करेंगे तो वो अंग्रेजी में जवाब देंगे. तो

0: ख्याल से कुछ गेम के थ्रू. वैसे तो उनको बोल मतलब उनके साथ हम इसी तरह से बात कर सकते हैं कि अपने जो भी है कुछ हिंदी में बताओ, अच्छा लगेगा सुन के. उनसे तो बातें जितनी ज़्यादा करेंगे वो उतने ज़्यादा सहज होंगे बात करने में.
1: अच्छा, अभी आप जो हैं और किस तरह की राइटिंग्स की तरफ जो है खुद को जो है आपने डेडिकेट किया है, और आने वाले टाइम में किस तरह की जो है आपके राइटर्स हमें पढ़ने के लिए मिल सकते हैं?
0: अभी मैं थोड़ा गज़लों पे भी ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ.
1: अच्छा,
0: तो गज़ल की तरफ भी थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ा है. और छंदों, इससे पहले मैंने छंदों की तरफ ज़्यादा कोशिश की थी लिखने की. तो मुझे एक्चुअली शब्दों से खेलना बहुत अच्छा लगता है.
1: अच्छा,
0: तो जब इसमें छंदों में, गज़लों में बहुत कुछ, जब हम अनुप्रास अलंकार में लिखते हैं या एक शब्द के दो तीन मीनिंग निकलते हैं तो उसको लिखते हैं, तो वो बहुत अच्छा. तो इन्हीं चीज़ों में मैं आगे
1: बढ़ रही हूँ. अच्छा, लिखने की जब बात आती है तो कहा जाता है कि पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है. अगर आप बहुत सारे जो हैं वो पोइट्स को या ऑथर्स को पढ़ेंगे तभी आप अच्छा लिख पाएंगे. तो आपके एक तो मुझे बताइए कि प्रिय कवि कौन है, और दूसरा जब आप लिखती हैं तो किस तरह के माइंडसेट और किस तरह के अप्रोच जो है वो अडॉप्ट करती हैं, जिसे हमारे अगर यंगस्टर्स या बच्चे सुन रहे हैं और वो भी इस तरह से राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव और इन्हांस करना चाहें, तो उन्हें उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे?
0: जैसे राइटिंग में तो मतलब हमने जो स्कूल में पढ़े थे, मेनली रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गई, इनको पढ़ते थे. लेकिन कभी कभी इनकी हिंदी, जैसे महादेवी वर्मा जी की हिंदी कठिन है, तो जिनकी हिंदी सरल होती थी थोड़ा हमें वो उनका ज़्यादा अच्छा लगता था. तो मीन्स हम लोग अभी जब साहित्य पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा सुंदर शब्द आते हैं तो उन पर हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है कि हाँ ये वर्ड कितना अच्छा है. तो ये सब इसी से मैं प्रेरित होकर फिर लिखने की कोशिश करती हूँ.
1: वेरी गुड. बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा इस शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक के बाद.

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: Absolute cinema.
4: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
5: मेहतराज है, अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है, बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराश ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
6: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारती दाखिला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
7: सब कुछ मिलेगा यहाँ।
6: ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। Don't miss it.
7: Don't miss it.
4: घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है।
8: अच्छा, आप एक तो राइटिंग आपका शौक है, इसके अलावा और क्या क्या आपकी हॉबीज हैं? और अगर टाइम मिलता है तो क्या करना पसंद करती हैं?
9: इसके अलावा तो फ्रेंड्स वगैरह के साथ कभी बाहर निकल गए या उनके साथ बैठकर गप्पे मार ली, और कुकिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट है तो कुकिंग तो करते ही हैं, और थोड़ा पेड़ पौधों के साथ समय निकाल लिया।
8: तो आप अपनी जो सोशल लाइफ है, जो जहां आप एक्टिव भी हैं, आप एसोसिएशन को भी हेड कर रही हैं और भी काम आप कर रही हैं आई एम श्योर, तो आप अच्छे से बैलेंस कर पाती हैं, टाइम अच्छे से मैनेज हो पाता है?
9: हाँ, टाइम मेरा मैनेज हो जाता है। मुझे थोड़ा सा ये भी है कि मैं कहाँ पर हाँ कहनी है, कहाँ पर ना कहनी है।
8: अच्छा,
9: उसको भी थोड़ा सा, क्योंकि आप हर चीज़ में हाँ हाँ कहते जाएंगे तो उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का टाइम का ध्यान रखती हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान देती हूँ।
8: बहुत सही। आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं?
9: आगे मेरा यही है कि अपने हर साल अगर मेरी एक किताब छप जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, और बस साहित्य की सेवा कर सकूं, हिंदी की सेवा कर सकूं, अपने देश के लिए कुछ कर सकूं, यही है,
8: यही कामना है
9: जी।
8: अच्छा, आपके अनुसार जो प्रवासी जीवन है उसमें हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने के लिए सबसे ज़रूरी तत्व क्या है?
9: हिंदी भाषा और साहित्य को जीवित रखने जी। के लिए जी, तो सबसे जरूरी तत्व तो यही है कि हम लोग पहले तो हिंदी में ही बात करें। अगर हम हिंदी में बातें करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी आपस में हम एक ही शहर के हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, लेकिन हम तब भी हिंदी में बात करने में आजकल कंफर्टेबल नहीं है कह सकते हैं, या फिर हम बस बाहर जाते हैं तो अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करते हैं, ये कह सकते हैं. तो हमें आपस में हिंदी में बात करें, क्योंकि उससे जो दिल की बातें होती हैं, आप आध घंटे एक घंटे खूब लंबी बात कर सकते हैं जब आप हिंदी में बात करते हो. तो कोशिश करें कि हाँ, बाहर हम दूसरे कंट्री में रहते हैं तो इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें इंग्लिश ही बोलनी है जब बाहर किसी से भी बात करनी है. लेकिन जब हम आपस में अपने देश के लोगों से मिलते हैं तो कोशिश करें कि हिंदी में बातें करें, हिंदी में अपनी दिल के
8: विचारों को व्यक्त करें.
9: जी बिल्कुल.
8: अच्छा देखिए, लाइफ सबकी जो है वो शायद दिखती आसान है लेकिन आसान होती नहीं है. किसी ना किसी मोड़ पे कहीं ना कहीं सभी ने चैलेंजेस फेस किए होते हैं. तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे चैलेंजेस थे जिन्होंने आपको और स्ट्रॉन्ग बनाया एज अ वुमन, और कोई स्टोरी, कोई कहानी आप शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के लिए, इंस्पायर करने के लिए उन्हें?
9: मतलब चांस ऐसा होता है कि जैसे कभी कभी आपके घर में ही जैसे हस्बैंड हैं वो कभी मना करते हैं कि नहीं, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उस पर घर में ज़्यादा ध्यान दो. तो ये चीज़ें भी हो जाती हैं कई बार, अपने घर में ही चैलेंजेस आ जाते हैं. और बाकी वैसे ईश्वर की कृपा ही कि मुझे ज़्यादा चुनौतियों का सामना जीवन में नहीं करना पड़ा.

0: जहां मैंने चाहा ईश्वर ने मेरा साथ दिया है, तो
1: बहुत ही अच्छी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू शालिनी जी कि आपने टाइम निकाला और आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारी ऑडियंस के साथ शेयर की.
0: थैंक यू सो मच राजेश.
1: थैंक यू. इसी के साथ दोस्तों वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107.

0: एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो शुरू हो गया है जिसका नाम है रिव्यू ऑफ द वीक। इस हफ्ते एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ भाई साहब, आपका दिल ना खुश ना हो जाए तो बताना। मतलब सालों आपने, दशकों कह सकते हैं, आपने इसका इंतजार किया है यार। ये मूवी में इमरान हाशमी है, दिशा पटानी है, पटनी, ठीक है, अलग अलग लोगों का कहना है, दिशा पटनी है, शबाना आजमी है, पूरन गब्बी है, सुविंदर है, विजयकांत कोहली है, वो अपने वाले कोहली नहीं दूसरे वाले कोहली है, लेकिन बेहतरीन स्टार कास्ट है। और साथ ही साथ सबसे जो लाजवाब बात है इस मूवी के बारे में, जो लोग बात कर रहे थे इसके गाने, इसकी स्टोरी और फिर पुरानी जो बातें हैं, क्या वो पुरानी बातें वापस आ पाएंगी? कई लोगों को पता चल गया होगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम

0: मैं ये कहना चाहता हूँ बस देख लो इसके बारे में डिटेल में मैं जाना नहीं चाहता लेकिन काम है अपना यार करना तो पड़ेगा ही तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से बात करना और सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया इमरान हाशमी है दिशा पाटनी है शबाना आजमी है पूरन है और सुविंदर के साथ विजयकांत कोहली है लाजवाब ये मूवी के स्टार कास्ट है सबसे पहले इस मूवी का मूड कैसा है इस पर बात कर लेते हैं
1: कैसी सजा कितनी हसीन शक्ल है मौत से मिलने का शौक है तुम्हें
0: दोस्तों आवारापन 2 का मूड बिल्कुल इंटेंस डार्क और इमोशनल है बिल्कुल पहले पार्ट की तरह जब आप फिल्म देखने बैठते हैं तो आपको वही पुराना दर्द शिद्दत महसूस होती है जो 2007 में थी स्टोरी में

0: फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और लाइटिंग इस डार्क ऑरा को और ज्यादा बेहतरीन बनाती है। और अभी तक आपके सोशल मीडिया पे मीम के जरिए या फिर छोटी वीडियो क्लिप्स के जरिए है ना कुछ फोटोज आई होंगी जिसमें आपको समझ में आ गया होगा किस तरह की थीम का इस्तेमाल है। अगर आप थीम वगैरह फोकस करते हैं तो हर सीन में एक हैवी फीलिंग होती है जो आपको सिखाती है कि गुनाह और पछतावा क्या होता है।
1: मौत, मेरा उससे एक पुराना रिश्ता है, एक कर्ज है जो मुझे चुकाना है।
0: एक्शन सीन्स बिल्कुल ग्रिटी और रॉ रखे गए हैं इसमें, जिसमें कोई भी फालतू का ड्रामा नहीं है बल्कि एक दर्द जो है वो छुपा हुआ है। डायरेक्टर नितिन कक्कड़ ने कोशिश की है कि वो मोहित सूरी का वो क्लासिक अंदाज बरकरार रखे। कुछ सीन्स में जब तेरा मेरा रिश्ता का म्यूजिक धीमे से बजता है तो थिएटर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। वहां पर बैठे हर एक बंदे को गूजबम्स आ जाते हैं और दिल थोड़ा भारी हो जाता है। दिशा पाटनी और शबाना आजमी के कैरेक्टर्स इस इमोशनल सफर को थोड़ा और सपोर्ट करते हैं। हालांकि अगर आ गया तो आपको समझ में आ गया, अच्छा कुछ कमी भी है। वेल, रोमांस पे थोड़ा कम फोकस है इसमें, इस मूवी में, पर मूवी का जो मूल

0: या मेन मकसद है वो शिवम के अंदर की लड़ाई पर है। अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जो डुबा दे और रुला दे और अंदर तक हिला दे तो इसका मूड आपके लिए परफेक्ट है। लेकिन अगर आप ऐसे हैं कि नहीं यार मेरे को एक्शन मूवी देखनी है, मेरे को कुछ और देखना है, कुछ फनी देखना है, तो ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर दिल से कनेक्ट करना है तो आवारा पॉइंट 2 आपके लिए ऑब्वियसली।
1: कुछ लोगों की कहानियां उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती, उनकी कहानी दूसरों के लिए लिखी जाती है।

0: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा।
1: ये कोई हंसी मजाक वाली या हल्की फिल्म नहीं है, ये एक गंभीर और गहरी कहानी है। हर एक डायलॉग और फ्रेम में आपको एक अजीब सा सुकून और दर्द दोनों साथ में मिलेंगे। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका सच्चा और भारी इमोशनल टोन जो एंड तक आखिर तक चलता है। इस मूवी की हाइप कैसी थी दोस्तों, हाइप के बारे में भी बात कर लेते हैं। इस मूवी का हाइप नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि यार फैन आज से थोड़ी इंतजार कर रहे हैं, पिछले 19 साल से शिवम पंडित के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ, आवारापन 2 का अनाउंसमेंट हुआ, इंटरनेट पर तो सुनामी आ गई भाई साहब, लोगों की या फैंस की, लोगों का पूरा भरोसा जो है वो हो नहीं पा रहा था कि अरे ये वापस आ रहे हैं, मेरा जो फेवरेट कल्ट कैरेक्टर है, कल्ट कैरेक्टर वो वापस आ रहा है। तो ये सवाल जो है वो लोगों में था, और ये भी सवाल था कि पता नहीं यार ये मूवी उस तरह से चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, हवा तो बहुत ज्यादा बना हुआ है। लेकिन ट्रेलर आते ही लोग पुराने दिनों में खो गए थे। टीजर में जब तो फिर ये धुन सुनाई दी ना, तो लोगों का एक्साइटमेंट जो है वो डबल आसमान छू गया था लोगों का एक्साइटमेंट। और एडवांस टिकट की बुकिंग के मामले में इस फिल्म ने इतनी तेजी पकड़ी, जिसने 2007 वाली ओरिजिनल फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन जो है वो रिलीज से पहले ही क्रॉस कर दिया। एक होता यह कि भाई जो पहली मूवी आई उसका जो लाइफ टाइम कलेक्शन था वो रिकॉर्ड सिर्फ बुकिंग में टूट गया, तो ये तो भाई लाजमी होना भी था। और इसका जो प्रमोशन है वो दबाकर चल भी रहा था, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड पर रिलीज होने की वजह से थिएटर्स जो है ना वो एकदम खचाखच भरे हुए थे। लोग सिर्फ इमरान हाशमी का वो विंटेज बैड बॉय लुक और इंटेंस एक्टिंग देखने के लिए क्रेजी हो रहे थे भाई। सोशल मीडिया पर आवारापन 2 का हैशटैग शिवम पंडित, ये ट्रेंड भयानक चल रहा था। हर कोई बस इसी बात की चर्चा या बात कर रहा था कि ये सीक्वल पहली फिल्म बेंचमार्क को टच कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। बॉक्स ऑफिस पर भी इसने दोस्तों आग लगा दी और पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ से ऊपर का वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर लिया, मतलब कमा लिया 100 करोड़ से ज्यादा। अच्छा एक पॉइंट ये भी है कि जब मूवी में इतनी देरी हो और एक पहली मूवी इतनी अच्छी हो ना, तो अब सेकेंड वर्जन इतना अच्छा हो या ना हो, लेकिन मूवी की बुकिंग्स इस तरीके से होती है कि भाई वर्ल्ड वाइड चलती बहुत ज्यादा है, और ये साफ देखने को मिला है यार आवारापन 2 में। तो अब भले दूसरी मूवी लोगों को इतनी पसंद आए ना आए, लेकिन क्योंकि पहली बहुत अच्छी थी ना, तो लोग भीड़ लगा के आएंगे कि हाँ हाँ मेरे को देखनी है। लेकिन ये मूवी ने यार आपके साथ ईमानदारी से काम भी किया है ना। जिन लोगों ने 2000 के एरा में इमरान के गाने और मूवीज को जिया है, एक्चुअली सुना अलग बात है, लेकिन जिन्होंने जिया है उनके लिए ये सिर्फ एक मूवी नहीं है बाबू, बल्कि एक बहुत बड़ा फेस्टिवल जो है वो बन चुका है। सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस तक हर जगह इमरान हाशमी की दीवानगी साफ दिख रही है, और लोग उनके स्वैग पर सीटियां बजा भी रहे हैं भाई साहब, उनका भौकाल जो एकदम तगड़ा है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस फिल्म के रेटिंग के बारे में। यार देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो रेटिंग ही होती है ना, आप कितना भी मूवी की तारीफ कर लें कि हाँ एक्टिंग भी बहुत अच्छी हुई, फलाना भी अच्छी हुई, लेकिन रेटिंग क्या तय होती है? रेटिंग तय होती है स्क्रिप्ट अच्छी हो रही हो, रेटिंग तय होती है कि भाई स्क्रिप्ट के अलावा एक्टिंग, सिनेमाटोग्राफी या फिर फलाना फलाना, दुनिया भर की चीजें होती हैं उस पर बेसिस जो है होता है। लेकिन इसके मामले में जो मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा, ओवरऑल 5 में से 3.5 रेटिंग दूंगा। इसकी बहुत सी वजहें हैं, मैं देखो यार इसका रीजन है सिर्फ एक तो पुरानी मूवी का जो कल्ट था और वो वापस लेके आए उसको बरकरार रखा। 4 इसलिए नहीं दूंगा कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट में और थोड़ी टाइटनेस हो सकती थी, है ना। बाकी अगर रेटिंग की गहराई में जाएं तो ये फिल्म पूरी तरह से इमरान हाशमी के कंधों पर थी। उनकी एक्टिंग और स्क्रीन की जो प्रेजेंस है इतनी सॉलिड है कि वो फिल्म के कमजोर हिस्सों को भी छुपा लेती है। लेकिन 1 स्टार यहाँ इसलिए कटा है क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट ऑब्वियसली, जैसे कि आपको बताया, थोड़ी प्रेडिक्टेबल लग रही थी मुझे कि हाँ ये होगा, और फिर कहीं कहीं ना बीच बीच में धीमा भी हो रहा था, ऐसा लग रहा था या तो फिल्म छोटी कर देते। पहला हाफ तो काफी फास्ट और एक्साइटिंग होता है, जिससे मुझे लगता है ना कभी कभार डायरेक्टर इस तरह से शूट करते हैं कि चलो मूवी बनाते हैं, मूवी बनाया अब एक्साइटमेंट में शुरू के 2-4-6-10-15 दिन तो बहुत तगड़ी बनाई, फिर उसके बाद मूड ऐसा हल्का हो जाता है। क्योंकि बॉलीवुड के साथ ये कई फिल्मों में हुआ, फर्स्ट हाफ तगड़ा, बाद वाला जो है ना वो इसमें पानी डल जाता है ऐसा लगता है, उसी में सब कुछ माहौल खराब हो जाता है। खैर फर्स्ट हाफ अच्छा लगता है, सेकंड में कहानी थोड़ी खिंचने लगती है, और विलन का जो कैरेक्टर है वो उतना खतरनाक नहीं लगता जितना आशुतोष राणा का था भाई साहब, वो एरा था उनका भाई, आज भी एरा है यार, कभी कभार अब उनकी रील वगैरह दोबारा से आने लग गई है, लेकिन वो सीधे आदमी के तौर पे आती है। अब हम दिशा बाटनी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगी है और उनका काम ही यही है, है ना। मतलब उनका काम ये है कि आप मूवी में खूबसूरत लगे, है ना। तो वो खूबसूरत लगी भी है। उनके पास एक्टिंग करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था। शबाना आजमी जैसी बड़ी एक्ट्रेस को भी मेकर्स ने थोड़ा अंडर यूटिलाइज किया यार। अच्छी अच्छी एक्टिंग है उनकी, शबाना आजमी की, और यूटिलाइज करते और सही से उनको लेकर आते, अच्छे डायलॉग्स देते, है ना, तो उनका कैरेक्टर और मजबूत निकल के आता, उन्हें और बेहतर डायलॉग्स मिलने चाहिए थे, मेरा ऐसा मानना है।

तो पुराने गाने जब बैकग्राउंड स्कोर में आते हैं तो मजा तो आता है, पर नए गाने पहले पार्ट जैसे सुपर हिट नहीं थे। फिर भी 3 स्टार इसलिए बनते हैं क्योंकि फिल्म नॉस्टैल्जिया को बहुत अच्छे से यूज करती है और इमरान हाशमी के फैंस को बिल्कुल भी निराश तो नहीं करती। अगर आप पहली फिल्म के बड़े फैन हैं तो शिवम पंडित का स्वैग और उनके दर्द के लिए आपको ये मूवी एक बार सिनेमा हॉल में जरूर देखनी चाहिए। ये एक डिसेंट और मासी एंटरटेनर सीक्वल है जो आपका पैसा वसूल करके आया है। अब हम बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया मूड, हाइप, है ना, स्टार रेटिंग क्या मिलेगी इसको। अब बिहाइंड द सीन यानी कि हम प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, डायरेक्टर का विजन क्या है, फिल्मिंग के लोकेशन एंड देन एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी, इन सब पर भी जरा नजर डालते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फन फैक्ट्स के बारे में। तो आवारापन 2 की मेहनत और इसकी शूटिंग के पीछे बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं। सबसे बड़ा फन फैक्ट ये है कि इस सीक्वल को बनाने का आइडिया पिछले 10 साल से चल रहा है। तो ये जो दशक गुजरा है 2016-17-18, ये इसके बाद से लेकर बस सोच ही रहे कि यार बनाते हैं, यार वापस से बनाते हैं, मजा आएगा। लेकिन अभी वक्त इतना लंबा गुजर गया कि 2026 आ गया, अब जाके रिलीज हुई है। तो सबसे बड़ा फन फैक्ट तो यही है, पर स्क्रिप्ट ना मिलने की वजह से ना ये बार बार ऐसा रुक रहा था। वो परफेक्ट स्क्रिप्ट की तलाश जो है बहुत लंबे वक्त से चल रही है। जब मेकर्स ने आखिरी बार 2024 के एंड में स्क्रिप्ट को लॉक किया तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल सीक्रेट रखा। फिल्म की शूटिंग का कोड नेम प्रोजेक्ट एक्स रखा गया था ताकि मीडिया और फैंस को पता ही ना चले कि इमरान हाशमी की फिर से शिवम पंडित बनने वाली मूवी जो है, या कि इमरान हाशमी की ये जो मूवी है दोबारा आ रही। तो प्रोजेक्ट एक्स नाम रखा गया। सेट पर मोबाइल फोन्स पूरी तरह से बैन किए गए थे और बहुत कम ऐसा होता है कि मूवीज में पूरा बैन कर दिया हो, कोई भी मोबाइल लेकर नहीं आएगा। डायरेक्टर, एक्टर, सिनेमाटोग्राफर, अलाना फलाना कोई भी इंप्लॉय नहीं लेकर आएगा और इमरान का जो मैच्योर्ड लुक है वो लीक ना हो जाए, इस बात का डर भी था लोगों को क्योंकि कहीं ना कहीं से लीक हो ही जाती थी बात। एक और बड़ा मजेदार किस्सा यह है कि फिल्म का या फिल्म के एक बड़े हैवी एक्शन सीन्स के दौरान ना, जो बैंकॉक के एक बिजी मार्केट में शूट हो रहा था, वहां के आम लोग सच में डर गए थे। उन्हें उनको ये लगा कि असली गैंग वॉर शुरू हो गई है। तो मतलब इमरान भाई एकदम लग भी रहे थे इसका मतलब के भौकाल और मारपीट वाले और बाल वाल से और पूरा एकदम ग्रे लुक दिया गया हो, तो ऐसा लोगों को लग भी रहा था कि गैंग वॉर हो गई क्या।

तो लोकल पुलिस को कॉल भी कर दिया था लोगों ने, यहाँ तक बात पहुंच गई थी। बाद में प्रोडक्शन टीम को शूटिंग रोककर सब कुछ और सबको समझाना भी पड़ा। इसके अलावा फिल्म के गानों के लिए पहली बार इंटरनेशनल म्यूजिशियंस को बुलाया गया था ताकि पुराने आवारापन के म्यूजिक वाइब को ग्लोबल टच दिया जा सके। इमरान हाशमी खुद हर दिन म्यूजिक सेटिंग्स में बैठते थे क्योंकि उन्हें पता था कि उनके फैंस उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। और ऑब्वियसली अगर इमरान हाशमी के मूवी के बारे में बात हो रही है तो भाई गाने तो अच्छे देने पड़ेंगे। इस पूरे प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा खर्चा फिल्म के क्लाइमेक्स और हैवी एक्शन सीक्वेंस पर है, जो अब तक की किसी भी फिल्म्स की मूवी में सबसे ज्यादा बजट है। फैन एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था कि सेट पर आसपास रोज हजारों लोग सिर्फ एक झलक देखने के लिए खड़े रहते थे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मूवी में डायरेक्टर के बारे में कि डायरेक्टर का विजन क्या रहा इस मूवी को बनाते हुए। डायरेक्टर है नितिन

0: ओपन टू को बनाने का एक बहुत बड़ा चैलेंज और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. उनका सबसे पहला और साफ विजन ये था कि वो नहीं बनाना चाहते. वो मोहित सूरी के बनाए हुए 2007 वाले उस क्लासिक इमोशनल दर्द को वापस लाना चाहते हैं, पर एक नए और मॉडर्न अंदाज में कुछ नयापन लेकर आना चाहते थे. उनका मानना था कि शिवम पंडित कोई सुपर हीरो नहीं है, वो एक टूटा हुआ परेशान और गुस्से से भरा इंसान है. इसलिए उन्होंने कहानी में उसके पछतावे रिडेम्पशन पर सबसे बड़ा ज्यादा या सबसे बड़ा ध्यान. नितिन ने पूरी टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि फिल्म का हर एक डायलॉग और हर एक सीन हैवी लगना चाहिए. वो चाहते थे कि जब ऑडियंस थिएटर में बैठे तो उन्हें पूरी फिल्म में एक अजीब सा सन्नाटा और गहराई महसूस हो, फील हो. उन्होंने रोमांस पर कम और कैरेक्टर के इंटरनल कन्फ्लिक्ट यानी कि अंदर की लड़ाई पर ज्यादा फोकस किया. तो ये एक भारी विजन भी था यार, मुझे तो यही लगता है. उनका विजन था कि शिवम का गुस्सा और उनका दर्द आंखों से दिखना चाहिए, ना कि लंबे लंबे डायलॉग्स भाषण हो, कोई एकदम ही बात किए चले जा रहा है, वो चीजें ना हो. साथ ही वो आज की यंग जनरेशन को भी इस फ्रेंचाइजी से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक्शन को बहुत रॉ, रियल और ब्रूटल रखा, जिसमें कोई VFX या हवा में उड़ने वाले स्टंट्स वगैरह नहीं है. डायरेक्टर ने जानबूझकर पुराने गाने जैसे तेरा मेरा रिश्ता का बैकग्राउंड स्कोर में बार बार यूज किया, ताकि फैंस पुरानी यादों से जुड़े भी रहे. उनका ये विजन पूरी तरह कामयाब रहा, क्योंकि फिल्म पूरी तरह से दिल को छू लेती है. कई बार ऐसा भी होता है ना कि पुरानी चीजों को इस्तेमाल किया लेकिन परफेक्शन के साथ नहीं किया, तो फिर मूवी ना अधूरी रह जाती है. जो सेकंड वर्जन आती है तो वो फिर मजा नहीं आता सीक्वल में, लेकिन ये मूवी में आपको जरूर मजा आएगा. और बहुत लंबे अरसे बाद दोस्तों, बहुत लंबे अरसे बाद एक ऐसी मूवी बनी है जिसमें असल में आपको मजा जरूर आएगा. मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कई ऐसी मूवीज आई हैं जिसका सीक्वल बना है बट सीक्वल बहुत हल्का रह गया है, लेकिन अरसों बाद ये ऐसी मूवी आई जिसका सीक्वल हल्का तो नहीं, क्योंकि 5 में से अगर 3.5 लेकर गई है तो आपको पता है मैं रेटिंग कैसे देता हूँ. और आपको ये भी पता है कि मूवी ने कुछ तो खास किया जरूर. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात कर लेंगे एक शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में कि क्या है इस मूवी का प्लॉट. एंड देन वी गोना टॉक अबाउट क्रिटिक्स का क्या कहना है, भाई आपको मूवी देखनी है या नहीं देखनी है. डिस्कशन कर लेंगे परफॉर्मेंस पे कि परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रांग है कि देखी जाए या फिर छोड़ दिया जाए. ठीक है, एक फिलहाल छोटा सा ब्रेक FM 107 पे, वापस कुछ ही देर में. दिल से दही से
1: Absolute cinema.
2: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं. बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा.
3: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर. दिल से देसी
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.
5: ओवरसीज कतर वीजा सेंटर्स में विजन टेस्ट सर्विसेज की सहूलियत खासतौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं. ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है. इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है. इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है. ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है. मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

0: वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।
1: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है फजील और ये शो चल रहा है रिव्यू ऑफ द वीक। दोस्तों अब इसी के साथ आवारापन 2 के फिल्मिंग लोकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। इस मूवी को कहां शूट किया गया है? आवारापन 2 का कैनवस पहली फिल्म से बहुत बड़ा है और इसकी शूटिंग बहुत ही खूबसूरत और रियल लोकेशन पे हुई है। फिल्म का तकरीबन 60% हिस्सा बैंकॉक थाईलैंड में शूट किया गया है, पर ये वो नॉर्मल सुंदर और घूमने फिरने वाला बैंकॉक नहीं है जो हम आमतौर पर देखते हैं। डायरेक्टर ने बैंकॉक के अंडरग्राउंड एलीज, पुरानी डार्क बिल्डिंग, नियॉन लिट सस्ती वाली स्ट्रीट और क्राइम प्रोन एरियाज को चुना है ताकि फिल्म का जो लुक है या फिल्म जो डिलीवर करना चाह रही है वो सही से डिलीवर हो पाए। फिल्म का डार्क ऑरा बिल्कुल रियल लगे, इस वजह से इन जगह को चूज किया गया। बैंकॉक की उन तंग गलियों में नाइट शूट्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, पर वहां का लुक फिल्म के मूड के साथ बिल्कुल मैच करता है। थाईलैंड के अलावा फिल्म का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा राजस्थान के जोधपुर और सुनसान डेजर्ट एरिया में शूट भी हुआ है। राजस्थान के पुराने और टूटे हुए किले फिल्म में शिवम पंडित के अकेले और अकेलेपन को और उसकी पुरानी जिंदगी को भी दिखाते हैं। वहां की मिट्टी और धूप को कैमरा इस तरह से कैद करता है कि स्क्रीन पर हैवी रस्टिक लगता है, तो लगे कमजोर ये आदमी, यानी कि इमरान हाशमी कमजोर लगे, असहाय लगे, टेंशन से भरा लगे, खालीपन जो है ना वो लगे और पर्दे पर उतर के आए। तो ऐसे में इस तरह की लोकेशन जो जोधपुर की लोकेशन है वो लेना जरूरी था। वैसे आप डेजर्ट भी आ सकते थे, हमारे कतर भी आ सकते थे, बट इट्स ओके। बाकी मुंबई के बड़े स्टूडियोज में भी कुछ बड़े और कॉम्प्लेक्स सेट्स जो है वो बनाए गए थे। खासकर वो एक जेल का सीन है, वेयर हाउस के अंदर की फाइट है। इस सारे लोकेशन का सिलेक्शन इस तरह से किया गया ताकि पूरी फिल्म में एक ट्रैवल और रन का फीलिंग बना रहे, जहां कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा है और अपनी मंजिल ढूंढ रहा है। हर एक लोकेशन फिल्म की कहानी को आगे बढ़ने में कैरेक्टर की तरह मदद करता है। अब बात कर लेते हैं एक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर, के का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा रहा, कि असल में इस मूवी ने इम्पैक्ट डाला फैंस के ऊपर। इस फिल्म में एक्टर्स का बदला हुआ लुक और की तैयारी दोस्तों सबसे बड़ा अट्रैक्शन पॉइंट है, मेरा यही मानना है।
2: इस बार या तो यह आवारापन खत्म होगा या मैं।
1: इमरान हाशमी ने शिवम पंडित के रूप में वापस आने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। उन्होंने अपना वेट थोड़ा कम किया है ताकि वो लीन और शार्प दिखे। उन्होंने इस बार एक यूनिक फ्रेंच बियर्ड और थोड़े बड़े बाल रखे, जिसमें थोड़े व्हाइट हेयर्स भी दिखाए गए हैं, ताकि लोग ये सोच सके कि हाँ यार, ये मूवी 20 साल बाद आ रही है और इसका कैरेक्टर थोड़ा तो बूढ़ा होगा, है ना। उनका कैरेक्टर 19 साल के लंबे समय के बाद आ रहा है यार, तो थोड़ा तो टूटा फूटा होगा, थोड़ा तो वो बूढ़ा हुआ होगा, तो ये चीज फिल्म में दिखाई जानी चाहिए। और इसी से ना छोटी छोटी बात से हो सकता है कि जो फैंस है ना वो उस तरह से देखे ना कैरेक्टर को, लेकिन कनेक्ट इसी तरह से करते हैं कि छोटे छोटे डिटेलिंग क्या दी गई है। तो ये डिटेलिंग नितिन ने बहुत ही लाजवाब किया है और इनका कैरेक्टर एक्सपीरियंस्ड हो गया ये सब दिखाने के लिए। छोटे छोटे फर्क जो है चेहरे पर, बालों पर, उनकी चाल में आया है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी हैं और उनके चेहरे के कट्स उनके दर्द को साफ दिखाते हैं। अब दूसरी तरफ एक्ट्रेस की बात कर ले, दिशा पाटनी ने इस फिल्म के लिए पूरी तरह से अपना ग्लैम डॉल वाला जो इमेज है ना उसे छोड़ दिया भाई, और उन पर अच्छा लगता नहीं है, लेकिन ठीक है, इस मूवी में चलता है। उन्होंने इस मूवी के हैवी एक्शन हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीन्स के लिए लगभग तकरीबन 4 महीने तक मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी कि MMA और वेपन ट्रेनिंग ली है। फिल्म में उनका बहुत ज़बरदस्त लुक है, रॉ और ग्लैम जो है वो इतना ग्लैम मतलब ग्लैमर इतना नहीं दिखेगा आपको, लेकिन रॉ जरूर दिखेगा, जो उनके करियर का सबसे अलग रोल भी है। सबसे हैरान करने वाला ट्रांसफॉर्मेशन शबाना आजमी का है। वो हमेशा सॉफ्ट और संस्कारी रोल्स के लिए जानी जाती है, पर इस फिल्म में एक बहुत ही खतरनाक, चालाक और बेरहम क्राइम क्रिमिनल है। नफीसा नाम है इस मूवी में उनका, और वो बनी हुई है उन्होंने अपने बोलने का जो तरीका है ना उसमें भी चेंजेस जो है वो किया है, चलने का ढंग, चेहरे का एक्सप्रेशन ये पूरी तरह से बदल दिया है भाई, जिसे देखकर कोई भी डर जाएगा। उनका ये नेगेटिव रोल अवतार ऑडियंस के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार सरप्राइज रहने वाला, ये तो मैं कहूंगा। अब बात कर लेते हैं हल्के हाथ से सिनेमाटोग्राफी के बारे में दोस्तों, और साउंड के बारे में। सिनेमाटोग्राफी और साउंड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी मूवी के लिए, और इसके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। आवारापन 2 का टेक्निकल डिपार्टमेंट यानी इसका कैमरा और साउंड इस फिल्म की सबसे बड़ी जान है। सिनेमाटोग्राफर है विष्णु राव, कई लोग इनको जानते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा इनका नाम, मैंने बहुत बार बोला है। विष्णु राव ने फिल्म को एक बहुत ही अलग और डार्क विजुअल स्टाइल दिया है। उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें लाइट और शेडो का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है, उसका एक अलग से नाम है, शारो स्कोर कहते हैं उसे। बैंकॉक के सीन्स में उन्होंने ग्रीन और नियॉन रेड कलर्स का यूज किया है जो फिल्म को एक कोल्ड और डेंजरस वाइब देते हैं, जबकि राजस्थान के सीन्स में वार्म येलो और ब्राउन टोन्स का यूज किया है जो अकेलेपन को दिखाता है। हर एक फ्रेम एक सुंदर पेंटिंग जैसा लगता है, पर उसमें एक उदासी साफ नजर आती है, झलकती है। साउंड डिजाइन के मामले में ये फिल्म एक मास्टर क्लास है दोस्तों। फिल्म के साउंड डिजाइनर ने हर एक छोटे साउंड पर ध्यान दिया है, जैसे बारिश की बूंदें, गन की चलने की हैवी आवाज और सन्नाटे में सांस लेने की आवाज। अच्छा, पहले जमाने में आप देखें गन की आवाज आती थी, ढिचकी, वो वाली चीजें नहीं है। बैकग्राउंड स्कोर को मिथुन और उनकी टीम ने बनाया है और उन्होंने कमाल करके दिखाया है। अब बात कर लेते हैं स्क्रीन पर शिवम पंडित के बारे में। जब भी स्क्रीन पर शिवम पंडित कोई इमोशनल सीन करते हैं तो बैकग्राउंड में धीमे से तो फिर या फिर तेरा मेरा रिश्ता, ये जो गाना है ना इसका वायलिन या फ्लूट वर्जन बजता है, पूरा गाना नहीं बजता। ये साउंड पूरे थिएटर में एक अजीब सा टाइट माहौल बनाता है, क्योंकि फिर पुराने चीजों के बारे में याद आने लगती है, पुरानी मूवी के बारे में याद आती है और वैसे ही आप कनेक्ट कर पाते हैं। और जब भी आप कभी आप देखना, जब भी आप कोई पुरानी बात अपने जिंदगी के बारे में भी याद करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा चुप हो जाते हैं, आप सिर्फ आपकी नजर एक जगह टिक जाती है। तो वो एहसास समझते हैं नितिन जो डायरेक्टर है इस मूवी के, और वो दिखाया गया। ऑडियंस के रोंगटे तक खड़े हुए हैं भाई, लोगों का कहना है ऑडियो और विजुअल्स का ये मिक्स फिल्म का इंपैक्ट जो है ना 200% तक बढ़ा देता है और आपको सीट से बांधे रखता है, आप इंटरवल से पहले नहीं भागेंगे, ट्रस्ट में। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों यार जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आप इंतजार करते हैं, स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। इस मूवी का प्लॉट है क्या यार, अभी तक तो मूवी देखी नहीं है तो फजील भाई कुछ तो बताओ, क्यों देखने जाऊं मैं? तो देखो बात ऐसी है कि आवारापन 2 की कहानी 2007 की ओरिजिनल फिल्म के लगभग 2 दशक बाद शुरू होती है। वही 2 दशक बोले तो 20 साल बाद। शिवम पंडित बोले तो इमरान हाशमी अभी भी अपनी पूरी जिंदगी के गुनाहों और उन यादों के बोझ तले दबकर जी रहे हैं। वो दुनिया से दूर एक बिल्कुल सुनसान और अकेली जिंदगी गुजार रहा है, जहां उसका गुजरा हुआ कल हर दिन उसे परेशान करता है, टॉर्चर करता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब उसकी जिंदगी में एक मासूम लड़की जारा बोले तो दिशा पाटनी आती है, एंट्री लेती है। जारा एक बहुत बड़े इंटरनेशनल क्राइम और ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क के जाल में फंसी हुई है, जिसे एक नफीसा है शबाना आजमी वो चला रही है। शिवम पहले तो इस सब से दूर रहना चाहता है, पर जारा की लाचार हालत देखकर उसके अंदर का इंसान एक बार फिर से जागता है। तो ये जो चेंज है ना, नितिन ने जो ये चेंज किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ये खास है। क्या शिवम खुद को माफ कर पाएगा या इसी जाल में फंस जाएगा? क्या इसमें तीसरा वर्जन भी आने वाला है आवारापन 3? तो ये सब आपको अब मूवी देखने के बाद पता चलेगा। इंटेंस स्क्रीन प्रेजेंस फैंस के लिए बहुत बड़ा ट्रीट है। अब दिशा पाटनी ने इस बार क्या किया है? दिशा पाटनी ने सबको हैरान किया। उन्होंने अपने पुराने ग्लैमरस अवतार को छोड़कर एक बहुत ही रॉ, ना ग्लैमरस दिखने वाली डी ग्लैम और इमोशनल परफॉर्मेंस को बरकरार रखते हुए फिल्म को और टाइटनेस दी है। विक्की और बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम बहुत ईमानदारी से, मजबूती से किया है। लेकिन क्रिटिक्स का क्या कहना है इस पर भी बात होनी चाहिए। फिल्म क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स के बीच आवारापन 2 को लेकर एक मिक्स्ड पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिला है। शानदार सिनेमाटोग्राफी और इमरान हाशमी की पावर हाउस एक्टिंग की बहुत ज्यादा तारीफ की है। ओवरऑल क्रिटिक्स ने इसे एक डिसेंट और वॉचेबल सीक्वल मानते हुए, जो फैंस को बिल्कुल निराश भी नहीं करता मानते हुए, इस मूवी को 3.5/3 रेटिंग दी है। मेरा मानना है 3.5, 5 में से 3.5 रेटिंग इसे मिलती है। अब बात कर लेते हैं वर्डिक्ट के बारे में, लेकिन मोटा माटी देखो बात यही निकल के आती है। आवारापन 2 को देखो दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट मैं यही दूंगा कि इस मूवी को देखना लाजमी है, और वैसे भी

0: फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तो बहुत ही सॉलिड शुरुआत की है। तो यू नो 2000 का नॉस्टैल्जिया ये बहुत ज्यादा है। पहले वीकेंड में ही फिल्म ने धांसू कमाई करते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था। मास सेंटर और सिंगल स्क्रीन पर शिवम पंडित के स्वैग और एक्शन को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, जिसकी वजह से फिल्म ने अच्छा प्रॉफिट बनाया। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस और मेट्रो सिटीज में सेकंड वीक के बाद इसकी कमाई थोड़ी धीमी हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण या वजह है फिल्म का थोड़ा स्लो सेकंड हाफ और प्रेडिक्टेबल स्क्रिप्ट। कुछ आम ऑडियंस को लगा कि नए गाने पहली फिल्म जितने लेजेंडरी नहीं थे, जिसकी वजह से फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनते बनते रह गई। बाकी लोगों का अपना अपना नजरिया है। फिर भी इमरान हाशमी का हार्डकोर फैंस के लिए ये फिल्म एक बड़ी कल्ट हिट बन चुकी है। अगर आपको इंटेंस इमोशनल ड्रामा, रॉ एक्शन और डार्क थ्रिलर पसंद है तो ये फिल्म आपके लिए जरूर जरूर है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए। तब तक सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
2: आरजे नाज़िया के साथ ओनली ऑन FM 107।
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
3: Salaam Adab and welcome to the show called Qatar Business 360.

0: मैं हूं आपकी दोस्त आपकी होस्ट नाजिया. दोस्तों ये शो कतर की बिजनेस कम्युनिटी की इंस्पायरिंग लीडर्स सक्सेसफुल ब्रांड्स और उनकी सक्सेस स्टोरीज को हाईलाइट करता है. आज भी इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिटेल और होम फर्निशिंग इंडस्ट्री के बारे में और जानेंगे कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप क्वालिटी सर्विस और ट्रस्ट एक ब्रांड को मार्केट लीडर बना देता है. पर देखा जाए तो आज का टॉपिक इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि आज हम रिटेल बिजनेस की दुनिया से एक बहुत ही डायनामिक लीडर लेकर आए हैं. रिटेल बिजनेस की दुनिया सबसे ज्यादा डायनामिक इंडस्ट्री भी मानी जाती है. इस बिजनेस का फोकस कस्टमर की जरूरियात को समझना और उन्हें बेहतरीन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना होता है. दोस्तों आज के इस दौर में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि क्वालिटी कन्वीनियंस और अच्छी सर्विस भी एक्सपेक्ट करते हैं. और अगर बात की जाए कतर की तो कतर जैसे ग्रोइंग मार्केट में रिटेल सेक्टर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है. फर्नीचर हो होम डेकोर हो फैशन हो लाइफस्टाइल ब्रांड्स हो कस्टमर ट्रेंड्स के साथ चलते हैं और इंडस्ट्री को भी ट्रेंड्स के साथ चलना पड़ता है. इस बिजनेस में कामयाबी का असल राज स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप्स है. जी हाँ इसके अलावा प्रोडक्ट की राइट टाइम पे अवेलेबिलिटी और एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. आखिर में रिटेल बिजनेस सिर्फ चीजों को बेचने का नाम नहीं है बल्कि कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी का रिश्ता बनाना भी है. इस रिश्ते को बखूबी निभा रहे हैं आज के हमारे गेस्ट. जी हाँ आज हमारे मेहमान हैं मिस्टर रमेश बूलचंदानी जो कि एलटीसी इंटरनेशनल कतर के टेरिटरी हेड हैं. एलटीसी इंटरनेशनल जो कि लाल्स ग्रुप का हिस्सा है 2004 से कतर में सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहा है. उनकी लीडरशिप में कंपनी के तीन मशहूर ब्रांड्स यानी होम्सारस कार्टर्स एंड डाइसो जापान कतर की रिटेल मार्केट में अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं. वेल देखा जाए तो ये ब्रांड्स कतर के एक लीडिंग ब्रांड्स हैं और फर्नीचर हो होम डेकोर हो या फिर कस्टमर की और जरूरियात उन्हें बखूबी पूरा कर रहे हैं. मिस्टर रमेश का मानना है कि बिजनेस जो है वो सिर्फ सक्सेस की स्टोरी प्रोडक्ट के थ्रू नहीं लिखता बल्कि ट्रस्ट और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से ये रास्ता होकर निकलता है. उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और कस्टमर फर्स्ट अप्रोच इनकी लीडरशिप की सबसे बड़ी और मजबूत स्ट्रेंथ है. आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपने कस्टमर्स की ट्रस्ट को लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को मेंटेन किया है और किस तरह से जो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं उनके साथ खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं. तो चलिए वेलकम कहते हैं हमारे गेस्ट मिस्टर रमेश मूलचंदानी को ऑन कतर बिजनेस 360 एंड ऑन दिस एपिसोड ऑफ कतर बिजनेस 360. हेलो एंड वेलकम ऑन एफएम 107. कैसे हैं आप?
1: शुक्रिया नाजिया जी और सभी 107 एफएम सुनने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से सलाम वालेकुम नमस्कार गुड मॉर्निंग.
0: वेरी गुड मॉर्निंग. सबसे पहले तो थैंक यू. मुझे मालूम है कि आप बहुत बिजी हैं. इतने बिजी और मसरूफ होने के बावजूद आपने हमें टाइम दिया वक्त दिया तो ट्रूली मींस अ लॉट टू अस.
1: माय प्लेजर किसको बोल सकता हूं कि मुझे अच्छा लग रहा है.
0: सर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस शो में देखकर सुनकर. अच्छा अगर मैं आपके बारे में कहूँ तो आई मीन यू आर अ टाइकॉन इन दिस रिटेल इंडस्ट्री एंड वी नो दैट यू ओवरसी 3 सक्सेसफुल ब्रांड्स. और अगर आपकी मैं लीडरशिप फिलॉसफी के बारे में बात करूँ सो हाउ डू यू कीप योर टीम मोटिवेटेड एंड कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड अलाइंड अक्रॉस दीज डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट्स.
1: मेरे टीम को मैं एक प्रकार से टीम तो मानता ही हूँ. प्लस मेरे बॉस ने मुझे सिखाया है कि ये हमारे एसेट्स हैं. तो जो अपने एसेट्स का ध्यान रखते हैं ना उसी तरह सबका ध्यान रखते हैं और ऊपर वाले की मेहरबानी से जितनी भी टीम है जो पहले दिन से मेरे साथ है लीडरशिप में और साथ में वो आज भी मेरे साथ में 22 सालों से.
0: वाओ तो इतने टाइम से आपके साथ जुड़े हुए हैं ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि आप जो हैं वो इनके प्रति कितने आपका रवैया कितना अच्छा है. अच्छा मैं जो हूँ आपको इस तरह से भी मैंने देखा कि आप जो हैं पर्टिकुलरली हर चीज़ में खुद ही इन्वॉल्व होते हैं. एंड जब हम बात करें आपके ब्रांड की और स्पेशली होम्सारस की तो दैट हैज़ अर्न द ट्रस्ट ऑफ बोथ द लोकल एंड एक्सपैक्ट कम्युनिटी दिस वी नो. सो व्हाट वुड यू से द सीक्रेट बिहाइंड बिल्डिंग सच स्ट्रॉन्ग एंड यू नो द लास्टिंग कस्टमर लॉयल्टी.
1: हम लोगों ने एक ही मोटो रखा हुआ है कि कस्टमर मतलब हमारे शोरूम में स्टाफ को है कि सीधा कहा गया कि कस्टमर इज गॉड, इवन इज रॉन्ग इज राइट, उसके हिसाब से उनको ट्रीट करो और उन्हीं के हिसाब से कस्टमर है तो अपन है, आपकी सैलरी कस्टमर देता है, तो एक प्रकार से कस्टमर इज एवरीथिंग फॉर अस। और उस मामले में हम लोग कस्टमर को दिलो जान से अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हम लोग एक प्रकार से कहें कि जीत गए हैं कतर में, और कतरियों के दिल का और सबके कस्टमर्स के दिलों को हम लोगों ने अपना बना लिया।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और जब कस्टमर्स को ये एहसास होता है कि उनकी वैल्यू की जा रही है तो वो हमेशा आपके साथ जुड़े रहते हैं, और पर इस इंडस्ट्री में तो खैर ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है।
1: कोई भी इंडस्ट्री हो, बिजनेस में कोई भी हो, कस्टमर का लॉयल होना बहुत ही जरूरी है,
0: बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लॉयल होगा तो एक पार्टनरशिप बनेगी और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में वो चेंज होगी और वो फायदेमंद होगी। अच्छा, रिटेल बिजनेस में अभी अभी आप देखें तो नए नए जो टेक्नोलॉजी के चलते जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, और माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में लोग पर्सनलाइज्ड जो है शॉपिंग एक्सपीरियंस ज्यादा पसंद करेंगे, तो क्या इस दिशा में भी आप काम कर रहे हैं?
1: हम लोग तो कर ही रहे हैं, और ऑनलाइन जैसे हम लोगों का बिजनेस स्टार्ट हो चुका है कब से, और सब कुछ है, तो AI का भी मॉडल हम लोग चूज करेंगे आने वाले वक्त में, और धीरे धीरे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम टू कॉप अप इन द मार्केट, एंड द न्यूनेस विल बी देयर इन द शोरूम। वी आर ओपनिंग इन दोहा मॉल, 75,000 स्क्वायर फीट का सबसे बड़ा शोरूम जल्दी ही आने वाला है, और उसमें फिर नई चीजें लेके आएंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा।
0: ये सारी चीजें आप ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं और आपने इस पे काम शुरू कर दिया है। अच्छा, आपकी जो सर फ्रंट लाइन टीम है वो रोज कस्टमर्स के साथ डील करती है, प्रोडक्शन सिलेक्शन है, इन्वेंटरी प्लानिंग है, उनमें फीडबैक जो है वो कितनी अहमियत रखता है?
1: वो कस्टमर के हिसाब से ही है, उनकी फीडबैक के हिसाब से ही है, और उनकी कस्टमर्स की चॉइस जो होती है उसी के हिसाब से हम लोग प्रिपेयर रखते हैं अपने आप को, और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट अरेंजमेंट होता है, और मेनली हम लोग क्वालिटी पे बहुत बहुत फोकस करते हैं,
0: मतलब क्वालिटी के साथ किसी भी तरह से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, आपका जो बिजनेस है, इस बिजनेस के पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है?
1: इसमें चैलेंजेस हर बिजनेस में होते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलरली चैलेंज नहीं कह सकते, हम लोग तो कॉम्पिटिटर को वेलकम करते हैं कि जैसे भी कॉम्पिटिटर हो तो अच्छा है कि कस्टमर्स को चॉइस मिल जाए और कुछ हो जाए, तो इसमें चैलेंज तो बिजनेस हर बिजनेस में होते हैं, कुछ भी कह सकते हो आप कि कुछ लाइन होती है जो मिसिंग होती है, जैसे अभी फर्नीचर की लाइन में हम लोग होम ऑफिस में पुअर, मतलब इतने ऑफिस बनाते हैं जैसे घरों में, तो हम लोग उसमें नहीं है इतना, क्योंकि वी आर ए होम सारस, तो होम सारस मतलब होम फर्निशिंग, तो वो भी एक प्रकार से होम फर्निश ही है, लेकिन उसको हम लोग इतना फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ स्पेस की प्रॉब्लम, कुछ अलग वैरायटी की डिटेल में जानना, तो ये सब होता है, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा बहुत चैलेंज है।
0: ये चैलेंज अभी है। अच्छा, आपके बारे में कहा जाता है कि आपका जो है कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्शन और एंगेजमेंट बनता है, जबकि आप इतने बिजी भी हैं। हाँ, आपके लीडरशिप
1: कोई भी हो, मैंने ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि कस्टमर की कंप्लेन इनडायरेक्टली मेरे पास ही आती है, और मैं ही कस्टमर को फोन करता हूँ या हमारे किसी मैनेजर को बोल के उनको फोन करवाता हूँ कि क्या है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको तकलीफ अगली बार नहीं होगी, या वी सॉल्व द सेम टाइम प्रॉब्लम एंड वी मेक कस्टमर टू बी हैप्पी।
0: बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टली आप वो क्वेरीज जो हैं वो अटेंड कर रहे हैं, और
1: और क्या, कंप्लेंट सीधा मेरे पास ही आएगी कोई भी, ऐसा मैंने सिस्टम बना रखा है।
0: दैट्स नाइस, ये मेरे ख्याल से और जो आपके एम्प्लॉइज है उनको एक हेडेक, एक टेंशन भी होती होगी कि हम
1: नहीं, उनको टेंशन नहीं होती, उनको मालूम है कि हम लोग CCTV कैमरा के अंदर है।
0: ओके, तो इससे उनकी जो काम करने की क्षमता है वो ज्यादा बेहतर होती है, या फिर डर की वजह से काम थोड़ा सा खराब?
1: नहीं नहीं, डर के नहीं, डरने की कोई उसमें है ही नहीं, लेकिन उनको मालूम है कि ये अच्छा है कि कस्टमर्स का केयर हो रही है कंपनी में, तो उनको भी अच्छा लग रहा है, और उनके अंदर कॉन्फिडेंट हम लोग भरते हैं कि जो तुम बेच रहे हो वो बिल्कुल सही चीज बेच रहे हो। तो उनमें कॉन्फिडेंट होगा तो आगे चीजें बिकेगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। अच्छा, क्या कोई ऐसा वाक्य आप शेयर करना चाहेंगे जहाँ यू नो एक कस्टमर इशू बना और बाद में वो एक बहुत ही यादगार सक्सेसफुल स्टोरी में कन्वर्ट हो गया?
1: बहुत सारे केसेस हैं जो आज हमारे लॉयल कस्टमर है, किसी को कुछ हो गया। एक हम लोगों ने एक एग्जांपल देता हूँ कि एक कस्टमर ने हम लोगों से एक बहुत बड़ी चीज खरीदी थी।
0: okay.
1: तो उसमें स्टाफ के मुंह से गलत प्राइस निकल गई थी, जो कि इम्पॉसिबल वाली प्राइस थी। okay. समझो 1,000 रुपए की चीज 100 रुपए बोल दिया था, तो कस्टमर अड़ गया था। तो हम लोगों ने उस कस्टमर को, मैंने खुद ने अटेंड करके उसको उसी प्राइस में दे दिया कि कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर हो, आप ले जाओ, स्टाफ की गलती हो गई है, कोई बात नहीं। और स्टाफ को बोला कि अगली बार ध्यान रखना, और कस्टमर को हम लोगों ने दे दिया। तो आज हमारे लॉयल कस्टमर है कि ऐसे हम लोगों ने किया था और ऐसा हो गया। फिर लॉयल्टी को क्रिएट करने के लिए कस्टमर बोला एक कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे, 3 बजे फ्लाइट है, हमको फर्निश चाहिए। तो 3 बजे भी हम लोगों ने उनका घर बना के दिया उनको, और वो लोग आज भी खुश होके हमारे
0: हाँ। ये तो वाकई एक्सेप्शनली बहुत ही, जो पहला आपने जो इंसिडेंट बताया वो तो मुझे लगता है इट्स वेरी रेयर, इट्स क्वाइट रेयर कि 1,000 की चीज कोई 100 में दे दे। अब क्योंकि निकल गया तो उनके मुंह से,
1: वो मुंह से निकल गया था तो वो कस्टमर भी थोड़ा अड़ गया कि हमको चाहिए क्या, हमको बोला है ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं। समझाने की कोशिश की थी कस्टमर को, लेकिन नहीं तो कोई बात नहीं, आप हमारे कस्टमर हो ले जाए।
0: वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात सर। हमारे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी कि हमने शॉपिंग किया।
1: आप आ जाओ, किसी स्टाफ को बोल दूंगा कि आपको गलत प्राइस बता दे।
0: बस सही है सर, अब मैं जरूर आ रही हूँ, जरूर आऊंगी। अच्छा सर, आज का जो दौर है हमारा वो ऑनलाइन शॉपिंग का है और ये ट्रेंड भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो ऐसे में आपके ख्याल में जो फिजिकल स्टोर्स हैं उनकी अहमियत क्या रहेगी आने वाले टाइम में?
1: बिल्कुल रहेगी। देखो कतर में अगर मुझसे कोई पूछे तो जितने भी एम्प्लॉयज है, एक्सपेक्ट है, लोकल्स है, कोई भी हो, जैसे आप हो, आप 6 बजे के बाद क्या करोगे? फैमिली के साथ मॉल्स में जाओगे, गर्मी का वजह होती है और पार्किंग ये वो, तो आप मॉल्स में जाते हो और वहां जाके विंडो शॉपिंग कर रहे हो, या फिर चलो आज घर के लिए ये चीज देखनी है, छोटी बड़ी।

0: और आपको वो चीज ऑनलाइन भी है अवेलेबल, लेकिन उसको आप खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं कि इतनी बड़ी चीज मैं लूं, इससे अच्छा मैं एक बार देख के ले लूं। तो वहाँ पर ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन का महत्व रखता है,
1: इसीलिए शायद लोग अभी भी जो है वो पसंद करते हैं। और एक चीज आपने बहुत अच्छी ये वाली बात कही कि यहाँ पे जो है फैमिली टाइम है, और जब लोग निकल जाते हैं और स्पेशली समर्स में तो वो मॉल्स वगैरह जा रहे हैं, तो घूमते घूमते कई बार माइंड मेकअप नहीं होता, लेकिन कोई अच्छी ऑफर दिख गई,
0: हाँ, कोई ऐसे ही कुछ हो गया तो लोग खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही है, चाहे आप सुपरमार्केट की चीजें भी ऑनलाइन खरीद रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ चीजें मिस हो रही है तो आप बेहतर है कि भाई जाके उधर फिजिकली घूम रहे हो तो उसमें एक दो चीज ऐड हो जाती है, ऐसा होता है। लेकिन अभी जो बिजी वर्ल्ड है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही काम कर रहे हैं और वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत बहुत ही इजी और बेस्ट है उनके लिए। वो हो रहा है, जैसे मैंने दूसरे वर्ल्ड में देखा है, वेस्टर्न वर्ल्ड में और यूएई जैसे बिजी वर्ल्ड में, वहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों महंगाई की वजह से काम कर रहे हैं, तो वो लोग ऑनलाइन ही है एकदम, कुछ भी चीज आदत हो गई है कि हर सेकंड में ऑनलाइन दो, और वहाँ पे ऑनलाइन के ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है।
1: स्पेशली अगर आप कह रहे हैं फर्नीचर्स हैं या और कोई चीज है बड़ा,
0: फर्नीचर तो आपको मैं भी सजेस्ट करूंगा, और कोई भी हो कि देख के ही लेगा, कोई भी इतनी बड़ी बड़ी चीजें लेनी है तो देख के ही पसंद करके ही लेगा।
1: सही बात है। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि एआई का भी हम इस्तेमाल करेंगे, उस टेक्नोलॉजी को भी लेके आएंगे, आने वाला दौर ऐसा है जैसे हमने कहा कि ना पर्सनलाइज्ड शॉपिंग, तो क्या आने वाले दौर में एआई की वजह से ये भी होगा कि आप जो है यू नो कस्टमर्स को दिखाएंगे कि ये प्रोडक्ट उनके घर में इस तरह से फिट होकर ऐसा लगेगा, एंड देन उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे
0: वो चल रहा है, हम लोग काम कर रहे हैं उसके पीछे कि आपको अगर आपका घर बनाना है तो कैसा बनाना है, हमारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए एआई बताएगा वो। और अभी हम लोगों ने एआई मार्केटिंग में करना शुरू ही कर दिया है।
1: नाइस, तो ये भी आपने चीज शुरू कर दी, बहुत जबरदस्त। अच्छा, जो यूथ है, जो यंग एंटरप्रेनर्स हैं कतर में, अगर वो रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपका उनके लिए क्या मशवरा, क्या एडवाइस हो?
0: हाँ बिल्कुल करें, कतर मार्केट बहुत ही अच्छा मार्केट है, और कतर इट्स बीइंग ए कंट्री, उसको अंडर द अमीर शेख तमीम के अंडर में बहुत ही अच्छी तरह चल रही है कतर, और कतर आगे और भी बढ़ेगी, उनका 2030 का विजन भी है। और बहुत ही मैंने तो देखा है कि जीरो टावर से आज तक की लाइफ कतर में देखी है मैंने, जो इन्होंने किया है, गवर्नमेंट ने किया है, बहुत बहुत ही अच्छी तरह से, जिसको कह सकते कि एक्सट्रीम लेवल पे जाके बहुत अच्छा बनाया है कतर। आज कतर का नाम पूरे दुनिया में अच्छी तरह गूंज रहा है।
1: बिल्कुल। अच्छा सर, रिटेल में यानी रिटेल बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या इंग्रेडिएंट एक क्या हो सकता है?
0: एक तो जो भी आपके साथ काम कर रहा है उनको लॉयल बनाओ, उनको लॉयल बना के वो आपके एसेट्स है, आपके अपने है। तो मेरे पास जैसे मेरी खुद की पॉलिसी है कि मैं टर्मिनेट किसी को भी नहीं करता हूँ,
1: कभी भी नहीं, मतलब कोई
0: मेरे ख्याल से 22 सालों में से एक आध बार किसी ने गलत काम किया है तो एक आधे को किया होगा कि जो वो एक्सट्रीम लेवल पे गलत काम करते हैं, बाकी मिस्टेक्स वगैरह को अवॉइड करते हैं। तो ये हम लोगों की मतलब मेरी अपनी तो पॉलिसी है कि किसी को टर्मिनेट नहीं करो, उनके पीछे उनकी फैमिलियां हैं, उनके पीछे बहुत कुछ है, तो ये मैं ध्यान रखता हूँ, तो उसका मुझे फल भी मिलता है। जैसे हम लोगों ने कोविड में हम लोगों ने ना सैलरी स्टॉप की ना कुछ, 3 महीने हम लोग जीरो बिजनेस पे थे, तो उसका बेनिफिट मिला हमें कि वो स्टाफ ज्यादा लॉयल हो गया, कि हम लोगों का ध्यान रखा गया, अगर किसी को कोविड हुआ उसका भी ध्यान रखा गया पर्सनली, तो ये सब चीजें बहुत फर्क कर मायने रख।
1: तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम हो, और उसके लिए आपको भी उनके साथ उसी तरह का रवैया अख्तियार करना होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बिजनेस को अब हम देखें तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यू नो मार्केट में अप्स एंड डाउन्स हैं, इकोनॉमिक चेंजेस हैं, कुछ इस तरह की सिचुएशंस भी सामने आ गई हैं, जिसके बाद कस्टमर्स जो है वो अब स्पेंड करने या खरीदने से थोड़े रिलक्टेंट हो रहे हैं, थोड़ा परहेज कर रहे हैं, बच रहे हैं, तो ऐसे

0: हैबिट्स के चलते जो रिटेल बिजनेस है उस पर किस तरह का असर पड़ता है और किस तरह से
1: आपको टाइम भी नहीं, ये मैं इसको टाइम भी मानता हूँ।
0: अच्छा,
1: कि हम लोग अभी भी कस्टमर के प्रति होप रखते हैं। अच्छा, और वो ठीक है, टाइम भी सिचुएशन है, लोग खरीदने में पैसे सोच रहे हैं 10 बार कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, तो वो ठीक है। इसमें हम लोगों ने तो, मैंने तो बहुत सारे क्राइसिस देखे, ब्लॉकेट देखा मैंने, कोविड देखा मैंने, 2008 का इकोनॉमी देखा, तो उसके बाद में वापस सुबह के बाद रात, रात के बाद सुबह आती है, तो डेफिनेटली अगेन मॉर्निंग विल कम।
0: तो मतलब आपको है कि अब उम्मीद है कि चीजें जब बैक टू नॉर्मल होंगी तो लोग उस तरह से स्पेंडिंग भी करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर कतर के नेशनल विजन की बात करूँ 2030, तो उसका बहुत ज्यादा फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे। आजकल सस्टेनेबिलिटी पे जब इतना जोर दिया जा रहा है, तो आपके बिजनेस में एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट जो हो सकते हैं उनकी प्रैक्टिसेस को कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है?
1: हम लोग तो पूरा ही कर रहे हैं अभी, जैसे बायोग्रेडेड बैग अगर यूज करना, वो हम लोगों ने कब से स्टार्ट भी कर चुके हैं। तो उसमें क्या है कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, जैसे हम लोगों के पैकिंग मटेरियल है वो कस्टमर के घरों में ना छोड़ते हुए हम अपना उसका सिस्टमेटिकली रिसाइकलिंग को देते हैं, और जैसे बॉक्सेस है एम्प्टी, हम लोगों ने कंपनियों के साथ टाई अप किया हुआ है जिसको रिसाइकल करने के लिए हम उनको देते हैं, तो वेस्टेज का भी हम लोग ध्यान रख के करते हैं कि उसका इन्वायरमेंट पे कोई असर ना हो, उनको भी रिसाइकल करवाते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत ही सही। अच्छा, आज का दौर इतना कॉम्पिटिटिव दौर है, और कॉम्पिटिटिव रिटेल मार्केट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव चीज है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कौन बनाता है, किस तरह से डिसाइड की जाती है, क्या आप कस्टमर्स के फीडबैक को भी ध्यान में रखते हैं, एम्प्लॉयज भी जो आपके हैं टीम के वो भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने में उनका भी कोई क्रूशियल रोल होता है, या फिर आउटसोर्स किया जाता है?
1: हम लोग फीडबैक नीचे के स्टाफ से लेके ऊपर के मैनेजर से लेके मार्केटिंग मैनेजर सबसे कलेक्टिवली इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद उसका प्लानिंग करते हैं कि मार्केटिंग कैसे करें। तो हमारे पास मार्केटिंग टीम है, मार्केटिंग मैनेजर है, तो वो लोग सब एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ते हैं और मार्केटिंग का ध्यान रखते हैं।
0: नाइस। अच्छा, आज मैं देखती हूँ बहुत बार ना एक स्पेशल प्रमोशंस चल रहे हैं, सीजनल कैंपेन्स चल रहे होते हैं, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, तो ये कितने इफेक्टिव होते हैं कस्टमर एंगेजमेंट को लेकर?
1: ये बहुत ही इफेक्टिव है, और कतर में आज का ट्रेंड हो गया है कि आपको बिना ऑफर के आपका कुछ भी चलेगा नहीं। तो ऑफर से कस्टमर्स को फायदा हो रहा है और बिजनेस हो रहे हैं, तो जहाँ पे अच्छी ऑफर हैं हम लोग लगभग कभी हाफ बैक कर देते हैं, कभी 20-50% डिस्काउंट दे देते हैं। तो ये सब चीजें कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और वो खरीदने की चाहत में रहते हैं,
0: चाहत भी रहते हैं। बट जैसे कतर एक डाइवर्स मार्केट है, अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, तो हर एक कंट्री, मतलब मैं ये कहूंगी कि जैसे किसी के लिए ईद इम्पॉर्टेंट है, किसी की दिवाली, लेकिन इसके अलावा दूसरी नेशनलिटीज हैं तो उनके अलग अलग इवेंट्स हैं, कुछ हैं, तो अलग अलग तरह की आप लोग क्या मार्केटिंग कैंपेन्स जो है वो
1: हम लोग मार्केटिंग बाकायदा अलग अलग करते हैं। अच्छा। कि आज रमादान है तो रमादान का पूरा स्टोरी चलाते हैं कि ये रमादान का हम लोग ऐसा कर रहे हैं, रमादान में ये चीजें कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं हम लोग, और कुछ भी बैक टू स्कूल है अभी जैसे, तो बैक टू स्कूल के पूरे प्रोडक्ट होंगे और उनका ऑफर होगा, उसके ऊपर अलग से ऑफर रखते हैं बैक टू स्कूल के लिए, तो बच्चों को एक गेम खिलाते हैं कि आओ आप गेम भी खेलो और गेम खेल के कुछ विन करो बैक टू स्कूल में, उसमें बेसिक बैक टू स्कूल के प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप चूज करके उसी को खरीद के, तो उससे आपको आप अपने स्कूल की लाइफ अच्छी बना सकते हो।
0: बहुत ही अच्छी बात की। अच्छा, एक और सवाल फर्नीचर में मैं आपको जानूंगी कि जो फर्नीचर रिटेल इंडस्ट्री है वो तेजी से बदल रही है, तो आपके नजदीक वो कौन से इनोवेशंस हैं या फिर जो ट्रेंड्स हैं जो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में फ्यूचर को शेप करेंगे?
1: हम लोग फर्नीचर के साथ अभी टेक इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक मतलब आप जैसे आप सोफा पे बैठे हो तो आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए उठने की जरूरत नहीं है, आप वहीं पे चार्ज करो। और आपको अगर पांव सीधे करने हैं तो आपका इलेक्ट्रिक टेक है तो वो सोफा आपका रिक्लाइनर बन जाएगा। और उसके बाद अगर आपको साउंड सुनना है तो स्पीकर एडेड है सोफा में, तो आप साउंड का मजे ले सकते हैं। तो ये सब चीजें टेक हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं फर्नीचर में। टच लैंप है, जैसे ही आवाज के साथ लैंप है, तो ये सब चीजें है अभी टेक हम लोग इन्वॉल्व करते जा रहे हैं फर्नीचर के साथ
0: करते जा रहे हैं। वाकई में टेक्नोलॉजी और चेंज जो है वो कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हो, उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक हो, उन्हें कंफर्ट दे, तो फिर कोई क्यों नहीं नए प्रोडक्ट्स खरीदेगा। अच्छा, आपकी लीडरशिप को तो पूरी कम्युनिटी जो है वो एडमायर करती है। अगर आप खुद को सिर्फ एक लफ्ज में, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो कौन सा वर्ड होगा
1: मेरे लिए?
0: जी एक तो मैं कह सकती हूँ कि डाउन टू अर्थ, पॉजिटिव। दो तीन तो मेरे दिमाग में बहुत इंस्टेंटली आए, बट आई जस्ट,
1: मैं पॉजिटिव हूं एंड कीप स्माइलिंग, दैट इज द मेन मोटो ऑफ माय लाइफ। तो ठीक है, सबको परेशानी होता है, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग सबको परेशानियां होती है, ऐसा कोई भी नहीं है दुनिया में जिसको परेशानियां नहीं।
0: बिल्कुल सही।
1: तो उसको मैं जैसे स्टाफ को भी बोलता हूँ कि दो बैग होते, एक सोरो बैग, एक हैप्पीनेस बैग। So please keep sorrow bag at home and bring happiness back. So जो smile करता रहता है उसके पास सब लोग आते हैं, रोने वाले के पास कोई आता नहीं है। So keep smiling.
0: ये बात तो सही कहा।
1: I keep smiling.
0: हाँ, that's what we have seen you always smiling. चाहे कितना भी stress हो, कितनी भी परेशानी हो, that really differentiates you from other. बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, इतने सारे roles और responsibilities तो आप निभा रहे हैं, तीन brands को मैनेज कर रहे हैं, तो स्ट्रेस तो आप पे आते ही, भले से आप स्माइल करके अपने आप अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें।
1: स्माइल से वो प्रॉब्लम्स कम हो जाते हैं ना।
0: उसके अलावा और आपके स्ट्रेस बस्टर्स क्या हैं? मतलब बहुत स्ट्रेस में होते हैं, व्हाट डू यू डू, क्या करते क्या है?
1: एक चीज और करनी चाहिए लाइफ में, किसी को भी, ये पर्सनली है कि यू शेयर योर प्रॉब्लम विद योर नियर बाय नियरेस्ट डियरेस्ट, उनके साथ शेयर करनी चाहिए आपको अपनी प्रॉब्लम, तो आपकी प्रॉब्लम आधी वहीं हो जाती है। चाहे कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी हो, डियरेस्ट नियरेस्ट, उनको शेयर कर, तो आपको आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगी,
0: भले से सलूशन मिले ना मिले, एटलीस्ट आप जो है ना।
1: लेकिन आपने बताते ही, शेयर करते ही आपकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, समझो।
0: दैट्स नाइस। ये भी एक अच्छा तरीका है अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को दूर करने का, कि कह दो, जो भी आपका करीबी है आप उससे अपनी बात कह दीजिए। That's nice. अच्छा, अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में ना होते तो आप किस प्रोफेशन को चूज करते और क्यों?
1: मैं शुरू से ही रिटेल में हूँ, पढ़ाई के बाद मैं रिटेल में ही हूँ और आज तक एक ही कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक ही जगह हूँ, कोई सीवी नहीं है मेरी, तो रिटेल ही समझो सब कुछ है।
0: तो हमेशा से आप इसी इंडस्ट्री में आना चाहते थे, चलिए बेस्ट है। अच्छा, आपको आई एम श्योर आप तो खैर एडवाइस देते ही हैं लोगों को, लेकिन किसी ने कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी होगी, तो वो कौन सा शख्स था जिन्होंने आपको एक बेहतरीन बिजनेस एडवाइस दी, और वो क्या दी जो आपको लगता है कि आज भी आप उस एडवाइस को अपने साथ रखते हैं?
1: मैं, मेरे लिए आइडियल मेरे बॉस मिस्टर लाल गनवानी है और उनके पुत्र मिस्टर जयंत गनवानी है, उनकी एडवाइस हमेशा मैंने अपने साथ बांध के रखती है कि रमेश, जो भी स्टाफ तेरे पास काम कर रहा है और जो भी स्टाफ है वो अपने एसेट्स हैं और वो अपने ही लोग हैं, अपनी फैमिली है, ये ध्यान रखो। तो वो चीज मैंने समझो एक प्रकार से स्टार्टिंग से ही गांठ बांध के रख दी है।
0: ये बेस्ट एडवाइस आपको मिली आपके बॉस से, और आप इसको आगे फर्दर जो है वो मुझे लगता है कि बढ़ा भी,
1: मैं चलाता रहता हूँ ये।
0: वेरी नाइस। अच्छा, जब आप अपने रिटेल सफर को देखते हैं तो अगले जनरेशन के रिटेल लीडर्स के लिए किस किस्म की लेगेसी आप छोड़ना चाहेंगे, खास तौर पे कतर में?
1: यंग जनरेशन के लिए एक चीज है कि नथिंग कम एज यू वांट, यू हैव टू हैव पेशेंस, you have to have the mainly honesty and main thing is required in your life, intention is neat and clean and tidy. Believe me, God will also help you in this matter. If your intention is neat and clean, kisi ke liye bhi aap kuch ना गलत सोच रहे हो ना कुछ, जो करना है उसने सामने वाले ने करना, लेकिन आप अपनी तरफ से इंटेंशन नीट एंड क्लीन करो कि आज मेरे को ये काम करना है, तो आप अपने लिए करो. यू शुड हैव द सेटिस्फेक्शन, नॉट द अदर टू. जैसे कोई काम करता है, आज मैंने कोई काम किया तो शाम को मेरे को लगता है अरे यार मैंने तो बहुत अच्छा काम किया. वो अगर आपके मन में आ गया तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि आपको खुद को खुशी मिली. किसी ने बोला नहीं बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको खुशी मिली कि मैंने आज बहुत अच्छा काम किया.
0: बहुत ही अच्छा.
1: तो वो जो चीज है ना बहुत फर्क ला देगी आप. तो आप अपना इंटेंशन नीट एंड क्लीन रखें, ऊपर वाला भी आपको मदद करेगा.
0: बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त. धन्यवाद, बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपीरियंसेस, अमेजिंग इंसाइट्स हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किए. वी थैंक यू सो वेरी मच. हमें आपकी लीडरशिप से, आपकी कस्टमर फर्स्ट अप्रोच से, टीम बिल्डिंग अप्रोच से बहुत कुछ सीखने को मिला है. और आप एक विजनरी हैं जिसे हम अप्रिशिएट करते हैं, और हम ढेरों हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके साथ.
1: नादिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और 107 FM का, जिन्हें मुझे मौका दिया कुछ अपने बातें शेयर करने का. बहुत बहुत शुक्रिया.
0: बहुत शुक्रिया. धन्यवाद सर. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और इसी तरह से हमेशा हंसते मुस्कुराते और पॉजिटिव रहिए. आप सबके लिए बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है.
1: थैंक यू.
0: हैव अ ग्रेट डे. टेक केयर. वेल दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया है कि आपसे इजाजत ली जाए, इस वादे के साथ कि नए एपिसोड में एक और नए बिजनेस को एक्सप्लोर करेंगे. और तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी.
2: प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में.
3: आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107.
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ.
4: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: समर्स का टेम्परेचर तो गिरता बढ़ता रहेगा, फिर चाहे मौसम कितना भी सनी क्यों ना हो जाए, रेडियो की वॉल्यूम हम गिरने नहीं देंगे। सन और हमारी साउंड आपके लिए मुफीद साबित होंगी, तो इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सन एंड साउंड। सन एंड साउंड संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी, दिल से
0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीद सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीद, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीद टू हैबिट, हदीद टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
4: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं।
0: The radio station with more music. FM 107. FM 107. दिल से देसी।

0: Yeah.
1: Maximum music, maximum fun.
2: On FM 107, Dilsi Desi.

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन।
1: हाँ जी, मैं कह रहा था, आ जाओ जी 107 पे, बहुत बढ़िया था, आपको शो सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं दुआ वाला कबीर, एफएम 107 पे, एंड वेलकम टू टॉप 10 दिस वीक। मुझे सच में ऐसा लगता है मैं किसी गेम शो को होस्ट हूँ जब भी मैं ये शो कर रहा होता हूँ। काफी एक्साइटमेंट रहती है और इतने सारे दिमाग लगते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट बनाने में, मजा आ जाता है सच में। सारे के सारे ऐसे बात कर रहे होते हैं गानों को लेकर, जैसे पता नहीं कौन सा अभी कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट तैयार हो रहा है कि इसका गुंबद एक यहाँ लगा दो, यहाँ पे गुंबद नहीं चाहिए और इसके अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए, तो मजा आ जाता है। तो आज भी लिस्ट जो तैयार हुई है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन जो चेंजेस हैं वो बहुत तगड़े वाले हैं। और कुछ नई एंट्रीज हैं, कुछ पुराने गाने जो अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं, और जो हमारी फर्स्ट पोजीशन है वो भी थोड़ी सी हिल चुकी है, वो फॉर अ वेरी वेरी वैलिड रीजन। मगर आप जो है, आप भी शो का हिस्सा बन सकते हैं बाय एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग। तो आप जो है बता सकते हैं कौन सा गाना आपको लगता है कि नंबर वन पे होना चाहिए, कौन सा गाना टॉप 10 में होना चाहिए, कौन सा गाना चाहिए नहीं टॉप 10 में, सब आपके ऊपर है भाई साहब। तो आपके एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड आपको करता है इनवाइट भाई साहब। हमारे सोशल मीडिया के दोहरे आ जाओ, सोशल मीडिया है FM 107 कतर, FM 107 कतर, इस नाम से हर जगह मौजूद है। आप मुझे भी ढूंढ सकते हैं दुहा वाला कबीर के नाम से, लेकिन मैं न्यू कह रहा था स्पेलिंग में गलती मत करना, KABIR है, आधे से ज्यादा लोग EER लिखते हैं, विच इज ओके, मगर मैंने KABIR लिखा है कबीर। ये जोक बाकी शोज में के लिए बचा के रखते हैं। एनी, हमारी लिस्ट आप जानते हैं किस तरीके से शुरू होती है, किस तरीके से खत्म होती है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 10, देन 8, 9, फिर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे पहले गाना नंबर 10, ये गाना अभी भी लिस्ट में है, इस बात से बिल्कुल हैरान नहीं हूं मैं, क्योंकि आधी से ज्यादा रील्स में मैं इस गाने को देख चुका हूं। जब भी कोई रील ऐसी होती है इसमें ऑरा फार्मिंग हो रही होती है, जिसमें कोई बहुत ही शानदार कोई एटीट्यूड वाली बात होती है, या कोई ऐसी रील होती है जहां पे कोई फ्लेक्स कर रहा होता है किसी चीज को, तो ये गाना हमेशा बैकग्राउंड में लगा ही होता है। और ये वो गाना है जो आधे से ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता लेकिन अच्छा लग रहा होता है। बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो हिप हॉप बिल्कुल नहीं सुनते हैं, बिल्कुल रैप नहीं सुनते हैं, बट दे लाइक द वाइब ऑफ दिस ट्रैक। अगर आप नहीं समझे तो बता दूं, गाना है बूम शाकलाका, हिला दे हूं शाकलाका। तो ये जो गाना है बाय के अटोलसा एंड कृष्णा और डाना नियोली वाला, तो ये गाना एट नंबर 10 एंड आई थिंक ये लिस्ट में रुकेगा। अभी तो इसका, अभी इसका दौर गया नहीं है भाई, YouTube पर भी व्यूज आ रहे हैं इसके लगातार, स्ट्रीम्स पे भी व्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, एंड दोनों का ये कोलैबोरेशन कभी होगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कृष्णा एंड डाना न्यूलीवाला, ऑफ कोर्स दे आर बोथ कनेक्टेड टू हरियाणा। कृष्णा इज फ्रॉम गुड़गांव, गुड़गांव में से हमारा भाई, और न्यूलीवाला तो न्यूलीवाला से भाई, लेकिन बढ़िया कोलैबोरेशन किया है। और वह चीज है ना, क्या है वो चीज जो आग ला देना भाई गाने में, तो मौसम बदल दिया, दोनों ने एक साथ कोलैबोरेशन करके बहुत बढ़िया गाना ले आए हैं। तो ये गाना बूम शाकलाका इज एट नंबर 10 ऑन द लिस्ट, एंड आई बिलीव हिप हॉप अगर आप समझना चाहते हैं तो इसमें दोनों के वर्सेस को सुनने की कोशिश कीजिएगा। कृष्णा का जो वर्स है जो उन्होंने रैप किया है बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो अगर वो ना भी समझ में आया तो चलेगा, बट वेरी टेक्निकल, वेरी टेक्निकल एंड अमेजिंग। बट डांडा भाई का जो रैप है ओ भाई समझ में आ जाया करे, बहुत मुश्किल ना है, तो एक बार सुन के देख लेना, अच्छा लग सकता है आपको भी अगर आपने आज तक रैप नहीं सुना है, आज तक आपने हिप हॉप में कोई रुचि नहीं दिखाई। सो गाना नंबर 10 बूम शाकलाका, कृष्णा एंड ढाणा न्योलीवाला। अब गाना नंबर 9 जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। गाना नंबर 9 है आदित्य लिखारी का, और आई थिंक इनकी जो लिखाई है बड़ी कमाल की है। मैं ये नहीं कहूँगा इनका बहुत ही बड़ा फैन हूँ मैं, बिकॉज उसके लिए आपको फुल गाने फॉलो करने पड़ते हैं, मैं तो सिर्फ गाड़ी में रैप ही सुनता रहता हूँ। बट आदित्य की एक खास बात यह है कि वो किसी के साथ भी कोलैबोरेशन करें, ज़रूरी नहीं है कि उनका कोई पसंदीदा कोलैबोरेशन ही हो, कोई एक पर्टिकुलर म्यूजिक डायरेक्टर ही हो, वो किसी के साथ भी गाना बनाते हैं तो पता नहीं गाने की वाइब ऐसी होती है कि आपको लगता है यार गाना तो बहुत बढ़िया है, और ये फेल नहीं होते। मतलब कोई ऐसा गाना नहीं जो लगे यार ये क्या फालतू के लिरिक्स हैं। एवरीथिंग दैट ही डज इन अ सॉन्ग इन अ ट्रैक इज वेरी मीनिंगफुल। गाने में या तो कहानी होगी, गाने में बहुत जबरदस्त पोइट्री होगी, गाना किसी चीज को लेकर रिकॉल होगा, या गाना किसी इमोशन को टैप इन करेगा। ये गाना वो है बारियां इज एन अमेजिंग अमेजिंग ट्रैक। इस बार वो रोचक कोहली के साथ हैं, इस गाने को तैयार किया है रोशनी वालिया के साथ भी उन्होंने, एंड इट इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ट्रैक। बोए बारियां इज अ ट्रैक जो मैंने पहली मरतबा सुना, एंड इट गॉट ऑन टू माई नर्व्स। मुझे लगा ये गाना ड्राइव के लिए बहुत बढ़िया है, एंड स्पेशली वो वाली ड्राइव जब आप एक लंबे सफर में होते हैं और आपको कोई साथी नहीं चाहिए होता. सो दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स जिसमें आपको कोई नहीं चाहिए. कल्ले कल्ले गाड़ी जा रही है भाई, गेड़ियां मार रहे हैं, हांडे पे रहे पूरा कतर में, और यो गाना भाई ला दोगे तो मौज आ जाएगी. तो ये जो गाना है आदित्य लिखारी का, ये सच में बहुत बहुत खास है, और ये भी मुझे लगता है कि लिस्ट में काफी दिनों तक रहने वाला है. सरोजा कोहली के साथ आदित्य लिखारी विद द सॉन्ग बोहे वारियां एट नंबर 9 ऑन द लिस्ट. अब गाना नंबर 8 की बारी है. गाना नंबर 8, ये गाना मैंने एक चीज नोटिस करी है जो बताने जा रहा हूँ मैं. इतने सारे लिसनर्स हैं जो पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, जिन्होंने मुझे मेरे शो में भी जब मैं शाम को शो करता हूँ या कभी सुबह का करता हूँ तो लोग ये बोलते हैं कि ये गाना चला दो. उन्हें भले ही शायद ही समझ में ना आ रहा हो गाने में क्या क्या है, बट दे लव द टोनैलिटी ऑफ द ट्रैक, और जो कुछ कुछ उन्हें हरियाणवी में समझ में आ रहा होता है दे एब्सोल्युटली लव इट. ढांडा भाई ने भाई सच में हरियाणा के हिप हॉप को ले गए इंटरनेशनल को. और ये जो गाना है दिल दे बैठी एक छोरे ने, भाई कति जहर गाना, भाई कति जहर गाना. दिल दे बैठी एक छोरे ने तो धुम्मा ढा दिया भाई, लट काट दिया इस गाने से, चस सजाएगी. आप भी सुन के देखो एक बारी. दिल दे बैठी एक छोरे ने जो गाना है एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. इस गाने की खास बात है इसके बीच में बहुत सारी लाइंस हैं, तारों के बारे में बात है, लड़की की किताबी ने के ऊपर बात है, एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही हैज रिटन इज प्योर शायरी. भाई क्या लिखाई है यार, क्या लिखाई है. पहले क्या होता था कि लोग समझते थे हरियाणवी में सिर्फ जो है फ्लैक्स किया जाता है, कहीं में गाड़ी धो रहे ये वो, ना सिर्फ गाड़ी और अग्रेसिव चीजों के बारे में बात नहीं हो रही यहाँ पे भाई, प्यार के बारे में बात हो रही है. और बहुत प्यारी शायरी है जो सुनने के बाद आपको लगेगा नहीं यार ये वाली शायरी जो है कि ये हरियाणवी में ही अच्छी लग रही है. एंड खड़ी भाषा में एक मोहब्बत भरा गाना कितना खूबसूरत लग सकता है, उसका ये प्राइम एग्जांपल है. सो दिल दे बैठी एक छोरे ने एट नंबर 8 है भाई साहब हमारी लिस्ट पे. रिवीजन कर देता हूं मैं छोटे से ब्रेक से पहले. तो गाना नंबर 10 बूम शाका लाका कृष्णा एंड डांडा न्योली वाला. नंबर 9 पे है बोहेलिया आदित्य लिखारी रोचक कोहली एंड रोशनी वालिया. एंड गाना नंबर 8 है दिल दे बैठी एक छोरे ने ढांडा न्यूली वाला का गाना एट नंबर 8 ऑन द लिस्ट. जाना अपने यानी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर इस नाम से हर जगह मौजूद है. प्लीज प्लीज फाइंड अस, और दुहा वाला कबीर के नाम से मैं मिल जाऊंगा. स्टे ट्यून्ड.
2: FM 107 टॉप 10 नंबर 10.

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, अस्सलाम वालेकुम। मैं दो हवाला कबीर एफएम 107 पे। अगर आप थोड़ा सा लेट हैं तो आप ज्यादा लेट नहीं है, 10, 9, 8 ही गाना अभी तक हमने बताया है। अब गाना नंबर 7 की बारी है इन टॉप 10 दिस वीक। यानी बता दूं, ये गाने दे आर एंटायरली बेस्ड ऑन देयर व्यूअरशिप ऑन यूट्यूब या फिर इनकी स्ट्रीम्स जो कि स्पॉटिफाई और गाना.com और एप्पल म्यूजिक पे आती हैं। तो इन सब के बेसिस पे ये गानों की लिस्ट हमने तैयार करी है। सो गाना नंबर 7 जो है, मुझे इस गाने की वाइब, माय गॉड क्या गाने की वाइब है। देयर इज समथिंग अबाउट दर्शन रावल जो इतना कैप्टिवेटिंग है कि एक कंसिस्टेंसी उनके साथ रहती। कोई भी गाना ये बंदा बनाता है, वो कहीं ना कहीं जाके अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेता है। आई हैव नेवर सीन अ दर्शन रावल सॉन्ग विच जस्ट डाइड। होता है ना, कुछ सिंगर्स बहुत बेहतरीन होते हैं, वो गाना डालते हैं, उनके व्यूज नहीं आते, उनके फैंस नीचे कमेंट सेक्शन में लिख रहे होते हैं कि ये गाना कैसे अभी तक 1 मिलियन नहीं पहुंचा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। दैट नेवर हैपेंस टू दर्शन रावल। दर्शन रावल का गाना है बरसात लगती है, और इतना खूबसूरत वीडियो, इतने खूबसूरत लिरिक्स, एंड क्या हुक है गाने का भाई, क्या हुक है गाने का। बरसात के बहुत सारे गाने आगे चले गए और बहुत टाइम से आए भी नहीं थे। मैं सोचता था कब आएंगे। आई थिंक वो जो एक मूवी आई थी श्रद्धा कपूर अर्जुन कपूर की, हाफ गर्लफ्रेंड, उसमें बहुत बेहतरीन गाने थे बरसात के। उसके बाद भी आए लेकिन वो इतने नहीं चले, और रिसेंट टाइम से तो कोई भी बरसात का गाना इतना अच्छा नहीं आया। तो बरसात हो ना हो, तपती गर्मी में धूप में, ये गाना भाई एकदम बढ़िया है। गाने का नाम है बरसात लगती है। इसमें दर्शन रावल हैं और सिमरन चौधरी साथ दे रही हैं उनका। बट नॉट जस्ट द ट्रैक, ओके, एक होता है कि ट्रैक को बना दिया, अब इस वीडियो क्या करें। वीडियो में भी इक्वल मेहनत की गई है। बंदा बसों में चढ़ा है, उतरा है, बारिश हो रही है, पूरी एक स्टोरी है जो गाने के अंदर भी है और जो वीडियो में बहुत ही विजुअलाइजेशन उसका खूबसूरत किया गया है। आई लव द ट्रैक एंड आई थिंक दर्शन रावल इज अप देयर। मैं उन्हें अंडर रेटेड नहीं कहूंगा, अंडर रेटेड तो नहीं है बंदा, बट बॉलीवुड वालों को इन पे नजर बनाने की जरूरत है, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स अपार्ट फ्रॉम द गुजराती ट्रैक्स मैंने दर्शन रावल के गानों को सुना नहीं है इतना बॉलीवुड के अंदर, जितना वो सिंगल्स अपने आउट कर देते हैं। तो आई थिंक दर्शन रावल के ऊपर अटेंशन

0: जानी चाहिए बॉलीवुड की एंड उनको मौका मिलना चाहिए और भी ज्यादा गाना गाने का, बिकॉज उनकी वॉइस भी बहुत यूनिक है. ये मैंने सेम बात विशाल मिश्रा के बारे में कही है इससे पहले. विशाल मिश्रा इज जस्ट टॉप नॉच और उनका काम अभी बहुत बढ़िया चल रहा है. वो बॉलीवुड के लिए भी गा रहे हैं, इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. पर दर्शन रावल इज इन द सेम कैटेगरी एज हिम एंड आई बिलीव दर्शन रावल का फैन बेस बहुत तगड़ा है भाई. He only needs to get a lot of work in Bollywood as well. Singles बना रहे बहुत बढ़िया दर्शन रावल. अब एल्बम निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि आंधी आ जाएगी. So, दर्शन रावल का गाना बरसात लग दी है is at number 8 on our list. An absolute banger of a track. और क्या हो गया भाई गाने का. All right, अब जो है वक्त आ गया है गाना नंबर 6 का. आतिफ भाई आ गए आलिए रे. आतिफ असलम ने एल्बम लॉन्च करी और हलचल पैदा कर दी भाई, हलचल. सबसे खूबसूरत बात बताता हूँ आपको मैं. ऑल दो पाकिस्तान में उर्दू तो ऑब्वियसली है ही, मगर किसी ने भी ना इंडिया में ना पाकिस्तान में उर्दू से प्लेलिस्ट को लिखा हो. सारे गानों के नाम जो है उर्दू में लिखे हुए हैं और वो जो एल्बम कवर है आतिफ असलम का वो इतना कमाल का है भाई, इतना कूल लगता है ना. तो आतिफ भाई ने इस बार जो किया है मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज मेरी उनसे शिकायत ही रहती थी कि चलो आतिफ असलम इज अ स्टार, ही इज अ रॉक स्टार, आतिफ असलम कुछ भी गाएंगे चलेगा मार्केट में, दौड़ेगा इनफैक्ट. मगर उनकी जो अदायगी है, जो उनकी मौसिकी है, जो डिलीवरी है, वो सालों से सेम ही रही है, ऑलमोस्ट ट्रैजेक्टरी. लेकिन इस एल्बम से उन्होंने मेरे जैसे कई लोगों का मुंह चुप करा दिया. आई एम रियली हैप्पी दैट ही डिड इट. बहुत बहुत शानदार एल्बम है. हर इमोशन के लिए गाना है इसमें. क्लब बैंगर्स भी हैं तो सैड गाना भी है तो मोहब्बत वाला गाना भी है. एंड देर आर मैनी मैनी ट्रैक्स इन द लिस्ट. तो ये गाना नंबर 6 जो है सच्चे वादे गाने का नाम है. आतिफ असलम ने इसे गाया है एंड अ वेरी वेरी वेल रिटन सॉन्ग.
1: सच्चे वादे क्यों तोड़ते मोड़ते तुम जल्दी.
0: वेरी वेल रिटन सॉन्ग एंड किसी ना किसी पाकिस्तानी ड्रामे का टाइटल ट्रैक ही बन सकता है सच्चे वादे. इनफैक्ट सच्चे वादे एक बहुत बढ़िया टाइटल हो सकता है किसी भी पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल का. तो भाई ये मैं आइडिया थ्रो कर रहा हूँ, कोई अगर मुझे सुन रहा है जो पाकिस्तान में मेरी आवाज़ को ले जा सकता है, प्लीज़ सच्चे वादे नाम से एक सीरियल बना डालो और आतिफ असलम का ये जो गाना है इसे टाइटल ट्रैक बना दो. हिट है, मैं लिख के दे रहा हूँ, हिट है, अभी से कह रहा हूँ. जैसे गाना नंबर 6 पे हिट है भाई. अब जरा आ जाते हैं गाना नंबर 5 पे. गाना नंबर 5 अभी भी नंबर 5 पर है. इस गाने की क्वालिटी ऐसी कि अभी नहीं गिरने वाला है. ना नॉट रियली इन रिसेंट टाइम. थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरी तरह से लिस्ट से बाहर होने में, क्योंकि ये अभी भी गाना वायरलिटी में बहुत आगे है. और सिर्फ गाने के हुक की वजह से नहीं, गाने के डांस स्टेप्स की वजह से. तो गाने का नाम है बन जा तू मेरी. ये गाना है चरणप्रीत और बादशाह भाई ने रैप किया है. बहुत कमाल का गाया है यार चरणप्रीत, बहुत कमाल का गाया है. इससे पहले मैंने उनको डिस्कवर भी नहीं किया था, लेकिन उनकी डिस्कोग्राफी में ये गाना हमेशा बेंचमार्क बन के रहेगा. इस गाने ने कई सारे कोरियोग्राफर्स की जो है दुकान खोली है और मैं बड़ा खुश हूँ कैसा हुआ है. कई लोग इसके डांस स्टेप्स को सिखाने के पैसे ले रहे हैं भाई. बात यहाँ तक पहुँच गई है. एंड स्पेशली द लीड डांसर इन द ट्रैक आसी जिनका नाम है, बहुत अच्छा डांस किया है. बहुत फैबुलस ट्रैक, कमाल का रैप एंड कमाल का हुक स्टेप एंड कमाल की कोरियोग्राफी, सब कुछ कमाल है इस गाने के अंदर. और ये गाने को भी टाइम हो गया फिर भी इट इज एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट. बन जा तू मेरी, बादशाह एंड चरणप्रीत दोनों साथ में. व्हाट अ कोलैबोरेशन मैन. ये है एट नंबर 5 ऑन द लिस्ट, जाना नहीं. FM 107 टॉप

0: FM 7 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107.10 नंबर 5।

0: FM 107 Top 10.
1: तो अगला गाना है जो है वो है एट नंबर फोर. नंबर फोर पे भी इस लिस्ट में, पूरी टॉप टेन की लिस्ट में इतने सारे गाने ढांढ भाई के आ चुके हैं. एंड आई एम जस्ट प्राउड टू से दिस कि मैं सिर्फ फेवरिज्म नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ढांढा भाई का गाना भाई बनता है इस लिस्ट पे. गाना अभी भी जा रहा है आगे और हम भी चला रहे हैं एंड वी आर प्राउडली प्लेइंग इट ऑन आर स्टेशन 107 पे. जगाड़ने गाने का नाम है, ढांढा वाला का गाना है और इसमें एक लाइन है के बेटी चाहे दुश्मन की हो मारे घर महफूज मिलेगी.
2: बेटी चाहे दुश्मन की हो मेरे घर महफूज मिलेगी.
1: व्हाट अ लाइन मैन, व्हाट अ लाइन. एंड इस तरीके से

वीडियो उन्होंने शूट किया है, वो आइडिया जिसका भी था बहुत कमाल का आइडिया है, वीडियो बहुत जबरदस्त है, डांडा वाइज लुकिंग सुपर सुपर कूल, और उनकी रिसेंट जो ईपी आई है उसका ये गाना है जगाने। इस गाने में एटीट्यूड है, इस गाने में लाइन डिलीवर्स है, इस गाने में हल्का सा डिस भी है, जो जो आर्टिस्ट डांडा भाई के बारे में बात करते आए हैं हमेशा, थोड़े बहुत जो उनसे जलने वाले लोग हैं उनको भी डांडा भाई ने रिप्लाई दिया है, और साथ साथ गाने में हर एक चीज़ डाली है। गाना थोड़ा सा बीच में मोहब्बत वाला भी हो जाता है, तो गाना बीच में कहीं फ्लैक्स वाला भी हो जाता है, और गाना कहीं बीच में एक ईगो बूस्टर भी है, बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो जगाने जो है भाई साहब, ये गाना है एट नंबर 4 ऑन द लिस्ट, एंड ये बैंगर ऑफ अ ट्रैक, अगर आपने अभी तक नहीं सुना था सो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू लिसन टू इट। सो ये आलो जी सुन लो। ओके, तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं इतना ही बोलूंगा कि लिस्ट को रिवाइज करने का वक्त आ गया है, तो लिस्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अभी तक हम 4th नंबर तक पहुंच चुके हैं। सो गाना नंबर 10 रहा बूम शाकलाका कृष्णा एंड ढाणा न्योली वाला, देन गाना नंबर 9 बोहे बारियां, एंड देन गाना नंबर 8 दिल दे बैठी ढांडा न्यूली वाला अगेन, नंबर 7 पे बरसात लग दी है दर्शन रावल एंड सिमरन चौधरी, व्हाट अ ट्रैक। इसके बाद जो है गाना नंबर 6 है सच्चे वादे आतिफ असलम की आवाज में, देन है नंबर 5 पे बन जा तू मेरी विच इज बाय बादशाह एंड चरणप्रीत, जैसे मैंने कहा ये गाना लिस्ट में रहेगा, एंड देन गाना नंबर 4 है जगाने अगेन ढांडा न्योली वाला। वापिस आते हैं, टॉप 3 गानों की बात होने वाली है, जाना नहीं है आपने, स्टे ट्यून्ड FM।

0: FM 107 Top 10.
1: वेलकम बैक, मैं दोहा वाला कबीर एफ 107 पे। एंड भाई साहब, वक्त आ लिया नंबर 3-2-1 का, प्राउडली प्रेजेंटिंग द टॉप 3 सॉन्ग्स ऑफ दिस वीक एंड

0: तीनों के तीनों एक ही पिक्चर से, तीनों के तीनों बैंगर हैं, तीनों के तीनों जबरदस्त ट्रैक्स हैं। नंबर तीन पे है आवारापन टू से वे जुनू। मैं आगे नहीं गाऊंगा, नहीं तो सुर बिखर जाएगा, आप रेडियो बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे गाड़ी में।
1: वे जुनू, वे जुनू, वे जुनू, वे जुनू, वे जुनू।
0: तो वे जुनू आवारापन टू का ये गाना, ये वैसा ट्रैक है जो स्लो पॉइजन की तरह है, धीरे धीरे असर करता है आप पे। तो वे जुनू इज अ ब्यूटिफुल ट्रैक, डेफिनेटली ऑन द लिस्ट एंड डेफिनेटली एट नंबर थ्री जगह बना ली है, सुन के देख लो भाई। अब नंबर टू पे आते हैं। नंबर टू पे है आवारापन टू से ही इसका टाइटल ट्रैक, ये आवारापन एंड द कमबैक ऑफ अरिजीत सिंह। कमबैक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में रिटायरमेंट उन्होंने ले ली थी, मगर अमाल मलिक के चलते उन्होंने वापस गाने का फैसला किया। एंड अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, अरिजीत सिंह ने इसका एक पैसा नहीं लिया है इस गाने को गाने का। उसके बाद भी ये गाना फ्री फंड में बनने के बाद इतना खूबसूरत गाया है, ये बंदे का डेडिकेशन दिखाता है। आवाज इतनी जबरदस्त, और जैसे अरिजीत सिंह कहते हैं कि गले को तोड़ तोड़ के उन्होंने आवाज बनाई है, तो उन्होंने साबित भी किया है। क्या गाना गाया है यार, बहुत अच्छा गाया है। और नॉट जस्ट दैट, गाने के लिरिक्स जो हैं, जो सईद कादरी साहब ने लिखे हैं, वो भी टॉप नॉच हैं। सो इफ यू फोकस ऑन द लिरिक्स, आपको गाना अपने आप पसंद आएगा ही आएगा, देयर इज नो वे कि गाना आपको पसंद ना आए। ये आवारापन, आवारापन टू से एट नंबर टू ऑन द लिस्ट। और अब बारी है उस गाने की जो है नंबर वन ऑन द लिस्ट। मुझे पता है कि आपको भी पता है कि गाना नंबर कौन सा है नंबर वन पे, लेकिन फिर भी इसकी तारीफ किए बिना मैं रह नहीं सकता। ये गाना जब इसका पहला वर्जन आया था तो लोग दीवाने हो गए थे 2007 में। ये गाना जो इसका पहला वर्जन था वो गाया था मुस्तफ़ा जाहिद साहब ने। आवारापन 2007 में जब रिलीज हुई थी जून के महीने में, आई एम अ ह्यूज ह्यूज फैन, तो मुझे सारी डेट सब कुछ पता हुआ है, सब कुछ पता है। तो ये गाने ने आग लगा दी थी, वी थॉट के ऐसा गाना तो बन ही नहीं सकता। एन आवारापन टू से मुझे उम्मीद थी, पर अंदर अंदर दिल में चल रहा था पता नहीं ऐसा गाना बन पाएगा नहीं बन पाएगा। बट देन आई हर्ड द स्निपेट ऑफ द ट्रैक एंड आई गॉट क्रेजी, ये गाना भाई। और फिर उन्होंने गाना डाला तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज रिसेंट टाइम्स। एंड कंटिन्यूज का बहुत बड़ा मीनिंग है, लोग जो है समझ नहीं रहे। अगर आपने पुराना तेरा मेरा रिश्ता सुना है तो उस गाने के बाद का ही, सो गाना ऐसा नहीं कि अलग से बना दिया डाल दिया मूवी के अंदर, नहीं, ये गाना पहले वाले गाने की कहानी को आगे बढ़ाता है। व्हाट अ ब्यूटी मैन। कभी आपने सुना कि पिक्चर का जो है वो दूसरा पार्ट आया और पुराने गाने का एक सीक्वल बनाया गया। पिक्चर के तो सीक्वल बहुत सुने आपने, गाने का सीक्वल भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट हैज हैपेंड। और क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है इस गाने को सईद कादरी साहब ने। और बहुत ही बढ़िया किया कि इस गाने को नाम इन्होंने दिया तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। एंड इट डेफिनेटली रॉक द फ्लोर, मुझे बहुत पसंद आया ये गाना। एंड मैं बड़ा खुश हूं कि गाना 6 मिनट का है। शुरुआत में आपको लगेगा कि गाने में कुछ भी नहीं है, ये गाना शुरुआत कैसे हो रहा है। वो मेलो शुरुआत के बाद जब बीच में रॉक म्यूजिक मिलता है पॉप म्यूजिक से और गाना उस पिच पर चला जाता है जहां पे आप सोच भी नहीं सकते, वो है इस गाने की ब्यूटी। अ वेरी अनएक्सपेक्टेड हिट इन अ वे के लोगों को शुरुआत में लगेगा नहीं कि गाना चढ़ पाएगा, लेकिन गाना इज डेफिनेटली ऑन द लिस्ट, डेफिनेटली टॉपिंग द चार्ट्स, और लिस्ट पे ये नंबर वन पे रहने वाला है। अभी तो पिक्चर की हाइप भी जा रही है भाई, बहुत कुछ जा रही है। तो आवारापन से टाइटल ट्रैक तो नंबर टू पे है, आवारापन से ट्रैक नंबर वन ऑन द लिस्ट टॉप 10 दिस वीक में। ब्लॉकबस्टर ऑफ द वीक इज तेरा मेरा रिश्ता कंटिन्यूज। तो ये था टॉप 10 दिस वीक, आई होप आपको मजा आया। कोई गाना आप चाहते हैं कि लिस्ट में आए, कोई गाना आप चाहते हैं लिस्ट से बाहर जाए, प्लीज भी बताइएगा 666-22-107 के जरिए। और हमारे व्हाट्सएप के अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स भी हैं, FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। प्लीज प्लीज गेट इन टच विद अस। एंड ऑन दैट नोट, दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी हैं। मां सलाम।
2: FM 107 Top 10 Number 3

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी
1: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
2: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4-5 फजील के साथ संडे से थर्सडे, ओनली ऑन FM 107। दिल से

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ हमारे खासम खास शो मेरी पहचान पर। तो कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से ये हफ्ता बड़ा ही शानदार आपका गुजर रहा होगा। वैसे आज की सुबह ना मेरी बड़ी कमाल की हुई, जब मैं रास्ते से आ रही थी और मैं देख रही थी कि कैसे सनराइज हो रहा है एंड दोहा की स्काई लाइन पर कितना खूबसूरत लग रहा है। मतलब इट्स मेकिंग यू फील स्पेशल। और मुझे किसी का ख्याल आया और वो ख्याल आपका, कि आप कितनी स्पेशल हैं। यस, यू, जो हर दिन इस खूबसूरत सनराइज की तरह उठती हैं और अपनी मुस्कुराहट से पूरे घर को, पूरे जहान को खुशनुमा बना देती हैं। वल आज हम उस रोशनी की बात करेंगे जो हमारे अंदर से आती है। हाँ, तो वेलकम है आप सभी का आज के हमारे ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ मेरी पहचान पर।

आज का एपिसोड सबके लिए है. वैसे मेरी पहचान ज्यादातर फोकस्ड हमारी ब्यूटीफुल लेडीज को होता है, बट आज हम छोटे छोटे हमारे बच्चों को भी इंक्लूड करने वाले हैं. सो यस बच्चों, टेल मी समथिंग, सबको सुपर हीरोज पसंद है राइट? अवेंजर्स की बात करें, जस्टिस लीग की बात करें, स्पाइडरमैन की बात करें, सबके पास अमेजिंग पावर्स होते हैं. किसी के पास स्ट्रेंथ होती है, कोई फ्लाई कर सकता है, कोई इनविजिबल हो सकता है. लेकिन क्या आपको पता है आपके पास भी एक सुपर पावर है, और इस पावर के लिए आपको कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, कोई केप नहीं चाहिए, और ना ही किसी स्पेशल सूट की जरूरत है. दैट सुपर पावर इज काइंडनेस, यानी कि दयालु होना. हाँ, अपने अंदर वो काइंडनेस, वो नरम दिल होना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमारा आज का जो थीम है ना, वो ये है कि यू शाइन व्हेन यू आर काइंड. पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो ना, तो आप सिर्फ दूसरों का दिन रोशन नहीं करते, बल्कि आप खुद के लिए भी कुछ स्पेशल करते हो और आप खुद चमकने लगते हो, लाइक अ ह्यूमन लाइट बल्ब. जब आप काइंड होते हो तो आपकी पहचान, आपकी आइडेंटिटी एक अलग ही लेवल पर चमकती है. अब आप सोच रहे होंगे कि अमिता, हम तो छोटे हैं, हम कैसे शाइन करेंगे? Well, मेरे नन्हे दोस्तों, काइंडनेस इज नॉट अबाउट डूइंग बिग या जायंट थिंग्स. इट्स अबाउट कि वो छोटे छोटे मोमेंट्स, टाइनी थिंग्स, यस वो मैटर करती है. इमेजिन करो, स्कूल में कोई अकेला बैठा है, लंच ब्रेक है, एंड आपने जाकर उसको हेलो बोल दिया, बूम, यू जस्ट स्टार्टेड शाइनिंग. या फिर घर पर मम्मा थकी हुई हैं और आपने बिना कहे आपके शूज सही जगह पर रख दिए, सारा सामान सही जगह पर रख दिया, अपना बैग सही जगह पर रख दिया, तो आपकी काइंडनेस की लाइट और ब्राइट हो जाएगी. मेरी पहचान यूजुअली ये हमारा शो ऐसा है जहां पर हम अपने आप को ढूंढते हैं, और आज हम देखेंगे कि कैसे दूसरों की हेल्प करके, उन्हें रिस्पेक्ट देकर और उनके लिए एक ब्रिज बनकर हम अपनी असली पहचान ढूंढ सकते हैं. तो आज का शो लव, लाफ्टर और अच्छाई के ऊपर है, तो कहीं नहीं जाना है आपने, बने रहना है हमारे साथ, क्योंकि वी आर ऑन अ मैजिकल जर्नी. हम सुनेंगे कुछ अमेजिंग फन फैक्ट्स कि कैसे काइंडनेस एक्चुअली हमारी बॉडी

को स्ट्रॉन्ग बनाता है. हम बात करेंगे द डेट ऑफ लव के बारे में और मैं आपको कुछ सीक्रेट टिप्स भी दूंगी कि कैसे हम काइंडनेस निंजा बन सकते हैं, स्पेशली अपने घर पर. लेकिन हम शुरू करने से पहले आपसे भी मैं कुछ पूछना चाहती हूँ. मेरा पहला सवाल है कि आज सुबह से लेकर अब तक आपने कोई एक छोटी सी काइंडनेस की बात की है? मे बी गुड मॉर्निंग कहा हो आपने अपने बिल्डिंग के गार्ड को, या फिर गले से लगाया हो अपने छोटे से भाई को. जो भी किया है बस शेयर कीजिए 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ. एंड लेट मी सी कि आज मेरी पहचान का ये जो स्पेशल एपिसोड है जहाँ बच्चा पार्टी इंक्लूडेड है वो किस तरह से रुख लेता है या रुख बदलता है. स्टे ट्यून्ड FM 107 पर, दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और मेरी पहचान आम तौर पर हम अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं जिसे हमने किसी ना किसी फैक्टर की वजह से खो दिया है लेकिन आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि काइंडनेस की बात हो रही है और बच्चों को इन्वॉल्व करना तो बनता है तो अच्छा बच्चों कभी सोचा है व्हेन यू शेयर योर चॉकलेट विद अ फ्रेंड या फिर आप मम्मा की हेल्प करते हो अपने टॉयज पिकअप करने में तो आपको अंदर से कैसा फील होता है It feels warm. सही कह रही हो ना बिल्कुल एक स्मॉल बल्ब हमारे अंदर जल जाता है कि उफ हमने कुछ ऐसा किया और जब हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो भी हम मुस्कुरा रहे होते हैं क्योंकि हमें हमारे आसपास के लोगों ने बहुत सारी प्यारी बातें

हमें कही होती हैं, है ना. और ये काइंडनेस जो ऐसी चीज है जहाँ बड़ी बड़ी चीजों का जिक्र नहीं होता, छोटी छोटी चीजों का जिक्र होता है, जैसे कि किसी को थैंक यू बोल देना या फिर किसी को पूछ लेना कि आप ठीक है अगर आपने कुछ भी ऑब्जर्व किया. आप हर दिन और भी ज्यादा ब्राइटर शाइन करते हैं, बिल्कुल वो ग्लिटर पेन था ना जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मैसेजेस जिन्होंने हमें बताया है कि सुबह उठकर उन्होंने क्या क्या काइंडनेस का काम किया. तो मेरे साथ है अनवर, जिन्होंने कहा कि अमिता मैंने आज सुबह उठकर अपनी मम्मी को एक पानी का ग्लास भर के दिया. दैट इज सो स्वीट. मतलब ये भी एक छोटा सा जेस्चर बहुत मायने रखता है. नूर का मुझे मैसेज है, वो कहती है कि अमिता मैं अपनी मम्मा की हमेशा हेल्प करती हूँ. जब वो ऑफिस से घर आती हैं तो उनका बैग सही जगह पे रखती हूँ, उन्हें पानी ला के देती हूँ और हमेशा पूछती हूँ कि आपको कुछ और चाहिए जो मैं दे सकती हूँ. दैट इज ऑल्सो क्यूट. पता है कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, आप जितने भी एज के हैं उसके हिसाब से भी अगर आप अपने बड़ों की हेल्प करते हैं ना तो वो बड़ों के लिए बहुत हो जाता है. पर यहाँ पर मुझे सबा का मैसेज है और वो कहती है कि अमिता मैं अक्सर वीकेंड में अपनी मम्मा के साथ ना किचन में कुछ ना कुछ पकाती हूँ. मुझे बड़ा मजा आता है कि मैं उनके साथ उनकी पार्टनर बन जाती हूँ. तो हम कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते हैं और हमें वक्त का पता ही नहीं चलता. दैट्स रियली क्यूट सबा. मतलब ये चीज तो मैंने अपनी मम्मी के साथ भी की थी और शुरुआत में सिर्फ चाय बनाना सीखी थी. एक बार बनाई और हर बार मुझसे बनवाया जाता था. तो ये हाल थे मेरे. और अब फिजा का मैसेज है, वो कहती हैं कि अमिता मैं ये करती हूँ कि हमेशा रात का वक्त जो होता है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है मेरी मम के लिए या मेरी बड़ी सिस्टर्स के लिए, तो मैं उनका साथ देती हूँ और खुद जाके पूछती हूँ कि कोई काम मेरे लायक है तो मुझे बताएं एंड डेफिनेटली मैं उसे पूरा करूँगी. देखिए ये सारे जो आपके मैसेजेस हैं ये दिखाते हैं कि आप कितने काइंड हैं. कितना आसान है ना अपने घर में खुशनुमा माहौल बनाना, बस यही हमको चाहिए. तो छोटे मोटे से जो स्टेप्स हैं वो लीजिए और आगे बढ़कर अपनी फैमिली को सपोर्ट कीजिए. वैसे अब थोड़े से फन फैक्ट्स हम जरा शेयर कर लेते हैं आपसे और जो कि हमारे हेल्थ से रिलेटेड भी है. तो साइंस कहती है कि जब हम काइंड होते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसे हम कडल हार्मोन भी कहते हैं. और ये आपके जो दिल को, आपके हार्ट को और स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, आपके ब्रेन को स्मार्टर बनाते हैं. और काइंडनेस वो कहते हैं ना कि इट्स कंटेजियस. अगर आप किसी की हेल्प करते हो तो उसे देखकर तीन और लोग इंस्पायर होते हैं दूसरों की हेल्प करने के लिए ना. इट्स लाइक अ नेवर एंडिंग चेन. और ये चेन रिएक्शन ऐसा फैलता है कि बस आप देखते ही सोचेंगे कि ये क्या हो गया, सब कुछ बड़ा ही खुशनुमा सा लगने लगता है. और अब इसी के साथ आज की सोच पर ना हम थोड़ा सा गौर फरमाएंगे. और आज की सोच इज बेसिकली किड्स एडिशन. और अब वक्त हो चला है हमारे आज की सोच का. हाँ जी, ये थोड़ा किड्स एडिशन है जो इस हफ्ते मैं आपके लिए लेकर आई हूँ. तो सारे जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, मैं कहूंगी कि भैया अगर आप कार में हैं तो रेडियो का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए. जहां कहीं भी और रेडियो सुन रहे हैं तो उसका थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइए. और बच्चे अगर पास में तो उन्हें पास लेकर आइए. आज हम एक बहुत बड़ी बात बहुत ही सिंपल तरीके से समझाएंगे. हम हमेशा सुनते हैं ना कि बड़ों से बड़ा होकर आपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है या पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना है, हमारा फर्ज है. बट हैव यू एवर स्टॉप टू थिंक व्हाई? आज हम रिस्पेक्ट और फर्ज जैसे बड़े वर्ड्स को साइड में रखते हैं. आज हम बात करेंगे एक ब्रिज की और एक प्यारी सी उधारी की. हाँ जी, द डेट ऑफ लव की. इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़ा मजबूत ब्रिज है, एक पुल है. उस ब्रिज के एक साइड पर आपके सारे सपने हैं, आपके टॉयज हैं, आपका स्कूल है, आपका फेवरेट फूड है एंड योर हैप्पी लाइफ हियर इन कतर. और दूसरी साइड पर वो मेहनत है जो आपके पेरेंट्स करते हैं. आपकी मम्मी और पापा उस ब्रिज की तरह है, वो आपको उस साइड से इस साइड तक लेकर आते हैं. थिंक अबाउट इट. सुबह 6 बजे जब आप अपने घर में उठते हैं, चाहे ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, मम्मा उठकर आपका टिफिन पैक करती ही करती हैं. पापा चाहे जितने भी बिजी हो वो भी आपकी कहीं ना कहीं हेल्प करते ही करते हैं, आपको स्कूल छोड़ के आते हैं एंड वगैरह वगैरह. मतलब अगर हम लिस्ट निकालें तो लिस्ट काफी बड़ी है. बट किड्स, जब भी हम स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिज की बात करते हैं ना तो उसे भी कभी कभी थोड़ा वजन लगता है, बर्डन किसी चीज का लगता है. हमारे पेरेंट्स सैंडविच जनरेशन का हिस्सा है. हाँ, वो आपका ध्यान तो रख रहे हैं और साथ ही साथ इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल में बैठे अपने मम्मी पापा का भी

बस ठंडा पानी लाके दीजिए, पूछिए मामा कुछ खाना चाहेंगी, ये तो छोटी मोटी चीजें हैं जो हर स्कूल का बच्चा कर ही सकता है। और वो जो एक ग्लास पानी आप लेकर आते हैं ना उनके लिए, वो उस ब्रिज को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपकी मम्मा को सुपर पावर देता है। जब पापा लेट आते हैं और शायद थोड़े स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो उन्हें एक लंबी वाली झप्पे दे दो। सच बता रही हूँ, ये जो बेयर हग होता है ना, मतलब ये किसी को भी एनर्जी दे देता है। पता है इससे क्या होता है, आपका जो ये प्यार से अपने अब्बा को गले लगाना एक मैजिक की तरह असर करता है, और ये उन्हें बताता है कि आपने हमारे लिए जो किया हमने वो देखा है, एंड वी लव यू फॉर इट। यस, तो इसको कहते हैं डेट ऑफ लव। ये कोई ऐसा कर्ज नहीं है, ये कोई ऐसा बोझ नहीं है जो आपको आगे जाके बर्डन की तरह लगे। ये वो प्यार है जो हम एक दूसरे को ना देते रहते हैं ताकि कोई भी थके नहीं। काइंडनेस एक फ्यूल की तरह होता है जो हमारी अपनी फैमिली ब्रिज को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ताकि ये ब्रिज बिल्कुल अटल और अडिग खड़ा रहे। चलो लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। अब मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने घर के बड़ों को देखें, जो आपके रूम में हो, कार में हो, या उनके चेहरों को गौर से देखें, उनके चेहरों को इमेजिन करें अगर आपके आसपास नहीं है, और अगर आसपास है तो उनके चेहरों को गौर से देखें। क्या उनकी आंखों के नीचे थोड़ी थकान है? क्या वो थोड़ा कम मुस्कुरा रहे हैं? इट्स टाइम फॉर द इंटरैक्टिव हग मीटर। हाँ जी, अब ये कौन सा टर्म आ गया? तो मेरा आपसे सवाल है कि आज आपके घर में या आपके साथ कौन है जिसे सबसे ज्यादा एक प्यार वाली मैजिकल झप्पी की जरूरत है? क्या ये आपकी मम्मा है, या पापा है, या बड़े भाई बहन है जिन्हें एग्जाम्स का स्ट्रेस है? हाँ, इसे देखिए और जो भी मैंने बताया है अपना काइंडनेस दिखाइए, जाइए उनके पास, उन्हें गले से लगाइए, उन्हें प्यार कीजिए, और ये बताइए कि देखो मैं आपके साथ हूँ। वैसे एक रियल लाइफ काइंडनेस भी होती है, और इसके लिए मैं आपसे ये कहूंगी कि आप ना शू सरप्राइज करो। हाँ, द शू सरप्राइज। चलो मैं बताती हूँ कि जब पापा घर आए उनके शूज उठाकर रैक में रख दो, उन्हें बोलने की जरूरत ना पड़े। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है जो हर घर में होती है, और अगर आपने इसे फॉलो की उफ तो मजा आ जाना है। एंड देन आर यू ओके, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है। दिन में एक बार अपनी मम्मा के पास जाकर ना ये पूछ लो कि मम्मा आप ठीक हो ना, डू यू नीड एनीथिंग, आपको किसी चीज की जरूरत है? फिर देखो मम्मा के चेहरे की मुस्कुराहट, एंड फिर देखो कि वो क्या महसूस करती हैं। और उसके बाद आता है डिजिटल हग। हाँ जी, अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स दूर रहते हैं तो उन्हें एक छोटा सा वॉइस नोट भेजो, उन्हें बोलो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। एंड मैं बता रही हूँ ये बिल्कुल फ्री है, इट कॉस्ट जीरो रियाल, पर ये मिलियंस की वर्थ रखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आप काइंड होते हो तो आप सिर्फ उनका दिन नहीं बनाते, आप खुद के अंदर से चमकने लगते हो, एंड यू शाइन व्हेन यू आर काइंड। चले फिर हमारे साथ बने रहे, आगे भी और भी बातें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है, तो कहीं नहीं जाना है आपने, बने रहना FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर मेरी पहचान सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ। तो अभी क्या करना है, एक थोड़ी सी लंबी गहरी सांस लेना है, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। और सारे जो बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं, एंड हैव यू एवर नोटिस समथिंग कि कभी कभी मम्मा पापा यूं ही बैठे होते हैं सोफे पर एक दूसरे के साथ और फोन पकड़े होते हैं, अपने व्हाट्सएप वीडियोस देख रहे होते हैं या फैमिली ग्रुप में कॉल कर रहे होते हैं। उनके चेहरे देखो, क्या वो सैड है, क्या वो वरिड है या वो खुश है। आपको लगता होगा कि शायद वो कोई बोरिंग ऑफिस का काम कर रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेशली हम जिस तरह से कतर में रह रहे होते हैं, ये जो फोन होता है ना, ये हमारे घर का ब्रिज बन जाता है। मे बी इंडिया में नानी की तबीयत ठीक नहीं होती या पाकिस्तान में दादी को पापा की याद आ रही है, देयर सो मेनी थिंग्स। लेकिन क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पापा का फेस एकदम टाइट हो जाता है जब फोन रिंग लेट नाइट होता है, या फिर आपकी जो मम्मा थोड़ा सा ज़्यादा चिंता में आ जाती हैं, वरिड हो जाती है जब उन्हें उनके पेरेंट्स के बारे में कोई खराब न्यूज़ मिलती है। नाउ दे आर द पार्ट ऑफ व्हाट वी कॉल सैंडविच जनरेशन, मतलब उन्हें अपनी जनरेशन का भी ख्याल रखना है और वो जिनकी जनरेशन है उनका भी। इसीलिए सैंडविच जनरेशन के साथ काइंडनेस से पेश आना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोचेंगे कि सैंडविच थोड़ा सा अच्छे से बता दो। ठीक है, वेल इफेक्टिवली आपको ये बताना चाहूंगी कि आप इमेजिन करें सैंडविच कैसा होता है। बॉटम में एक ब्रेड की स्लाइस होती है, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जिन्हें केयर और प्यार चाहिए। तो टॉप पर एक ब्रेड की स्लाइस है, वो आप हैं जिन्हें स्कूल छोड़ना है, टिफिन देना है, खेलना है, पढ़ाना है, लिखाना है, और बीच में ये जो यमी फीलिंग है ना, ये हमारे मम्मी पापा है। अब वो दोनों तरफ से ना स्क्वीज हो रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ भी पूरा वक्त बिताए, प्रेजेंट में भी रहे, और साथ में उनका दिमाग उड़कर अपने मम्मी पापा के पास भी हजारों मील दूर जा रहा होता है। बड़ा मुश्किल होता है बैलेंस करना, उन्हें लगता है कि शायद वो थोड़ा फेल तो नहीं हो रहे, ना वो पेरेंट्स को देख पा रहे हैं, ना वो अपने बच्चों को देख पा रहे हैं। बट किड्स, यहाँ पर आपका काइंडनेस एक मेडिसिन की तरह उनके काम आता है। तो कभी भी इस मेडिसिन को अपने मम्मी पापा तक पहुंचाने में ना देर नहीं करना, ठीक है। अब हम एक छोटी सी ना एक्टिविटी करेंगे जिसे हम कहते हैं काइंडनेस ब्रेथ। तो आज हम अपने पेरेंट्स को स्ट्रेस से बचाएंगे, यूं कहें उनका स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे। तो पेरेंट्स, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं घर की तरफ तो हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और बच्चा पार्टी आपको लीड करना है। तो क्या करना है, द काइंडनेस ब्रेथ। चलो सब लोग जहां कहीं भी हो सीधे बैठो, ठीक है। इमेजिन करो एक गोल्डन स्ट्रिंग जो कि आपको ऊपर की तरफ खींच रही है, ठीक है। अपनी आंखें बंद रखो और कुछ मत कहो।

अपने राइट हैंड को अपने दिल के नजदीक ले जाओ। आप क्या उस दिल की धड़कन को जो धक धक धक कर रही है वो महसूस कर सकते हैं? वो आपकी जिंदगी का ड्रम है। अब उसके बाद सांसें थोड़ा धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता लो और अपनी नाक से ही सांस लेना, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और उसे होल्ड करो और सोचो उस मेमोरी के बारे में जो कि आपको हंसाती है। शायद कोई जोक, शायद कभी आइसक्रीम खाते हुए आपकी वो आइसक्रीम आपकी नाक पर लग गई थी, हाँ। और फिर ब्रीद आउट करो स्लोली 5 सेकेंड्स के लिए। बट जैसे ही आप ब्रीद आउट करो, इमेजिन करो एक काइंडनेस डस्ट, जादुई धूल जो कि आपके कमरे से बाहर जा रही है। इमेजिन ये काइंडनेस डस्ट आपके मम्मी और पापा के कंधों पर गिर रही है, उनका बोझ हल्का कर रही है। इमेजिन ये डस्ट उड़कर कतर से बाहर भी जा रही है, सीधा नानी और दादी के घर, उन्हें गले से लगा रही है। लेट्स डू इट वन मोर टाइम। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो एक्सरसाइज है ये बेसिकली आपका प्यारा सा मैनिफेस्टेशन है। ये आपका वो पॉजिटिव थॉट है जो आप अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं और जो आप अपने दादा दादी नाना नानी जो आपसे दूर है उन तक भी पहुंचा सकते हैं। और इससे ये जो हमारी सैंडविच जनरेशन है ना, उनका स्ट्रेस कम होता है। एक और बड़ी कमाल की टिप है और मैं सारे घर के बच्चों के लिए ये कहना चाहूँगी कि जब भी हमारी मम्मी, स्पेशली मम्मियों को ज़्यादा काम दिया जाता है कि वीडियो कॉल पे आपने ही बात करनी है तो जब भी मम्मी या पेरेंट्स वीडियो कॉल पर हो तो आप समझ लीजिए कि ये आपके मम्मी पापा जो सैंडविच जनरेशन है ना, उनको ईज्ड आउट करना बहुत ज़रूरी है। तो जो वीडियो कॉल है उसे खूबसूरत बनाने के लिए, उसे खुशनुमा बनाने के लिए अगर आप आस पास हैं तो दौड़ते हुए वहाँ जाएं। और चाहे फोन पर कोई भी हो, नानी दादी दादा या कोई भी हो, आप उन्हें एक बड़ी सी स्माइल दीजिए, उन्हें एक ड्राइंग दिखाइए या एक पोयम सुनाइए। पता है क्यों? जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको खुश देखते हैं ना तो आपके पेरेंट्स का जो गिल्ट है वो कम हो जाता है। उन्हें लगता है कि चलो मेरे बच्चे खुश तो है और मेरी मेहनत सफल हुई, तो ये एक फील आता ही आता है। और दूसरी चीज है द फोन सैंक्चुरी। अगर आप देखें कि पापा फोन पर बहुत ही चिंता में लग रहे हैं, बहुत ही वरिड लग रहे हैं, तो उनका हाथ पकड़िए और कहिए, पापा इट्स ओके। आई नो ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें जब हमारी तरफ से हमारे पेरेंट्स के लिए आती है ना, तो पेरेंट्स को बहुत सपोर्टिव फील होता है और उनकी हिम्मत 4 गुना बढ़ जाती है। तो ये छोटे छोटे से स्टेप्स हैं जो आपको लेने हैं और आगे कुछ और भी है जिसका जिक्र हम करने वाले हैं। तो आप कहीं ना जाएं, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन मरहबा मैं हूं अमिता आपके साथ और मेरी पहचान पर आप हैं मेरे साथ तो जनाब छुपी हुई मैं ये हमारा बड़ा ही स्पेशल सेगमेंट है हमारे शो का और आज क्योंकि किड्स एडिशन है तो आज क्या है खास पता है अक्सर जब हम पहचान या आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम उन लोगों की बात करते हैं जो बड़े हैं जो फेमस हैं जिन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं लेकिन आज आई वॉन्ट टू टॉक टू द हिडन यू हाँ जी वो छोटा सा बच्चा जो शायद रूम के कॉर्नर में बैठा है जो शायद थोड़ा शाय फील कर रहा है और सोच रहा है मैं तो सिर्फ 7 साल का हूँ मैं क्या ही बदलाव ला सकता हूँ मैं क्या चेंज करूँगा मैं तो इतना छोटा हूँ कि डाइनिंग टेबल के ऊपर का सामान भी नहीं दिखता लिसन टू मी मेरे सारे ब्यूटिफुल किड्स आपको ऐसा लगता होगा कि भले ही आपकी हाइट छोटी है लेकिन आपको बताऊं आपका दिल बहुत बड़ा है हाँ टुडे आई एम गिविंग यू अ न्यू टाइटल हाँ जी आज से आप सबको मैं बुलाने वाली हूँ चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर जो कि अपने घर का ख्याल रखेंगे पता है इसका मतलब क्या होता है इट मीन्स कि आपके पास पावर है कि आप हर एक मौसम को बदल सकते हैं अगर घर में सब थोड़े से सैड हैं या फिर स्माइल एकदम कम हो रही है तो आपको अपनी मुस्कुराहट से उस मोमेंट को स्पेशल बनाना है उसके बाद कहते हैं ना कि द साइंस ऑफ चेन रिएक्शन लेट मी टेल यू एक फन फैक्ट है कि साइंस कहती है कि हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं ठीक है जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली उन्हें स्माइल करने के लिए फोर्स करता है इट्स लाइक अ सीक्रेट रिमोट कंट्रोल और फिर दूसरा शख्स भी मुस्कुराने लगता है हाँ जी चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ एक मोमबत्ती से जब हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं ठीक है तो पहली मोमबत्ती की रोशनी कम नहीं होती है इनफैक्ट पूरा कमरा और ज्यादा रोशन हो जाता है और ऐसे ही काइंडनेस काम करता है तो सोचो जरा कि वो कौन सी हिडन सुपर पावर है आपके अंदर क्या आप अच्छे जोक सुना सकते हो क्या आप किसी को प्यार से गले लगा सकते हो खासतौर से अपने घर के लोगों को क्या आप अपने टॉयज शेयर कर सकते हो बस ये सारी चीजें जो होती है ना यही हमारे घर के एनवायरनमेंट को बहुत ही ज्यादा खुशनुमा बनाती है अब हम हमारे शो के बिल्कुल एंड पर आए हैं और यहाँ पर कुछ टिप्स बड़ी काम आने वाली हैं और नंबर वन पर मेरे लिए है कि आपको सीक्रेट सांता स्टाइल में कुछ काम करना पड़ेगा यानी आपको पता है ना कि सीक्रेट सांता क्या होता है तो जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं और बिना अपना नाम बताए आपको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ है सामने वाले को पता नहीं चलना चाहिए कि ये गिफ्ट उसके लिए किसने दिया है बस ये काइंडनेस जो होती है ना ये ऐसे काम जब आपसे घर में करवाती है तो वो सरप्राइज एलिमेंट से हमारे मम्मी पापा या हमारे बड़े बुजुर्ग बड़े खुश हो जाते हैं एंड ये सरप्राइज एलिमेंट उन्हें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है उसके बाद आता है वर्ड्स आर सीड्स हाँ जी तो इमेजिन कीजिए कि आपका मुंह एक छोटा सा गार्डन है और जब जो वर्ड्स आप बोल रहे हैं वो

बेज की तरह आगे बढ़ रहा है। अगर आपने कड़वे वर्ड्स बोले तो कांटे होंगेंगे और अगर आपने प्लीज थैंक यू आई एम सॉरी एंड यू कैन डू इट ऐसे वाले वर्ड्स बोले तो हर जगह सिर्फ फ्लावर्स फूल ही फूल उगेंगे। हाँ जी, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मम्मी मुझे पानी चाहिए, आप ये बोल सकते हैं कि मम्मी प्लीज़ क्या मैं थोड़ा सा पानी पी सकता हूँ, आप ला देंगी। तो ये जो प्लीज़ थैंक यू ऐसे शब्दों का जब आप इस्तेमाल करेंगे ना तो पेरेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगेगा और आपको भी। हाँ, उसके बाद आता है बी काइंड टू यू। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी कभी हम स्कूल में गलती कर देते हैं तो शायद मैथ टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं या फुटबॉल में अपने गोल मिस कर देते हैं। उस वक्त हमारा इंटरनल रेडियो हमसे बहुत गंदे तरीके से बात कर रहा होता है कि तुमसे नहीं होगा, यू आर नॉट गुड और वो सारी चीज़ें। देखो, जब भी ऐसा ख्याल आए ना तो उसे रोक दो। और आप जब दूसरों के साथ इतने काइंड होते हो, सबको थैंक यू प्लीज़ करके हेलो करके बात कर रहे हो, तो फिर अपने साथ काइंड होना तो बनता है ना बॉस, है कि नहीं? तो बस अपने लिए भी काइंडनेस रखो और फिर देखो कि ये जो आज का हमारा टॉपिक था सैंडविच जनरेशन, जहाँ पर मुझे टारगेट करना था सारे बच्चों को, ताकि ये जो पहचान है पेरेंट्स की, ये जो पहचान है आपकी मम्मा की, आपके पापा की, आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, वो कहीं ना जाए, है कि नहीं? तो ये आपको टास्क मिला है और इसे आपको पूरा करना है। और पेरेंट्स जो आज हमारे साथ थे और जिन्होंने आज हमारा शो सुना है, मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो बातें हैं ये बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं, बिकॉज आई एम श्योर कि जब ये चीज़ हमारे घर के बच्चे सीखेंगे तो हम सैंडविच जनरेशन थोड़ा कम कहलाएंगे। और इसी के साथ हमारे आज के शो मेरी पहचान से मुझे दीजिए इजाज़त। वक्त है मेरे जाने का और अगले एपिसोड में क्या खास होगा वो जानने के लिए आप सेम टाइम सेम प्लेस हमें सुनना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं देन एफएम 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं या फिर अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो अपना खूब सारा ख्याल रखें, बने रहें एफएम 107 पर, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: हम भी वो हैं जो कभी

0: दोस्तों, गाड़ियों के ड्राइवर्स और दीगर सड़क इस्तेमाल करने वालों को अर्जेंट इमरजेंसी के दौरान इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे के सिविल डिफेंस, एम्बुलेंसेस, फायर इंजन्स और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना चाहिए। इन गाड़ियों के ड्राइवर्स मल्टी टोन साइरन्स और मखसूस लाइट डिवाइसेस के जरिए आपको बताते हैं कि उस वक्त इन्हें अर्जेंट इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी कॉल के दौरान इन गाड़ियों को ओवरटेक करने से या इमरजेंसी व्हीकल्स के पीछे 50 मीटर से कम फासला बनाए रखने से आपको ट्रैफिक वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। ड्राइविंग के वक्त सतर्क रहिए और दूसरों का ख्याल रखना हम सब की जिम्मेदारी है। FM 107 आप सब की खुशगवार जिंदगी का ख्वाहिशमंद है।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं आपकी होस्ट सफा और आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे फिनोमेना की दुनिया में जो अक्सर हमारी नोटिस से बाहर होता है, द साउंडलेस क्वेक, यानी जमीन का कुछ इस तरीके से हिलना जो कि इतना हल्का होता है कि आप उसे महसूस भी नहीं कर पाते। अब ये बात सुनते ही आपके जहन में एक सवाल आया होगा, सफा ये क्या मुमकिन है, क्वेक्स जो महसूस ना हो? बिल्कुल मुमकिन है जी, ये है माइक्रो अर्थक्वेक्स, ये सबटल ट्रेमर्स जो हमारी अर्थ के अंदर हो रहे हैं मगर हमारे सेंसरी सिस्टम तक ये पहुंचते ही नहीं। मतलब ये ऐसे छोटे जॉल्ट्स हैं जो हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं लेकिन हमारी आंखों और कानों से ये बिल्कुल इनविजिबल हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये हर साल दुनिया भर में हजारों छोटी अर्थक्वेक्स होती हैं लेकिन ये आम लोगों के लिए एकदम साइलेंट होती हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये छोटी जॉल्ट्स अर्थ के अंदर के स्ट्रेस को रिलीज करते हैं और बड़े अर्थक्वेक्स के लिए एक वार्निंग सिस्टम का काम भी कर सकते हैं। जरा सोचिए, अर्थ खुद ही एक इनविजिबल हार्ट बीट मेंटेन कर रहा है और हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू उसकी धड़कन सुन सकते हैं। साइंटिफिकली ये साउंडलेस क्वेक्स तब होते हैं जब जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में थोड़ा सा स्लिप करते हैं और एनर्जी रिलीज होती है मगर इतनी कम होती है कि उसकी वाइब्रेशन हम फील नहीं कर सकते। अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें ना, तो ये ऐसा है जैसे आपके कमरे की टेबल पर एक छोटी सी वाइब्रेशन हो जो इतनी सबल हो कि आप हाथ लगाकर भी महसूस ना कर सकें। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है साथियों, साइंटिस्ट्स ने ऐसे ट्रेमर्स को डिटेक्ट करने के लिए सेंसिटिव सेस्मोमीटर और एक्सेलेरोमीटर डिजाइन किए हैं जो कुछ माइक्रोमीटर्स तक के मूवमेंट्स को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डाटा रिसर्चर्स को हेल्प करता है समझने में कि अर्थ के अंदर कैसे छोटे छोटे शिफ्ट्स हो रहे हैं और कब ज्यादा डेंजरस मूवमेंट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। और साथियों, मजे की बात तो ये है कि ये साउंडलेस क्वेक्स कभी कभी वाइल्ड लाइफ और ओशन वेव्स को भी अफेक्ट करते हैं। रिसर्चर्स ने ऑब्जर्व किया है कि कुछ मरीन एनिमल्स की एक्टिविटी और माइग्रेशन पैटर्न्स ये छोटी जॉल्ट्स डिटेक्ट करके एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये कि हमारी अर्थ एक ऐसा वर्ल्ड बना रही है जहां सिर्फ ह्यूमंस नहीं बल्कि नेचर का हर एलिमेंट इसकी सबल सिग्नल्स को फील कर सकता है। तो भाई, आज के इस एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे ये इनविजिबल इनऑडिबल अर्थक्वेक्स, उनका साइंस, उनके इफेक्ट्स और कैसे ये अर्थ की मिस्टीरियस मूवमेंट्स को हम तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि ये जर्नी है एक हिडन वर्ल्ड की जहां जमीन साइलेंटली हिल रही है और हम सब उसकी कहानी सुनेंगे बस इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू। तो चलिए साथियों, अब बात करते हैं साइंस की, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझ लेते कि ये साउंडलेस क्वेक्स कैसे काम करते हैं, हम उनकी इम्पोर्टेंस को भी नहीं समझ सकते। ये छोटी सी इनऑडिबल ट्रेमर्स असल में हमारे लिए साइलेंट टीचर्स हैं। ये हमें बताते हैं कि जमीन के अंदर क्या हो रहा है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जर्नी पर हैं और किस तरह स्ट्रेस और प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो भाई, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये कि मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी अलग चीजें हैं। ये दो टर्म्स अक्सर कंफ्यूज कर देती हैं लोगों को। मैग्नीट्यूड का मतलब है क्वेक की टोटल एनर्जी रिलीज होना, यानी ये कितनी ताकत के साथ जमीन के अंदर शिफ्ट हुआ। इंटेंसिटी का मतलब है कि इस एनर्जी का एक्सपीरियंस सरफेस पे कितना होता है, यानी लोगों और स्ट्रक्चर्स के लिए ये कितना महसूस होता है। अब यही डिफरेंस साउंडलेस क्वेक्स को समझने में मदद करता है। इनका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा होता है साथियों, अक्सर एक से दो के बीच, इसीलिए ये ह्यूमन सेंस से बिल्कुल दूर होते हैं। अगर आप इसको नॉर्मल अर्थक्वेक के स्केल पर नापें तो ये एक हल्की सी वाइब्रेशन है जो एक माइक्रोस्कोप के लिए भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बन सकती है। लेकिन मामला ये है कि आप और मैं तो इसे फील नहीं कर पाएंगे ना। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है साथियों कि इन क्वेक्स का फ्रीक्वेंसी पैटर्न प्रिडिक्ट करना पॉसिबल है। साइंटिस्ट ने ऐसे टूल्स डेवलप कर लिए हैं भाई जो कि नैनोमीटर्स तक की वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ऐसी डिवाइस जो आपके हाथों में हो तो वैसे तो बाहर आपको कुछ महसूस ना हो, लेकिन इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए आप हर छोटी सी मोशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन के लिए इनविजिबल ही क्यों ना हो। ये डिवाइस हमें दिखाते हैं कि जमीन के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है, कैसे टेक्टोनिक प्लेट्स अपने स्ट्रेस को रिलीज कर रहे हैं और किस एरिया में फ्यूचर में मूवमेंट एक्सपेक्ट की जा सकती है भाई। और ये सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स तक लिमिटेड नहीं है साथियों, भाई ये माइक्रो ट्रेमर्स अर्थ के नेचुरल रिलीफ वैल्यूज जैसे हैं। जरा सोचिए, अगर ये छोटी क्वेक्स ना हो तो छोटी छोटी एनर्जी का बिल्डअप एक दिन बड़ी डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक बन सकता है। मतलब ये साइलेंट क्वेक्स असल में हमारी सेफ्टी के लिए भी काम करते हैं, एक नेचुरल वार्निंग सिस्टम की तरह साथियों। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये अर्थ का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म भी है जो कभी कभी बड़े डिजास्टर से पहले एनर्जी को रिलीज कर देता है ताकि ज्यादा डैमेज ना हो। और भाई दोस्तों, ये बात भी तो याद रखने की है कि ये क्वेक्स सिर्फ नेचुरल नहीं होते, ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे माइनिंग, लार्ज स्केल ड्रिलिंग और कंस्ट्रक्शन भी इनऑडिबल ट्रेमर्स क्रिएट कर सकती हैं। मतलब जब हम जमीन के अंदर हैवी मशीन्स या एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं, ये छोटी क्वेक्स ट्रिगर हो सकती हैं। ये चीज साइंटिस्ट के लिए एक फैसिनेटिंग सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमें ये समझने में मदद करता है कि ह्यूमंस की एक्टिविटीज का अर्थ के डायनामिक्स पर क्या इफेक्ट है। एक और फैसिनेटिंग एंगल ये है कि ये माइक्रो ट्रेमर्स इकोसिस्टम और वाइल्ड लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। कुछ रिसर्च से पता चलता है कि मरीन एनिमल जैसे वेल्स और डॉल्फिन्स ये छोटी वाइब्रेशंस डिटेक्ट कर लेते हैं और अपने माइग्रेशन या हंटिंग पैटर्न्स को एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब साउंडलेस क्वेक्स सिर्फ ह्यूमन पर्सपेक्टिव में इनविजिबल हैं, लेकिन नेचर के लिए ये एक सटल सिग्नल का काम करते हैं। ये अर्थ की एक सीक्रेट लैंग्वेज है जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ सेंसिटिव स्पीशीज समझ सकते हैं। और साथियों, यही चीजें तो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को और भी ज्यादा एक्साइटिंग बनाती हैं। इमेजिन करें कि आप एक साइंटिस्ट हैं और आप जमीन के अंदर इनविजिबल हार्ट बीट को मॉनिटर कर रहे हैं। आपको छोटी छोटी जॉल्स का पैटर्न एनालाइज करना है, उनकी फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है और ये समझना है कि कब कब बड़ी मूवमेंट्स एक्सपेक्ट की जा सकती हैं। ये एक तरह से डिटेक्टिव का काम है भाई। हर माइक्रो ट्रेमर एक क्लू है जो हमें अर्थ के सीक्रेट तक ले जा सकता है। तो साथियों, ये साउंडलेस क्वेक्स असल में सिर्फ साइंटिफिक क्यूरियोसिटी का टॉपिक नहीं है, ये हमारी सर्वाइवल और सेफ्टी का एक सटल मैकेनिज्म भी है। साथियों, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अर्थ की मिस्टीरियस मूवमेंट्स को डीकोड करने का एक तरीका ढूंढ रहे हैं और हमें ये सब कुछ समझने में ये चीजें मदद करती हैं कि हमारा प्लैनेट कितना जिंदा है और कितना डायनामिक है। ये छोटी साइलेंट वाइब्रेशंस हमें अर्थ के अंदर की हिडन स्टोरी सुनाती हैं, स्टोरीज जो अक्सर हमारी आंखों और कानों से छुपी रहती हैं, मगर इन इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये दुनिया हमारे सामने आ जाती है। तो भाई, किसी दिन जब आप जमीन के एकदम नॉर्मल सरफेस पे खड़े हो ना, या बस हल्की सी वाइब्रेशन महसूस करें या ना भी करें, तो भाई याद रखें कि जमीन अंदर से साइलेंटली हिल रही है, अपनी एनर्जी रिलीज कर रही है और एक इनविजिबल और इनऑडिबल वर्ल्ड का पार्ट आप भी हैं। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
0: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। साथियों, अब हम एंटर करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ी ट्रिकी दुनिया में, यानी डिटेक्ट करना। क्योंकि अगर हम ये साउंडलेस क्वेक्स महसूस नहीं करते तो फिर कैसे मालूम होता है कि जमीन अंदर से हिल रही है। ये एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री है साथियों, और साइंटिस्ट्स ने इसको सॉल्व करने के लिए कुछ इनक्रेडिबल टूल्स और टेक्निक्स डेवलप किए हैं। सबसे पहला और फेमस टूल है सेस्मोग्राफ। ये एक ऐसा डिवाइस है जो ग्राउंड के मोशन को रिकॉर्ड करता है और उसकी मूवमेंट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाता है, जिसे सेस्मोग्राम कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक डॉक्टर हार्ट बीट मॉनिटर करता है, सेस्मोग्राफ्स इतने सेंसिटिव होते हैं साथियों कि ये छोटी सी छोटी वाइब्रेशन जो ह्यूमन सेंसेस से बिल्कुल इनविजिबल है उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। तो भाई अगर आप सोच रहे हैं कि सफा क्या बस यही काफी है, इसमें पूरी एक्सप्लेनेशन हो गई, तो जवाब है नहीं।

ये काम और भी एडवांस डिवाइसेस से होता है, जैसे एक्सेलेरोमीटर्स। ये डिवाइसेस सेस्मोग्राफ से भी ज्यादा सेंसिटिव होती हैं भाई। मतलब अगर जमीन के अंदर एक नैनोमीटर का शिफ्ट भी हो, ये डिटेक्ट कर लेती हैं इस चीज को। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक्सेलेरोमीटर्स को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये छोटी वाइब्रेशंस के डाटा को रिकॉर्ड करें और बाद में एनालाइज करें कि कौन से टाइप के ट्रमर हैं, ये माइक्रोक्वेक है या फिर किसी और जियोलॉजिकल एक्टिविटी का सिग्नल। और यही नहीं साथियों, मॉडर्न टाइम्स में GPS नेटवर्क्स का भी यूज होता है। सैटेलाइट के थ्रू अर्थ के सपल शिफ्ट्स को मेजर किया जा सकता है। ये हमारी मदद करता है ये समझने में कि टेक्टोनिक प्लेट्स कितना मूव कर रही हैं और कौन से रीजन ग्रेजुअली स्ट्रेस एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम डिजाइन करने में भी बहुत हेल्प करती है। जरा सोचिए, अगर हम ये सटल मूवमेंट्स डिटेक्ट कर लें तो हम फ्यूचर में बड़े अर्थक्वेक्स के लिए भी थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर्ड रह सकते हैं, है कि नहीं। और साथियों, सबसे मजेदार बात ये है कि ये काम सिर्फ साइंटिस्ट तक लिमिटेड नहीं है, मॉडर्न AI एल्गोरिदम्स भी इस प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। AI और मशीन लर्निंग को यूज करके रिसर्चर्स माइक्रोक्वेक डाटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न्स समझते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं कि कौन से एरियाज में बड़े स्केल पर अर्थक्वेक्स आने का खतरा है। मतलब AI हमारी मदद करता है इनविजिबल पैटर्न्स को दिखाने में, जो ह्यूमन ब्रेन और सिंपल डिवाइसेस के लिए बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, एक मजे की बात ये है कि कुछ रीजन्स जैसे जापान और कैलिफोर्निया, जो नेचुरली अर्थक्वेक्स से भरे हुए हैं, जहां साउंडलेस क्वेक्स का रिकॉर्ड डेकेड से मेंटेन किया जा रहा है, साइंटिस्ट के पास ऐसी हिस्टोरिकल डेटा है जो छोटी से छोटी पैटर्न्स को शो करता है। ये रिकॉर्ड उनकी नेचुरल डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राइसलेस है भाई। मतलब ये कि ये छोटी सी क्वेक्स जो हम फील भी नहीं कर सकते, असल में हमारे लिए साइलेंट हीरोज का काम कर रही हैं। और ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथियों कि ये डिटेक्शन प्रोसेस ना सिर्फ अर्थक्वेक समझने के लिए बल्कि अर्थ के अंदर के हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करने के लिए भी होता है। हर माइक्रोक्वेक एक हिंट है, एक क्लू है जो हमें ये बताता है कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है। रिसर्चर्स कहते हैं कि अगर हम ये माइक्रो ट्रमर्स इग्नोर करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर हम डिटेक्ट करें और एनालाइज करें तो हम अर्थ के अंदर के मूवमेंट्स के मास्टर डिटेक्टिव बन सकते हैं। और एक और फैसिनेटिंग एंगल ये भी है साथियों कि ये टेक्नोलॉजी वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट स्टडीज में भी यूज होती है, जिसे साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि मरीन एनिमल्स और बर्ड्स छोटी क्वेक्स की वाइब्रेशंस को फील करके अपने बिहेवियर और माइग्रेशन पैटर्न्स एडजस्ट कर लेते हैं। मतलब ये साउंडलेस क्वेक्स सिर्फ ह्यूमन सेंसेस के लिए इनऑडिबल हैं, लेकिन नेचर के लिए एक कम्युनिकेशन सिग्नल का काम करते हैं। तो भाई साथियों, अगर आपका कभी जापान या कैलिफोर्निया जाना हो या किसी और ऐसी जगह पर जहाँ पे अर्थक्वेक्स का बहुत ज्यादा बड़ा स्केल हो, ऐसे रीजन्स के बारे में अगर आप सुने या फिर न्यूज में माइक्रो अर्थक्वेक डिटेक्ट हेडलाइन देखें, याद रखिए कि ये छोटी सी साइलेंट वाइब्रेशंस हमारी दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें सिर्फ अर्थ के अंदर के सीक्रेट्स नहीं बताती बल्कि हमारी सेफ्टी, प्लानिंग और अवेयरनेस के लिए भी बहुत ज्यादा क्रूशियल है। तो भाई, इन्हें डिटेक्ट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए ये इम्पॉसिबल नहीं। ये साउंडलेस क्वेक्स हमेशा प्रेजेंट हैं हमारे आसपास, और अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो ये हमारी अर्थ की कहानी को सुनाते हैं। एक कहानी जो साइलेंट है, इनविजिबल है, मगर बहुत ही पावरफुल इंफॉर्मेशन रखती है। साथियों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल एंगल की, यानी इम्पैक्ट्स की। क्योंकि सवाल ये है कि अगर हम इन साउंडलेस क्वेक्स को महसूस भी ना करते तो ये क्वेक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और सबसे ऑब्वियस इम्पैक्ट है अर्थक्वेक प्रिडिक्शन और अर्ली वार्निंग सिस्टम्स का। ये माइक्रो ट्रमर्स असल में अर्थ के सबल सिग्नल्स होते हैं, जैसे जमीन अपने अंदर एक एनर्जी को रिलीज कर रही है छोटी छोटी जॉल्स के थ्रू। अगर किसी रीजन में ये छोटी क्वेक्स फ्रीक्वेंटली रिकॉर्ड हो रही हैं, तो साइंटिस्ट उनको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। ये मॉनिटरिंग उन्हें फ्यूचर में लार्ज अर्थक्वेक्स के लिए प्रिपेयर करने का चांस देती है। मतलब ये छोटी सी साइलेंट वाइब्रेशंस हमारे लिए एक नेचुरल अर्ली वार्निंग सिस्टम का काम कर रही हैं। इमेजिन करें जरा, अगर हम इन माइक्रोक्वेक्स के पैटर्न को समझ लें तो हम डिजास्टर प्रिपेयरनेस और इवैक्यूएशन प्लान्स को और भी बेहतर बना सकते हैं, और शायद लाइफ बचाने में भी मदद हो सकती है। दूसरा इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन का। जब इंजीनियर्स

0: मूव कर सकती है। इसी के साथ लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक साथियों, और ब्रेक के बाद वापस आकर जानेंगे और भी बातें। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 पे सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
1: आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी RJ सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
0: वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑन FM 107। चलिए अब चलते हैं थोड़ी फन और सरप्राइजिंग चीज की तरफ। ये क्वेक्स हमारे प्लैनेट की हार्ट बीट की तरह हैं साथियों, साइलेंट, कंसिस्टेंट और लाइफ मेंटेनिंग। बिल्कुल वैसे जैसे हमारी हार्ट बीट बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करती है ना, वैसे ही ये छोटी वाइब्रेशंस अर्थ के एनर्जी फ्लो और टेक्टोनिक बैलेंस में कंट्रीब्यूट करती हैं। ये अर्थ के लिए एक रिमाइंडर है कि प्लैनेट कितना डायनामिक है, और ये डायनामिक एक्टिविटी हमेशा इनविजिबल या इनऑडिबल होती है, मगर हर मोमेंट एसेंशियल होता है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ अर्थ के अंदर का इम्पैक्ट है, ये छोटी क्वेक्स ओशंस और रिवर्स के डायनामिक्स को भी अफेक्ट करती हैं। मरीन सेडिमेंट्स, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स एंड इवन सम कोरल रीफ फॉर्मेशंस को छोटे ट्रेमर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। मतलब हर माइक्रोक्वेक एक डोमिनो अफेक्ट क्रिएट कर सकता है जो इकोसिस्टम और ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को टच करता है, सिर्फ साइलेंटली। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि कुछ जगहें जो कि अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा भरी हुई होती हैं, जैसे जापान और न्यूजीलैंड में, ये माइक्रो ट्रेमर्स के रिकॉर्ड्स डेकेड से मेंटेन किए जा रहे हैं। ये रिकॉर्ड सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा नहीं बल्कि मॉडर्न साइंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए प्राइसलेस ट्रेजर हैं। ये हमें सिखाते हैं कि हर छोटी सी वाइब्रेशन एक लेसन है, अर्थ के अंदर की एनर्जी और मूवमेंट को समझने का सफल तरीका। तो साथियों अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, और यहाँ बात करते हैं फ्यूचर और मिस्ट्रीज की। ये साउंडलेस क्वेक्स या माइक्रो ट्रेमर्स अभी भी साइंस के लिए बहुत यंग और फैसिनेटिंग फील्ड हैं। साइंटिस्ट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कैसे ये माइक्रो ट्रेमर्स को और एक्यूरेटली डिटेक्ट और प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और इसमें मशीन लर्निंग, AI और बिग डाटा का भी यूज हो रहा है। मतलब कंप्यूटर्स और एल्गोरिदम्स अब अर्थ की छोटी सी वाइब्रेशंस को समझने में ह्यूमंस के साथ कोलैब कर रहे हैं, और ये फ्यूचर के लिए बहुत प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। साथियों एक इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग थ्योरी ये भी है कि कुछ डीप अर्थक्वेक्स जो सेवरल किलोमीटर्स बीनीथ द सरफेस होते हैं सिर्फ सेस्मिक वेव्स जनरेट करते हैं। ये ऑडिबल नहीं होते और ना ही हम इन्हें फील कर सकते हैं, मगर ये प्लैनेट के कोर और मेंटल की डायनेमिक्स को रिवील करते हैं। सोचिए हमारी जमीन के अंदर काफी मिस्ट्रीज चल रही हैं, और हर एक टाइनी इनऑडिबल क्विक एक सीक्रेट मैसेज जैसा है, सिर्फ साइंटिफिक आईज और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए डिकोडेबल। और ये मत भूलिएगा साथियों, ये साइलेंट ट्रेमर्स सिर्फ जमीन की सरफेस तक लिमिटेड नहीं है, डीप ओशंस फ्लोर्स में भी ये क्विक्स होती हैं, और इन्हें भी डिटेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि पानी के करंट्स और वेव्स भी इंस्ट्रूमेंट्स के रिकॉर्डिंग में इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं। और इसके लिए साइंटिस्ट्स स्पेशली डिजाइंड अंडरवाटर सेस्मोमीटर्स यूज करते हैं जो ओशंस के हिडन वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करते हैं। ये एक तरह का साइंटिफिक एडवेंचर है। इमेजिन करें कि आप डीप ओशन के फ्लोर पर खड़े हैं और अर्थ की छोटी जॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं जो किसी भी ह्यूमन के लिए इनविजिबल है। मजे की बात यह है कि नासा भी अर्थ के साइलेंट वाइब्रेशंस को स्टडी कर रहा है। उनका गोल सिर्फ अर्थ तक लिमिटेड नहीं, वो ये नॉलेज मार्स और मून जैसे रॉकी प्लैनेट्स के लिए भी यूज करना चाहते हैं। मतलब जो टेक्निक्स हम अर्थ के माइक्रो ट्रेमर्स के लिए डेवलप कर रहे हैं वो फ्यूचर में इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन और प्लैनेटरी डायनामिक्स को समझने में भी मदद करेगा। सोचिए एक छोटी सी वाइब्रेशन जो हम फील नहीं करते पूरा स्पेस एक्सप्लोर का पार्ट बन सकती है। और साथियों ये क्विक्स एक छोटा लेकिन बहुत ही पावरफुल सीक्रेट है प्लैनेट के अंदर की मूवमेंट्स का, एक साइलेंट डायलॉग जो सिर्फ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ही विजिबल होता है। और भाई मुझे तो ये सोचकर बहुत हैरानी होती है कि शायद हमारे घर के फ्लोर पर भी हर वक्त इनविजिबल क्विक्स हो रहे हैं और हम बस उन्हें महसूस नहीं करते। अर्थ साइलेंटली अपनी स्टोरी सुना रही है और हम हर मोमेंट में उसका हिस्सा हैं, चाहे हम चाहें या ना चाहें। ये फ्यूचर के लिए भी बहुत एक्साइटिंग है साथियों। तो साथियों आज की हमारी ये जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। हमने ये जाना कि साउंडलेस क्विक्स क्या हैं, कैसे ये डिटेक्ट होते हैं और कैसे हमारी सेफ्टी, साइंस और नेचर के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। ये साइलेंट ट्रेमर्स इनऑडिबल क्विक्स माइक्रो

0: अर्थक्वेक्स, ये सब एक छोटी सी वाइब्रेशन से लेकर प्लैनेट की डायनेमिक्स तक का कनेक्शन रिवील करते हैं। और एक और पर्सपेक्टिव भी सोचिए जरा कि ये सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं, ये हमें जिंदगी का एक लेसन भी देता है। कभी कभी जिंदगी में भी छोटे साइलेंट चेंजेस होते हैं जो हम महसूस नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं हम पर, जैसे साउंडलेस क्वेक्स, इनविजिबल, इनऑडिबल और साइलेंट मगर बहुत ही मीनिंगफुल। हर छोटी वाइब्रेशन एक सिग्नल है, सिर्फ देखना और समझना जरूरी है। और साथियों, हमें ये जर्नी ये भी रिमाइंड कराती है कि हमारी दुनिया एक बहुत ही डायनेमिक और अलाइव सिस्टम है। हर माइक्रो ट्रेमर एक साइलेंट शिफ्ट, एक पार्ट है इस प्लैनेटरी सिम्फनी का, और हम ह्यूमंस इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि किसी तरह से ये वर्ल्ड हमें समझ में आ जाए। ये हमें इंस्पायर करता है, क्यूरियोसिटी जगाता है हमारे अंदर की, और साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन की इम्पोर्टेंस समझाता है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ सफा और ये था आज का एपिसोड एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी से। अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टॉपिक के साथ। तब तक क्यूरियस रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए और दुनिया के साइलेंट वंडर्स को नोटिस करते रहिए। और याद रखिएगा कि कभी कभी सबसे छोटी और साइलेंट चीजें ही सबसे ज्यादा पावरफुल और मीनिंगफुल होती हैं। अर्थ साइलेंटली हिल रही है और हमारी जर्नी तो बस अभी शुरू हुई है उसकी स्टोरीज को समझने के लिए। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, सुनते रहिए FM 107।
1: FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। ये रूल्स ना सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं। स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
3: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं RJ सर्वर MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में। MOI वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखिला की हर एक

0: एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आप और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, सब कुछ मिलेगा यहाँ। ट्यून करें हर वेंसडे शाम 7:15 FM 107 और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। MOI वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद RJ सर्वर। डोंट मिस इट।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर की जिमनास्ट रकन अल मुतावा के बारे में। रकन अल मुतावा कतर के उभरते हुए जिमनास्ट में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कम उम्र से ही जिमनास्टिक्स में दिलचस्पी लेना शुरू की और अपनी लगन, डिसिप्लिन और मुसलसल मेहनत की वजह से कौमी सतह पर अपनी पहचान बनाई। दोस्तों जिमनास्टिक्स एक ऐसा खेल है जहां ताकत, लचक, बैलेंस और जहनी तवज्जो का बेहतरीन इम्तिजाज दरकार होता है। रकन ने इन तमाम सलाहियतों का मुजाहरा मुख्तलिफ मुकाबलों में किया है। दोस्तों कतर में जिमनास्टिक्स को फरोग देने के लिए जो कोशिश

0: की जा रही हैं। उनका हिस्सा बनते हुए रखान ने कई नेशनल और रीजनल कॉम्पिटिशन्स में शानदार परफॉर्मेंस पेश की। हर मुकाबले के साथ उनके तजुर्बे में इजाफा हुआ और उन्होंने अपनी टेक्निक्स को मजीद बेहतर बनाया। कोचेस और स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स ने उनकी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी को उनकी सबसे बड़ी ताकत करार दे दी। रकान अल मुतावा नौजवान एथलीट्स के लिए एक मिसाल हैं। वो ये पैगाम देते हैं कि अगर इंसान मेहनत, सब्र और हौसले के साथ अपने ख्वाब का ताकूब करे तो कामयाबी जरूर मिलती है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले सालों में रकान बैन अवी चैंपियनशिप में कतर की नुमाइंदगी करते हुए मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे और अपने मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और अजीम खिलाड़ी के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर। नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें। ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से न सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि गजाई फाइबर क्या है और ये जरूरी क्यों है। आज हम एक ऐसी गजाई जुज्व के बारे में बात कर रहे हैं जो अक्सर हमारी रोज़मर्रा जो खुराक है उसमें नज़रअंदाज हो जाता है, लेकिन ये अच्छी सेहत के लिए नहायत ज़रूरी है और उसका नाम है गजाई फाइबर। फाइबर पौधों से हासिल होने वाली गजा का वो हिस्सा है जो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन यही खसूसियत इसे हमारी सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदा मंद बनाती है। फाइबर दो किस्म के होते हैं, सोलूबल फाइबर या हल पजीर फाइबर। ये पानी में डिजोल्व हो जाता है और हमारे स्टमक में जो जेली जैसा जो मादा है वो बनाता है, जेल लाइक। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने, ब्लड में शुगर को बैलेंस रखने और दिल की सेहत बेहतर बनाने में मदद देता है। इसी तरह इनसोलूबल फाइबर या गैर हल पजीर फाइबर है, ये हजम नहीं होता बल्कि खुराक को आंतों में आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ाता है, जिससे जो कॉन्स्टिपेशन है या कब्ज से बचा जा सकता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है। अब ये कि हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि फाइबर किन गिजाओं में हो सकता है या होता है, उसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, ख़ास तौर पर एप्पल है, नाशपाती, माल्टा और बेरीज। सब्ज पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, और तमाम सब्जियों में फाइबर होता है मगर सब्ज पत्तों वाली में ज़्यादा होता है। इस तरह दालें हैं, चने हैं, लोबिया और राजमा, ओट्स हैं, ब्राउन चावल हैं, गंदम का आटा है और जो नट्स हैं, ड्राई नट्स हैं या जो सीड्स हैं उनमें। अगर हम रोज़ाना मुनासिब मकदार में फ़ाइबर इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर रहता है बल्कि दिल और इसके अलावा हमारा जो वज़न है और मजमूई सेहत है उस पर भी बिल्कुल मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। और अगर आप फाइबर की मकदार बढ़ाना चाहते हैं तो ये काम आहिस्ता आहिस्ता कीजिए, उसके साथ पानी भी ज्यादा लें ताकि फाइबर बेहतर अंदाज में काम कर सके।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, ग्रोसरी शॉपिंग हम सबकी डेली लाइफ और या तो फिर आप कह लें कि वीकली रूटीन का हिस्सा तो होती ही होती है। हम मार्केट से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, स्पाइसेस और बहुत सारे हाउस होल्ड आइटम्स लेकर आते हैं, है कि नहीं? लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ग्रोसरी को घर में स्टोर करने का तरीका भी एनवायरमेंट पर असर डाल सकता है? कभी सोचा है? जी हाँ, नहीं सोचा तो मैं आपको सोचने पर मजबूर कर देती हूँ। देखिए, कभी कभी फ्रिज में रखा हुआ खाना खराब हो जाता है और फिर वेस्ट हो जाता है। कभी हम अननेसेसरी प्लास्टिक बैग्स और डिस्पोजेबल कंटेनर्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ग्रोसरी स्टोरेज को थोड़ा सा स्मार्ट बनाए तो हम खाना भी बचा सकते हैं और वेस्ट भी कम कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना आज के इस इको स्विच में बात कर ली जाए सस्टेनेबल ग्रोसरी स्टोरेज के बारे में, यानी ग्रोसरी को इस तरह स्टोर करना के फूड वेस्ट कम हो और रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल हो। चलिए भाई, प्रॉब्लम को पहले तो हाईलाइट करते हैं। देखिए, ये जो फूड होता है ना, फूड वेस्ट, आज की दुनिया का एक बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है भाई। ये कोई हल्की चीज नहीं है। जब खाना वेस्ट होता है ना, तो सिर्फ खाना ही वेस्ट नहीं होता, उसे उगाने, ट्रांसपोर्ट करने, पैक करने और स्टोर करने में जो पानी, एनर्जी, रिसोर्सेज यूज हुए होते हैं ना, वो सब जाया हो जाते हैं भाई। देखिए, घर में अक्सर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जल्दी खराब हो जाना, फ्रिज में चीजें रख कर भूल जाना, प्लास्टिक बैग्स का बार बार इस्तेमाल करना, ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज ना करना, यूं लेकर आए और यूं ही फ्रिज में फेंक दिया और वो गई पीछे वाली थैली बिल्कुल पीछे, हमें याद ही नहीं कि हम कोई तरबूज लेकर आए थे, हमने खाना था, वो पड़ा पड़ा बेचारा जिस सेकंड आया था उससे लेकर अब तक वो सड़ ही गया। कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और फिर आइटम्स या एक्सपायर हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। इसलिए स्मार्ट स्टोरेज सिर्फ किचन को आप कह लें कि ऑर्गेनाइज नहीं बनाता, बल्कि एनवायरमेंट के लिए भी बेहतर चॉइस होता है। तो भाई, सिंपल इको स्विच सॉल्यूशन इसका क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सस्टेनेबल ग्रोसरी स्टोरेज के लिए कुछ सिंपल आइडियाज हैं। पहली चीज तो ये कि रीयूजेबल कंटेनर्स यूज करें, यानी कि प्लास्टिक डिस्पोजेबल बैग्स की जगह रीयूजेबल ग्लास जार इस्तेमाल करें, स्टील कंटेनर्स या ड्यूरेबल बॉक्सेस यूज करें, ये ज्यादा अरसे तक चलते हैं और वेस्ट भी कम होता है इनकी वजह से। अच्छा, दूसरी चीज ये कि ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करें मेहरबानी करके। मुझे पता है आप कितने भी थके हुए आए हैं, कुछ भी है, लेकिन भाई ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करें। आपने खरीदा है तो उसको ऑर्गेनाइज करें। फ्रिज और किचन कैबिनेट्स को ऑर्गेनाइज रखना बहुत जरूरी होता है। जो चीज पहले खरीदी है उसे पहले यूज करें ना, इससे फूड एक्सपायर होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरी चीज ये कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सही तरह स्टोर करें। हर फ्रूट या वेजिटेबल को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें रूम टेम्परेचर पर बेहतर रहती हैं। सही स्टोरेज से खाना ज्यादा देर तक फ्रेश रह सकता है। अच्छा, चौथी चीज, बल्क शॉपिंग स्मार्टली करें ना। देखिए, बल्क में चीजें लेना कभी कभी फायदेमंद होता है, लेकिन सिर्फ उतनी क्वांटिटी में खरीदे ना जितनी आप यूज कर सकते हैं। अगर चीजें ज्यादा ले रहे हैं और यूज नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, वेस्ट पड़ रहा है ना भाई, और जेब पे भी भारी पड़ जाता है फिर वो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेबल्स एंड डेट्स लगाएं। कंटेनर पर डेट लिखना एक सिंपल हैबिट है भाई, इससे ये पता रहता है कि भाई कौन सी चीज पहले यूज करनी है और कौन सा खाना बाद में यूज हो सकता है, मतलब ये कि वेस्ट कम हो जाता है इससे। अच्छा, अगर रियल लाइफ एग्जांपल ली जाना है इसकी, तो बहुत सी फैमिलीज अपने किचन रूटीन में सिंपल चेंजेस ला रही हैं आजकल, जो कि फूड वेस्ट को बहुत कम कर रही है। कुछ लोग ग्रोसरी आने के बाद फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रॉपरली क्लीन करके ना स्टोरेज करते हैं उसका। मैं करती हूँ, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से चलती है, और खासतौर पर जो बच्चों वाला घर होता है उसके अंदर, फिर बच्चे क्या करते हैं फ्रिज के अंदर से वो वॉश हुई हुई चीज आराम से निकाल कर खा लेते हैं। कुछ फैमिलीज ड्राई आइटम्स जैसे दाल, चावल और स्पाइसेस को रीयूजेबल जार्स में रख कर उन्हें इजीली ऑर्गेनाइज कर लेती हैं। कुछ लोग फ्रिज में फर्स्ट यूज सेक्शन बनाते हैं, जहां वो आइटम्स रखे जाते हैं जो जल्दी जल्दी खराब हो सकते हैं। जैसे मैंने अपने फ्रिज में एक फ्रूट्स का साइड बनाया हुआ है कि भाई फर्स्ट जो चीज नजर आए सामने सामने वो फ्रूट्स हैं, तो जल्दी जल्दी उनको खाकर खत्म कर लिया जाता है, क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, हफ्ता या हफ्ते या 10 दिन बाद वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ये छोटी छोटी आदतें ना सिर्फ किचन को बेहतर बनाती हैं, बल्कि पैसा भी बचाती हैं साथियों। तो भाई आज का इको स्विच चैलेंज आपके लिए ये है, आज अपनी किचन या फ्रिज को चेक करें और देखें क्या कोई ऐसी चीज है जो आप भूल गए और यूज कर सकते हैं, और अगली ग्रोसरी ट्रिप से पहले एक छोटी सी प्लानिंग जरूर करें। हमें बताइए आप ग्रोसरी स्टोर करने के लिए क्या चीज

0: सबसे ज्यादा यूज करते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स, ग्लास जार्स या रीयूजेबल बॉक्सेस। मैं हूँ सफा और आप सुन रहे थे इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए, स्मार्ट स्टोरेज सिर्फ किचन को ऑर्गेनाइज नहीं करता, ये फूड वेस्ट को भी कम करता है। छोटी छोटी आदतें बदलें और एनवायरमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहिए इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka. FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Aaj hum baat karenge bina kisi umeed ke madad karne ke bare mein. असल नेकी वो होती है जो बिना किसी रिटर्न के उम्मीद के की जाए। जब इंसान सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मदद करता है तो उसका अजर और भी ज्यादा हो जाता है। अक्सर हम मदद इसलिए करते हैं क्योंकि हमें एप्रिसिएशन मिले या फिर कोई हमें याद रखे, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि असली वैल्यू उस अमल की है जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो। बिना उम्मीद के मदद करना दिल को सुकून देता है और इंसान को सेल्फलेस बनाता है। ये एक हाई लेवल का करेक्टर बिल्ड करता है जो सोसाइटी के लिए बहुत फायदा मंद होता है। आज का अमल ये है कि किसी एक शख्स की मदद करें बिना बताए और बिना किसी रिटर्न की उम्मीद के। ये था हमारा आज का पैगाम। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पे RJ महावश के साथ।
2: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो FM 107 दिल

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक पर। हम बात करेंगे कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आने वाले टाइम के लिए बहुत मैंडेटरी हो जाएंगी। देखिए, 2030 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, दुनिया तेजी से चेंज हो रही है, हर रोज एक नई टेक्नोलॉजी, नई जॉब्स, नए स्किल्स सामने आ रहे हैं। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि हम अपनी तालीम और स्किल्स को किस तरह बेहतर बना सकते हैं और किस तरह से अपने बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार कर सकते हैं। वन स्टेप टू 2030 का मतलब है कि हम आज से ही छोटा कदम उठाएं जो कल हमारी जिंदगी को बेहतर बनाए। आज के दौर में सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना बिल्कुल भी काफी नहीं है। कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे लोगों को पसंद करती है या हायर करती है जो नए स्किल्स सीखने की सलाहियत रखते हैं। जी हाँ, डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे हुनर बहुत अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। और 2030 तक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन मजीद आम हो जाएंगे। इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना होगा और अपने आप को लगातार अपडेट करना होगा। तालीम एक नए अंदाज में पेश की जाएगी और तालीम का मतलब सिर्फ एग्जाम्स पास करना नहीं होगा, बल्कि जिंदगी के मसाइल को समझना और उनका हल ढूंढना है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज ये भी प्रैक्टिकल लर्निंग पर तवज्जो दे रही हैं। स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और इनोवेशन की तरफ रागिब किया जा रहा है और ये तब्दीली 2030 के विजन का एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। जी हाँ, ऑनलाइन लर्निंग ने भी तालीम को आसान बना दिया है। अब दुनिया के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस घर बैठे आप इनसे कोर्सेस कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या किसी को डिजिटल मार्केटिंग में दिलचस्पी है तो वो चंद क्लिक्स के जरिए नए स्किल्स हासिल कर सकता है। इस तरह हर अफराद अपने करियर को मजबूत बना सकता है। 2030 तक ग्रीन इकोनॉमी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी बहुत अहम मौजू होंगे, इसलिए इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और सस्टेनेबिलिटी के हवाले से तालीम हासिल करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, नई नस्ल को ये समझना होगा कि तरक्की और माहौल दोनों को साथ में लेके चलना है। हर शख्स अपनी जिंदगी में छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। रोजाना एक नई चीज सीखना, ऑनलाइन कोर्स या किसी एक्सपर्ट से मशवरा, ये सब वन स्टेप टू 2030 का हिस्सा है। जब लाखों लोग ये कदम उठाएंगे तो पूरा माशरा तरक्की करेगा। आज के बच्चे कल के लीडर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं और रिसर्चर्स हैं। अगर उन्हें हम बेहतर तालीम और मुनासिब स्किल्स दे दें तो वो मुल्क और दुनिया को तरक्की की नई बुलंदियों तक ले जा सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस और पेरेंट्स को मिलकर काम करना होगा। 2030, जी हाँ, 2030 का मुस्तकबिल आज के फैसलों से तय होता है। अगर हम आज सीखने, मेहनत करने और अपनी सलाहियतों को निखारने पर तवज्जो देंगे तो हम एक रोशन, तरक्की याफ्ता और कामयाब मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। हर बड़ा सफर एक छोटे से कदम से शुरू होता है और 2030 की तरफ हमारा कदम भी आज से ही शुरू होना चाहिए। 2030 का विजन सिर्फ इकोनॉमिक तरक्की तक महदूद नहीं है, बल्कि एक ऐसी दुनिया बनाना है जहां लोग सेहतमंद हो, महफूज हो, खुशहाल हो। इसका मकसद हासिल करना है कि हम एक ऐसी पिक्चर पोर्ट्रेट करें जहां सुकून, चैन, अमन, खुशहाली और तरक्की हो। सुनकर अजीब सा लगता है, लेकिन हाँ, इस तर्ह की पोर्ट्रेट करने में पिक्चर क्या हर्ज है। दुनिया की आबादी तेजी से शहरों की तरफ जो है वो मुंतकिल हो रही है। शहरों में आप देख रहे हैं हर रोज अलग अलग तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा हो रहे हैं। शायद इसी वजह से आने वाला दौर स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटीज का है। सस्टेनेबल सिटीज भी वो है जो माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर अपने बंदों को हर तरह की सहूलियत फराहम करेंगी। आने वाला दौर क्लीन एनर्जी का, ट्रांसपोर्ट का, ग्रीन स्पेस का और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का है। वहीं सोलर और विंड जैसे ऐसी एनर्जीज होंगी जो कहीं ना कहीं फ्यूचर में डोमिनेट करेंगी। इन सारी चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ग्रीन स्पेस भी सस्टेनेबल सिटीज का अहम हिस्सा होंगे। पार्क, प्लांट्स सिर्फ शहर की खूबसूरती नहीं बल्कि हवा को साफ करने में मदद करते हैं। रिसर्च ये बताती है कि सब्ज माहौल इंसानी जहनी सेहत को भी बेहतर बनाता है और शायद इसीलिए 2030 के जो शहर हैं वो ज्यादा ग्रीन और फ्रेंडली और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होंगे। टेक्नोलॉजी भी सस्टेनेबल सिटीज में एक अहम किरदार अदा करेगी। स्मार्ट सेंसर्स पानी बिजली के जरिए जिस तरह से स्मार्टली काम करेंगे इसका हम और आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 2030 के गोल्स में बहुत चीजें शामिल हैं। 2030 हमें ये पैगाम भी देता है कि तरक्की और एनवायरमेंट दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। सस्टेनेबल सिटीज हो या फिर बेहतर सेहत हो, साफ सुथरा माहौल हो या अच्छी एजुकेशन, हर चीज का ख्याल रखना है। हर छोटा कदम कल की रोशनी और कल की बेहतरी की तरफ हमें लेकर जाता है। 2030 का ख्वाब तभी पूरा होगा जब हम आज से इसकी तैयारी शुरू कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
0: One step to 2030. आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है, ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए रूफ टॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है। अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। कोई भी सामान, खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे के पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक, कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे, आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं। रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है। हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए, और वो भी ठीक तरीके से। अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं, तो उनको भी चेक करना लाजमी है, क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है। रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए। महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें। सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल, वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है। एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है। ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो, उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो। ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है, क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।

क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में, उसने सूरज और चांद को मुसख़र कर रखा है, सब एक वक्त मुकर्रर तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ये सब कुछ इस वजह से है कि अल्लाह ही हक है, और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वो सब बातिल है, और इस वजह से कि अल्लाह ही बुजुर्ग बहतर है। क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती